मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 जून 2026। प्रातः के 5:56:50 हुए हैं। आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ है आपकी दोस्त तुलिका शर्मा। आप सभी को हमारा नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है, थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका

0: निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगे। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण आधारित विकास और रोजगार सृजन पर अभूतपूर्व ध्यान दिया है। इससे औद्योगिक विकास में तेजी आई है और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं। श्री कुमार स्वामी ने कल बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान रणनीतिक क्षेत्र में अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि DRDO की आकास और ब्रह्मोस प्रणालियों ने वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी व्यवस्था में भारत की क्षमता प्रदर्शित की है। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। भारत की PV सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनते हैं शांता सक्सेना और हरीश भारद्वाज के स्वर में ये देशगान।

अनूप जलोटा का गाया। हरिओम शरण का गाया अभी आपने ये भक्ति गीत सुना। वंदना के अंत में आइए सुनते हैं ओम व्यास का गाया ये भक्ति गीत।

0: ओम व्यास के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही आज की वंदना संपन्न होती है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। आज हम आपको सुनवा रहे हैं वसंत निर्गुणे का आलेख। वाचक हैं डॉक्टर अरविंद सोनी।
1: हमारे वे दिन जैसे इतिहास में हमेशा के लिए चस्पा हो गए, जब पंछियों का कलरव सुबह का सहज अलार्म होता था। आंख से पहले कान जाग जाते थे, आंखों के सामने हमारी प्रातः बेला का एहसास कराने वाले सभी जरूरी दृश्य उजालों से भरपूर होते थे। पंछियों का संवेद गान पूरी भोर को विभोर कर देता था, क्योंकि इस गान में हमारी आत्माओं की स्वर लिपि होती थी। अलग अलग रंग और आकार में चिड़ियों के झुंड हर घर के आंगन और दालान को मोहक सुरों से भर देते थे। इन सुरों की माया इतनी गहरी होती थी कि पूरा दिन तो चंगा हो ही जाता था, लगे हाथ नकारात्मक विचार के लिए दिमाग के दरवाजे सुबह से ही बंद हो जाते थे। ये हमारी दैनंदिनी का आरंभ था, जो मन में इस तरह के विश्वास को भी जगा देता था कि यदि किसी सुबह पंछी नहीं गाएंगे तो शायद सूरज भी उगने से मुकर जाएगा। पक्षी सूर्योदय के शुभंकर थे और सूर्यास्त की पूर्णता भी इन्हीं सुरों से प्रमाणित होती थी। हमारे रोजमर्रा में इनकी लगातार आवाजाही पर्यावरण के सबसे महत्वपूर्ण सूत्र इकोसिस्टम के लिए धमनी और शिराओं का काम करती थी। दुर्भाग्य से ये बात हमें आज तब समझ में आ रही है जब पंछियों की ठौर कहलाने वाले वृक्षों का एक विशाल समुदाय हमारी आवास आवश्यकताओं के नाम पर कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो गया। अलग अलग प्रजाति के पक्षी दृश्य से लगभग बाहर हो गए। जब पेड़ों की जान पर ही आ बनी तो पेड़ों में जिनकी जान थी उनका भी वही हश्र हुआ जो पेड़ों का हुआ। अब समूह के बजाय पक्षी यदा कदा और इक्का दुक्का हालत में दिखाई देते हैं। इनकी आवाज में अब प्रकृति का माधुर्य नहीं बल्कि अस्तित्व का शोक राग सुनाई देता है। शहरीकरण के रूप में विकसित हुई अट्टालिकाओं के बीच में कुछ ही खपरेलें शेष हैं, जिन पर कुछ परिंदों ने शरणार्थियों की तरह पनाह ले रखी है, लेकिन इनकी चिरंजीविता भी संदिग्ध है। पंछियों का हमारे जीवन से इस तरह बाहर उड़ जाना प्रकृति के लिए, मनुष्य समाज के लिए और मानव की कोमलता के लिए भी बहुत बड़ा अपशगुन है। अतीत साक्षी है, हमारे लिए पंछी कभी पराए नहीं थे। हमारे संगीत, साहित्य और चित्रकला में वे आज भी उड़ान भरते हैं। तोता और मैना हमारी लोक कथाओं में सूत्रधार होते थे। वाल्मीकि की रामकथा का आरंभ क्रौंच पक्षियों की करुणा से होता है। यही रामकथा जब तुलसी तक पहुंचती है तब काक भुसुंडी भी कहीं माध्यम बन जाते हैं। पपीहे की पीहू के बिना काव्य में श्रृंगार अधूरा रह जाता। आध्यात्म में भक्ति के धरातल पर अकेला हंस ही ऐसा पक्षी है जो आत्मा का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है। कबीर ने नश्वर भौतिकता को लक्ष्य कर लिखा है, हंसा जाई

0: अकेला। राग सारंग का तो जन्म ही मोर के स्वर से हुआ है। बुलबुलों ने इकबाल की रचना को सारे जहां की बेहतर रचनाओं में शुमार किया है। यदि घनानंद को चांद ताकने वाला चकोर न मिलता तो संभवतः उनके रस अधूरे रह जाते। पंछियों का पुनर्वास आज के पर्यावरणीय दुर्दिन में समय की मांग है। जैसा कि रहीम ने कहा है, रूठे स्वजन मनाइए। सच तो ये है, पंछी भी हमारे स्वजन हैं। हमें अपने अपने स्तर पर उनकी सम्मानजनक वापसी के सभी जरूरी जतन करने चाहिए और पक्षियों के पक्ष में संदेश फैलाने के लिए संचार माध्यमों का उपयोग भी हमें ही करना चाहिए, क्योंकि पंख पर बंधे संदेशों को इधर उधर पहुंचाने वाले कबूतर तो बरसों बरस पहले इतिहास के पन्नों की तरफ उड़ चुके हैं।
1: श्रोताओं, ये जो अभी हमने चिंतन सुना उसमें आलेख डॉक्टर संकेत अग्निहोत्री का था और वाचक थी दीप्ति। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

श्री रामचरित रूपी पवित्र मानस सरोवर के जल में अपने मन को स्नान करा और भवानी तथा शंकर का स्मरण करके गोस्वामी तुलसीदास ने रामकथा का प्रारंभ किया है। सर्वप्रथम पुण्यभूमि प्रयाग में दो श्रेष्ठ मुनियों भरद्वाज तथा परम ज्ञानी याज्ञवल्क का मिलन और संवाद वर्णित है। भरद्वाज मुनि प्रयागवासी हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब सब लोग श्रद्धा तथा आदरपूर्वक तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी स्नान के लिए आते हैं। एक बार जब पूरे मकर भर स्नान करके ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम लौट गए तो भरद्वाज मुनि ने महर्षि याज्ञवल्क के चरण पकड़कर उन्हें अपने आश्रम में रोक लिया। परम ज्ञानी याज्ञवल्क से उन्होंने अपने अज्ञान प्रकट करते हुए अपनी शंका उनके सम्मुख रखी। हे मुनिवर, भगवान शिव समेत सभी देव मुनि जिन राम की उपासना करते हैं वो राम कौन हैं?

0: अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। पशुओं को अफरा रोग से कैसे बचाएं विषय पर जानकारी दे रहे हैं सोहन सिंह।
1: किसान भाइयों, पशुओं का कभी कभी अपच या बदहजमी के कारण पेट फूल जाता है, जिसे सामान्य भाषा में अफरा कहते हैं। अफरा रोग गाय, भैंस, बकरी, जुगाली करने वाले पशुओं में प्राय हो जाता है। अफरा दो प्रकार का होता है। अफरा में पशु के पेट में गैस, पानी और भोजन मिलकर झाग पैदा करते हैं, जो पशु के पेट में भर जाता है, जिससे पशु की शीघ्र प्राथमिक चिकित्सा न करवाने पर पशु की मृत्यु तक हो जाती है। अफरा के मुख्य लक्षण, पशु खाना पीना छोड़ देता है, पशु कभी बैठता है कभी उठता है, पशु बहुत बेचैन हो जाता है, जुगाली ठीक प्रकार से नहीं करता, पशु का पेट बहुत अधिक फूल जाता है, पेट के गड्ढे भरे हुए दिखाई देते हैं, पशु के पेट को थपथपाने पर कुछ गूंजती हुई आवाज़ आती है, पशु मलमूत्र को ठीक प्रकार से नहीं त्याग पाता है, कभी कभी थोड़ी थोड़ी मात्रा में करता है, नाड़ी की गति तेज हो जाती है लेकिन तापमान सामान्य रहता है, गैस के कारण दिल और फेफड़ों पर मध्यपट द्वारा दबाव पड़ने से पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है, पशु पैरों को पटकता है, गर्दन बार बार मोड़ता है, इस परेशानी के कारण पशु मुंह से सांस लेता है, पशु कराहता है, आंखें बाहर की ओर उभर आती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं। अफरा रोग पशु में प्राय वहीं पर हो जाता है जहाँ पर पशुओं को अधिक मात्रा में दलहनी चारे, सड़ा गला भोजन, गैस बनने वाली पत्तियों का अधिक मात्रा में उपयोग के साथ साथ पशुओं के चारे दाने में यकायक परिवर्तन कर देने से, ओस में भीगा हुआ चारा खिलाने से, अधिक मात्रा में चुनी चोकर खिलाने के बाद तुरंत पानी पिलाने से भी अफरा रोग हो जाता है। कभी कभी अलसी खाने पर भी पशुओं का पेट फूल जाता है। पशुओं को अलसी खाने से रोकना चाहिए। अफरा रोग जहाँ पर नत्रजन खादों का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है और उस क्षेत्र का चारा भूसा खिलाने पर भी पशुओं में अफरा रोग की शिकायत पाई जाती है। गंदा पानी पी लेने या किसी रोग के कारण पेट में कृमि होने पर भी अफरा रोग हो जाता है। इस रोग से पशु के बचाव के लिए अनाज के रूप में दी जाने वाली दाने की मात्रा और हरे चारे के अनुपात को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। अनाज को हमेशा दलकर और पानी में भिगोकर खिलाएं। साथ ही पशु को हिमालय 32 अथवा टिम्प्लेक्स की 40 ग्राम मात्रा प्रतिदिन पशु को दाने के साथ देना चाहिए। पशुओं को सुबह सुबह चारागाह में नहीं छोड़ना चाहिए। पशुओं को बाल चाटने से रोकना चाहिए। यदि पशु को अफरा रोग हो जाता है उस स्थिति में अफरा रोग से पीड़ित पशु को बैठने न दें। गैस को रूमेन से निकालना चाहिए। गैस को निकालने के लिए रूमेन में छेद करना चाहिए। गैस को निकालने के लिए ट्रॉकर और कैनोला को पेट के ऊपर लगाते हैं। इसके बाद ट्रॉकर को निकाल लेते हैं और कैनोला को उसी स्थान पर लगा रहने देते हैं। पेट से कैनोला के रास्ते गैस निकलती रहती है। ये कार्य पशु चिकित्सक की देखरेख में करना चाहिए। साथ ही पशु को सादा नमक आधा पौंड, सोडियम सल्फेट आधा पौंड, पानी 1/4 का घोल बनाकर पिलाना चाहिए। टिम्प्लेक्स पाउडर 40 से 50 ग्राम गुनगुने पानी में देने से अफरा रोग में शीघ्र ही लाभ मिलता है। प्लाटोसिल की 100 मिलीलीटर मात्रा बहुत ही लाभकारी होती है।
0: पशुओं को अफरा रोग से कैसे बचाएं? कार्यक्रम कृषि चर्चा में अभी इसी विषय पर जानकारी दे रहे थे सोहन सिंह। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है सूचना पर कार्यक्रम दर्पण। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से। इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।

रक्तदान जीवन का उपहार है। आइए रक्तदान करें, जीवन दान करें। रक्तदान से किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती। 18 से 65 वर्ष तक उम्र और 45 किलो अथवा इससे अधिक वजन का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति हर 3 माह में रक्तदान कर सकता है। रक्तदान एक पीड़ा रहित प्रक्रिया है। महिलाएं भी रक्तदान कर सकती हैं। रक्तदान किसी को जीवन और स्वयं को आत्मसंतोष प्रदान करता है। रक्तदान करने के लिए शासकीय अथवा रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक में संपर्क करें।

0: अभी आप सुन रहे थे सूचना परक कार्यक्रम दर्पण। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:55 होने को हैं। संस्कृत में समाचार अब दिल्ली से हम अनुप्रसारित कर रहे हैं। 7 बजे दिल्ली से ही हिंदी में समाचारों का अनुप्रसारण किया जाएगा। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः स्लोवाक गणराज्यं प्रति प्रस्थास्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अस्यां यात्रायां स्लोवाक देशस्य प्रधानमंत्रिणा फिको इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति, तथा च सहकारस्य नूतनान् मार्गान् अन्वेषयिष्यति। प्रवासावधौ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति

0: अद्य देहरादूननगरस्य भारतीयसैन्य अकादम्यां पासिंग आउट परेड इत्यस्य समीक्षां करिष्यति। अस्मिन् वर्षे पासिंग आउट परेड इतीदं ऐतिहासिकं भविष्यति, यस्मिन् प्रथमवारं महिलाः पुरुषैः सह पथसञ्चलनं करिष्यन्ति। अस्मिन् भव्यसमारोहे पञ्चशततोप्यधिकाः पुरुषाः महिलाः च अन्तिमं पदं स्वीकृत्य भारतीयसेनायाम् अधिकारित्वेन नियुक्ताः भविष्यन्ति। भारतीयसैन्य अकादम्याः पासिंग आउट परेड न केवलं सैन्यपरम्परा अस्ति, अपि तु राष्ट्रसेवायां समर्पितानां युवाधिकारिणां कृते नूतनयात्रायाः आरम्भोऽपि अस्ति। केन्द्रीयगुरुद्योग इस्पातमन्त्रिणा एच.डी. कुमारस्वामिना उक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना विनिर्माण आधारितवृद्धेः वृत्त्यावसरनिर्माणस्य च विषये अभूतपूर्वं महत्त्वं प्रदत्तम्, येन औद्योगिकवृद्धिः त्वरिता अभवत्, बृहद् वृत्त्यावसराश्च कल्पिताः। विदेशमन्त्रिणा डॉ. एस. जयशंकरेण अमेरिकादेशस्य विदेशसचिवेन मार्को रूबियो इत्यनेन सह वार्तालापं कृत्वा गल्फप्रदेशे यूएस नौसेनया कृताक्रमणस्य विषये प्रबलं विरोधं प्रकटितं, यस्मिन् त्रयः भारतीयाः नाविकाः मृताः। सामाजिकान्तर्जालीये पटले एकस्मिन् लेखे डॉ. जयशंकरः अवदत् यत् वाणिज्यिकनौवहनं विरुद्धम् एतादृशानि प्राणघातक आक्रमणानि न्यायोचितानि न सन्ति इति। ओमानतटस्य तटे पलाउध्वजयुक्तस्य एम.टी. सेटेबेलो जलयानस्य उपरि अमेरिकादेशस्य आक्रमणे भारतीयदलस्य त्रयः सदस्याः मृताः, येन नवदिल्ल्यात् तीक्ष्ण प्रतिक्रिया प्रदत्ता। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः दृढतया उक्तवान् यत् ऑपरेशन सिन्दूर अभियानस्य समये स्वदेशीय प्रक्षेपास्त्राणाम् असाधारणं प्रदर्शनं भारतस्य रक्षाशोधस्य विकासपर्यावरणव्यवस्थायाः वर्धमानशक्तेः परमाणम् अस्ति। रक्षा अनुसंधान विकास संघटनस्य रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशालायाम् उन्नतास्त्र प्रणाली परिसरस्य उद्घाटनावधौ रक्षामन्त्रिणा उक्तं यत् शक्त्यै शान्तेः आवश्यकता अस्ति, तथा च तस्याः शक्तेः सर्वाधिकः विश्वसनीयाधारः आत्मनिर्भरता एव अस्ति। दिल्ली एनसीआर क्षेत्रे गतरात्रौ निरन्तरं द्वितीयरात्रौ प्रचण्डवृष्टिः अभवत्। वृष्ट्या सह मेघगर्जनं तीव्रवायुः विद्युद्योतनं चाभवत्। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन दिल्ल्याः तथा समीपस्थानां क्षेत्राणां कृते रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया सञ्चेतना प्रसारिता अस्ति। आईएमडी इत्यनेन सावधानं कृतं यत् आर्द्रकालः अनुवर्तयितुं शक्यते। अग्रिमेषु कतिपयेषु दिनेषु मेघवृष्टिः निरन्तरं भवितुमर्हति। क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य हिमाचल प्रदेशस्य धर्मशालायां तिसृणाम् ओडीआई क्रीडायां श्रृंखलायाः प्रथमायां क्रीडायां भारतम् अफगानिस्तान दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडा सार्धैकवादने आरभ्यते इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ. जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाज़ों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाज़ों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120

0: स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिफ्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि भारत को यूरेशिया के ऐतिहासिक और सभ्यतागत साझेदारों से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा संपर्क और अवसर के ढांचे से प्रेरित है। कैबिनेट सचिव TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि इन बैठकों का उद्देश्य नीट पुनर्परीक्षा के लिए प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना, तैयारियों को मजबूत करना और परीक्षा की निष्पक्षता तथा विश्वसनीयता बनाए रखना है। परीक्षा 21 जून को होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल रेलवे अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में श्री वैष्णव ने अधिक पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित कराने की दिशा में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। देश की खुदरा मुद्रास्फीति दर इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। नई मुद्रास्फीति श्रृंखला के अंतर्गत लगातार 5वें महीने में महंगाई में वृद्धि दर्ज की गई है। भारत की PV सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:10 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे। 7:20 पर अन्वेषण और प्रयोग के कवि अज्ञेय ये वार्ता आप सुन सकेंगे। वार्ताकार होंगे डॉक्टर ज्योति उपाध्याय और 7:30 फिल्म संगीत सुना जा सकता है।

8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, ये दोनों ही समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे। 8:30 बजे आज हमारे केंद्र से आप सुनेंगे नाटक आकाश नहीं है। लेखक होंगे राजेंद्र लहारिया और प्रस्तुतकर्ता आभा मिश्रा। 9 बजे सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम होगा गुड मॉर्निंग ग्वालियर। 9:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे संयोगिता कुशवाहा का राग अहीर भैरव में ध्रुपद धमाल।

जिले की चिट्ठी 10 बजे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं। 10:05 पर आप सुनते हैं साप्ताहिक कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ। आज इस कार्यक्रम में सुनिए अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के अवसर पर त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमल सिंह भदौरिया से डॉक्टर विभूति सिंह की बातचीत। 10:50 पर फिल्म संगीत सुना जा सकेगा और 11 बजे से कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे।

0: सायंकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे से। सभा के आरंभ में युवाणी कार्यक्रम होगा। सायंकालीन सभा आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित की जाती है। हमारे केंद्र से 7:20 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम चौपाल। आज इसमें चर्चा का विषय होगा वर्मी कंपोस्ट से बढ़ाएं भूमि की उर्वरा शक्ति। इसके अलावा किसान सम्मान निधि योजना विषय पर भी चर्चा होगी। शनिवार के दिन चौपाल कार्यक्रम में ही ग्रामीण बच्चे सुनते हैं अपना कार्यक्रम फूलबगिया। आज बच्चों से बातचीत का विषय होगा शारीरिक एवं मानसिक विकास में खेलकूद का महत्व। इसके अलावा गायत्री शर्मा की वार्ता होगी योग और हमारा स्वास्थ्य। रात 8 बजे से सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे सभा की समाप्ति तक। ये थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा प्रसारण आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एयर पर भी सुनते हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 7:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन करेंगे। इंदौर में ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आज समापन। कृषि मंत्रियों की बैठक में साझा दस्तावेज पर लगेगी मुहर। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज भोपाल दौरे पर, शूटर्स से मुलाकात, स्वच्छता अभियान और विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। ये परेड इस बार ऐतिहासिक होगी क्योंकि पहली बार लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी परेड में शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक कैडेट सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की इस पहल में 120 भारतीय इनोवेटर्स, 15 उच्च शिक्षण संस्थान और 500 से अधिक निवेशक शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में एडवांस कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य सहित 13 प्रमुख क्षेत्रों में भारत की नवाचार क्षमता को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा श्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। ब्रातिस्लावा में वे स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आज 5वां और आखिरी दिन है। आज ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। बैठक में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां, कृषि नवाचार और तकनीकी साझेदारी जैसे अहम मुद्दों पर व्यापक चर्चा होगी। सदस्य देश कृषि उत्पादन बढ़ाने, किसानों की आय सुधारने और टिकाऊ कृषि प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए साझा रणनीति पर विचार विमर्श करेंगे। वहीं कल हुई चर्चा में श्री चौहान ने कहा,
1: छोटे किसानों की बेहतर आजीविका के लिए, महिलाओं की भागीदारी और खेती में बढ़े इसके लिए, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में ब्रिक्स देशों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि आधी आबादी तो यहीं रहती है दुनिया की और 43% से ज्यादा उत्पादन यहाँ होता है। आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है। हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल गृह विभाग की समीक्षा बैठक में पुलिस बल को साइबर अपराधों से निपटने के लिए आईटी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राथमिकता से लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जांच अधिकारियों को जांच भत्ता देने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा, भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और नशा विरोधी अभियान को लगातार जारी रखने पर जोर दिया। उन्होंने 2028 के सिंहस्थ पर्व को ध्यान में रखते हुए उज्जैन में सुरक्षा व्यवस्था के लिए स्थायी बुनियादी ढांचा तैयार करने के भी निर्देश दिए। मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने कल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। डॉ. सोमनाथन ने कहा है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और जिला प्रशासन परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की निष्पक्षता को किसी भी तरह से प्रभावित करने या छेड़छाड़ करने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी द्वितीय अवसर परीक्षा का परिणाम कल शाम घोषित कर दिया गया। इस परीक्षा में बेटियों ने बाजी मारी है। 62% से अधिक छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 57 से अधिक रहा। परीक्षा में शामिल 1,42,000 से अधिक विद्यार्थियों में से 84,871 विद्यार्थी सफल हुए हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज भोपाल के दौरे पर हैं। सुबह 7:30 बजे से वे शूटिंग एकेडमी में शूटर्स से मुलाकात करेंगे। इसके बाद 8 बजे सूरजनगर में स्वच्छता अभियान में शिरकत करेंगे। दोपहर 12 बजे कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आत्मनिर्भर महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। वहीं शाम 5 बजे वे विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में भाग लेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तेज और प्रौद्योगिकी आधारित बनाने पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने कहा कि अधिक से अधिक परीक्षाएं टैबलेट और कम्प्यूटर आधारित कराई जानी चाहिए ताकि प्रक्रिया उम्मीदवारों के लिए आसान और जवाबदेह बने। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 47,000 से अधिक रिक्तियों के लिए 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती पूरी कर ली है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत क्रेडिट कार्ड आवेदन संग्रहण में प्रदेश ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। प्रदेश में अब तक 10,000 से अधिक क्रेडिट कार्ड आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके हैं, जिनमें से 500 से अधिक क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। ये योजना शहरी पथ विक्रेताओं यानी स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए चलाई जा रही है। भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र के बुजुर्ग श्रद्धालु मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज से 18 जून तक वैष्णो देवी धाम की यात्रा पर जाएंगे। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कल लाभार्थियों को यात्रा टिकट वितरित कर उन्हें शुभकामनाएं दी। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून 15 से 18 जून के बीच दस्तक दे सकता है। इससे पहले प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां जारी हैं। कल जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी सहित कई जिलों में आंधी बारिश का दौर रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में भिंड, दतिया, छतरपुर, पन्ना और सागर में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी और बारिश हो सकती है। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर सहित प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान है, जबकि इंदौर, उज्जैन और आसपास के जिलों में तेज धूप खिली रहेगी। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड ने श्रीलंका को 87 रनों से हरा दिया। बर्मिंघम के एजवेस्टन मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवर में 219 रन बनाए, जिसमें डैनी वैट हॉस ने शानदार नाबाद 105 रन की पारी खेली। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 132 रन पर ही सिमट गई। डैनी वैट हॉस को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीमें भाग ले रही हैं। भारत का पहला मुकाबला कल पाकिस्तान से होगा। अब कुछ समाचार संक्षिप्त में। शिवपुरी जिले में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने एक बैठक के दौरान शहर के पास बनाए गए बड़ौदी फूड पार्क में एक ही फर्म को प्लॉट अलॉटमेंट के मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। खंडवा में निमाड़ क्लब परिसर में जिम, क्रिकेट टर्फ जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल पर विकसित की जाएंगी। आगर मालवा स्थित कृषि उपज मंडी में आयोजित किए गए विधिक जागरूकता शिविर में बच्चों को शिक्षित कर उनके शैक्षणिक विकास के प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई। मेहर कलेक्टर ने खदान से खनिज पदार्थ निकालने के बाद बिना क्लोजर प्रोटोकॉल का अनुपालन किए खुला छोड़ने से होने वाली दुर्घटनाओं को गंभीरता से लिया है। झाबुआ में खरीफ की बोनी शुरू होने से उर्वरकों की मांग बढ़ी है। जिला प्रशासन ई विकास प्रणाली से वितरण पर नजर रखेगा। बैतूल जिले के आदिवासी विकासखंड भीमपुर की ग्राम पंचायत रंभा के रिंगढाना कस्बे में कल रात भीषण आग लग गई और आग ने करीब 15 मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। मंडला कलेक्टर की अध्यक्षता में वनाधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तिगत और सामुदायिक वनाधिकार दावों की समीक्षा की गई। शुजालपुर नगर पालिका परिसर में आयोजित जनकल्याण शिविर के पहले दिन 46 आवेदन प्राप्त हुए। शुजालपुर में शिविर का आयोजन 13 और 14 जून को भी जारी रहेगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आइए सुनते हैं डॉक्टर ज्योति उपाध्याय से उनकी वार्ता, अन्वेषण और प्रयोग के कवि अज्ञेय।
1: आगे हिंदी में अन्वेषण एवं प्रयोग के अग्रणी कवि रहे हैं। उनके काव्य में परंपरा से हटकर कुछ नई विशेषताएं उपलब्ध होती हैं। अज्ञेय ने लिखा है, मैंने कविता का उपयोग करना नहीं चाहा, क्योंकि मैंने नहीं माना कि मेरे उपयोग करने से वह उपयोगी होती है। मैं मानता हूँ वह तब तक उपयोगी होती है जब मैं स्वयं उपयोगी हूँ। उसमें जीवन की पूर्णता तब है जब मैंने पूर्ण जीवन के प्रति अपने को समर्पित किया है। दुहाई देने से कविता नहीं निकलती और प्यार के बदले अपनी भूख का दुखड़ा रोने से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। केवल श्रोता के लिए वह दुखड़ा और भी कम प्रीतिकर हो जाता है। वस्तुतः प्रेम, व्यक्तिवाद, यौन भावना, पाश्चात्य, भारतीय संस्कृति, रूढ़ी और परंपरा इत्यादि प्रायः सभी विषयों पर अज्ञेय के मतों में परिवर्तन हो गया है। इस परिवर्तन के मूल में जितना हाथ उनके सजग चिंतनशील व्यक्तित्व का है, उतना ही आत्मविश्लेषण एवं अन्वेषण का भी है। अज्ञेय की प्रारंभिक कविताओं में तीखा आत्मगौरव या दर्प का भाव मिलता है। अज्ञेय को अपने कवि व्यक्तित्व पर नाज है। विश्व की कृतज्ञता के प्रति शिकायत का प्रबल भाव भी है। कहीं संसार या समाज से समायोजन ना होते देखकर कवि अनुभव करता है कि मैं वह धुन हूँ जिसे साधने में प्रत्यंचा टूट गई है। कवि में भविष्य के प्रति संदेह भी है और विषाद का भाव भी। कवि थकान का अनुभव करता है और भीतर के देवता से प्रार्थना भी करता है। अनचीती ही रहे बांसुरी, सांस फूंक दो चाहे उन्मन, मेरे सूखे प्राणदीप में एक बूंद तो रस बरसा दो। आज थका ही हारिल मेरा कविता में भी कभी प्रेसी को छोड़कर शेष दुनिया से कटा हुआ सा महसूस करता है और थकान की अनुभूति भी करता है। इस सूखी दुनिया में प्रीतम मुझको और कहाँ रस होगा, सुबह तुम्हारी स्मृति के सुख से प्लावित मेरा मानस होगा। फिर भी उसके अहम का गर्वोन्नत शिखर प्रेम के लिए भी झुकना स्वीकार नहीं करता और कहीं याद की तीखी किरण से कवि का हृदय भिंद भी गया है तो कवि अपने को पराजित समझता है। कवि के इस अहम का मूल कारण उसकी प्रतिभा है। उड़चल हारिल कविता में कवि अनुभव करता है कि वह अकेला है और उसे अकेले ही मार्ग तय करना है, परंतु हारिल के हाथों में तिनका है जो उसकी अमरता का साधन है। हारिल कवि का प्रतीक है, तिनका उसकी प्रतिभा का। अज्ञेय को अपनी सृजन शक्ति में अपार विश्वास है और अपनी प्रतिभा में। तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन, तिनका तेरे पंजे में है विधना के प्राणों का स्पंदन। कवि अपनी स्थिति को प्रकाशित करता हुआ अपनी सृजन शक्ति से कहता है, कांपना यद्यपि दसों दिशा में तुझे शून्य नभ घेर रहा है, रुकना यद्यपि उपहास जगत का तुझको पथ से हेर रहा है। जीवन के प्रति आकर्षण, सृजन शक्ति में आस्था एवं जबरदस्त आत्मविश्वास की परिचायक यह कविता उड़चल हारिल अज्ञेय के प्रारंभिक कवि कृतित्व की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कवि का प्रारंभिक भाव बोध धीरे धीरे जीवन के चिंतन एवं आत्मान्वेषण से परिवर्तित हो गया। जन्मदिवस अज्ञेय की विशिष्ट व्यंग्यात्मक कविता है जो व्यंग्य के गंभीर प्रयोग का उदाहरण है। मनुष्य का जन्म वैसे एक संयोग है और किसी को जन्म देने में गौरव का भाव निरर्थक ही नहीं वंचनापूर्ण भी है, परंतु जन्म लेने की व्यवस्था को स्वीकार करने के उपरांत जब कोई उसके साथ निर्विकल्प खेलता है, प्रत्येक क्षण को सार्थकता देता हुआ पंच तत्वों से बनी इस काया को शून्य में बिखेर देता है, तभी वो दाता भी है और सुखी होकर मरता है। यह सार्थकता प्रत्येक क्षण को जीवन के प्रति विस्मित होकर आनंद भोग करने से प्राप्त होती है। कवि सृष्टि के उन सभी उपादानों के प्रति कृतज्ञ है जिनके कारण उसे सौंदर्य की अनुभूति मिलती है। आगे हरी घास पर क्षण भर काव्य संग्रह के बाद ही प्रौढ़ एवं शक्ति संपन्न कवि के रूप में उपस्थित हुए। कवि जीवन को स्वीकार करता है, उसके प्रति उसमें ऐसी आस्था है जो प्रतिकूल परिस्थिति में भी विचलित नहीं होती। प्यार चुक जाए, आशा धुंधली हो जाए, परंतु कवि की आस्था जीवन के प्रति जब तक है तब तक कभी हारने को तैयार नहीं है। जीवन के प्रति आस्था अज्ञेय के व्यक्तित्व की मूलभूत विशेषता है। जीवन की अंतहीन तपस्या है और मृत्यु को भी शिवत्व एवं सौंदर्य प्रदान करने की संभावना में कवि आश्वस्त है। वह कहता है, क्रमशः मृत्यु मृत्यु भी सत्य ही है, उसे हम छोड़ नहीं सकते। हाँ, शिवता सुंदरता हम उसे दे सकते हैं अभी, किंतु जीवन अंतहीन तपस्या जिससे हम मुँह मोड़ नहीं सकते, यह संबंध शाश्वत है क्योंकि इसे हम चाहे जिस अर्थ में ले सकते हैं। सब कुछ मरण धर्म है, परंतु इस कारण उसे निरर्थक नहीं माना जा सकता। ना विरक्ति की ओर जाने की आवश्यकता है। फूल को प्यार करो, पर झरे तो झर जाने दो। जीवन का रस लो, देह मन आत्मा की रफना से, पर जो मरे उसे मर जाने दो। यहाँ दृष्टव्य जीवन के प्रति यह उन्मुखता एवं आकर्षण अज्ञेय के लिए आसक्ति नहीं है, आनंद है। कवि के सम्यक जीवन दृष्टिकोण को समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण कविता है देना जीवन। यह आलोचना का दुर्भाग्य है कि हम नदी के द्वीप हैं जैसी कविता की ओर अतिरिक्त ध्यान दिया गया और देना जीवन और यही एक अमृत है जैसी मार्मिक प्रभु विष्णु रचनाओं की विशेष चर्चा ही नहीं हुई है। अज्ञेय की वर्तमान में आस्था है। कवि के विचार प्यार के लिए अलग हैं। वह कहते हैं कि प्यार की स्वीकार से दर्द का भार भी हल्का हो जाता है। जीवन के सभी दुखों और विरूपताओं का सामना इसी एक प्यार के बल पर किया जा सकता है। उनका कहना है, क्या कहीं प्यार से इतर ठौर है कोई जो इतना दर्द संभालेगा। पर मैं कहता हूं,

0: अरे आज पा गया प्यार में वैसा दर्द नहीं अब तुझको सालेगा। ब्रह्म मुहूर्त स्वस्ति वचन में कवि का अहभाव है। जियो उस प्यार में जो मैंने तुम्हें दिया है, उस दुख में नहीं जिसे बेझिझक मैंने पिया है। अंत में कवि कहता है, सागर के किनारे तक तुम्हें पहुंचाने का उदार उद्यम ही मेरा हो, फिर वहाँ जो लहर हो, तारा हो, सौंतरी हो, अरुण सवेरा हो, वैसा वो मेरा वर्ण तुम्हारा हो, तुम्हारा हो, तुम्हारा हो। आगे की कविता में आत्मान्वेषण के धरातल पर दो व्यक्तियों के बीच एक संवाद सा दिखाई देता है। एक व्यक्तित्व है सामान्य व्यक्ति का, दूसरा उनके आदर्श कवि व्यक्तित्व का, जिसकी अनवरत खोज उनके मन में चलती रहती है। प्रयोगवाद के लिए कवि कहते हैं कि प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किया है, किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है, किंतु कवि क्रमशः अनुभव करता आया है कि जिन क्षेत्रों में प्रयोग हुआ है उनमें आगे बढ़कर अब उन क्षेत्रों का अन्वेषण होना चाहिए जिन्हें अभी नहीं छुआ गया है या जिन्हें अभेद्य मान लिया गया है। 1943 में आज्ञे जी ने अपनी पीढ़ी के 6 कवियों के सहयोग से तार सप्तक का प्रकाशन किया। यद्यपि नई धारा के अन्य सभी कवियों ने अपने अपने स्वतंत्र विचार व्यक्त किए हैं और वे परस्पर मेल भी नहीं खाए हैं, इसके लिए आज्ञे ने कहा है कि वे किसी एक स्कूल के नहीं हैं, किसी एक मंजिल पर पहुंचे नहीं हैं, अभी राही हैं, राही नहीं राहों के अन्वेषी, उनमें मतेक नहीं है, सभी महत्वपूर्ण विषयों पर उनकी राय अलग अलग है। जीवन के विषय में समाज धर्म और राजनीति के विषय में, काव्य वस्तु और शैली के छंद और तुक्के कवि के दायित्वों के प्रत्येक विषय में उनका आपस में मतभेद है। यहाँ तक कि हमारे जगत के ऐसे सर्वमान्य और स्वयं सिद्ध मौलिक सत्यों को भी वे सामान्य रूप से स्वीकार नहीं करते, जैसे लोकतंत्र की आवश्यकता, उद्योगों के समाजीकरण, यांत्रिक युद्ध की उपयोगिता, वनस्पति घी की बुराई अथवा कानन बाला और सहगल के गानों की उत्कृष्टता इत्यादि। तथापि इतनी विपरीतता के होते हुए भी काव्य के प्रति एक अनवेशी का दृष्टिकोण उन्हें समानता के सूत्र में बांधता है। इस प्रकार आज्ञे जी के काव्य में मानवतावादी दृष्टिकोण, प्रणयानुभूति, रहस्यानुभूति, जीवन दर्शन, भोगवाद, निराशा एवं वेदना, बौद्धिकता, विषयगत नवीनता, भाषा, छंद, विधान सभी नए प्रयोगों की अभिव्यक्ति है। अंत में मैं श्री विश्वनाथ गौड़ के शब्दों में कहना चाहूँगी, आज्ञे का कवि अपने में सर्वथा नूतन शब्द, शिल्प, भावभूमि और मान्यताएं लेकर चलता है, इसीलिए वह अपनी जगत के साथ भी उतना ही मजबूत दिखता है जितना अकेले में प्रारंभिक नकार से अंतिम लीक तक काव्य क्षेत्र में आज्ञे का मार्ग कटा हुआ नहीं लगता। निरंतरता और सृजन निरंतरता स्थापित करने में मदद करती है। कभी लोक की स्वच्छंद प्रक्रियाओं में जीवन जीते हुए आचार लोक की मान्यताओं और पुरानी मान्यताओं पर आमूल परिवर्तन के लिए चोट करने में आज्ञे ही अपने साथी कवियों में सबसे आगे रहे हैं।
1: अन्वेषण और प्रयोग के कवि आज्ञे, अभी आपने डॉक्टर ज्योति उपाध्याय से उनकी वार्ता सुनी। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपके दोस्त तुलिका।

अभी आपने अदनान सामी और अलका याग्निक को सुना। फिल्म थी युवा, गीतकार महबूब, संगीतकार एआर रहमान। और आइए अब आपको सुनवाते हैं ऋचा शर्मा, महालक्ष्मी अय्यर और वैशाली के स्वर में गुलजार की लिखी गीत रचना। एआर रहमान ने इस गीत को संगीतबद्ध किया है और फिल्म का नाम है साथिया।

0: किंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले, ऋचा शर्मा और आदित्य नारायण का गाया फिल्म ताल का ये गीत। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार AR रहमान।

आइए अब आपको सुनवाते हैं। शान और सुनिधि चौहान के स्वर में जावेद अख्तर की लिखी ये गीत रचना, संगीत विशाल शेखर का और फिल्म का नाम तारारम्पम।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं शान और सुनीता राव का गाया फिल्म अशोका का ये गीत। गीतकार गुलजार, संगीतकार अनु मलिक।

और आइए अब कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं शिराज उप्पल और जसविंदर सिंह के स्वर में इरशाद कामिल की ये गीत रचना, ए आर रहमान का संगीत है और फिल्म का नाम रांझणा।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 8 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज, ये दोनों समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमेरिका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर

0: रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगी। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमरीकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
2: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में 1 अरब डॉलर से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि DRDO ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
3: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत है।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से

0: सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड लेक्चरर तालित मिजेन ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरो खबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
1: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1.25 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
0: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही हैं। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
4: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
2: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। अमेरिकी अधिकारी ने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार क्षमता के बीच स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अमेरिका

0: एक से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद विशाल। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले व्यावसायिक जहाजों पर अमरीकी हमलों पर भारत का कड़ा विरोध आज की अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, जहाजों को निशाना बनाने से भारत नाराज, अमरीका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं, अमरीकी दूतावास के प्रभारी को दूसरी बार किया तलब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते का दावा भी अखबारों की सुर्खी बना है। दैनिक जागरण ने लिखा है, ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द, तेहरान ने कहा अभी अंतिम फैसला नहीं। जिनेवा में कल मसौदे पर हस्ताक्षर संभव। वहीं हिंदुस्तान ने बिजनेस पन्ने पर लिखा है, शांति कायम होने के संकेतों से शेयर बाजारों में तूफानी तेजी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी राजस्थान पत्रिका में है। फिनलैंड में कुल तारंता टॉक्स में कहा, भारत ने नहीं पहुंचाया यूरोप की सुरक्षा को खतरा, हम जानते हैं खेल क्या है, यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है। महिलाओं के लिए क्षमता दिखाने का माहौल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द जनसत्ता में है। पीएम ने कहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण पर दिया जोर।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on 6-day visit to France and Slovakia this morning. DRDO successfully conducts 3 consecutive flight tests to demonstrate multi-layered ballistic missile defense capability. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar lodges strong protest with US Secretary of State Marco Rubio over US strikes on oil ship that killed 3 Indian sailors. India and Bangladesh reaffirm their commitment to maintain peace and tranquility along the border. United States says it opened to civil nuclear program of Iran under proposed peace deal. In badminton, PV Sindhu to face world champion Akane Yamaguchi of Japan in women's singles semi-finals of Australia Open today. And in FIFA World Cup, United States takes 3-1 lead in ongoing match against Paraguay in Group D at Los Angeles. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be arriving in Nice, France this evening, embarking on a 2-nation European tour spanning France and Slovakia. This is the Prime Minister's 7th official visit to France since 2014 and carries special diplomatic weight. Prime Minister Modi and French President Emmanuel Macron are set to hold their first bilateral summit since the elevation of India-France ties to a special global strategic partnership earlier this year. The Prime Minister will also participate in the G7 summit in Ivan, reaffirming India's standing as an indispensable voice of the Global South.

यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आइए सुनते हैं नाटक आकाश नहीं है। लेखक राजेंद्र लहारिया और प्रस्तुतकर्ता आभा मिश्रा।

0: अरे गाओ ना, झूला भी कहीं बिना गाए झूला जाता है, तभी से यूं ही बस चुपचाप झूले जा रहे हैं।
1: क्या गाएं, वे ही गीत हैं जो रोज रोज गाते हैं। कोई नई मल्हार हो तो तू ही सुनाना।
0: मुझे नहीं आती, और कोई सुनाओ। मुझे आती तो मैं तुम लोगों से काहे को कहती। ये सावन का महीना तो ऐसा ही होता है, चारों ओर हरियाली, खेतों में, मेड़ों पर, पेड़ों पर, आसमान में काले काले बादल, ठंडी ठंडी हवा, झिमिर झिमिर बरसती बूंदे, लगता है बोर की तरह नाचती रहूं, कोयल की तरह गाती रहूं, पपीहे की तरह। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताना।
1: क्या?
0: कान में कहूंगी, इधर पास आओ।
1: ले बता, अब बता।
0: इधर कान कर। हाँ ऐसे। अच्छा बता, तुझे याद नहीं आती?
1: किसकी?
0: अपने।
1: पगली।
0: अरे अरे उधर देखते हो, कोई आ रहा है।
1: अरे सच तो, ये तो राधा आ रही है।
0: लेकिन राधा कहाँ? उसने तो घर से निकलना ही छोड़ दिया है, आज इधर कहाँ? आओ दीदी, दीदी इधर बैठो। आज तो

0: राधा दीदी सुनाएंगी मल्हार?
1: नहीं, मैं नहीं गाती।
0: गाओ ना दीदी, तुम तो बहुत ही अच्छा गाती हो।
1: नहीं नीलू, मैं तो वैसे ही चली आई, तुम लोगों को देखकर सोचा।
0: अरे दीदी, तुम एक कड़ी उठा दो बस, फिर हम गाएंगी और तुम बैठी रहना।
1: नहीं बहन, मुझे लौट के जाना है, मैं चलती हूँ।

मैं गाऊं? किसके लिए? किसके लिए गाऊं मैं? नहीं नहीं, मुझे गाने का कतई अधिकार नहीं है। हाँ सच है, कतई अधिकार नहीं है मुझे गाने का। अधिकार? अधिकार क्यों नहीं है? क्या करने का अधिकार नहीं है मुझे? कौन कहता है नहीं अधिकार? मैं कुछ भी कर सकती हूँ, गा सकती हूँ, मल्हार गा सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ मैं। नहीं नहीं, ये दुनिया वाले मुझे कुछ नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। मैं तो पिंजरे में कैद हूँ पंछी हूँ, जिसके लिए कोई आकाश नहीं है। हाँ, मेरे लिए कोई आकाश नहीं है, कोई आकाश नहीं है।

0: है बिल्कुल नहीं दूंगी,
1: ओ पिंजरे
0: बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं कैसे भूलूं, कैसे भूल जाऊं अपने आप को? नहीं, और सब कुछ भुलाया जा सकता है, सारी दुनिया को भुलाया जा सकता है, लेकिन खुद को कभी नहीं भुलाया जा सकता, कभी नहीं भुलाया जा सकता। एक दिन मेरे संसार में भी सवेरा हुआ था, और उस सनेरे सवेरे में ही अंधेरा घिराया था, अचानक घना अंधेरा।

0: अभी सीधे चले आ रहे हो क्या? बहुत दिन लगाए तुमने।
1: हाँ, अभी सीधा ही आ रहा हूँ। और राधा कहाँ है?
0: अरे यहीं पड़ोस में बैठी है। मंजरी आई है ना ससुराल से, सो दिन भर उसी के पास बैठी रहती है। बुलाऊं क्या?
1: नहीं, रहने दो।
0: आप बैठो ना। अच्छा मैं खाट लाती हूँ। पानी लाऊं क्या?
1: पानी ले आओ।
0: अच्छा अभी लाई, ये लो पानी पी लो।
1: आज मेरे सिर से बोझ सा उतर गया है। लगता है अब कोई बाधा नहीं है, स्वतंत्र हो गया मैं।
0: कैसे?
1: अपनी राधा का संबंध पक्का कराया।
0: अच्छा
1: अब तक मेरे सर पर मनोवजन धरा था जैसे। तुम तो माँ हो उसकी, देखती नहीं हो सयानी हो गई है अपनी बिटिया।
0: ये तो मैं भी सोचती थी, पर हाँ ये तुमने बड़ा अच्छा किया जो उसका संबंध तय कर आए। ये तो बताओ कहाँ हुआ उसका संबंध?
1: अरे कुछ ना पूछो तुम, अपनी राधा रानी की तरह रहेगी वहां। ऐसा घर देखा है मैंने कि अपनी बिटिया राजा की रानी बन जाएगी।
0: अच्छा
1: कंचनपुर के दुर्गालाल है ना वो,
0: हाँ।
1: उनका इकलौता बेटा
0: हाँ।
1: गया प्रसाद,
0: अच्छा
1: पूरे 50 बीघा जमीन है। और दुर्गालाल के छोटे भाई हैं, उनके कोई आस औलाद नहीं है। उनकी जमीन जायदाद भी तो गया प्रसाद के लिए ही है। वे तो गया प्रसाद के लिए अपने प्राण देते हैं। और लड़का क्या है, राजकुंवर है राजकुंवर।
0: अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात बताई भाई तुमने। बेटी के लिए घर वाल ही तो देखना होता है।
1: सो तो है ही, और ब्याह भी इसी साल होना तय हुआ है। मैं अभी पंडित जी के पास जाता हूँ।
0: हाँ हाँ जल्दी हो आओ।
1: शुभ लगन दिखाकर ही पीली चिट्ठी पहुंचा दें और ब्याह की तैयारी करें। सयानी बिटिया और सयाना बेटा, शुभ काम में देरी क्यों करें?
0: देखो यदि अगहन की बन जाए तब तो बड़ा ही अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर उधर। हाँ
1: हाँ अभी चलूं पंडित जी के पास, जाता हूँ।
0: अरे रोटी तो खाते जाओ,
1: लौट के खाऊंगा, पहले पंडित जी।

0: दस दिन से प्राण निकले जा रहे थे, एक ही बात, दिन रात एक ही बात, राधा राधा राधा। लो कल आ जाएगी तुम्हारी राधा।
1: क्या करूं, घर में जी ही नहीं लगता उसके बिना। सारा घर सूना सूना लगता है, और फिर घर में कोई और हो तब तो ध्यान बटे। वही तो थी एक अकेली, आगे पीछे फिरा करे थी।
0: वो तो ठीक है, लेकिन लड़की तो पराया धन होती है भगवान। वो तो एक ना एक दिन माँ बाप का घर छोड़कर जानी होती है, तो उसके लिए ये रोना धोना क्यों?
1: तुम बाप हो ना उसके, माँ बनकर देखो तब पता लगे कि ममता होती क्या है।
0: हाँ वो तो ठीक है, वो सब कुछ हमने माना, लेकिन अब तो सो जाओ चुपचाप। देखो कितनी रात गुजर चुकी है, ये खबर है? अरे कल आ जाएगी तुम्हारी बेटी, तुम्हारे पास होगी। चित्त में शांति लाओ और सो जाओ। कौन खटखटा रहा है इतनी रात? कौन है?
2: मैं हूं काका। काली दरवाजा खोलो।
0: काली इतनी रात? खोलता हूं, अभी आया। काली तू यहां कैसे? तू तो कल राधा को लिवाने गया था, फिर इस वक्त
2: काका? काका
0: बोलना, क्या क्या क्या कोई बात है?
2: मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा।
0: लेकिन हुआ क्या है काली बेटे, ये तो बता।
3: गजब हो गया है काका, गजब हो गया है। हमारे हमारे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है काका। नहीं नहीं काका, मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा काका।
4: काली चरण, ये क्या तमाशा फैला रहा है तू? कल यहाँ से खुशी खुशी कंचनपुर गया राधा को लिवाने, और आज इतनी रात गए, अचानक यहाँ आकर खड़ा हो गया, बताता क्यों नहीं? क्या बात है काली?
3: काका मैं यहाँ तुम्हें सब कुछ बताने ही आया हूँ, पर लगता है जैसे किसी ने मेरे होठ छिल दिए हैं, इसीलिए मैं बात कहने के लिए मेरी जुबान नहीं खुल रही। काका कंचनपुर पहुंचकर मेरे ऊपर जो वज्रपात हुआ उसे तुम महसूस नहीं कर सकते। काका तुम महसूस नहीं कर सकते। राधा के वहां पहुंचने के 2-3 दिन बाद गया प्रसाद के चाचा ने अपनी सारी जमीन जायदाद गया प्रसाद के नाम लिख दी थी। राधा के ससुर 4 भाई है ना, यह जायदाद गया प्रसाद को मिल जाने से उसके भाइयों के भीतर ईर्ष्या की आग छलक उठी। काका वो पहले तो गांव भर में कहते फिरे।
5: अरे ऐसा अन्याय देखा है कहीं? अरे हमसे पूछते हो, हमें किसी की जायदाद में आग नहीं लगानी। अरे पर बात की बात है।
6: और फिर क्या हमारा कोई हक न था उस जमीन पर, और हम भी तो बराबर के हिस्सेदार हैं।
5: अरे जब हक है तो कोर्ट में दावा करो अपने हक का।
6: कोर्ट में हम दावा जब करेंगे जबकि हम कमजोर हों, मगर हमारे पास ताकत है तो हम क्यों भला कोर्ट में जाएंगे, आखिर हमारी ही चलेगी देखना।
5: अरे लेकिन कानून कायदे के सामने ताकत क्या करेगी, जब सब लिखा पढ़ी होगी तब।
6: ठीक है आया कहीं का कानून। अरे ठीक है कुछ भी हो, हम तो जानते ही हैं और तुम भी जानते हो कि बिल्ली अगर खाएगी नहीं तो लुड़काएगी जरूर।
5: अरे मौका आने दो, फिर सब हिसाब किताब चुपता हो जाएगा।
6: आएगा मौका देख लेंगे हम भी, जब होगा मौका तब तो बात आएगी।
2: और एक दिन उन लोगों का मौका लग गया। शाम का झुरपटा घिर आया था। गया प्रसाद खेतों से लौटकर अकेले और निहत्ते आ रहे थे।
5: अरे अब क्या देखते हो, मारो मारो मारो मारो मारो।

कैसे भूला जा सकता है, कैसे? और फिर जिंदगी के शैशव में ही खेरा है वो अंधेरा, दिन ब दिन घने से और घना होता चला गया। ससुराल मेरे लिए घर संसार नहीं, नरक बन गई। सास ससुर हाड़ मास के मनुष्य नहीं, चलते फिरते पत्थर बन गए। मुझसे कोई वास्ता न रहा उनका। क्यों, आखिर क्यों? क्या मैं उनकी कोई न थी? तब लगा था मुझे कि औरत होना कितना बड़ा जुर्म है। कैसा अन्याय होता है इस समय।

0: समझ में कि पुरुष के बिना नारी का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जाता। ना कोई राग था, ना कोई रंग था, बस जिंदगी एक रेगिस्तान बन गई थी जिसमें चारों ओर किरकिरी रेत थी, रेत ही रेत। और माँ बाप वे भी निर्मम हो गए थे। महीनों ना तो कोई अपनी खबर दी और ना मेरी खबर ली, और मैं पल पल खुट रही थी। मजबूर होकर मैंने ही तो उन्हें चिट्ठी लिखी थी।
1: सुनती हो? यह चिट्ठी आई है राधा की।
0: राधा की चिट्ठी? क्या लिखा है मेरी बेटी ने? पढ़कर सुनाओ ना जल्दी।
1: लिखा है,
0: मेरे बाबूजी व माताजी, आपके लिए ये मेरा प्रार्थना पत्र है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अब मैं इस दुनिया में किसी की अपनी नहीं हूँ। शायद इसीलिए आपने भी अब तक मेरी खबर न ली। मेरा ये पत्र गवाह है कि मैं जिंदा हूँ। वैसे मैं जिंदा न होती तो ज्यादा सुखी होती। यहाँ मैं जीते जी मर रही हूँ। अपना और हमदर्दी क्या हुआ, मेरा दम घुटा जा रहा है। यदि आप समझें कि आपकी कोई बेटी है तो आप मुझे यहाँ से ले जाइए। मैं खुले में सांस लेना चाहती हूँ। मेरे जीने का कोई चारा मुझे दिला दीजिए, चाहे वो किसी की नौकरी ही क्यों ना हो। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन अपने लोगों में पराई बनकर नहीं रह सकती। आपके आने का इंतजार करूंगी, आपकी अभागिन बेटी राधा।
2: ले आइए मेरी बेटी को ना वहां से। कितनी जलील होकर जी रही है बेचारी वहां। नहीं तो क्या ऐसी बात लिखती? अभी उसकी उम्र ही क्या है। कहीं ना कहीं किसी नौकरी में लगवा दो उसे। पढ़ी लिखी तो है, उसका जीवन कट ही जाएगा।
1: ले आऊंगा मैं कल ही जाऊंगा और उसकी नौकरी का भी बंदोबस्त करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं अपनी बेटी को परेशान नहीं होने दूंगा, कदापि परेशान नहीं होने दूंगा। उसे सरकारी नौकरी दिलाऊंगा, हाँ सरकारी नौकरी, जिससे वो अब आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन बिता ले। मैं कल ही जाऊंगा, कल ही।

आखिर क्यों है ऐसा? कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता। लगभग 2 साल पूरे होने को आए और इस बीच मैंने हरदम उसे समरस ही पाया है। ना चेहरे पे कोई राग है, ना आंखों में कोई उत्सुकता, बस वही एक रूटीन, आकर बच्चों के बीच बैठ जाना, पढ़ाई लिखाई की बातें और चारों तरफ लिपटी उदासी। एक मशीनी जिंदगी, लेकिन मशीन भी इस तरह शांत और निर्जीव सी नहीं रहती। उसकी चाल भी कभी तीव्र तो कभी मंद होती है, लेकिन हाँ, शुरू शुरू में एक बार। लेकिन यह सब मैं क्या सोच रहा हूं? क्यों? अरे, यह भी कोई बात रही? मैं एक मनुष्य हूं और एक मनुष्य के बारे में सोच रहा हूं, तो कोई अपराध तो नहीं कर रहा हूं, कोई पाप तो नहीं कर रहा हूं? अपराध? अपराध तो किसी सुनिश्चित कानून के उल्लंघन करने पर हो

0: होता है और पाप किसी की आत्मा की पुकार को ठुकरा देना पाप होता है। हाँ, पाप होता है वो, और वो पाप मैंने किया है। मैं खुद मशीन बन गया था उस दिन। मशीन ही तो इतनी औपचारिक हो सकती है, इंसान नहीं। मैं इंसान नहीं हूं, मैं कतई इंसान नहीं हूं।
1: आप मेरे लिए आप शब्द का प्रयोग ना किया कीजिए। तुम कह दोगे तो बुरा ना मानूंगी, और मैडम की बजाय नाम ले दिया कीजिए। नाम मालूम है ना आपको?
0: जी, लेकिन मैडम, हम एक सरकारी पाठशाला के शिक्षक हैं, और किसी सरकारी कार्यालय में बरता जाने वाला एक शिष्टाचार होता है।
1: जी हाँ, होता है, लेकिन मेरे लिए यह स्थान एक सरकारी कार्यालय से पहले मेरा अपना घर है, मेरा अपना संसार है।
0: मैं समझा नहीं।
1: और फिर आप तो मुझसे सीनियर हैं और बड़े भी।
0: जी, लेकिन मैं अपने आप को बदल नहीं सका, बिल्कुल नहीं बदल सका। हमेशा मशीन बना रहा, औपचारिकता निभाता रहा, और उसने अपने आप को पूरी तरह बदल लिया। मुझसे फिर कभी कुछ ना कहा, कभी कुछ नहीं मांगा, और मौके बे मौके वो बात कई बार मेरे कानों में बजती रही।
1: आप मेरे लिए आप शब्द का प्रयोग ना किया कीजिए। नाम मालूम है ना आपको? मालूम है ना आपको? मालूम है ना आपको?
0: अब परेशान ही रहता हूं। क्यों, आखिर क्यों, इसे मैं खुद समझ नहीं पाता। बस लगता है उसकी सारी उदासी अपनी झोली में भर लूं और उसे खुशहाल देख पाऊं। हाँ, मुझे नाम मालूम है। कल मैं सब कुछ पूछ लूंगा और माफी मांग लूंगा। हाँ, माफी, मेरी आत्मा कहती है मैंने पाप किया है। मुझे माफ कर दो राधा, मुझे माफ कर दो। राधा जी।
1: जी, आज नाम लेकर क्यों बुला रहे हैं?
0: कई दिनों से सोच रहा हूं कि तुमसे पूछूं, पर पूछ न सका। तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो?
1: तुम आज इतने दिनों बाद तुम? जी जी नहीं, मैं तो ठीक हूं।
0: नहीं, सच सच बताओ राधा, तुम उदास क्यों रहती हो? मैंने आज तक कभी तुमको खिलते हुए नहीं देखा, कभी भी हंसते हुए नहीं देखा। आखिर क्या बात है?
1: आज क्यों पूछते हैं आप? अब तक तो आपको मेरा नाम लेने और मुझे तुम कहने पर भी एतराज था, और आज?
0: नहीं, ऐसा मत कहो राधा। आज मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी खुशियाँ क्यों छिन गई हैं, तुम्हारे ओंठों की मुस्कुराहट कहाँ चली गई है, मैं जानना चाहता हूँ।
1: लेकिन क्या करेंगे ये सब जानकर आप? और मुझे नफरत के सिवा क्या मिलेगा ये सब बताकर?
0: नहीं नहीं राधा, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी झोली खुशियों से भर देना चाहता हूँ। मुझे सब कुछ बता दो।
1: तो क्या सचमुच आप?
0: हाँ राधा, हाँ।
1: मैं विधवा हूं।
0: क्या क्या, तो इसीलिए तुम?
1: नहीं, अगर इतना ही होता तो मैं सहन कर लेती, लेकिन यहां तो कोई मुझे इंसान तक मानने को तैयार नहीं है। मुझे हे नजरों से देखा जाता है। मैं समाज की अपराधिनी हूं ना?
0: क्यों, क्या बिगाड़ा है तुमने समाज का?
1: यही कि मैं
2: लानत है ऐसे समाज पर जो अंधा न होने के बावजूद आंखें खोल कर नहीं देख सकता, जो मनुष्य को मनुष्य नहीं मान पाता, जो मनुष्य को मुक्ति दे पाना तो दूर उसके बंधनों को नहीं देख पाता। राधा, तुम शादी क्यों नहीं कर लेती?
1: शादी? क्या कह रही हैं आप?
2: मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। क्या तुम्हारी शादी नहीं हो सकती? क्या तुम इस लायक नहीं हो?
1: नहीं।
2: क्यों?
1: इसलिए कि हम कुलीन हैं, उच्च वर्ग के हैं, हम लोगों में ऐसा नहीं होता।
2: वाह रे उच्च वर्ग, क्या कुलीन और उच्च वर्ग वही होता है जो व्यक्ति को खुले आकाश के नीचे न जीने देकर बंद कमरे में घुट घुट कर जीने के लिए बाध्य करता है, जो मनुष्य की

0: अब है, पुरुष द्वारा किए गए किसी भी काम को स्वीकार कर लिया जाता है, कोई भी उंगली नहीं उठाता उस पर। वो दो नहीं चार चार शादियां कर सकता है, लेकिन औरत औरत इंसान नहीं होती। उसके हृदय नहीं होता, उसकी इच्छाएं नहीं होती, उसका दर्द नहीं होता। सोम जी, मेरे चाहने और न चाहने से क्या होता है?
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन आज देहरादून में भारतीय सेना अकादमी की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगे। ये परेड इस बार ऐतिहासिक होगी क्योंकि पहली बार लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी परेड में शामिल हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। इसमें 120 भारतीय इनोवेटर्स, 15 उच्च शिक्षण संस्थान और 500 से अधिक निवेशक शामिल होंगे। इस दौरान 13 प्रमुख क्षेत्रों में भारत की नवाचार क्षमता को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आज पांचवा और आखिरी दिन है। आज ब्रिक्स देशों की कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। बैठक में सदस्य देशों की सहमति और सुझावों के आधार पर एक साझा दस्तावेज तैयार किया जाएगा। प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी द्वितीय अवसर परीक्षा के परिणाम में बेटियों ने बाजी मारी है। परीक्षा में शामिल 1,42,000 से अधिक परीक्षार्थियों में से 84,871 विद्यार्थी सफल हुए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज भोपाल के दौरे पर हैं। यहां उनका विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का कार्यक्रम है। श्री प्रधान कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यक्रम में आत्मनिर्भर महिलाओं को सम्मानित भी करेंगे। और आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड ने श्रीलंका को 87 रनों से हरा दिया। भारत का पहला मुकाबला कल पाकिस्तान से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: मीडिया वेब डीटीएच ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण और कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत पर आधारित सुरमई सवेरा और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त जावेद खान।
3: आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, आइए सुनते हैं सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।
4: गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तुलिका का नमस्कार। श्रोता साथियों, हर रोज जब हम इस कार्यक्रम में आपके सामने आते हैं तो हमारे सामने एक चुनौती होती है, और वो चुनौती होती है कि आज हम आपसे क्या बात करेंगे। लगभग सभी कंटेंट क्रिएटर्स के पास ये चुनौती होती है कि नया कंटेंट कहाँ से लाएं। और आजकल बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों के लिए AI की सहायता ले रहे हैं। AI उनके मूड के हिसाब से या जो प्रॉम्प्ट दे दिया जाता है उसके हिसाब से कंटेंट तैयार करके उन्हें पकड़ा देते हैं, और कंटेंट क्रिएटर्स उस कंटेंट को अपने श्रोताओं तक, अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। अब ऑडियंस तक ये कंटेंट पहुंचाने की जो कला है वो ज़बरदस्त तरीके से उछाल मार चुकी है। ये जो बूम आया है ना कंटेंट की दुनिया में, इसने हमारा बहुत नुकसान भी किया है। खैर, हम ये नहीं कहेंगे कि AI के प्रयोग की वजह से ये बूम आया है, बल्कि ये कहेंगे कि जो इंटरनेट अवेलेबिलिटी है उसकी वजह से ये बूम आया है, क्योंकि हम सबको कुछ ना कुछ कंटेंट देखने की आदत लगाने वाला यही इंटरनेट है। श्रोता साथियों, हम बात शुरुआत में कर रहे थे AI की, कि AI के माध्यम से हम AI का अपना कंटेंट तैयार करते हैं, लेकिन AI जो है वो हमारे लिए उपयोगी है या अनुपयोगी, ये बहस बड़ी लंबी है। लेकिन एक बड़ी खूबसूरत सी खबर है जो हम आपको देना चाहते हैं।

जाते हैं। ये खबर है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया से। दक्षिण कोरिया के लोग जो हैं वो एक एआई डॉल की सहायता ले रहे हैं अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए। अकेलेपन को दूर करने के लिए दक्षिण कोरिया के स्थानीय प्रशासन ने एक डॉल तैयार की है जिसका नाम रखा है हियो डॉल। ये बुज़ुर्गों की का अकेलापन दूर करती है, उनके मन की बात सुनती है, दवाई, खाना और बहुत सारी चीज़ों की याद दिलाती है और उनकी भावनाओं को साझा करती है। अपने जो यूज़र होते हैं उनका हाथ पकड़ने को कहती है, प्यार भरे दो शब्द बोलती है। इस तरह से दक्षिण कोरिया के बुज़ुर्ग अपना अकेलापन एक एआई डॉल के साथ बांट रहे हैं। दरअसल बुज़ुर्ग आबादी लगातार बढ़ती चली जा रही है और बुज़ुर्गों को बहुत से लोग अपने साथ नहीं रखना चाहते, या फिर ये कहें कि बुज़ुर्ग अपने आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए अकेले रहना पसंद करते हैं। और इसी अकेलेपन के चलते दक्षिण कोरिया में 14,500 ह्योडोल डॉल इस्तेमाल हो रही है और बुज़ुर्ग इन्हें परिवार के सदस्य की तरह मानने लगे हैं। ये कितना कारगर है कि एक एआई डॉल के साथ रहा जाए। हालांकि एआई डॉल की बात हम दक्षिण कोरिया से बता रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में भी मिलने जुलने का जो कल्चर है वो ख़त्म सा होता जा रहा है। लोग अब पेट पेरेंट या प्लांट पेरेंट होना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं बच्चे पैदा करने के बनिस्बत। इसी तरह जो प्राइवेट कंपनीज़ में काम करने वाले लोग हैं वो दिन दिन भर वर्क फ्रॉम होम के चलते एक कमरे में सिमट कर रह गए हैं, और जिनका वर्क फ्रॉम होम होता है, हुआ करता है, उनके वर्किंग आवर्स भी थोड़े से लंबे हो जाते हैं। क्योंकि वो घर में बैठे होते हैं इसलिए उनके पास भी ये सुविधा होती है कि आराम से घर में बैठे हैं, काम कितनी भी देर में पूरा कर लिया जाएगा। ये जो टारगेट टाइम का होता है, जैसे 10 to 5 या 9 to 5 जॉब होती है, उसमें ये होता है कि 5 बजे यदि हमें अपने घर जाना है, ऑफिस का टाइम ख़त्म हो रहा है, तो हम जल्दी जल्दी अपना काम 5 बजे तक कर लेना चाहते हैं। लेकिन अक्सर जो वर्क फ्रॉम होम है वो आराम आराम से किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारा अकेलापन बढ़ा रही हैं, और AI इसमें किस तरह मदद करता है या किस तरह नुकसान करता है, ये थोड़ा सा सोचने की बात है। हम बहुत सारी चीज़ें घर में बैठे बैठे मंगा लेना चाहते हैं, सोशलाइज़ नहीं करना चाहते। आपने देखा होगा कि हम बहुत सारी बातें जो है AI से ही कह देते हैं। जैसे कंटेंट के लिए हमने एक प्रॉम्प्ट डाला कि हमें आज रक्तदान के विषय में कुछ बताइए, अब उसने पूरा आलेख तैयार कर दिया और आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। आपने उसे पढ़ लिया और कंटेंट की तरह से सबको सुना दिया। या फिर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपको पर्यावरण के विषय में कुछ जानकारी चाहिए, आपने पर्यावरण प्रॉम्प्ट डाला और आपको पर्यावरण पर एक छोटा सा लेख तैयार करके AI ने पकड़ा दिया और आपने उसी को लिख दिया। सुविधा तो है ये, लेकिन कितनी, कहाँ तक? एक समय के बाद आप सिर्फ प्रॉम्प्ट से याद रख पाएंगे। आपके दिमाग में इस तरह के कंटेंट, इस तरह की जानकारियां जमा होना बंद हो जाएंगी। इसे कहते हैं ब्रेन रॉट। जानते हैं 2024 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने ब्रेन रॉट को वर्ड ऑफ द ईयर चुना था। और ब्रेन रॉट क्या है? रॉटिंग मतलब सड़गल जाना, यानी दिमाग हमारा सड़गल जाएगा। सीधी सी बात यही है। सोशल मीडिया पर जो हम लोग काम करते हैं ना, और कम गुणवत्ता और लोअर कैटेगरी की जो सामग्री देखते रहते हैं लगातार, इसी से हमारा ब्रेन रॉट होता है। और यदि इसमें AI को भी जोड़ दिया जाए तो इसकी जो रॉटिंग की रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आजकल तो लोग AI से गाने तक लिखने लगे हैं, गज़लें लिखने लगे हैं, कविताएं लिखने लगे हैं, कहानियां लिखने लगे हैं। अब सोचिए यदि क्रिएटिविटी के फील्ड में भी AI का इस्तेमाल होने लगेगा तो क्या ही होगा। हम नई भाषाएं सीखते हैं ना जब,
मान लीजिए हमें किसी हिंदी लेख का अंग्रेजी में अनुवाद करना है, हमने वो लेख एआई को दे दिया, वो अंग्रेजी में अनुवाद करके फटाफट दे देगा। यह आसानी है, यकीनन है, लेकिन अगर हम हिंदी भाषी हैं और हम दूसरी कोई भाषा सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी ही मसलन सीखना चाहते हैं, तो हम भाषा सीखते समय उस भाषा के विभिन्न शब्दों के भाव को भी समझ पाएंगे और न सिर्फ हमारा आईक्यू बढ़ेगा बल्कि हमारा ईक्यू यानी इमोशनल क्वेश्चन भी बढ़ेगा, हमारे अंदर भावना ज़्यादा मनुष्य हम बन पाएंगे। सीधी बात यही है, चैट जीपीटी या किसी भी तरह का कोई भी एआई हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी बुद्धि और मन को स्मार्ट नहीं बना सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि एआई का इस्तेमाल करते हुए भी हम अपने दिमाग को, अपने मन को उसमें शामिल रखें। कितना भी कोई एआई से गाने लिखवा ले, म्यूज़िक कंपोज करवा ले, लेकिन जो ओरिजिनल गाने हैं वो जितना दिमाग को, मन को प्रफुल्लित करते हैं वो कोई और नहीं कर सकेगा। तो ऐसा ही एक ओरिजिनल गाना इंतज़ार कर रहा है, मैं चुप हो जाती हूँ और वो गाने को आप तक पहुँचाती हूँ।

0: कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
1: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से।
0: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग ग्वालियर, तुलिका आपके साथ है। श्रोताओ, हम बात कर रहे थे AI की। AI बड़ा स्मार्ट होता है। हम मोबाइल फ़ोन पर अपने जो भी कुछ सर्च करते हैं, कुछ प्रॉम्प्ट देते हैं, उसी तरह के कंटेंट हमारे सामने ला के रख देता है। आपने ये नोटिस किया होगा ना, कभी आप बात कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट की, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं सब्जियों की, तो वो सब्जियों की खेती के बारे में या उससे जुड़ी तमाम सारी जानकारियाँ आपके सामने प्रस्तुत कर देगा। यानी हमारा मोबाइल फ़ोन, हमारा AI जो है मोबाइल फ़ोन में, वो सुनता भी है हमारी बातें। बड़ा स्मार्ट होता है। AI की ही बातों को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा किस्सा आपको बताती हूँ। हम अक्सर अपने मोबाइल फ़ोन से शॉपिंग भी किया करते हैं, शॉपिंग नहीं भी किया करते हैं तो शॉपिंग कार्ट्स जो हैं वो बहुत भरते रहते हैं। फिर वो जो चीज़ होती है, जब आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है तो हम अपनी कार्ट से उसको निकाल देते हैं। इसमें पता नहीं कौन सा सुख मिलता है हमें। होता है ना आपके साथ भी ऐसा ही? हम बात कर रहे थे शॉपिंग की। तो अभी कुछ दिनों पहले हमारे घर में हमारे एक मित्र आए और उनको चाय पानी देने की मैं व्यवस्था कर रही थी और ऐसे ही उनसे बात की, अरे घर में आज कुछ मीठा नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि अरे भाभी ऐसा कीजिए कि आप मेरे पास आम हैं वो काट दीजिए। तो मैंने कहा, आम आप लेके आए हैं क्या? तो उन्होंने कहा, हाँ आज मैं बाज़ार गया था। यूँ तो मैं ऑनलाइन जो ऐप्स हैं उनके माध्यम से घर पर ही मंगा लेता हूँ, लेकिन आज मुझे बाज़ार जा कर के आम ख़रीदना अच्छा लगा और मेरी आँखें खुल गई। पूछा कि भाई क्या बात हुआ, कैसे आँखें खुल गई? उन्होंने ये बताया कि आज जितने पैसों में मैं ऑनलाइन जो सामान मंगवाता था या आम मंगवाता था, जितने पैसों में वो एक आम आता था उतने में मैं 1 किलो आम लाया हूँ। तो ये तो फ्रॉड होता ही है आपके साथ और आप खुशी खुशी थोड़े से आलस की वजह से वो स्वीकार कर लेते हैं। तो ये सुनकर मुझे भी लगा कि हाँ, गली की नुक्कड़ की दुकान ज़्यादा बेहतर है, हमारी गली में आने वाले सब्ज़ी वाला ठेला ज़्यादा बेहतर है ऑनलाइन सामान मंगवाने से, ये सारी चीज़ें बेहतर हैं। इन सब चीज़ों से हम उस दुकानदार से भी कुछ संपर्क बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी अवॉइड कर सकते हैं जो पर्यावरण में जाने के बाद पर्यावरण को नुकसान करती हैं। आपको जो भी सामान दे जाएगा वो किसी तरह की पैकिंग में आएगा और वो पैकिंग भी पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होगी। अभी कुछ ही दिन पहले घर में कुछ सामान ख़त्म हो गया था, तो सामने नुक्कड़ की दुकान तक जाना था। किसी भी तरह की पॉलीथीन लेने से बेहतर था कि मैं वो डिब्बा लेकर के ही उनके पास चली गई और सीधे डिब्बे में भरवा लिया सामान। तो ये कितनी सुविधा है ना। धीरे धीरे ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से नुक्कड़ों की दुकानें ख़त्म होती जा रही हैं और ये हमारी जिम्मेदारी होगी। इसके लिए हम जिम्मेदार होंगे कि हमने अपने नुक्कड़ की दुकानें बंद करवा दी, क्योंकि हम इतने आलसी हो गए कि नुक्कड़ तक जाना भी हमारे को भारी लगने लगा। हम घर में बैठे, अपने सोफे पर बैठे या अपने बिस्तर में सिमटे हुए ऑर्डर कर देते हैं और सामान हमारे घर तक आ जाता है, भले ही उसके लिए हमें ज़्यादा दाम देना पड़े और भले ही हमें वो सामान ख़राब क्वालिटी का प्राप्त हो। अब क्वालिटी की बात करते हैं। आइए, कभी आप सब्ज़ी मंडी गए हैं? हम में से बहुत सारे लोग गए होंगे, क्योंकि अभी हम सब इतने AI स्मार्ट नहीं हुए हैं या कह लें कि मोबाइल फ्रेंडली नहीं हुए हैं। बहुत सारे लोग हम मंडियों में जाते हैं, लेकिन जो लोग ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं उन दोनों के बीच में क्या फ़र्क होता है? जब कोई मंडी जाता है, सब्ज़ी मंडी और फल मंडी, तो जा कर के इतने सारे रंगों की सब्ज़ियाँ और फलों को आँखों से देखता है, इतने सारे रंगों को पहचानने की क्षमता होती है, चमकदार सब्ज़ियों को देखकर मन में खुशी होती है, वहाँ जो आवाज़ें आ रही होती हैं ना हर तरफ से, कान वो सुनता है, यानी हमारी दो इंद्रियां आँखें और कान, ये दोनों ही वहाँ की वाइब्रेशंस को महसूस करती हैं। फिर आप सब्जियाँ चुनने जाते हो, एक एक सब्ज़ी को हाथ में लेते हो। मान लीजिए आप भिंडी चुन रहे हैं, आप एक एक भिंडी को चुनकर नरम नरम अपने हिसाब की भिंडियाँ चुन लेते हैं, आपकी जो उंगलियाँ हैं उससे स्पर्श करते हैं आप, यानी आपकी तीसरी इंद्रिय जो है वो भी शामिल हो गई उसमें। अब पांच इंद्रियां हैं, जुबान पर जायका तो आप घर जा कर के उस भिंडी का ले पाएंगे। एक और चीज़ है हमारी घ्राण शक्ति। कुछ चीज़ें जैसे फल ले रहे हैं आप सूंघ कर देखते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग खरबूजा खरीदते समय उसको सूंघ कर देखते हैं, आम खरीदते समय उसे सूंघ कर देखते हैं कि ये पका है कि नहीं, मीठा है कि नहीं। यानी जब हम अपनी इन पांचों इंद्रियों का इस्तेमाल करके कोई चीज़ घर लाते हैं तो उसका आनंद सोच के देखिए। और यदि ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो सिर्फ आँख से देख रहे हैं, हो सकता है AI जनरेटेड इमेजेस लगा दी गई हों, ओरिजिनल इमेज भी वहाँ पे ना हो, सिर्फ रंग देख करके हमने उसे मंगाया, घर आकर के आपने वो चुनने का आनंद भी नहीं लिया, आपको जो सामान पकड़ा दिया गया वो आपने हाथ में ले लिया। कभी राशन की दुकान पर जाइए, तमाम तरह के चावलों की बोरियां वहाँ खुली रखी होंगी, हर एक चावल आप हाथ में उठाकर देखते हैं, वो आपको कुछ सजेशन भी दे देता है दुकान वाला कि भाई ये नया चावल है, ये पुराना है, ये बासमती है, ये सोना मंसूरी है, आप ऐसा कीजिए ये वाला ले जाइए, बढ़िया लगेगा आपको, आपकी प्राइस रेंज वो जानता है, वो आपको उसी तरह की चीज़ें दिखाता है, उसके साथ आपका संबंध बनता है। ये सारी चीज़ें जिस दिन हम उपयोग में लाने लगेंगे, हम कह लीजिए कि हैप्पीएस्ट पीपल होंगे, खुश इंसान होंगे। तो खुशी का कोई मौका जाने मत दीजिए। ये सारी चीज़ें उतनी ही ज़रूरी हैं जितना ज़रूरी ये गाना है हर शादी के लिए। शादियों में ये गाना ज़रूर बजता है, आप गेस कीजिए कौन सा गाना हो सकता है, और स्पेशली जब डांस करते हैं ना, तब जिस तरह से मिलजुल कर डांस करने में मज़ा आता है ना, अकेले डांस करने में मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए आपको मैं मार्केट भेज रही हूँ। मार्केट अब निकल जाइएगा, हो सकता है आपको कुछ अच्छी चीज़ें बाज़ार में मिल जाएँ, कोई नया फल आया हो वो आपको मिल जाए, नई सब्ज़ी आई हो वो मिल जाए। यदि आप मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, किसी दुकान पर कपड़े खरीदने जाते हैं, वहाँ कपड़ों को छू कर उनकी नरमी और खुरदरापन महसूस कीजिए। ये सारी चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं। चलिए एक और ज़रूरी चीज़, ये गाना, और इस गाने को सोचिएगा क्या ये ज़रूरी है

श्रोता साथी, अभी बात हम कर रहे थे एआई के बारे में। एक खबर पढ़ने को मिली कि एआई से यदि हम किसी चीज़ की जानकारी मांगते हैं तो वो कितनी सही है कितनी गलत, ये हम तय नहीं कर पाते या ये हम जान ही नहीं पाते। एआई कैसे आपको जानकारी देता है? तमाम इंटरनेट पर मौजूद जो कुछ भी जानकारियां हैं उसको असेंबल करता है, चाहे वो सही हो चाहे गलत। उसके पास अपना विवेक नहीं है, उसके पास एक टेक्नोलॉजी है, एल्गोरिदम है, जिसकी मदद से वो आपकी मदद करता है, लेकिन नीर क्षीर विवेकी तो आप है ना, ये काम तो आपको करना है। खैर, एक और चीज़ जो खबर हमें सुनने को मिली है वो ये कि एआई अगर किसी तरह की लिंक्स आपको भेजता है कि कोई, मान लीजिए आपने पूछा कि फलां सामान हम कहाँ से ख़रीद सकते हैं या इस चीज़ की कंप्लेन हम कहाँ दर्ज कर सकते हैं, तो यदि लिंक देता है तो उसमें से कुछ लिंक्स फ्रॉड भी हो सकती हैं। हम ये नहीं कहते कि सारी लिंक्स फ्रॉड होंगी, लेकिन कुछ लिंक्स फ्रॉड भी हो सकती हैं। तो इस तरह की चीज़ें यदि आपके सामने आती हैं तो उससे सतर्क रहिए, सावधान रहिए। खैर, हमको आगे और बढ़ना है। एक और चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि आज है विश्व एल्बिनिज्म डे। एल्बिनिज्म क्या है और ये किस तरह से सफ़ेद दाग यानी विटिलगो से अलग है, स्किन कैंसर का कैसे कारण बन सकता है, ये सभी जानकारियाँ आज के दिन साझा की जाती हैं। मिलेनोसाइट्स कम होने से ग्रसित लोगों को एल्बिनिज्म होता है और ऐसे लोगों की दृष्टि भी कमज़ोर होती है। धूप से बचाव की बेहद ज़रूरत होती है क्योंकि धूप में निकलने पर, चूँकि मिलानिन कम होता है तो धूप में निकलने पर उनकी त्वचा को ज़्यादा नुकसान होता है। मिलानिन कम होता है इसलिए उनकी त्वचा और बालों का रंग, आँखों का रंग अलग तरह का होता है। ये विटिलिगो नहीं है, ये सफ़ेद दाग नहीं है। ये क्या है, कैसे होता है, इसके बारे में सब कुछ जानने के लिए आपको सुनना होगा आज का हमारा सेहत की बात तरानों के साथ कार्यक्रम 10:05 पर। यही विषय है उसका, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के इस दिन त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमल सिंह भदौरिया से विभूति सिंह की बातचीत है। इसे आप ज़रूर सुनिएगा, 10:05 पर एल्बिनिज्म के बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी। फिलहाल हम अपनी जानकारियों को यहाँ समेट रहे हैं। ये कार्यक्रम का आखिरी गीत है, इसको सुनिए, महसूस कीजिए और यदि आपके शहर में कहीं बारिश हो रही हो तो उस बारिश के साथ इस गाने को जोड़कर देखिएगा, मज़ा दोगुना ना हो तो कहिएगा।

सावन तो अभी आया नहीं है, यूं कहें कि अभी तो आषाढ़ भी नहीं आया, अभी तो ज्येष्ठ मास चल रहा है। ये वक्त जल्दी जल्दी बीते, सावन की घटा आए तो हम इस गीत का बेहतर आनंद ले सकें। खैर, वक्त जल्दी जल्दी बीते की बात हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा वक्त जो है वो जल्दी जल्दी बीत ही गया। फिलहाल ये कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर समाप्त करने के अपनी दोस्त तुलिका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज हम आपको सुनवा रहे हैं संयोगिता कुशवाहा का राग अहीर भैरव में ध्रुपद धमार।

0: शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। 10 बजते हैं, जिले की चिट्ठी अब भोपाल से होगी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम

0: डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए आप सुनिए जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है रायसेन जिले की चिट्ठी। आलेख विनीत महेश्वरी, वाचन स्वर दीपा सिंह। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन जिले के ग्राम रमासिया से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मिट्टी बचेगी तो खेती बचेगी, किसान मजबूत होगा और देश समृद्ध बनेगा। उन्होंने किसानों से अंधाधुंध रासायनिक खाद का उपयोग न करने और मिट्टी की जाँच के आधार पर ही उर्वरकों का उपयोग करने की अपील की है। यह अभियान 1 जून से 30 जून तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रायसेन जिले में कृषि के क्षेत्र में एक और अहम पहल की गई। कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में जिले के कृषि रोडमैप को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि उद्यानिकी पशुपालन और सहकारिता विभाग के अधिकारियों को किसानों की आय बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा कलेक्टर ने टाइम लिमिट बैठक लेकर विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व प्रकरणों, सीमांकन, नामांतरण और लोक सेवा गारंटी के आवेदनों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों की फार्मर रजिस्ट्री 100% पूरी करने और ई विकास टोकन प्रणाली की जानकारी हर किसान तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी रायसेन में बड़ा कदम उठाया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन विभाग ने ग्राम सुरई से लगे वन क्षेत्र में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृहद पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया। करीब 35 हेक्टेयर अतिक्रमण मुक्त भूमि पर 35,000 पौधे रोपे जा रहे हैं, जिनमें सागौन और मिश्रित प्रजातियों के पौधे शामिल हैं। रायसेन के ऐतिहासिक किले की पहाड़ी पर इन दिनों बाघ का विचरण देखा जा रहा है। वन विभाग ने आम नागरिकों और मीडिया कर्मियों से किला पहाड़ी के आसपास न जाने की अपील की है। वन विभाग की टीम बाघ की लगातार निगरानी कर रही है। मानव वन्य प्राणी टकराव से बचाव के लिए सतर्क हैं। उप मंडलाधिकारी ने बताया कि वन्य प्राणी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप वन्य प्राणी अधिनियम का उल्लंघन है। मतदाता सूची के वार्षिक

0: पुनरीक्षण को लेकर भी जिले में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक अभय वर्मा ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक कर नगरीय निकायों और पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की। स्वास्थ्य के मोर्चे पर रायसेन जिले में 28 से 30 जून तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। जिले में 0 से 5 साल तक के 1,84,000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। अपर कलेक्टर मनोज उपाध्याय ने स्वास्थ्य, महिला बाल विकास, स्कूल शिक्षा विभाग को मिलकर काम करने के निर्देश दिए हैं। रायसेन जिले के सभी नगरीय निकायों में जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया गया। कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने बेगमगंज और सिलवानी में शिविरों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवेदनों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शिविरों का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करना और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाना है। जिले के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम के द्वितीय चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन 18 जून तक चल रही है। 10वीं पास विद्यार्थी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में प्रवेश ले सकते हैं। दूसरी तरफ जिले में शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना के तहत पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर युवक युवतियों को सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए तैयार किया जा रहा है। माता शबरी शासकीय कन्या शिक्षा परिसर रायसेन में 45 दिवसीय ये प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जा रहा है। जिले में 1 जून को रेडक्रॉस समिति द्वारा सेवा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर शिविर लगाकर गरीब और श्रमिक वर्ग के लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और दवाएं वितरित की गयी। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर मेरा युवा भारत जिला रायसेन द्वारा सिलवानी में साइक्लोथॉन और जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में युवाओं ने साइकिल रैली में उत्साहपूर्वक भाग लेकर फिटनेस और हरित पर्यावरण का संदेश दिया। रायसेन जिले के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को जल्द ही खास ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग की इस पहल का मकसद है कि शिक्षक और कर्मचारी ये समझ सके कि यदि कोई विद्यार्थी मानसिक तनाव या अवसाद से गुजर रहा हो तो उसे समय पर पहचान कर मदद की जा सके। ये ट्रेनिंग 6 जुलाई को सरकारी कॉलेजों के लिए, 7 जुलाई को प्राइवेट कॉलेजों के लिए और 8 जुलाई को विश्वविद्यालयों के लिए ऑनलाइन आयोजित होगी। रायसेन जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे रायसेन जिले की चिट्ठी, आलेख विनीत महेश्वरी का था और वाचन स्वर दीपा सिंह का।
2: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आइए सुनते हैं साप्ताहिक कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस पर ये कार्यक्रम आधारित है। इसमें त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमल भदौरिया से बात कर रही हैं डॉक्टर विभूति सिंह।

0: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने लोकप्रिय स्वास्थ्य कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ में। इस कड़ी में हम चर्चा कर रहे हैं एक विशेष दिवस पर। जी हाँ, प्रतिवर्ष 13 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। अल्बिनिज्म एक अनुवांशिक स्थिति है जिसमें त्वचा अपनी संवेदनशीलता के चलते अपना रंग खो देती है। इस विषय पर विस्तार से हमसे बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद लोकप्रिय डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर कमल सिंह भदौरिया ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं और अल्बिनिज्म पर आपकी सभी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: अभी गुजरे 8 जून को आकाशवाणी ने अपनी स्थापना के 90 वर्ष पूर्ण किए हैं, तो उसको बताएं आपका अपना आकाशवाणी को लेकर क्या एक कोई यात्रा आपकी है, कोई संबंध है, और इस 90 वर्ष पर आपका क्या संदेश है?
1: जी, आपने बताया कि आकाशवाणी को 90 वर्ष हुए, ऐसा कम ही होगा कि भारत में जो हम जिस परिवेश से आते हैं निकल के, जहाँ आकाशवाणी को कोई नहीं जानता हो या उसका संपर्क ना रहा हो। उसी तरह मैं बचपन से हमारे यहाँ गांव में मेरा पालन पोषण हुआ भिंड जिले में, तो वहाँ बचपन से मेरे पिताजी जो धार्मिक गीत और जो आकाशवाणी पर सुबह सुबह प्रसारित होते थे और सभी प्रकार के कार्यक्रमों के लिए वो बहुत ज़्यादा वो रहते थे, तो बचपन से ही हमारे घर में आकाशवाणी संपर्क में है। फिर धीरे धीरे विकास होता गया तो हम लोग शहर की ओर आए तो गाड़ियों में सुनने लगे, फिर हाईवेज पे जाते समय सुनने लगे, फिर इसमें और ज़्यादा जुड़ाव महसूस तब हुआ जब मेरी पत्नी मेरी शादी के बाद, वो बहुत शौकीन थी आकाशवाणी के जितने गीत और संगीत के कार्यक्रम होते थे, और वो खुद भी
0: जी।
1: संगीत विधा से स्नातकोत्तर भी है अतिरिक्त उपाधि के रूप में
0: जी।
1: और एज ए चिकित्सा विशेषज्ञ भी मैं पिछले पाँच

0: 7 साल से आकाशवाणी से संपर्क में हुई, तो ये व्यापक रूप से और समाज की अंतिम कड़ी तक पहुंचने का जो सशक्त माध्यम है, ये एक तरह से अद्वितीय है। इसका स्थान अभी संभव नहीं है किसी की और जो संपर्क माध्यम है उसके ले लेने का।
1: जी, बहुत धन्यवाद आपका। अब हम अपने विषय की तरफ लौटते हैं, तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है अल्बिनिज्म को लेकर कि ये कंडीशन क्या होती है, अल्बिनिज्म की कंडीशन क्या है।
0: जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। इसी की पृष्ठभूमि में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि जिसके निमित्त हम लोग ये परिचर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, वो एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, जो अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे है, वो 2013 से 13 जून को, जब दुनिया में सब ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, इस प्रकार के मरीजों पे अटैक्स होना शुरू हुआ, तो जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है यूएन की, उसने ये अडॉप्ट किया कि इस पे हमको काम करना चाहिए। तब फिर जनरल असेंबली जो यूएन की है, उसने इसको बाकायदा ऑफिशियली प्रोक्लेम किया पूरी दुनिया में कि इनके अधिकारों की रक्षा होना चाहिए। उसी क्रम में भारत में 2015 से जो विभिन्न संगठन, एनजीओ, डर्मेटोलॉजिस्ट की जितनी संस्थाएं हैं और जो ह्यूमन राइट्स में काम करने वाले एडवोकेट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन सब ने मिलके इसके लिए एक चार्टर तैयार किया। तब से हमारे यहाँ इस प्रकार की जागरूकता एल्बिनिज्म को लेकर होती है। उसके मुख्य तीन उद्देश्य थे, जो मिथ हैं समाज में, विभिन्न भ्रांतियाँ थी, उनको कम किया जाए धीरे धीरे जागरण के माध्यम से। दूसरा, इसके द्वारा ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होता उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तीसरा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये था कि इनको कैसे अवेयर करके प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसके निमित्त धीरे धीरे, और इनके आके अधिकारों की बात की जाए, सरकार में इनके नौकरी के अवसर संरक्षित किए जाएं, एकोमोडेशन, एजुकेशन पे, इन सारी चीज़ पे जो एक फोकस आया इंडिया में 2021 से 2026 का, इंडिया फोकस ऑन एल्बिनिज्म करके, तो उसमें भारत शासन की मंशा थी कि इनको एजुकेशन पे भी बराबर में लाया जाए, इनके साथ वैसा भेदभाव नहीं हो, एकोमोडेशन अगर आर्थिक वो है तो, और जॉब में भी इनकी प्रायोरिटी देने की, तो इसको बोझ न समझा जाए समाज में। अब जैसा कि आपने एल्बिनिज्म प्रश्न किया है, तो ये एल्बिनिज्म एक अवस्था, जैसा कि आपने पूर्व में कहा कि आनुवंशिक अवस्था होती है, बिल्कुल ठीक कहा, ये त्वचा की एक आनुवंशिक अवस्था होती है, ये जन्म से ही आती है। जैसा कि इसमें इसकी जब अपन परिभाषा करते हैं कि इट इज ए कंजेनाइटल डिसऑर्डर, मतलब ये जेनेटिक्स के रूप में बाय बर्थ पैदा होता है
1: जी।
0: इसमें क्या होता है कि ये पूरे शरीर में मेलानिन, मेलानोसाइट सेल्स तो होते हैं जो हमारा कलर बनाते हैं, बट मेलानिन बनता नहीं है, मेलानिन उनके पास नहीं होता। तो पार्शियली जनरलाइज तरीके से, मतलब पार्शियली हो सकता है, कुछ एल्बिनिज्म ऐसे भी देखने को मिलते हैं, कहीं कहीं चित्ते नॉर्मल स्किन के भी होते हैं, बट जनरलाइज ही ज़्यादा कॉमन है पूरे शरीर में, उसमें आँख भी इन्वॉल्व होती है। तो इस प्रकार से एल्बिनिज्म दो टाइप का होता है, एल्बिनिज्म एक जिसको ओक्युलो कुटेनियस एल्बिनिज्म कहते हैं, एक ओक्युलर एल्बिनिज्म कहते हैं। ओक्युलो कुटेनियस एल्बिनिज्म में स्किन और हेयर और आई
1: जी,
0: ये इन्वॉल्व होते हैं, और ओक्युलर एल्बिनिज्म में केवल आई इन्वॉल्व होती है
1: जी। सनलाइट का भी कोई असर रहता है क्या, कोई प्रभाव पड़ता है?
0: बिल्कुल, इसके सनलाइट का पूरा असर होता है। इसके जैसा कि प्रारंभ में ही कहा कि इसमें मेलानिन नहीं होते, इसमें मेलानोसाइट सेल्स तो होते हैं, तो जो फोटो डैमेज को प्रोटेक्शन करने के लिए इसका कोई बहुत डेफिनेटिव क्योर तो है नहीं आज तक इस बीमारी का, पर स्ट्रिक्ट सन प्रोटेक्शन है, तो उसके लिए सबसे पहली कड़ी है सनस्क्रीन। इसीलिए भारत शासन ने भी तमाम ऐसे जो प्रोग्राम शुरू किए हैं, सब्सिडाइज रेट पे सनस्क्रीन या फ्री, कई कार्यक्रमों के अंतर्गत ऐसे पेशेंट्स को दी जाती है, और रेगुलर इनका जन्म के बाद से ही आई चेकअप होना चाहिए, उसकी भी मतलब शासन ने तमाम तरह के प्रोग्राम के अंतर्गत उसकी चिंता की है। तो आपने कहा सन प्रोटेक्शन, सनस्क्रीन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इसमें, और सन प्रोटेक्शन से ही इस बीमारी के आने वाले जो सेकेंडरी इफेक्ट हैं उनको रोका जा सकता है।
1: आपने चिकित्सा शास्त्र के कुछ इतने क्लिष्ट टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया कि थोड़ा सा हम लोगों का दिमाग भारी हो गया। अब मुझे लग रहा है कि एक गीत हमारे श्रोताओं के लिए हम सुनवाना चाहते हैं आपकी ओर से, उसका समय आ गया है, एक गीत आप बता दीजिए
0: जी। तुझ में रब दिखता है,
1: ठीक है, हम सुनवा रहे हैं ये गीत।

0: डॉक्टर भदौरिया, गीत के बाद हम चर्चा कर रहे हैं कि अल्बिनिज्म का निदान कैसे होता है
1: जी,
0: और किस उम्र में इसकी पहचान की जा सकती है।
1: अब इस पे अपन थोड़ा समग्र रूप से एक बात करते हैं कि एल्बिनिज्म, अभी अपन ने बात किया गीत के पहले कि ये जो स्किन में कलर नहीं बनता, त्वचा में कलर नहीं बनता, उसके कारण होती, तो उसका निदान, स्थायी निदान अभी कुछ ऐसा नहीं है साइंस के पास। एक दो ड्रग आते हैं जिनका बहुत अच्छा इफेक्ट है, पर 4 से 5 प्रकार के एल्बिनिज्म होते हैं, उनमें ओकुलोकुटेनियस जो एल्बिनिज्म है उसमें जो एक्चुअली में होता क्या है, जो हमारा मेलेनिन सिंथेसिस पाथवे होता है, जो मनुष्य की त्वचा में कलर बनाने का एक जो पाथवे होता है, उसमें टायरोसिनेज एंजाइम होता है, उसमें जब डिफेक्ट आ जाता है तो वो बनना बंद हो जाता है, इसलिए वो बनता नहीं है। तो इसको ऐसे डिफर कर सकते हैं, हो सकता है कि सारे एल्बिनिज्म एल्बिनिज्म ना हो, हो सकता है यूनिवर्सल विटिलिगो भी हो, पर उसका अंतर करने में समझ में आता है कि ये जन्म से होता है, जबकि विटिलिगो जो सफ़ेद दाग की समस्या है जन्म के बाद में आती है, और ये पूरा जनरलाइज पूरे शरीर में होता है, इसमें आँखें भी इन्वॉल्व होती हैं और बाल भी होता है, जबकि विटिलिगो में आँखें इन्वॉल्व बहुत ही रेयर होते हैं, नगर नहीं मान सकते हैं, और ये बाई बर्थ होता है एल्बिनिज्म, वो जीवन के बाद की अवधि में होता है, और ज़्यादातर पैची होता है, जगह जगह चित्तों के रूप में, धब्बों के रूप में आता है, और ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो एक्वायर्ड डिसीज़ है। तो दोनों में भी अंतर, एकदम सब एल्बिनिज्म होंगे सफ़ेद लोग ऐसा भी नहीं है, उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में यूनिवर्सल विटिलिगो जो होता है पूरे शरीर पे, वो भी एक हो सकता है, तो चिकित्सक के माध्यम से, योग चिकित्सक के माध्यम से उसमें भी अंतर किया जा सकता है।
0: किन टेस्टों की आवश्यकता होती है, कौन कौन से टेस्ट?
1: देखिए, इसको

0: ऐसे क्लिनिकली असेस करते हैं, मतलब जो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है वो अपने अनुभव के आधार पे इसका आकलन करता है कि एल्बिनिज्म उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस और क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। तो जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि उसको डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले अपन देखें हम लोग देखेंगे कि वो बाय बर्थ है, पैदा हुआ उसी के बाद है ना। पर यह विटिलिगो ऐसे नहीं आता है, तो एक कारण एल्बिनिज्म होने का ये। दूसरा, उसके बाल और आँख इन्वॉल्व होंगी, आँखों में नीलापन होगा, ये विटिलिगो में नहीं होता है। और दूसरा, फोटो सेंसिटिविटी एल्बिनिज्म में ज़्यादा होती है बजाय विटिलिगो के, इसलिए क्लोथिंग अच्छे से पूरा ढक के रखना,
1: सन
0: छाता,
1: प्रोटेक्शन।
0: हाँ सन प्रोटेक्शन, छाता लगाना, टोपी कैप या हेड्स पहनते हैं तो वो पहनना, और सनस्क्रीन लगाना, और सन अवॉइडेंस मतलब बहुत कोशिश करना चाहिए कि 11 से 1-2 की धूप से दूर रहना, नहीं तो सीवियर जो फोटो डैमेज होते हैं, जो डीएनए रिपेयर और ये सब प्रभावित होते हैं वो हो सकते हैं। तो पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है, बच्चा अगर बचपन से ही है तो फिर उसको संबंधित चिकित्सक को दिखा के कंफर्म कर लेना चाहिए।
1: अच्छा डॉक्टर भदौरिया, अभी आपने बताया कि अल्बिनिज्म बहुत इफेक्टिव इलाज कोई नहीं है, तो क्या कोई स्थिति ऐसा ही है ही नहीं कि पूरी तरह ठीक हो जाए, या सिर्फ मैनेजमेंट ही किया जा सकता
0: नहीं,
1: है?
0: बिल्कुल आपने ठीक किया, मैनेजमेंट तो इसका अच्छा उपलब्ध है ही कि आगे की जिंदगी अच्छे से वो जीवन जी सकता है। कुछ एक दो ड्रग हैं जो टायरोसिन सिंथेसिस को बढ़ाते हैं जिसके कारण ये होता है, वो ड्रग किसी भी योग्य डर्मेटोलॉजिस्ट के माध्यम से ले सकते हैं, पर सीमित वो है। अभी जैसे जैसे आगे उस पर अनुसंधान हो रहा है, हो सकता है सारे जितने प्रकार के एल्बिनिज्म होते हैं उनका उपचार आ जाए, पर 50 से 60% एल्बिनिज्म में प्रभाव रखने वाली कुछ औषधियां हैं जो उसका काफी असर देखने को मेलानिन सिंथेसिस पे मिलता है।
1: अच्छा, पूर्णतया ये अनुवांशिक रोग है,
0: पूर्णतया अनुवांशिक है
1: अपने
0: जी,
1: आप उत्पन्न हो ही नहीं सकता,
0: नहीं
1: तो
0: अपने
1: ये
0: आप।
1: पहली बार कैसे हुआ होगा सर? ये एक बेसिक क्वेश्चन मुझे आपसे बात करते हुए ही जहन में आया है।
0: देखिए ये एक बड़ी जटिल प्रकृति की संरचना होती है जीन, ये पीढ़ी दर पीढ़ी जीन में परिवर्तन जो होता है, ये
1: म्यूटेशन।
0: म्यूटेशन बाद गई है, एक रिसेसिव डोमिनेंट, दो अलग अलग होते हैं, एस लिंक्ड होता है, जैसे जो आई वाला होता है वो एस लिंक्ड होता है कि मदर फादर से ही आता है, और ऐसा कह सकते हैं कि जीन ने करवट लिया उनके, हो सकता है पुरानी पीढ़ियों में नहीं रहा हो,
1: हाँ हम
0: पर
1: अपनी इस
0: हाँ
1: भाषा में बात
0: वो
1: करें हमारे श्रोताओं को भी समझ आए।
0: हाँ कोई रिसेसिव पड़ा हुआ है, सुप्त जीन है, उसमें किसी कारण से म्यूटेशन से या जो हमारा बायोलॉजिकल हैजार्ड्स है और दूसरे केमिकल वो इनसे उस संरचना में कुछ अंतर आता है, तो वो उस समय वो प्रकट हो सकता है।
1: तो कहना चाहिए कि एक ऐसा संयोगपूर्ण स्थिति कभी हुई होगी
0: बिल्कुल
1: तो किसी में पहली बार ये जीन आया।
0: जी
1: डॉक्टर साहब बताइए कि जैसे अल्बिनिज्म है तो किसी बच्चे को अगर है तो उसकी स्कूलिंग और उसका जो सोशल लाइफ है उसमें भी चैलेंजेस तो पैदा करता ही है, तो
0: बिल्कुल
1: आपके अनुभव में किस तरह के चैलेंजेस हैं जो उनको फेस करने पड़ते हैं?
0: बिल्कुल ये चैलेंजेस ग्लोबल लेवल पे भी फील होने लगे थे, तभी ये यूएन काउंसिल लेके आया कि सोशल स्टिग्मा बहुत बड़ी इसके पीछे परेशानी का कारण है। एल्विनिज्म कोई छूने से नहीं फैलती, ना उसके साथ बैठने उठने खाने से फैलती, परंतु वो हमसे कुछ अलग दिखते हैं, त्वचा के कलर के अलग, इसके कारण हमारा समाज उनके साथ दोहरा व्यवहार करता है, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से, कहीं इसको दैवीय आपदा मानते हैं, पूरे दुनिया में पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार की इसके इसके बारे में भ्रांतियां हैं। तो वो सिर्फ हमें उसके बारे में नॉलेज होगा कि ये एक सामान्य त्वचा में रंग बनाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं पूरी संख्या में होती हैं जैसे हमारे अंदर है आपके अंदर है, परंतु उनका जो मेलानिन सिंथेसिस पाथवे है, जो मेलानिन बनने की प्रक्रिया है, उसमें कुछ जो टायरोसिनेज डिफेक्ट है वो कई कारणों से हो सकता है, उसके कारण से वो नहीं होता है, इसलिए उनको एल्बिनिज्म हो गया। बाद बाकी सेम हमारे आपकी तरह ही उनका जीवन होता है, तो हमको भेद भी नहीं करना चाहिए, पर इस प्रकार का भेद सच्चाई कड़वी सच्चाई है कि समाज में बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो दूसरे बच्चे उनसे दूरियां बनाते हैं, तो अगर हम एनर्जी के लेवल पे फील करें तो ये उचित नहीं है, क्यों जब हमारे यहाँ कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति में ब्रह्म, और साइंस भी इसको मानता है कि एनर्जी तो सब में बराबर ही है है ना, नेचर की ओर से, उसका रूप रंग कैसा भी कवर, सारी संरचनाएं उसी एनर्जी की हैं। तो इस विभेद से थोड़ा सा अगर अवेयरनेस समाज के जिन लोगों के एल्बिनिज्म नहीं है उनकी तरफ भी ये विषय जाएगा तो वो समझेंगे ये हमारी तरह लोग हैं। वो हो सकता है लेक ऑफ नॉलेज, मतलब उनको ज्ञान का अभाव होने के कारण, अविद्या होने के कारण उनको ये समझ में नहीं आता, वो अपने बचाव या

0: डिफेंसिव हो जाते हैं। जब अगर ये हम सब लोगों का दायित्व है, प्रसार माध्यम और चिकित्सक और तमाम सामाजिक संस्थाओं का, अगर ये जितना प्रसार बढ़ेगा तो बाकी के लोग भी उसका सहयोग करेंगे तो उनका बाकी का जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। शासन और दूसरी चीज़ें तो उपलब्ध होती हैं पर समाज का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है।
1: तो आपके पास कोई मरीज ऐसा बच्चा आया है जिसमें आपने फील किया हो कि ये प्रॉब्लम बढ़ रही है मानसिक स्तर पर?
0: बहुत रेयर, एक दो साल में आते हैं हमारे सरकारी ओपीडी में, जेएच में। तो हम लोग जब बहुत ज़्यादा वो होता है तो काउंसलिंग के लिए उनको मनोचिकित्सक के पास भेजते हैं। तो उसका भी आधार यही है कि उसको ये बताया जाता है कि आप भी नॉर्मल हैं, आप भी दूसरों की तरह जीवन यापन कर सकते हैं, अपना आत्मविश्वास बढ़ाइए और दूसरे कामों के प्रति अपने को व्यस्त रखिए, तो इन सब से आप मुक्त हो सकते हैं।
1: और चाइल्ड साइकोलॉजी की हम जैसे कि चर्चा कर ही रहे हैं सर, तो मुझे पर्सनली एक याद आ गया कि जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो एक बच्ची आई थी हमारे पास में, हमारे स्कूल में। तो जब वो क्लास में आई तो वो हमारे लिए ये विषय उत्सुकता का था कि इतनी गोरी कैसे है, अंग्रेजों जैसी। तो हम लोग पूरे टाइम, तो अब मैं समझ सकती हूँ कि उसके ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता होगा उसका। फिर हम लोग आके अपने घरों में चर्चाएं कर रहे हैं कि एक लड़की आई है जो इतनी गोरी है, फिर पता चल रहा है कि नहीं, उसको कोई बीमारी है। समाज तब भी उसको एक बीमारी के तौर पर ही देखता था। अब डॉक्टर साहब, मुझे लग रहा है कि एक गुंजाइश है गीत की, तो आप बता दें।
0: मोरा पिया मुँह से बोलत नहीं
1: जी बिल्कुल, हम राजनीति का है जी, बहुत सुंदर गीत है।

0: गीत के बाद बातें करेंगे कि अल्बिनिज्म का आंखों पर भी प्रभाव, आपने चर्चा भी करी थी शुरुआत में थोड़ी सी कि होती है, तो ज़रा विस्तार से बताइए कि क्या प्रभाव होता है और हमारी जो विजुअल एक्सीडेंसी है या आंखों की संवेदनशीलता, तो इसको कैसे प्रबंधित कर सकते हैं जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं वो लोग।
1: बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। इसीलिए जो एल्बिनिज्म जिन मरीजों को होता है तो उन बचपन से ही उनको ऑप्थेल्मिक चेकअप के लिए सजेस्ट किया जाता है, जन्म के बाद ही रेगुलर उनका ऑप्थेल्मिक चेकअप होना चाहिए। अब उसमें अलग अलग उनको परेशानी होती है, एक तो पलक जो निस्टिमिया कहते हैं, पलक झपकना, जल्दी जल्दी पलक झपकाना, और उनको धूप में निकलने में परेशानी होना, और ब्लूनेस, ये अलग अलग परेशानी है, फोटोफोबिया, एकदम रोशनी और धूप को देख के डर जाना, इस प्रकार की सामना करते हैं। तो इसीलिए उनको रेगुलर ऑप्थेल्मिक चेकअप एक किसी भी योग्य सर्जन ऑप्थेल्मिक स्पेशलिस्ट से कराते रहना चाहिए।
0: और अपनी आंखों की संवेदनशीलता के लिए क्या कर सकते हैं वो मरीज?
1: वो उसके लिए जो
0: मतलब जो लभी लोग सुन रहे होंगे अगर उनमें से कोई
1: जो स्किन के बचाव के लिए, वही उसी पे, एक तो सन अवॉइडेंस, धूप का जो प्रखर रूप होता है उस समय हमको बाहर निकलने से बचना चाहिए, उस टेंडेंसी से बचना चाहिए। छाते का प्रयोग है, और ये तो त्वचा पे तो आप सन प्रोटेक्शन के लिए आप इस सनस्क्रीन वगैरह लगा सकते हैं, इसमें अच्छे जो सन ग्लासेस होते हैं उनका प्रयोग करना ऑप्थेल्मिक स्पेशलिस्ट की सलाह से।
0: बस सब क्वालिटी का लगा लिया है तो वो भी
1: उसमें कितने बीम की रोशनी जानी चाहिए ये भी उसमें डिफाइन होता है, तो उसको देख के भी उससे आगे की जो उसका विजन है वो क्वालिटी विजन जीवन यापन के लिए उपयोग कर सकते हैं।
0: तो उम्र के साथ इस बीमारी में अगर कोई है तो इस कंडीशन के साथ दृष्टि है वो कम होती जाएगी सामान्य रूप से?
1: नहीं, अगर वो देख रेख ठीक करता है तो सामान्यतः नहीं, जैसे सामान्य होते। सबसे ज्यादा खतरा जो त्वचा को रहता है कि अगर उसको सीवियर फोटो प्रोटेक्शन नहीं कर रहा है तो कार्सिनोजेनेसिस की तरफ त्वचा बढ़ती है, अगर अच्छी सनस्क्रीन नहीं लगा रहा और क्लोथिंग और दूसरे माध्यम नहीं अपना रहा, तो एक बड़ा खतरा उनको त्वचा का कैंसर होने की रहती है। उससे बचने के लिए जरूरी है जो सन अवॉइडेंस है, सन प्रोटेक्शन के जो रूल्स हैं उन सबको स्ट्रिक्टली, सन प्रोटेक्शन स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा उनको। उसमें सनस्क्रीन रेगुलर तीन बार, हर तीन तीन घंटे से उसको तीन से चार बार दिन में लगाना ही चाहिए, और क्लोथिंग इस तरीके से होना चाहिए कि हमारा शरीर ढका होना चाहिए, आंखों पे सीधे सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए, वो सनग्लासेस तो है ही, इस प्रकार के कैप और उसका प्रयोग करना चाहिए कि वो हमारे सीधे उसकी रेस नहीं पड़नी चाहिए, तो उससे फोटोफोबिया और इन सबसे बचा जा सकता है।
0: अच्छा डॉक्टर भदौरिया, जैसे अब हम स्किन की बात करते हैं, एक डर्मेटोलॉजिस्ट के रूप में आपके पास भी अनुभव होंगे ही ऐसे तमाम, हमारे समाज में जैसे हमारी स्किन पर कोई भी समस्या है, त्वचा पर कोई भी धब्बा है या इस तरह की कोई दिक्कत है, तो उसको अमूमन एक बड़े रोग के साथ हमेशा एसोसिएट किया जाता रहा और कहा जाता रहा कि ये रोग जो है ये किसी पिछले कर्मों में, पिछले जन्म में आपने कोई कर्म किए हैं इस कारण ये रोग होता है। हालांकि लेप्रोसी की मैं बात कर रही हूँ, और हालांकि अब तो उसकी भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है और अब लोगों को समझ आने लगा है, लेकिन एक बड़ा तबका है जो अभी भी उस बायस को लेके कहीं ना कहीं सोसाइटी में रह रहा है। तो आपको क्या लगता है कि एक स्टीरियोटाइप है या गलतफहमी है, इनको तोड़कर एक जैसे सहमतिपूर्ण सोसाइटी को बनाने में क्या उपयोगी कदम होने चाहिए?
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी चिंता आपने व्यक्त की है कि त्वचा में विभिन्न प्रकार के कलर्स को लेके अलग अलग मिथ हैं हमारे समाज में, जैसे सफ़ेद दाग को लेके अलग हैं, जैसा आपने रेखांकित किया कुष्ठ रोग, कुष्ठ को भी वो सफ़ेद दाग से, जैसे हम लोगों के पास जो मरीज आते हैं ओपीडीज में, तो उसमें अगर कोई सफ़ेद दाग का आया तो वो बोलेगा सर इसको कुष्ठ रोग हो गया क्या, उनको बेसिक अंतर नहीं मालूम कुष्ठ रोग क्या है और ये स्किन का कलर क्या है। जो विटिलिगो में होता है वो जो कलर बनाने वाली कोशिकाएँ होती हैं या तो काम करना बंद कर देती हैं या वो टूटना शुरू हो जाती हैं, है ना, जिसके कारण उस लोकलाइज फोकल पॉइंट पर कलर नहीं बनता है, जो जिस एथेनिक के, जैसे हम भारतीय लोग हैं तो हमारी त्वचा का एक स्पेसिफिक कलर है, तो वो कलर बनाने की जिम्मेदारी वो है। तो बट एल्बिनिज्म में क्या होता है, एल्बिनिज्म मेलानोसाइट्स की संख्या पूरी है बट मेलानिन सिंथेसिस पाथवे में डिस्टर्बेंस है, एरर है, उसके कारण नहीं बन पा रहा। ऐसे ही जो हमारी लेप्रोसी है वो टोटल अलग बीमारी, लेप्रोसी अलग बैक्टीरियल डिसीज है और उसका 100% इलाज है। MBMDT आजकल इतनी सशक्त है कि अगले 12 महीने की जो सभी शासकीय छोटे से छोटे अस्पताल प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस तक सब दूर उनका MBMDT कार्ड मिलता है। सब सरकार उसकी अच्छी क्वालिटी वाली दवाइयाँ सारी फ्री देती है। अगर हम नियमित 12 महीने लें तो वो ठीक होते हैं। अब कुष्ठ रोग में बड़ा मूलभूत अंतर है और कलर वाली बीमारियों में मूलभूत अंतर है। कुष्ठ रोग में जो WHO की मानता है पैच होंगे शरीर में, दाग होंगे त्वचा से हटके, या तो हाइपो होंगे त्वचा से नीचे वाला डल वाला कलर, तो उसमें वहाँ सुन्नपन होगा और उसकी नर्व थिकनिंग बढ़ रही होगी। ऐसे मरीजों को आप विचार कर सकते हो कि वो कुष्ठ रोग है। अगर ऐसी कोई शंका है तो सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हुए उन पर जाके उसकी स्क्रीनिंग करा सकते हैं और उनकी सारी निःशुल्क दवाइयाँ मौजूद हैं। उसको भी आजकल आइसोलेशन में नहीं रखते हैं और ना ही उस उतनी प्रकार की डिफॉर्मिटी होती है। अगर प्रारंभिक अवस्था में कुष्ठ रोग का पता लग जाए तो मतलब पूरी तरह से वो ठीक हो जाता है, 100% मतलब उसका इलाज है, तो उसमें बिल्कुल भी डरने की बात नहीं होती है। और भी कई कारण होते हैं, कुछ फंगस भी ऐसे होते हैं जो त्वचा के कलर को डल करते हैं, वो विटिलिगो से मिमिक कर सकते हैं, उससे मिलते जुलते हो सकते हैं। एल्बिनिज्म तो चूंकि जनरलाइज होता है पूरे शरीर में, इसलिए उसमें भ्रम होने की स्थिति नहीं होती। और बच्चों में भी कुछ ऐसे होते हैं जो पेट के कीड़े के कारण भी कलर उनके चेहरे पे सफेद आ जाते हैं, जिसको पिट्रेसिस एल्वा कहते हैं और वन रफ कहते हैं, वो भी थोड़ा सा उसका हाइपोपिगमेंटेशन होता है, वो भी पिट्रेसिस वर्सिकोलर होता है। तो ये सब अगर हम इस प्रकार के किसी भी उससे हमारे अंदर ऐसा कोई चिन्ह या बीमारी मिलती है तो हम संबंधित चिकित्सक या शासकीय अस्पताल में संपर्क करके अपना भ्रम की जगह निदान कर सकते हैं। भ्रम होने से आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी होगी, दूसरी बीमारियां भी होंगी, तो उसके लिए आजकल इतनी चिकित्सा सेवाएं बढ़ गई हैं तो आप कहीं भी आप संपर्क करके ले सकते हैं।
0: जी, ये बड़ी अच्छी बात आपने जानकारी दी हमारे श्रोताओं को कि पहली बात तो ये कि जो अल्बिनिज्म है उसका कुष्ठ रोग से कोई संबंध नहीं है,
1: बिल्कुल भी
0: और नहीं। दूसरा, कुष्ठ रोग भी अपने आप में कोई ऐसी भयावह बीमारी नहीं है जिससे डरने की आवश्यकता है। जी, तो अब इस नोट पर डॉक्टर साहब एक अच्छे गीत की मैं आपसे मांग कर रही हूँ जो हम श्रोताओं को सुनवा सकें, अपनी पसंद का कोई गीत बताएं।
1: सांसों की माला।
0: जी, बड़ा सुंदर ये गीत है, तो ये विशेष गीत हम सुनवा रहे हैं अपने श्रोताओं को।

0: गीत के बाद स्वागत है आपका फिर से हमारे कार्यक्रम में। आप डॉक्टर साहब हमें बताइए कि अल्बिनिज्म जो डिजीज है किसी को, उसमें ऐसा है क्या कि स्किन कैंसर की संभावना उनमें अधिक होगी जो लोगों को ये कंडीशन है?
1: ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो एल्बिनिज्म के मरीज होते हैं उसमें सर्वाधिक संभावना होती है, चूँकि सीवियर फोटो डैमेज ऐसे ही मरीजों में होता है जिनमें मेलानिन नहीं होता है। तो स्किन कैंसर की सावधानी के लिए बहुत ज़रूरी है जो पूर्व में उसके लिए बताया गया। इसका डेफिनेटिव क्योर तो कुछ है नहीं। जो स्ट्रिक्ट सन प्रोटेक्शन, फोटो प्रोटेक्शन, उसमें सबसे पहले आता है क्लोथिंग, दूसरा छाते का प्रयोग नियमित करना, और सन अवॉइडेंस, ज़्यादा से ज़्यादा धूप वाले काम सुबह कर लेना या शाम को करना, और इस सनस्क्रीन प्रति तीन तीन घंटे, ढाई ढाई तीन तीन घंटे में एक अच्छी सनस्क्रीन जो आपका डर्मेटोलॉजिस्ट एडवाइस करे उसको तीन से चार बार लगाना, और अच्छा सनग्लासेस और कैप ये लगाने से आप जीवन भर और जो सावधानियां बताएं तो आप स्किन कैंसर से बच सकते हैं। इसमें डरने की ज़रूरत नहीं। सब बहुत प्रोन होते हैं ऐसे मरीज, ये बिल्कुल ठीक बात है। बट इसका बचाव अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल में, जीवन पद्धति में कुछ चीज़ें टिप्स शामिल कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी पीना, हर एक घंटे में आधे गिलास पानी लेना, और अच्छा पोषण युक्त आहार लेना, हरी सब्जियां लेना, फल लेना, फल भी जो वाटर रिजर्वायर्स हैं, जैसे गर्मियों में जो होते हैं तरबूज और खरबूजा, नारियल, इस प्रकार के, इन सब चीज़ों के प्रयोग से जो समेकित रूप से अगर इन सब का संयोजन अपने जीवन पद्धति में करेंगे तो निश्चित रूप से स्किन कैंसर को बिल्कुल भी टाला जा सकता है। इसमें हमको डरने की जरूरत नहीं है।
0: ये अभी हम जून की गर्मी में ये रिकॉर्ड कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो आप अगर सन अवॉइडेंस कह रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि नहीं निकलना है, लेकिन आप सोचिए जब सर्दियाँ होती हैं तो जिनको ये कंडीशन है वो धूप नहीं ले सकते, सन बास्किंग या जो हमारा रिचुअल है?
1: बिल्कुल, इसके लिए ये है कि सुबह की उनको धूप लेनी पड़ेगी। उसमें जो अल्ट्रावायलेट्स का रेशो होता है बहुत कम होता है, और वो हमारे फोटो डैमेज को ट्रिगर नहीं करता है। तो उसके लिए ज़रूरी है सुबह 7-8 बजे से आप 9-9:30 बजे तक की धूप ले सकते हैं सनबाथ के रूम में। बाद बाकी यो 9-11 से 2 की है, ये सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होता है इसमें, वो हमको अवॉइड करना चाहिए।
0: अच्छा, अगर सन जैसे कि सेक रहे हैं धूप और स्किन को कवर कर लिया है मान लीजिए कॉटन से या किसी, उसे फिर चीज़ें नियंत्रित,
1: फिर उसका प्रभाव कम हो जाता है, पर फिर भी 11 से 2 रिकमेंडेड नहीं है
0: सर्दियों में भी,
1: 10 से पहले।
0: ये अच्छी बात आपने बताई और बहुत सारी भ्रम इससे दूर हो गए होंगे।
1: इसीलिए UN ने जो इसकी थीम दी ना, प्राउडली इन माई स्किन सेलिब्रेटिंग ऑल स्किन टोन, मतलब जिस प्रकार की भी किसी की काली त्वचा है, किसी की सफ़ेद है, इसका गर्व का भान हो और उसकी देख रेख करें, उसी के तहत सारी जो सन प्रोटेक्शन के तरीके अपने नियमित लाइफ में अपनाएं तो इस सब से बचा जा सकता है।
0: जी, मतलब डर के माहौल में रहने की ज़रूरत नहीं है,
1: बिल्कुल भी डरने,
0: थोड़ा सा आप अपने तरीकों को बदल के आप भी हर वो काम कर सकते हैं जो कोई भी सामान्य व्यक्ति करता है।
1: बिल्कुल, अगर अपने जीवन पद्धति में अपन ये सारी 5-7 टिप्स अगर कंसिस्टेंसी के साथ अपने उसमें शामिल कर लेते हैं तो उसमें फिर हमको कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं।
0: जो भी आपकी आइडेंटिटी है उसको सकारात्मक रूप से आप स्वीकार करिए। जी,
1: बहुत अच्छा।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, अगला सवाल मैं इस रोग से संबंधित ये पूछूंगी कि अनुवांशिक ये रोग है तो हर जनरेशन में तो शायद ये नहीं होता, तो कोई पैटर्न है जिसके तहत ये आता है व्यक्ति में?
1: देखिए, ये काफ़ी जटिल है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगली पीढ़ी में हो। इसके लिए काफ़ी जीन मैपिंग और वो बड़े सेंटर्स पर होती है, तो पहले ये भी नहीं मानना चाहिए कि मतलब हमारे यहाँ है तो कोई ज़रूरी है कि वो ऐसा होगा, तो ये भी भ्रांति से बचना चाहिए और सकारात्मक

0: किसी भी परिस्थिति में रहना चाहिए।
1: अच्छा, अल्बिनिज्म के व्यक्ति को किस प्रकार की कॉस्मेटिक या स्किन केयर प्रोडक्ट्स या स्किन, हम लोग कॉस्मेटिक्स भी
0: जी
1: आजकल हिस्सा है आपके जीवन का, तो कुछ विशेष है या उनको कोई भी वो इस्तेमाल कर सकता है?
0: नहीं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये जो त्वचा होती है इसके संतुलन के लिए बड़ी जरूरी है कि जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं उसकी पीएच क्या होती है। जो आजकल हमारे मार्केट्स में ओटीसी प्रोडक्ट्स जैसे कहते हैं, ओवर द काउंटर्स, क्योंकि समाज के सारे आयामों में अलग अलग प्रकार की गड़बड़ियाँ देखने को ही मिलती हैं नैतिकता की कमी के कारण, तो कोई आस्पेक्ट छूटा नहीं है, तो ये भी नहीं छूटा है उसे। अभी हाल ही में अपन ने कफ सायरप के साथ देखा, तो उसमें स्ट्रिक्टली जो अच्छे टेस्टेड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड ब्रांड हैं उनकी पीएच चेहरे के लिए अलग रहती है और स्काल्प के लिए अलग है बाकी के शरीर की, तो ऐसे मॉइस्चराइजर्स प्रयोग करें। इसमें जो एल्बिनिज्म बात कर रहे थे, एक महत्वपूर्ण बात छूट रही थी कि अच्छा मॉइस्चराइजर जो सेरामाइड्स 1 to 5 सेरामाइड्स से समृद्ध जो मॉइस्चराइजर्स आते हैं उनके प्रयोग से भी उसकी जो जो बैरियर कैपेसिटी है त्वचा की वो काफ़ी बढ़ती है, तो ऐसे प्रोडक्ट भी डर्मेटोलॉजी के मार्गदर्शन में अपन शुरू करने से काफ़ी त्वचा की देखरेख कर सकते हैं।
1: सबसे अच्छा है कि आप अपने जो चिकित्सक है उसी से लिखवा लीजिए
0: जी, क्या फिर उसका आगे प्रयोग कर सकते हैं
1: जी। अब हम आखिर में एक बात ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि जैसे देश में राज्यवार कोई इसका डेटा उपलब्ध है, किन राज्यों में जैसे अधिक पाया गया है, ऐसा कोई पैटर्न है?
0: इसका अलग से पैटर्न तो नहीं है, पर साउथ के कोस्टल एरियाज में कुछ केसेस ज्यादा देखने को, जहाँ गर्मी वाले क्षेत्रों में ज्यादा मिलते हैं, पर इसका अभी डेफिनेटली बहुत ज्यादा डेटा उपलब्ध नहीं है।
1: क्या कोई सरकारी सुविधा उपलब्ध है?
0: हाँ, बड़े सेंटर्स पे उपलब्ध भी है, उनकी अलग एल्बिनिज्म क्लिनिक भी होती है बड़े हॉस्पिटल्स में कई जगह, और दूसरा सेक्स रेशो लगभग इक्वल है दोनों में,
1: तो ये बीमारी कम से कम जेंडर बायस्ड नहीं है।
0: नहीं,
1: जी चलिए यहाँ पे एक आखिरी गीत की गुंजाइश है, अब ये समय है, लेकिन उसके पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को चलते हुए एल्बिनिज्म से संबंधित कुछ अगर संदेश देना चाहें तो दे दें।
0: देखिए, एल्बिनिज्म से बिल्कुल डरे नहीं, अब जो नियति ने तय किया अगर आ गया है तो जो बचाव हैं वो उनको अपनाएं, जीवन में शामिल करें और समाज में उनको बराबर की सहभागिता भागीदारी दें। ये बाकी के समाज की जिम्मेदारी है कि वो हमारी ही तरह दूसरे सामान्य लोग हैं, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव भी नहीं हो। इसी प्रकार का UN का भी कंसेंसस है और सरकार का और सभी बुद्धिजीवी लोगों का भी इसी प्रकार का है, तो उनसे भेदभाव नहीं होना चाहिए, यही संदेश है।
1: और अब आपका गीत,
0: जब कोई बात बिगड़ जाए।
1: क्या बात है, आपने तो बात खत्म करते हुए ये सबसे उपयुक्त नोट है।

0: डॉक्टर भदौरिया हमारे स्टूडियो में आए, अर्बनिज्म से संबंधित इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे समाज में जो श्रोता हमें सुन रहे हैं अवश्य उनमें जागरूकता फैलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: नमस्कार, धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे सेहत की बात तरानों के साथ। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म दिवस पर ये विशेष बातचीत त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमल भदौरिया से बात कर रही थी डॉक्टर विभूति सिंह। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। सबसे पहले सुनते हैं फिल्म एक फूल दो माली का ये गीत, जिसे गाया है आशा भोसले और साथियों ने। श्रोता साथियों, ये गीत लिखा है प्रेम धवन ने, जिनका आज जन्मदिवस है। आइए प्रेम धवन को याद करते हैं और सुनते हैं रवि के संगीत निर्देशन में ये गीत।

0: लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में एनडीए सरकार युवा नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहित कर रही है। एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत के युवा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, विनिर्माण, सेमीकंडक्टर और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। देश के युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा

0: मोदी कल फ्रांस के नीस में राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। 19वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 सोमवार से शुरू होगा। 1 सप्ताह तक चलने वाले इस उत्सव के दौरान मुंबई के NFDC कॉम्प्लेक्स स्थित ऊषा प्रवीण गांधी कॉलेज हॉल में वृत्तचित्र, लघु फिल्में और एनिमेशन सिनेमा का प्रदर्शन होगा और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच कल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरा मैच इस महीने की 17 तारीख को लखनऊ में और तीसरा तथा अंतिम मैच 20 तारीख को चेन्नई में होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण, थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे।
2: श्रोताओं नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में। मैं हूं आज आपके साथ आकांक्षा, तो आज दिल की बात जरा खुलकर होगी मेरे साथ। श्रोताओं हम पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में निकाल देते हैं, कभी मम्मी पापा की उम्मीदें, कभी बॉस की डांट को संभालना, तो कभी अपने जीवन साथी या दोस्तों के चेहरे पर मुस्कान लाना। पर इन सब के बीच एक इंसान कहीं पीछे छूट जाता है, जानते हैं वो कौन है? वो हैं हम खुद। अक्सर जब हम अपने लिए वक्त निकालते हैं या खुशी की बात करते हैं तो अंदर से एक आवाज़ आती है, कहीं मैं सेल्फिश तो नहीं हो रही? तो आज हमारे इस फोन इन प्रोग्राम का सीधा सा सवाल ये है कि क्या आप अपने आप को खुश रखते हैं? क्या आपका खुश रहना जरूरी है? क्या आप भी अपनी खुशियों को दूसरों के चक्कर में पोस्टपोन करते आए हैं? तो उठाइए फोन और लगाइए नंबर। हमारा फोन नंबर है 2660902 और भोपाल का STD कोड है 0755। तो आपके कॉल्स का हमें है इंतजार। हेलो नमस्कार।
3: हाँ नमस्कार, फोन करे गीत सुने?
2: जी नहीं, आज है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
3: जी नमस्ते
2: जी, तो अपना परिचय दीजिए, कौन बोल रहे हैं आप?
3: हाँ जी, मैं ग्राम कन्या विकासन बिरसा जिला बालाघाट मध्य प्रदेश से ध्रुवाराम साहू बात कर रहा हूँ।
2: साहू जी नमस्ते, कैसे हैं आप?
3: बहुत अच्छे हैं, बस खेती किसानी काम कर रहे थे।
2: अच्छा,
3: सोचे आज कार्यक्रम में कॉल कर लिया जाए करके, लग भी गया कॉल।
2: साहू जी आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कितना जरूरी है अपने आप को खुश रखना, तो आप बताइए आप अपने आप को खुश रखते हैं?
3: बिल्कुल, रखने के लिए सबसे ज्यादा तो ये है कि जितनी हमारी जो इच्छा है ज्यादा ये नहीं करते अपन, ज्यादा इच्छा नहीं रखते, क्योंकि इच्छा दुख का कारण होता है और जितना हो सके व्यस्त रखने का प्रयास करते हैं
2: जी।
3: और क्या है, खाली पीली रहोगे तो क्या तनाव उत्पन्न होता है
2: जी।
3: तो खुश करने के लिए क्या है, जो प्राकृतिक दिनचर्या है
2: जी,
3: उसके हिसाब से जीने का प्रयास करते हैं। जैसे सुबह प्रातः काल उठ जाना, अपने जो दैनिक काम है उसमें लगना, बस और सब सबके साथ मिलजुल कर रहना, यही है अपना खुश रहने का मूल मंत्र।
2: वो तो बहुत सही बात कही आपने, लेकिन आपने कहा कि आप ज्यादा इच्छाएं नहीं रखते हैं, ऐसा क्यों? जब तक हम इच्छा नहीं,
3: मैडम जी कभी कभी क्या है, इच्छा रखोगे और इच्छा पूरा ना हो
2: जी
3: तो दुख होता है, और जब दुख होता है गुस्सा आता है तो गुस्सा आने के लिए हम दूसरे गलती करते हैं तो सजा अपने आप को देते हैं, और दुख का कारण यही होता है।
2: हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर इच्छा पूरी नहीं होती है तो दुख तकलीफ तो होती है, लेकिन इच्छाएं रखेंगे तभी तो हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे।
3: बिल्कुल बिल्कुल, इच्छा तो जरूरी है, और इच्छा ऐसा है कभी पूरी होने वाला ही नहीं है।
2: नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अब देखिए सुनिए ना,
3: अनंत होती है होने के लिए, एक इच्छा जिसकी पूरी होती है दूसरी इच्छा अपने आप जन्म ले लेती है।
2: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहाँ बात हो रही है अपने आप को खुश रखने की इच्छा की। हाँ, कि अब कई बार हम जैसे अपनी पसंद की फिल्म देखने के लिए मान लीजिए बैठ जाते हैं, और बस थोड़ी देर चुपचाप बैठना है, चाय पीना है, और खुशी तो हमें मिलती है ना कि हाँ हम अपने पसंद का

0: काम कर रहे हैं, सारी चिंताओं से दूर होके हम अपनी पसंद का काम करेंगे तो हम तो खुश होंगे, है ना। तो इसीलिए ये भी तो हमारी एक इच्छा है। मान लीजिए आज आप सोच रहे हैं आज मुझे मूवी देखना है, लेकिन आपके पास समय ही नहीं है, लेकिन आप वो सोचा तो आपने, इच्छा तो की कि मुझे देखना है, तो एक ना एक दिन आप अपने लिए समय निकाल लेंगे, है ना। तो देखिए छोटी छोटी सी खुशियां
1: बहुत जरूरी है जी, खुश रखने के लिए क्या है, भाग दौड़ के साथ साथ कुछ छोटी मोटी जो खुशियां हैं
0: बिल्कुल
1: उसको अपने आसपास सहज कर ही रखना चाहिए
0: जी। तक आप
1: कमाने के लिए इतने भागते हैं
0: जी,
1: और धन धन कहते हुए इंसान कब निधन हो जाता है पता ही नहीं चलता है
0: जी,
1: इसलिए छोटी छोटी खुश,
0: देखिए छोटी छोटी खुशियां ही बहुत बड़ी खुशियों का मूल आधार होती हैं, है ना। आप अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों से खुश होंगे, अपने परिवार के साथ समय जब हम बिताते हैं वो भी एक बहुत बड़ी खुशी होती है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना। जीवन साथी को, बच्चों को जब हम उनके साथ बैठते हैं बात करते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, उनको देख के हमें भी बहुत खुशी होती है।
1: हाँ सही बात है, उनकी खुशी में हमारी खुशी होती
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल,
1: और खुशी तो क्या है, मिलजुल के बांटने का ही काम है।
0: बिल्कुल, तो जब आप खुश रहेंगे तभी तो आप खुशियाँ बांटेंगे, आप
1: हाँ,
0: तकलीफ
1: बिल्कुल
0: में
1: बिल्कुल
0: होंगे तो
1: बिल्कुल
0: आप किसी को खुशी नहीं दे पाएंगे,
1: सही बात, सही बात है,
0: है ना। तो इसीलिए जीवन मिला है, सुख दुख लगा रहता है साहू जी, लेकिन
1: बिल्कुल
0: उसमें
1: बिल्कुल
0: ही कुछ समय हमें अपने लिए निकालना है, अपनी खुशी के लिए निकालना है, जिसमें आपको सुकून मिले, आप खुश रहें, ऐसा काम भी कीजिएगा
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है,
0: जी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
1: धन्यवाद धन्यवाद।

0: जी नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है। किनसे हमारी बात हो रही है, अपना परिचय दीजिए।
1: राम नरेश बोल रहा हूँ मैं, कटारिया खेड़ी जिला राजगढ़ से।
0: नरेश जी,
1: जी
0: कैसे हैं आप?
1: हम ठीक हैं।
0: ठीक है, आज कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि कितना ज़रूरी है अपने आप को खुश रखना। और क्या आप अपने आप को खुश रखते हैं?
1: खुश रखने की कोशिश तो हर एक मनुष्य करता है
0: जी।
1: वह प्रसन्न रहे, और प्रसन्नता तभी आएगी यदि वो स्वास्थ्य उसका ठीक है,
0: बिल्कुल,
1: या धन की दृष्टि से वो सक्षम है, या फिर अपने काम से वो प्रसन्न है जो काम वो करता है, चाहे भले वो कृषि का करता हो या कोई भी किसी प्रशासनिक सेवा में काम करता हो, अगर उन सब क्षेत्रों से वो खुश है तो खुश है, प्रसन्न है। और खुश रखने के लिए बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, बहुत सारे लोग अपनी पसंद का खाना खाते हैं
0: जी,
1: बहुत सारे लोग किसी की सेवा करने में प्रसन्नता रखते हैं
0: जी,
1: बहुत सारे लोग जो है ऊपर जाते हैं, घूमने जाते हैं, बहुत सारे हिल स्टेशन पे जाते हैं, पर्यटक स्थल होते हैं वहाँ जाते हैं ताकि उन्हें खुशी मिले, वह प्रसन्न हो
0: जी,
1: या दूसरे की सहायता करने में वो अपना प्रसन्नता खुशी देखते हैं, प्रसन्नता देखते हैं।
0: आप किस में खुशी देखते हैं अपनी? आपको किस बात से खुशी होती है, किस काम से खुशी होती है? अपने आप को खुश रखने के लिए आप क्या करते हैं?
1: हम अपने आप को खुश रखने के लिए थोड़ा म्यूजिक सुन लेते हैं।
0: बहुत बढ़िया।
1: संगीत सुन लेते हैं
0: जी।
1: हमारे जो विद्वान हैं जो, और जो वो ये कहते हैं कि म्यूजिक थेरेपी,
0: बिल्कुल है ही, म्यूजिक बहुत अच्छी थेरेपी है आपको मानसिक शांति पहुंचाने के लिए, सुकून मिलता है उसको जब हम सुनते हैं। तो
1: ये संगीत है, जैसे बहुत सारे लोग जैसे काम का बोझ होता है इनके ऊपर, तो वो क्या करते हैं कि अपनी पसंद का कोई सीरियल देखते हैं
0: जी,
1: या कोई फिल्म देखते हैं
0: जी,
1: या फिर कोई गीत सुनते हैं अपनी पसंद के सिंगर का
0: जी। देखिए, खुश रहने का सबसे बड़ा फायदा तो हमारा यही है कि जब हम खुश रहते हैं तो हम तनाव फ्री हो जाते हैं
1: जी,
0: है ना, इससे हमें शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ हो जाते हैं हम।
1: हाँ, स्वस्थ हो जाते हैं। और कई बार वो कहते हैं ना कि एक चीज से हम, जैसे कोई भी किसी भी चीज पर हम काम कर रहे हैं या किसी चीज की चिंता है
0: जी,
1: उससे थोड़ा विराम ले लिया जाए
0: जी,
1: थोड़ा हमें थोड़ा रेस्ट ले लिया जाए और फिर से नई एनर्जी के साथ में
0: जी,
1: और फिर उस चीज को और बारीकी से देखा जाए
0: जी,
1: तो हम कुछ ना कुछ उसका समाधान निकाल सकते हैं, निकाला जा सकता है। क्योंकि जब लगातार हमारे दिमाग पर जोर पड़ता है किसी काम का, वो थोड़ा बुद्धि जो है काम करना थोड़ा कम कर देती है, तो हमें खुश होने के लिए, दोबारा से रिफ्रेश होने के लिए हमें एनर्जी आ जाए ताकि हम उस चीज को बड़े आराम से उस चीज को देखकर करें।
0: और ये छोटी छोटी सी चीजें ही, हमारी हॉबी, म्यूजिक या वॉक करना भी, ये हमें तुरंत खुशी दे देते हैं।
1: या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारा कोई परिजन है
0: जी,
1: या हमारी कोई बहन है, बेटी है, मित्र है, दोस्त है, हम उससे बातचीत करने से प्रसन्नता महसूस करते हैं, तो 2 मिनट उनसे बातें करें
0: जी। आपको बात बताना बोलना चाहूंगी नरेश जी कि जब जी, जैसे अभी आपने परिवार या कोई साथी की बात की कि उनसे हम बात कर सकते हैं, तो इससे हमारे रिश्तों में भी मजबूती बनती है
1: जी,
0: है ना। कोई भी हमारे परिवार का सदस्य, अगर हम उसे खुलकर बात करते हैं तो हमारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं, हमें खुशी तो मिलती ही है। तो एक पंथ दो काज वाली ये बात हो जाती है।
1: लेकिन आज के जमाने में, जिस आधुनिक युग में
0: जी,
1: लोग इस तरह का काम बहुत ही कम कर पाते हैं, तो काम में इतनी व्यस्तता होती है, या फिर कई बार फोन लगाना या संपर्क करना अपने दूर के रिश्तेदारों से, तो वो कोई काम होता है तभी इस चीज के लिए संपर्क किया जाता है, ये देखा गया है
0: जी। ये तो व्यस्तताएं बढ़ गई है ना, तो इसके लिए क्या करना होगा कि हमें खुद भी आगे बढ़ना होगा। हमारे चाहने वाले या हमारे परिवार के सदस्य या कोई भी दोस्त है, अगर वो हमें नहीं कर पा रहा तो हमें इनिशिएटिव लेना होगा, हमें बात करनी होगी। और एक बार अगर ये सिलसिला हम चालू कर देंगे तो आप देखिएगा दोबारा उनका कॉल, उनसे बात हमारी ज़रूर होगी।
1: और एक बात आपने खुशी की बात कही, जैसे मान लीजिए कि कोई हमारा मित्र या दोस्त हमसे नाराज है
0: जी,
1: और यदि उसका पसंद का कोई हम चीज ले जा सकते हैं, चाहे मिठाई हो सकती है चाहे कुछ खाने की चीज हो सकती है, यदि वो नाराज है और वो चीज उसको दी जाए और बड़े अच्छी तरह से प्रस्तुत की जाए, हो सकता है वो उस चीज को खाकर थोड़ा नाराजगी
0: दूर हो जाएगी। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि अगर आप जानते हैं उनकी पसंद क्या है और आपने उनकी पसंद की चीज़ या कुछ भी आप मिलने ही चले गए, वो खुश हो जाएंगे और नाराजगी सारी एक तरफ।
1: हाँ, हो जाएगी, और उस बीच फिर हम सॉरी भी कह सकते
0: बिल्कुल,
1: हैं, तो सॉरी आपका काम करेगा और वो व्यक्ति आपको माफ।
0: नरेश जी, बहुत बढ़िया बात आपने ये कही है, हमारे सारे श्रोता सुन रहे होंगे तो वो जानेंगे कि देखिए हाँ, ये भी एक पहल है जो हमें अपनी तरफ से कर लेनी चाहिए, रिश्तों को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात आपने कही है नरेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने फ़ोन किया, इतनी अच्छी बात की, उसके लिए धन्यवाद।

0: के नाते आपका भी स्वागत करता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किन से हमारी बात हो रही है, हम जान सकते हैं?
0: जी बिल्कुल, मैं अपना परिचय दे दूं। मैं जय नरसिंहदेव, FM रेडियो ग्रुप, ग्राम करकबेल, तहसील गोटे गांव, जिला नरसिंहपुर से कमलेश का हार बात कर रहा हूं जी।
1: कमलेश जी, आप हमारे नियमित श्रोता हैं और बहुत अच्छे श्रोता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में।
0: थोड़ी सी हंसी मैम इसलिए आ गई मुझे, आपने बोला कि बहुत अच्छे श्रोता
1: है,
0: तो
1: है ही।
0: हो सकता है मैं हूँ
1: हो सकता है नहीं, आप हैं। आप किसी भी बात पर बहुत अच्छे से अपने विचार रखते हैं, खुलकर बात करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है।
0: मैम जी, मैं तो ये कहूँगा कि मैं ज्यादातर फोन इसी में लगाता हूँ जिसमें विचार रख सकूँ अपने।
1: तो आज विचार रखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि क्या अपने आप को खुश रखना जरूरी है, और आप अपने आप को कैसे खुश रखते हैं ये भी हमें बताइए।
0: देखिए मैम जी, दिशा बहुत अनुकूल है, सभी से मेरा अनुरोध है, और मैं भी अपने आप को खुश रखने के लिए सबसे पहले तो रेडियो सुनता हूँ, और ग्राहक बंधु जो आते हैं दुकान पर मेरी मेरी चाय नाश्ते की दुकान है, तो उनके माध्यम से खुश हो लेता हूँ। रेडियो सुनते हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं।
1: बढ़िया,
0: एक माध्यम होता है मैम जी खुश कहीं ना कहीं अपने आप को रखने का। तो मेरा आग्रह सभी से, सभी श्रोताओं से है कि अपने आप को खुश रखने के लिए कुछ ऐसा काम करते रहिए जिसमें कि आप खुश रहें और आपको देख कर दूसरे भी खुश हो जाए। जैसे एक उदाहरण दूंगा मैम जी, मैं
1: जी बताइए।
0: यदि नन्ना सा बच्चा होता है, यदि मुस्कुराता है वो दूर से, तो आपको जरूर मुस्कुराहट आएगी और आप भी हंसेंगे थोड़ा बहुत।
1: बिल्कुल, आपकी बात सुन के हमें वो चित्र दिख रहा है मुस्कुराते हुए बच्चे का, और मेरे चेहरे पे भी मुस्कुराहट ही है।
0: तो मैम जी, वो नन्हे बच्चे की अपेक्षा यदि हम सामान्य व्यक्ति जो समझदार है सचमुच में
1: जी,
0: और किसी के मुस्कुराने से हो सकता है वो नाराज हो जाए, क्यों मुस्कुरा रहा है मुझे देख करके, ऐसी बात है। तो मेरी पहलू दोनों तरफ है मैम जी, नन्हे बच्चे को देखकर आप वो मुस्कुराता है, यदि आपको नहीं भी देख रहा है तो आपको मुस्कुराहट आ जाती है, आप हंसी आ जाती है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति मुस्कुराता है जो समझदार है, यदि आपको देखकर मुस्कुराता है तो थोड़ा बहुत तो मैं एक कह सकते सवाल उठता कि मुझे देखकर ये क्यों।
1: नहीं नहीं नहीं देखिए, इसमें यही बात है ना कि सोच का फर्क पड़ता है। अगर नकारात्मक सोच होगी तो ये देखकर मुझे क्यों मुस्कुरा रहा है, लेकिन अगर पॉजिटिव सोच है या किसी ने आपको देख के मुस्कुराया तो सामने वाला भी आपको देख के मुस्कुराएगा।
0: और अंततः यह कहूंगा कि अधिकतर काम यदि हम मुस्कुरा कर करेंगे तो वो काम में भी आसानी होगी और सामने वाले का मन भी अच्छा रहेगा। तो बस यही कहेंगे, अपने आप को मुस्कुराने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए एक ऐसा वातावरण बनाइए जिससे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, जलवायु, अग्नि, आकाश सभी मुस्कुराते रहे आपको देख कर कि ये व्यक्ति आ गया, मेरा संरक्षण भी होगा और मैं इसके साथ संरक्षित भी हूँ।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही है। देखिए, खुद की देखभाल करना, खुद को खुश रखना कोई बुरी बात नहीं है। अपनी भावनाओं की इज्जत इसमें हम करते हैं। अगर हम थके होते हैं तो कभी हम आराम करते हैं, कभी कभी बेवजह ही तनाव से बचने के लिए जैसे आपने कहा हम संगीत सुनते हैं, है ना, म्यूजिक आपका रेडियो आपके साथ रहता है, चलता रहता है। हम खुश रहेंगे तो हम दूसरों को भी खुश रखेंगे।
0: जी जी, कुछ ना कुछ वजह तो हमें खोजनी चाहिए मैम जी अपने आप को खुश रखने के लिए, चाहे रेडियो हो या अन्य बात है।
1: जी, सीधा हमारी सेहत पर इसका असर पड़ता है। अगर हम तनाव में रहते हैं तो ना हम अपने आप को खुश रखते हैं, ना परिवार को खुश रख पाते हैं।
0: जी जी जी
1: जी,
0: और ज्यादातर मैं तो यही कहूंगा, यही कोशिश रहनी चाहिए कि ज्यादातर मुस्कुरा कर बात करें।
1: देखिए, अभी आपके मुस्कुराहट के साथ हंसी भी आई है, इसका मतलब आप खुश हैं। आप खुश हैं कि आपका फोन लगा, आपने हमसे बात की।
0: भले मैम जी, भले बनावटी मुस्कुराहट हो, लेकिन मुस्कुराहट होनी चाहिए ताकि आपको देख करके दूसरे भी मुस्कुराहट या खुश हो सके।
1: कमलेश जी, बनावटी मुस्कुराहट नहीं होना चाहिए, मुस्कुराइए तो दिल से मुस्कुराइए। देखिए, कहीं ना कहीं वो बनावटी मुस्कुराहट या खुशी समझ में आ जाती है कि ये देख के हमें खुश नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती ये हंस रहे हैं, खुशी दिखा रहे हैं कि मुझसे मिलके उनको अच्छा लगा।
0: आप हमें खुश रखने के लिए, सभी श्रोताओं को खुश रखने के लिए यदि थोड़ी सी मुस्कुराहट आपके माध्यम से रेडियो पर आपकी भी आ जाए तो हम लोग सचमुच में खुश हो जाएंगे, भले ना दिख रही हो लेकिन मुस्कुराहट आपकी आनी चाहिए।
1: नहीं, हमारी तो आ ही गई, आपने इतनी अच्छी बातें की हैं कि सुनने वाले सभी श्रोता अभी मुस्कुरा रहे होंगे और वो खुश होंगे। तो हमें अपने को भी खुश रखना है, दूसरों की खुशी तो मायने रखती है लेकिन हमें हमारी खुशी का भी ध्यान रखना है। आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैम जी, आपको धन्यवाद, आपकी टीम को धन्यवाद जो अप्रत्यक्ष रूप से हमारा सहयोग करते हैं और प्रसारित करते हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: मीनारी प्यार जिम लोभी के प्रिय दाम सिम रघुनाथ निरंतर रहु प्रिय लागो मुही राम। नमस्कार बहन जी।
0: नमस्ते, स्वागत है आपका।
1: जी बहन जी, आपका नाम जानना चाहूंगा।
0: मैं आकांक्षा बोल रही हूँ, और आप कौन बोल रहे हैं ये भी बता दीजिए।
1: ये मैं बोल रहा हूँ ग्राम बहेरी जिला बांदा चित्रकूट धाम के से दिनकर सिंह बात कर रहा हूँ।
0: दिनकर सिंह जी, आपने कार्यक्रम की शुरुआत बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छा लगा, हम बहुत खुश हुए
1: जी। और आपसे ये बहुत जल्दी दोबारा जो है बात होके हो रही है, तो इससे भी मुझे बहुत खुशी मिल रही है। दीदी जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपको खुशी मिल रही है।
1: आपका तरीका जो है वो सबसे कुछ हटके है दीदी जी, जो है
0: धन्यवाद।
1: मैं विषय वस्तु जानना चाहूंगा।
0: देखिए, आपने खुशी हमें दी, और आज बात भी खुशी की ही है कि कितना जरूरी है अपने आप को खुश रखना। क्या आप अपने आप को खुश रखते हैं?
1: जी बिल्कुल, जो है प्रयास तो यही करते हैं। जब कभी किसी टेंशन में होते हैं तो कहीं बाहर घूमने जाते हैं या दोस्तों के साथ निकल जाते हैं, तो अपने आप को खुश रखने के लिए पूरा प्रयास करते हैं कि किसी तरह अगर हम आउट ऑफ या रॉन्ग साइड में पहुंच गए हैं और हमारा मन दुखी है किसी कारणवश, तो उसको हम फिर पुनः पटरी पे लाने के लिए कुछ जरूर नए नए तरीके खोजते हैं और उसमें सफल भी होते हैं।
0: बहुत बढ़िया, सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप ऐसा करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है दिनकर जी कि हम अपनी व्यस्तताओं में इतने उलझ जाते हैं कि चाहते हुए भी हम समय नहीं निकाल पाते हैं। हम तनाव में रहते हैं, खुशी डिजर्व कर रहे हैं कि हाँ हमें खुश होना है, लेकिन हम अपनी खुशी का काम नहीं कर पा रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और कभी कभी दीदी जी आदमी इतनी व्यस्तता के कारण और कभी इतना टेंडम टेंशन में होता है कि उसकी नींद तक गायब हो जाती है
0: जी।
1: और उसे पाने के लिए अगर आपको एक मैं थोड़ी कहावत बताऊंगा
0: जी, बताइए
1: कि अगर अपने साथ आ जाए, अगर अपने साथ आ जाए तो दुख हो जाता है आधा, और जीवन में अगर जीवन साथी अच्छा मिल जाए तो जीवन में नहीं आती कोई बाधा।
0: वाह क्या बात है।
1: तो इस तरह से अपने यानी अपने जो मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, अगर उनके पास हम जाएंगे तो हमारे सिचुएशन बताएंगे कि घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, तो आपकी जो नींद गायब हो गई है वो पुनः आपकी नींद आ जाएगी और आपके जिंदगी में खुशियों के पल फिर आ जाएंगे।
0: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात आपने कही है।
1: वही दीदी जी, मैं ये जो अभी यंगस्टर के पास नहीं, लेकिन जो जब व्यक्ति की उम्र ज्यादा बढ़ती है तो उसको ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए और अपने समाज के लिए कुछ करना चाहता है, और जब वो कर नहीं पाता तो टेंशनाइज होता है और उसकी खुशियां गायब हो जाती हैं। इसलिए हंसना भी चाहिए और बीच में जाके कुछ सामाजिक कार्यक्रम में अपना हिस्सा भी बताना चाहिए।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये। हमारा खुश रहना जानते हैं दिनकर जी कैसा है, जैसे कि जब मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है तो वो किसी काम की नहीं होती है, उसको हमें चार्जिंग में लगाना ही पड़ता है। वैसे ही हम भी हैं कि हमारी खुशियां भी हमारा चार्जर है, जब तक हम खुद चार्ज नहीं होंगे हम दूसरों को रोशनी या खुश कैसे रख पाएंगे, रोशनी दे ही नहीं पाएंगे उन्हें।
1: बहुत खूब दीदी जी, आपकी इससे जो है जो व्यक्ति डिस्चार्ज हो गए होंगे तो जरूर डिस्चार्ज हुए होंगे, जो है जो आपने ये बात कही कि बैटरी को डिस्चार्ज के बाद रिचार्ज किया जाता है, तो वही चीज आपकी ये बात सुनकर जो जितने लोग सुनेंगे या सुन रहे होंगे वो सब जो है ये इससे रिचार्ज हो जाएंगे।
0: धन्यवाद आपका,
1: और वो ऊर्जावान भी हो जाएंगे। एक मैं अंत में एक जो है कहावत के साथ विदा लूंगा
0: जी,
1: जो ना कभी थकता है, ना कभी रुकता है, ना कभी झुकता है, वही हिंदुस्तानी कहलाता है, वही हिंदुस्तानी कहलाता है।
0: क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा दिनकर जी, और उम्मीद है कि हमारे श्रोता जो सुन रहे होंगे वो भी खुश हो रहे होंगे और अपनी खुशी का अब एक नया रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे होंगे।
1: बिल्कुल, और प्रेमदास बाबा जी आपकी और मेरी बात सुन के जो है गदगद हो गए हैं दीदी जी।
0: उनको बोलिए वो भी ऐसे ही गदगद रहें और हमेशा खुश रहें
1: जी। 80 वर्ष की उम्र में वो खुशी का उनका कोई ठिकाना नहीं, और उन्हीं के साथ आपका बजाया हुए गीत हम सुन रहे हैं। नमस्कार।
0: नमस्ते नमस्ते।

0: हेलो नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहा है, अपना परिचय दीजिए।
1: जी, मैं अनुभा बोल रही हूँ, दिल्ली से।
0: अनुभा जी, बहुत दूर से आपने हमें कॉल लगाया है।
1: जी हाँ, एक्चुअली मैं सुनती रहती हूँ हमेशा भोपाल आकाशवाणी से आपका प्रोग्राम, मुझे बहुत अच्छा लगता है
0: जी,
1: सुनना।
0: बहुत अच्छा लगा आपकी ये बात सुनकर कि आप उतने दूर से सुनती रहती हैं। अच्छा, आज हमारा विषय है कार्यक्रम में कि क्या आप अपने आप को खुश रखती हैं। आप अपने आप को खुश रखना कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है?
1: खुश रहना एक्चुअली में जीवन के लिए तो बहुत जरूरी है। हम खुश रहते हैं तो हमारा मन और तन दोनों स्वस्थ रहते हैं। और सबसे जरूरी बात मैं ये सोचती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली में सारे सदस्य आपसे खुश रहें, तो सबसे पहले आपको खुद खुश होना होगा, तभी आप दूसरों को खुश रख पाएंगे।
0: ये
1: तो
0: बहुत
1: खुश
0: बड़ी बात
1: होने के
0: आपने
1: लिए,
0: कही है।
1: हाँ जी, तो खुश होने के लिए किसी बड़े कारण का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि छोटी छोटी चीजों में ही खुशी ढूंढ लेनी चाहिए। एक अच्छे और सफल जीवन की कुंजी मेरे हिसाब से तो खुश रहना ही है।
0: जी, अच्छा एक बात आपसे पूछना चाहूंगी। आपको क्या लगता है कि जब आप देखिए, टेंशन हर किसी के जीवन में आती है, थोड़ी बहुत आती ही है, तो अगर आप बहुत तनाव में होती हैं, तब आप अपने आप को क्या वो खुशी दे पाती हैं जो आप डिजर्व करती हैं?
1: एक्चुअली समस्याएं हर किसी के जीवन में आती हैं और ये उतार चढ़ाव तो चलता रहता है। मैं उस समय में बस एक चीज ये याद रखती हूँ कि जैसे अच्छा समय जल्दी गुजर जाता है, हमें पता नहीं चलता, ऐसे ये तनाव, ये बुरा समय भी जल्दी गुजर जाएगा। तो हमें उसका इतना ज्यादा टेंशन ना लेके उन समस्याओं को सुलझाने की तरफ, उस दिशा में काम करना चाहिए, अपने दिमाग को स्थिर रख के, सकारात्मक सोच के साथ।
0: बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात आपने कही है अनुभा जी। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको तुरंत खुशी देती है? कुछ ऐसा है जिसके लिए आप वक्त निकाल पाती हैं?
1: मुझे मेरे दोस्तों से बात करना बहुत पसंद है और जब भी थोड़ा सा भी टेंशन या कुछ ऐसा है, या जैसे ही समय मिला वैसे ही मैं उनसे बात कर लेती हूँ, तो चेहरे पे मुस्कान आ जाती है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपकी मुस्कान देख के आपके दोस्त भी खुश हो जाते होंगे कि हाँ, आज मेरी दोस्त का फोन आ गया, उससे बात हो गई।
1: हाँ,
0: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा अनुभा जी। ऐसे ही सुनते रहिए और बने रहिए आकाशवाणी भोपाल के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहा है, अपना परिचय दीजिए।
1: हेलो, मैं रूपा बोल रही हूँ, मैं भोपाल से बोल रही हूँ। और ये आपका प्रोग्राम इतना अच्छा है कि हम अपनी भावनाएं इसमें व्यक्त कर सकते हैं।
0: आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रूपा जी। रूपा जी, आप अपने आप को खुश रखने के लिए क्या करती हैं? आज का हमारा विषय यही है कि कितना ज़रूरी है अपने आप को खुश रखना, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी?
1: जी जी बिल्कुल, ये विषय बहुत ही अच्छा है। खुद को खुश रखना मतलब सबको खुश रखना। मैं अपने को खुश रखने के लिए मैं पेंटिंग करती हूँ, गाने सुनती हूँ, और गाने से जो भावनाएं आती है और आपके रेडियो के माध्यम से जो गाने सुनने को मिलते हैं, दिल वैसे ही खुश हो जाता है।
0: वाह क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। आप रेडियो भी सुनती हैं, अपने शौक को भी पूरा करती हैं।
1: जितना खुश आप रहेंगे उतना ही आप सबको खुश रख पाएंगे। पहले तो अपने अंतर मन को खुश रखना जरूरी है। तो यही इच्छा हमारी है और सबकी वही होनी चाहिए कि अपने को पहले खुश करें, दूसरों को खुश करने से पहले।
0: जी देखिए, इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे जब हम एरोप्लेन में सफ़र करते हैं तो उसमें एक सेफ्टी अनाउंसमेंट आती है कि जब फ़्लाइट में इमरजेंसी होती है तो पहले आप हमेशा अपने आप को ऑक्सीजन मास्क पहनाएं, उसके बाद दूसरों की मदद करें।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल,
0: ज़िंदगी के लिए भी यही नियम लागू है कि जब तक आप खुद मानसिक रूप से स्वस्थ और मजबूत नहीं होंगे, आप किसी और को नहीं संभाल सकते।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है ये। तो मैं बोलना चाहूंगी कि अगर हमारा हंसता चेहरा कोई अगला भी देखता है, अपना हो, पराया हो, कोई भी हो, वो खुद भी मुस्कुराता है।
0: जी
1: बस यही भावनाओं से सबके दिलों में हम खुशी भर सके, यही जिंदगी का मूल है।
0: थैंक यू रूपा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है ये। और आपकी आवाज़ और आपकी बात सुन के लगता है कि आप भी ऐसी ही हसमुख इंसान हैं, तभी आपका चेहरा देख के लोग भी खुश हो जाते होंगे।
1: बिल्कुल, यही मेरी दिली इच्छा है कि मैं हमेशा हंसती मुस्कुराती रहूं और सबको खुश करती चलूं।
0: ईश्वर आपकी इस इच्छा को हमेशा पूरा करे। खुश रहिए, मुस्कुराती रहिए और खुशियां बांटती रहिए। आपने कार्यक्रम में फोन किया, हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, आपका भी बहुत धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम, फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:58 होने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री फ्रांस के नीस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। श्री मोदी कल संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में 120 भारतीय इनोवेटर्स, 15 उच्च शिक्षण संस्थान और 500 से अधिक निवेशक शामिल होंगे। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का 5वां और आखिरी दिन है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक में आज सदस्य देशों की सहमति और सुझावों के आधार पर एक साझा दस्तावेज तैयार किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से उनके निवास पर भेंट की। केंद्रीय मंत्री श्री प्रधान दोपहर 1:30 बजे कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यक्रम में आत्मनिर्भर

महिलाओं को सम्मानित करेंगे। वहीं शाम 5 बजे वे विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में भाग लेंगे। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं और कुल 33 मैच खेले जाएंगे। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत कल

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12 बजने को हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म नदिया के पार का एक गीत। आवाजें हैं जसपाल सिंह और हेमलता चंद्रानी मुखर्जी और साथियों की। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है महादेव घाट अमलेश्वर से। लिखने वाले हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने को पसंद किया है गौतम नगर जिला नांदेड़ से। लिखने वाले हैं प्रभाकर जोंदले और आरती जोंदले। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है लिखने वाले हैं दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। सुनिए ये गीत।

अगले गाने को पसंद किया है शिवलोक ग्रीन, खजूरी कला से लिखने वाले हैं तुलसी राम पाटंकर घनश्याम जाट, त्रिवेणी प्रसाद, निखिल वर्मा, मुकेश सोनी, राहुल निकुंभ, परमिंदर तिवारी, खालिद खान, राजेश पंडित, विष्णु पांडे, रमेश स्वरूप और राजा। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है औरंगाबाद से लिखने वाले हैं राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। इन्होंने गाना पसंद किया है फिल्म हम का। आवाज़ें हैं शोभा जोशी और मोहम्मद अजीज़ की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म शरीफ बदमाश से, आवाज़ किशोर कुमार और साथियों की है, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, आर टी बर्मन का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है हिनोतिया जागीर से, लिखने वाले हैं रामदास बेलदार, रोहित मैकानिक और राहुल ठाकुर, साथ में इस गाने को पसंद किया है अंशु छोटे उस्ताद ने, और गुड्डा यादव और राजेंद्र ठाकुर, इन्होंने ये फरमाइश भेजी है हिनोतिया जागीर भोपाल से, लिखने वाले हैं। अगला पत्र जो है हमारे पास में ये है, इसी गाने के लिए जो फरमाइश आई है, लिखने वाले हैं राजा रामनगर देव देवास से, राजू अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन, रूपा खड़ी देवास से, हरिराम माली, विष्णु माली, कपिल निरंजन माली, और ज़िला उज्जैन से गोपाल बागवान, गोविंद सालिग्राम और दशरथ बागवान और लोकेंद्र वर्मा ने इस गाने के लिए फरमाइश भेजी है। सुनिए ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म समाधि से, आवाज़ें लता मंगेशकर और साथियों की हैं। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है, आर डी बर्मन का संगीत है और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से लिखने वाले हैं द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमिन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और उनके परिवार के दूसरे सदस्य इसी गाने को पसंद किया है। नेपाल पैलेस सागर से लिखने वाले हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन।

आखिर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कालिया का एक गीत, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और साथियों की हैं। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है और संगीत है आर डी बर्मन का। इस गाने को पसंद किया है उपाध्याय नगर देवास से लिखने वाले हैं मुरारी लाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। सुपरमार्केट देवास से लिखने वाले हैं प्रकाश चंद जसवानी, पंकज जसवानी, सनी जसवानी और मोहसिनपुरा देवास से जमील खान, इमरान खान, फुरखान और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने को पसंद किया है लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। सुनते हैं।

इसी गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:25 हुए हैं। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:30 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक जंग लगी तलवार की 8वीं कड़ी।
1: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना, शिबू अपनी बीमारी से तंग आकर भगवान से मरने की कामना करता है। नारायणी उसको ऐसा सोचने से मना करती है। अपने भूखे बच्चे को नारायणी पानी पिलाकर चुप कराने की कोशिश करती है। यशवंत आकर नारायणी से 2 दिन बाद हड़ताल शुरू होने की बात बताता है। शंभू एक खाली डिब्बा लेकर मजदूरों से उसमें पैसे डालने के लिए कहता है ताकि हड़ताल के समय भूखे बच्चों के खाने का इंतजाम किया जा सके। मजदूर शंभू का मजाक उड़ाते हैं। हड़ताल शुरू हो जाती है। बलबीर स्वामी यशवंत से और ज्यादा चंदा इकट्ठा करने के लिए कहता है। हड़ताल को 1 हफ्ता बीत जाता है। लिचू और शिबू हड़ताल की भयावहता पर चर्चा करते हैं। नारायणी को ठाकुर साहब के घर कपड़े धोने का काम मिल जाता है। वो ठाकुर साहब से बच्चे के दूध के लिए 5 रुपए मांग के लाती है। शिबू और लिचू इन रुपयों से नशा करने के लिए खलासी लंगर की ओर चल पड़ते हैं। अब आगे

0: अरे लीचू, अरे जल्दी जल्दी चलना।
1: अरे
0: देख लीचू, हमारे लौटने से पहले बच्चा जाग गया तो रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा उसका।
1: अरे भाई शिबू, अरे मैं ठहरा एक पैर का अपंग, भला इससे तीस कैसे चल सकता हूँ?
0: अरे कोशिश तो करना।
1: अरे शिबू, अपनी ताकत भर तो चल रहा हूँ।
0: अरे वो सामने देख, वो बल्लियों के पुल के पास कंपनी का अकाउंटेंट खड़ा है।
1: ये साहब तो सबसे अलग ही दिखते हैं, दूर से ही पहचान लो। माथे पर चंदन का तिलक, चोटी में फूल, सफेद चमकती हुई धोती और पैरों में कैनवस का जूता।
2: क्यों रे लीचू शिबू, ये जोड़ी कहाँ जा रही है?
1: कहीं नहीं साहब, कहीं नहीं, बस ऐसे ही टहल रहे हैं।
2: टहलने जा रहे हो?
0: हाँ जी, टहलने ही तो जा रहे हैं।
1: अरे शिबू,
2: या पीने जा रहे हो?
0: जी वो
2: क्यों रे लीचू, तू अभी भी पीने पिलाने से बाज नहीं आता?
1: अरे नहीं साहब।
2: अरे शराब की वजह से ही तू अपंग हुआ है, जानता है? अब इस बीमार को जिंदा मारेगा क्या? तुम्हारे पतन का कारण है ये शराब, समझते क्यों नहीं? जाओ जाओ, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम खुद जहर पीना चाहते हो ना, पियो, मरो।
3: अरे भाई, मेरे पास शराब की कमी नहीं है, पर क्या तेरे पास पैसे हैं?
1: इधर देख, मेरी मुट्ठी में देख, रुपया है हमारे पास। बस जल्दी से ट्यूब की टोटी खोल दे और हम पी ले।
3: ठीक है, अच्छी बात है, ले खोल दी टोटी।
0: अरे लीजू भैया, अरे मजा आ गया लीजू भैया। अरे बहुत दिनों बाद पीने को मिली, वाह वाह वाह वाह, मजा आ गया।
4: तू तो बस यूं ही है, दो घूंट में ही टह भूल गया।
0: नहीं नहीं देख, मेरे तो होश ही ठीक।

0: गाने पर नहीं है। देख पास देख किसी तरह घर पहुंच जाऊं तो समझ लियो कि मैं तो भैया गंगा नहा लिया।
1: चिंता मत कर शिवू, चिंता मत कर, चल
0: चल चल भैया चल चल।
1: शिवू शिवू इस खटिया पर लेट जा, अरे थोड़ी देर के लिए सो जा, आराम आज। अरे ये क्या, इसे तो बिल्कुल होश नहीं रहा, अरे बेसुध होकर खटिया पर गिर पड़ा। शिवू शिवू शिवू
2: देखो तो, अरे आज बीमार आदमी को क्या हो गया भैया, देखो देखो।
3: अरे देख तो सही, जिंदा भी है या मर गया।
1: शिवू
3: अरे ये तो सिर्फ बेहोश है, अरे सांस भी चल रही है अभी इसकी।
4: ये मेरे घर के सामने इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है, हटो हटो, रास्ता दो मुझे।
2: नारायणी देख
4: क्या हुआ,
2: पति की क्या हालत हो गई, देख देख
4: क्या हुआ, क्या हुआ मेरे पति को। इनकी हालत तो वाकई बहुत खराब है, कोई मेरी मदद करो, बचाओ बचाओ इन्हें।
1: अरे मैंने तो हजार बार मना किया इसे, पर ये मानता ही नहीं, ये तो साइकिल की ट्यूब तक चबा जाता, ये किसी से भी नहीं डरता। नारायणी नारायणी तुझसे भी नहीं डरता ये तो।
5: क्या हुआ, ये भीड़ क्यों है यहाँ पर।
6: अरे तो शिबू पीकर बेहोश पड़ा है।
5: अरे चलो भागो तुम लोग यहाँ से, यहाँ पर तमाशा हो रहा है, चलो जाओ।
4: यशवंत बाबू देखो ना इन्हें क्या हो गया।
6: अरे कुछ नहीं हुआ है नारायणी, नशा उतरने पर ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
4: क्या बोलूं मैं, ये लिच्छू राक्षस है, इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी, मैं कहती हूँ पकड़ो इसे और मारो इसे।
6: अरे अरे चुप हो जा नारायणी, चुप हो जा, सामने से सुपरवाइजर आ रहा है।
4: ये अपंग मरता भी तो नहीं है, अरे पीनी है तो खुद पी, मेरे आदमी को क्यों पिलाता है।
1: अरे
4: राक्षस तेरे शरीर में कीड़े पड़े हैं, तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी।
1: नहीं नारायण
4: मैं कुछ नहीं सुनना चाहती।
1: नारायण मैं तो
7: सुनो, ए सुनो, इधर लिच्चू है क्या। ओ तो तू यहाँ है, मुझे मालूम था कि तू शिबू के घर ही मिलेगा। देख हड़ताल के समय भी मैंने रहम खाकर तुझे साहब की नाली साफ करने के लिए एक दिन का काम दे दिया, और तू काम पर ना आकर शराब पीने लगा है? चलो चल उठ, चल मेरे साथ।
1: चल तो रहा हूँ।
7: हाँ हाँ नाली में से कीचड़ निकालना है, चल जल्दी कर।
1: चल रहा हूँ चल रहा
0: हूँ। नारायणी
4: क्यों पीते हो शराब,
0: मुझे माफ कर दे नारायणी, मुझे माफ कर दे।
4: मुझे कम से कम इतना तो सोचा होता कि जिन रुपयों की आपने शराब पी वो बच्चे के दूध के पैसे थे। आपके लिए शराब जरूरी है या बच्चे का दूध।
0: देख नारायणी मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, माफी भी तो मांगी है मैंने।
4: माफी तो पहले भी कई बार मांग चुके हैं आप, लेकिन उससे क्या फायदा, चार दिन बाद फिर वही ढाक के तीन बात। आप मुझे ये बताइए कि खलासी लंगर गए क्यों आप।
0: वो लिच्चू है ना, वो
4: लिच्चू।
0: हाँ वो ही मुझे जबरदस्ती लेकर गया था, मैं तो नहीं जाना चाहता।
4: लिच्चू तुम्हें कुएं में छलांग लगाने के लिए कहेगा तो क्या लगा दोगे तुम, बोलो लगा दोगे,
0: बस कर,
4: बोलो जवाब दो।
0: बस कर नारायणी, बस कर नारायणी, तेरे सिर की कसम मैं सच कहता हूँ, तेरे सिर की कसम जो फिर कभी शराब पीऊँ, हाँ तेरे सिर की कसम, तेरे सिर की कसम तू मुझे माफ कर दे।
4: ठीक है मैं आपको एक मौका और देती हूँ, अगर फिर कभी देखा या सुना तो सच मुन्ना को लेकर साई नदी की गोद में समा जाऊंगी मैं।
0: क्या?

0: आखिर वही हो रहा है जिसका मुझे पहले से डर था। इस बार भी हड़ताल राजनीति की भेंट चढ़ गई। कहने को तो लोकल लीडर शास्त्री जी ने मजदूरों की हड़ताल करवा दी, मगर हड़ताल होने के बाद एक बार भी कोई गरीब मजदूरों की सुध लेने नहीं आया। अब तक तो लोगों के घरों में किसी तरह चूल्हा जलता रहा, लेकिन अब चूल्हे की आग ठंडी पड़ जाएगी। बच्चों के पेट भूख से कुल बुलाएंगे। कितना समझाया था कि अपनी आधी मजदूरी इस डिब्बे में डालो, पैसे बुरे वक्त में काम आएंगे, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी, किसी ने नहीं। अब तो भगवान ही मालिक है।
1: राम राम काका।
0: अरे जीते रहो भृगु, कैसे हो?
1: जिंदा हूं काका, लेकिन आप यहाँ क्यों बैठे हैं?
0: यहाँ बैठकर मैं रोज सामने वाले रोजगार दफ्तर को देखता हूँ। देखता हूँ कि कितने लोग यहाँ आते हैं, बेरोजगारी की भीड़ का हिस्सा बनते हैं और बिना रोजगार पाए निराश होकर वापस लौट जाते हैं।
1: काका, हड़ताली मजदूरों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है।
0: हाँ बेटा,
1: खाने को दाना तक नहीं है, जंगली लता और पत्ते तक तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं। पहनने को वस्त्र भी नहीं है, शरीर ढकने के लिए कपड़े के एक टुकड़े के लिए हाहाकार कर रहे हैं। बच्चों के पेट हड्डी से चिपके जा रहे हैं। क्या हम यही दिन देखने के लिए जिंदा हैं? बोलो काका, क्या हम यही दिन देखने के लिए जिंदा हैं?
0: अरे बेटा, अभी तो और बुरे दिन देखने पड़ेंगे। मौत का तांडव होगा यहाँ पर। हम अपने प्रियजनों की लाशों को चीलों और गिद्धों को नोच नोच कर खाते हुए देखेंगे, विवश होकर अपनी इन्हीं आंखों से देखेंगे। बेटा
1: इतना विभत्स दृश्य काका, काका कैसे रोका नहीं जा सकता? काका
0: रोका जा सकता है बेटा।
1: कैसे?
0: हड़ताल खत्म हो जाए तो लोग काम पर जाएंगे, उनके पेट को अन्न नसीब होगा, तब कहीं जाकर इस प्रलय को रोका जा सकता है।
1: पर हड़ताल खत्म करना हमारे वश में तो है नहीं काका।
0: हमारे वश में तो कुछ भी नहीं है बेटा। हम मजदूर तो यूनियन के नेताओं के हाथों की कठपुतली हैं। जैसा नचाएंगे हमें नाचना पड़ेगा।

0: अरे शिबू,
1: अरे लेचू भैया, ये यूनियन के नेता कर क्या रहे हैं? हड़ताल का तो कोई फैसला ही नहीं हो रहा है।
0: अरे यशवंत कहता है कि कुछ दिन सब्र से काम ले और उसे पूरा विश्वास है कि हम अच्छे दिन देखेंगे। अरे शिबू, हम लोग परमानेंट होंगे।
1: हम लोगों की छटाई नहीं होगी, हम लोग परमानेंट होंगे। है
0: बस शिवू भैया, उसी दिन का इंतजार है। हम परमानेंट होंगे और हमें तमाम दुखों से छुटकारा मिल जाएगा।
1: हाँ लीचू, लीचू भैया, वो तेरा लड़का जगन्नाथ दिखाई नहीं पड़ रहा।
0: अरे वो शिवू, उसे मैंने भेटा गांव भेजा है।
1: भेटा गांव?
0: हाँ।
1: मगर किस लिए?
0: वो बुआई का समय चल रहा है ना, तो शायद उसे कोई छोटा मोटा काम मिल जाए।
1: अरे लीचू, इतने छोटे से बच्चे से काम कराएगा तू?
0: अब शिबू, क्या छोटा और क्या बड़ा, अरे भूख से भला कोई जीत सका है आज तक?
1: अरे हाँ, अरे लीचू, ये बात तो ठीक कहता है तू।
0: शिबू, 10-12 साल का तो हो गया है वो, 7-8 साल बाद कंपनी में काम करने लायक हो जाएगा। बस शिवू, फिर मेरी चिंता खत्म।
1: अच्छा तू एक मिनट यहीं रुक।
2: अरे पर तू जा कहाँ रहा है?
1: अरे वो झाड़ी देख रहा है ना, बस वहीं तक अभी आया।
2: पर बात सुन, वहां जाकर करेगा क्या तू?
0: अरे मस्ती का सामान रखा है मैंने वहां पर, मैं अभी आया।

0: क्या हमारे दिन भी कभी फिरेंगे, या फिर यूनियन के नेता झूठे सपने दिखा रहे हैं? हाँ, जुलूस तो रोज ही निकलता है, नारे भी खूब लगते हैं, पर जुलूस और नारों से फायदा भी क्या? अरे इनसे पेट थोड़ी भरता है।
1: शिवू देख, ये रही लाल परी।
0: लाल परी। अरे लिच्छू भैया, ये तो विलायती की बोतल लगती है।
1: बोतल विलायती है, एकदम हमारे यूनियन नेताओं की तरह।
0: क्या मतलब?
1: अरे मतलब ये मेरे भाई कि यूनियन नेता जो कहते हैं उसे करते नहीं, और जो करते हैं उसे कहते नहीं। ठीक वैसे ही जैसे कि इस विलायती बोतल में देसी शराब भरी हुई है।
0: देसी शराब? मगर ये बता, ये मिली कहाँ से?
1: अरे ठाकुर साहब ने फेंकने के लिए कूड़ा कबाड़ा दिया था।
0: अच्छा,
1: उसमें ये भी थी। लगता है ठाकुर साहब आजकल विलायती शराब से ऊब गए हैं।
0: अरे दिखा तो।
1: ले ले ले।
0: कमाल है, विलायती बोतल में देसी शराब है। वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है। ठहर लीजू, मैं जरा खोल के देखता हूँ। खोलता हूँ। अरे क्या खुशबू है, वाह वाह वाह, दिल करता है सारी की सारी पी जाऊं।
1: बीमार आदमी, अरे तूने नारायण की कसम नहीं खाई थी कि तू दारू नहीं छुएगा?
0: अरे तू क्या समझता है, मैं औरत से डरने वाला आदमी हूँ।
1: अच्छा ठीक है ठीक है।
0: लेकिन सुन सुन, सुन,
1: नारायणी के आने से पहले ही मैं उठकर चला जाऊंगा।
0: ठीक है, चले जाना। लेकिन बात सुन, बोतल मेरे हवाले करके तो तू इसी समय जा सकता है, जा।
1: अरे यार शिवू, जैसी तेरी घरवाली है ना, बस वैसे ही मेरी घरवाली भी थी। लेकिन शिवू, आजकल तो पढ़ी लिखी मेम लोग साहबों के साथ बैठकर पीती हैं।
0: अच्छा?
1: अरे उस दिन अफसर क्लब में मैं इन्हीं दो हाथों से मेम साहबों की उल्टी साफ करके आया हूँ।
0: अच्छा?
1: हाँ, जरा ठहर, दो घूंट पेट में उतार लूँ।
0: बोतल मुझे ले, मैं भी तो चखूं इसका स्वाद। दे। अरे लिचू कमाल है भाई। बात सुन, सभी में एक जैसी नहीं होती लिचू। अरे ठाकुर साहब की बीवी को नहीं देखा तूने?
1: देखा है। अरे वो तो हर समय पूजा पाठ में लगी रहती है।
0: अरे हर समय पूजा पाठ में लगी रहती है। और उस दिन ना 3 अंग्रेजी बोतलें फर्श पर पटक कर तोड़ डाली थी।
1: शिव शिव, आराम से आराम से। और सुन, जब मैं कंपनी में भद्राचल विभाग में था ना, तब जगन्नाथ की माँ पेट से थी। हम दिहाड़ी वाले रात को खलासी लंगर में बैठकर मजे करते थे, और जगन्नाथ की माँ बेचारी आधी रात तक जमीन पर बैठकर मेरा इंतजार करती थी। शिवू, मेरा इंतजार करती थी।
0: सच्ची लीचू, बेचारी ने बहुत दुख झेले होंगे, है ना? अरे उसने अपनी जिंदगी में दुख के सिवा तो कुछ देखा ही नहीं होगा, है ना?
1: ये बात तो है। अरे शिबू, एक रात तो एकदम गजब ही हो गया।
0: क्या हुआ था?
1: अरे उस रात अपने बाल खोलकर रणचंडी का रूप धारण करके खलासी लंगर में पहुंच गए। हम लोगों के सामने कतार में रखी बोतलें उठा उठा कर पटकने लगा।
0: अच्छा?
1: अरे सारे खलासी तितर बितर हो गए। हाँ शिवू, बाप रे क्या भयानक

0: दृश्य था वो।
1: अरे अरे ये क्यों, तू बेचारी को बहुत बहुत सताता था, है ना? बहुत सताता था तू।
0: बेचारी को पूरे जीवन सताया मैंने, अब तो जन्नत में शांति से होगी वो।
1: लिचू नारो नारो लिचू लिचू, मेरे यार, मेरे दोस्त, मैं भी सारी जिंदगी नारायण को कुछ नहीं दे सका। एक मेरे दोस्त, मुझे भी जीने का कोई अधिकार नहीं है।
0: शिबू
1: लिचू,
0: शिबू
1: लिचू, मैं मरूंगा।
0: नहीं शिबू,
1: मैं मरूंगा।
0: नहीं शिबू,
1: हाँ मैं मरूंगा।
0: अरे तू क्या,
1: अरे मैं मरूंगा
0: शिबू, क्या बकवास
1: मैं
0: कर रहा है?
1: सच कह रहा हूँ।
0: नहीं
1: लिचू,
0: नहीं
1: लिचू, मुझे मार, मार मुझे, अरे मुझे मार लिचू, मेरे मुंह पर जूते मार, मेरे मुंह पर जूते मार
0: शिबू, नहीं तो नारायण
1: मुझे दोष दे, अरे मुझे मार, अरे मुझे मार लिचू,
0: अरे चुप, अरे चुप हो जा शिवू।
2: क्या बात है बलबीर स्वामी, तुमने तो कहा था कि मुख्यालय से दो तीन प्रतिनिधि भी आएंगे, कंपनी के अधिकारियों से बातचीत करेंगे, हमारी मांगे मान ली जाएंगी, सभी मजदूर परमानेंट हो जाएंगे।
3: उम्मीद पर दुनिया टिकी है यशवंत, हमें भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए।
2: अरे कब तक, आखिर कब तक बलबीर स्वामी, कब तक हम झूठी उम्मीद पर आस लगाए बैठे रहेंगे? कब तक नंगे भूखे मजदूरों को झूठी दिलासा देते रहेंगे? अरे कब तक हम उनका विश्वास तोड़ते रहेंगे?
3: कुछ दिन और यशवंत, बस कुछ दिन और, अब और मुझे लगता है कि फिर उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, हमारी जीत निश्चित है।
2: हर बार बार बार यही एक आश्वासन बलबीर, यही एक आश्वासन। आश्वासनों के बलबूते जंग नहीं जीती जाती बलबीर स्वामी, अब वो वक्त आ गया है जब हमें कुछ ठोस करके दिखाना होगा, वरना
3: वरना क्या, वरना क्या यशवंत?
2: बलबीर, अगर एक बार मजदूरों का विश्वास यूनियन पर से उठ गया तो जानते हो क्या होगा?
3: क्या होगा?
2: सारे मजदूर मिलकर हमें साई की बालू में जिंदा दफना देंगे, समझे तुम? साई की बालू में जिंदा दफना देंगे।
3: तुम्हारी बातों से बगावत की बू आ रही है यशवंत।
2: अभी तो सिर्फ बू आ रही है बलबीर, अगर मजदूर भड़क उठे तो हमारी और तुम्हारी हस्ती तक मिटा डालेंगे, कोई जान तक नहीं पाएगा कि यहाँ यशवंत और बलबीर स्वामी नाम का कोई यूनियन नेता हुआ करता था।
3: यशवंत, यशवंत मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ, तुम किसी भी तरह से मजदूरों को काबू में रखो, काबू में रखो उन्हें।
2: लेकिन कब तक?
3: बस बस कुछ दिन और, मुख्यालय से हमारे प्रतिनिधि दो चार दिन में आते ही होंगे, फिर सब अपने आप ठीक हो जाएगा।
2: और हमारे वो लोकल लीडर शास्त्री जी का क्या हुआ? उनका नाम लेकर बहुत डींगे मारा करते थे तुम, कहाँ है अब शास्त्री जी? अरे एक बार भी हम मजदूरों के बीच नहीं आए, वो कहाँ खो गए उनके सारे वायदे, या फिर डर के मारे किसी बिल में जा छुपे हैं?
3: देखो यशवंत, शास्त्री जी का नाम सम्मान के साथ लो।
2: बलबीर, मैं शास्त्री जी से मिलना चाहता हूँ, उनके सामने बैठकर बात करना चाहता हूँ।
3: ठीक है, मैं तुम्हारी भावनाओं से शास्त्री जी को अवगत करा दूंगा, और फिर जब वो कहेंगे उनसे तुम्हारी मुलाकात की व्यवस्था भी हो जाएगी।
2: नहीं बलबीर, मुझे उनसे आज और इसी वक्त मिलना है, तुम मेरे साथ अभी उनके पास चल रहे हो?
3: नहीं, अभी ये संभव नहीं है।
2: क्यों संभव नहीं है?
3: देखो शास्त्री जी बहुत व्यस्त नेता हैं, उनसे हर कोई जब चाहे नहीं मिल सकता, भाई पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है उनसे।
2: तो ठीक है, आज से शास्त्री जी हमारे नेता नहीं रहेंगे, मैं आज ही सब मजदूरों को खबर कर देता हूँ कि यूनियन का शास्त्री जी से कोई संबंध नहीं है, और चूंकि शास्त्री जी तुम्हारे सरपरस्त हैं, इसलिए हम तुम्हारी जगह भी यूनियन का नया अध्यक्ष चुनेंगे।
3: देखो देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, किसी भी हालत में तुम ऐसा नहीं कर सकते।
2: अरे कौन रोकेगा मुझे बलबीर, सारे मजदूर भाई मेरे साथ हैं।
3: ओहो, तो तुम्हारे पर निकल आए हैं।
2: नहीं बलबीर, मैं सिर्फ न्याय के साथ हूं, और न्याय मजदूरों के साथ है। मैं चलता हूं।
3: यशवंत ठहरो, तुम इस तरह नाराज होकर नहीं जा सकते, कुछ जानते भी हो इसका क्या परिणाम निकलेगा?
2: हाँ हाँ, मैं सब जानता हूँ।
3: क्या जानते हो?
2: यही कि यूनियन को तुम जैसे दगाबाज नेताओं से मुक्ति मिल जाएगी, यूनियन को नया अध्यक्ष मिलेगा जो मजदूरों की सच्ची रहनुमाई करेगा।
3: नहीं यशवंत नहीं, होगा ये कि हड़ताल टूट जाएगी, आंदोलन बिखर जाएगा। विश्वास करो मेरा यशवंत, मैं दगाबाज नहीं हूँ, मैं सच्चे मन से मजदूरों के साथ हूँ, उनका अपना साथी हूँ मैं।
2: मुझे अब तुम पर विश्वास नहीं रहा बलबीर।

0: मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं यशवंत?
1: शास्त्री जी से इसी वक्त मिलवाकर।
0: ठीक है, चलो
1: चलो आओ।
2: तुम वही हो ना दलितों के नए नेता?
1: जी।
2: शायद मैं तुमसे पहले भी एक बार यहीं पर मिल चुका हूं।
1: बिल्कुल ठीक पहचाना शास्त्री जी आपने, आप हम लोगों के नेता हैं। आपका जातिवाद की बात करना शोभा नहीं देता, चाहे वो दलित हो या फिर ब्राह्मण या बनिया। काम करने वाले सिर्फ मजदूर हैं। मजदूर की सिर्फ एक ही जाति होती है, श्रम करना, खून पसीना एक करके निर्माण करना।
2: क्या तू नहीं जानता, सच्चिदानंद ने अपनी किताब में लिखा है, दक्षिण में कहीं ऐसा नियम है कि निम्न जाति के लोग दलितों से 33 फुट, उच्च जाति से 66 फुट और ब्राह्मणों से 99 फुट की दूरी पर खड़े हों। अरे किसी स्थान पर सफाई कर्मचारियों द्वारा राजपूतों जैसी पोशाक लेने पर मार मार कर हड्डियां तोड़ दी गई थी।
1: अरे ये सब बीती बातें हैं शास्त्री जी, आज हम आजाद मुल्क के आजाद नागरिक हैं। सरकार ने इस कानून को लागू भी करा दिया है। आज के युग में जातिगत भेदभाव के लिए सजा का प्रावधान है।
0: यशवंत ठीक कह रहा है शास्त्री जी।
2: तुम लोग किस काम से आए हो यह मैं खूब जानता हूँ।
3: तुम लोग अब मेरी सलाह लेने आए हो? 7 दिन बीत गए,
4: अब मैं यूनियन के समझौता पत्र को यूं ही नहीं नकार सकता।
2: यही सोच रहे हो ना तुम? मैं यूनियन के समझौता पत्र को बिल्कुल नकार सकता हूँ, लेकिन तुम लोगों को मेरी बात माननी पड़ेगी।
1: कौन सी बात शास्त्री जी?
2: जिस समझौते की कंपनी दुहाई दे रही है वो समझौता जबरदस्ती हमसे करवाया गया है, इस बात का मैं सबूत दे सकता हूँ।
0: लेकिन शास्त्री जी हमारे पास फंड नहीं है, मुख्यालय की तरफ से अब तक कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा, दिहाड़ी मजदूरों के बीच कई लोग बीमार भी हैं, अगर वे एक एक करके मरने लगे तो।
2: सुनो, तुम लोगों को हिम्मत से काम लेना होगा। फंड का रुपया खत्म भी हो गया तो कंपनी की स्टील, रॉड, सीमेंट, डीजल, ऑयल, पेट्रोल, टिम्बर, इन सब के ऊपर कूद पड़ना होगा। उन्हें ले जाकर बेच दो और फंड की व्यवस्था करो।
0: क्या
2: इंजीनियर को डराओ? चिंता बिल्कुल मत करो, मैं लीगल फाइट करा दूंगा, तुम लोग हारोगे नहीं।
1: लेकिन कंपनी ने ऐसे पुराने सामानों के लिए कोटेशन मांगा है।
3: तो क्या हुआ, क्या हुआ?
4: अरे कोटेशन देने वाले व्यापारी जब कोटेशन का मुआयना करने आएंगे तो तुम लोगों ने भगा देना,
2: पीट पीट कर उनका सर तोड़ देना, सामान को बेच देना और पैसे को दिहाड़ी मजदूरों में बांट देना।
1: लेकिन शास्त्री जी।
2: लेकिन लेकिन कुछ नहीं, ध्यान रहे, मेरी भी कुछ निश्चित कीमत है, ये मेरे एजेंटों ने बता दिया होगा, तभी मैं मजदूरों के बीच आ सकता हूं।
1: क्या आप

0: अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार। भाग लेने वाले कलाकार थे वीना होरा, दीपा रॉय, गीता वर्मा, श्याम अरोड़ा, केदारनाथ, मोहनलाल, दिनेश वर्मा, रजनीश शर्मा, कमल साथी, राजेश आहूजा, वीपी कालरा, उमेश श्रीवास्तव, सुरेंद्र सागर, बनवारी झोल, मंगत राम और संदीप। ध्वनि मुद्रण किया था रविंदर सिंह राजावत, एसपी राठौर और भगत सिंह ने। प्रस्तुति सहायक थे समीर झा।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री फ्रांस के नीस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। श्री मोदी कल संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में 500 से अधिक निवेशक शामिल होंगे। इस दौरान 13 प्रमुख क्षेत्रों में भारत की नवाचार क्षमता को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों से एनडीए सरकार युवा नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहित कर रही है। एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत के युवा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, विनिर्माण, सेमीकंडक्टर और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं।

0: के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच कल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरा मैच इस महीने की 17 तारीख को लखनऊ में और तीसरा और अंतिम मैच 20 तारीख को चेन्नई में होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब महिलाओं के लिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। इस सुविचार के साथ महिला सभा सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को कल्पना शुक्ला का नमस्कार। बहनों, आज के समय में महिलाओं का सशक्तिकरण समाज के विकास का महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। महिलाएं अब केवल घर तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, व्यापार, विज्ञान, राजनीति और तकनीक जैसे हर क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं। इसी दिशा में सीमार्ट पहल एक महत्वपूर्ण कदम है। यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने तथा उनके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई पहल है। बहनों, सीमार्ट एक ऐसा मंच है जहां महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को प्रदर्शित और बेचा जाता है। इस पहल के माध्यम से महिलाओं को अपने हुनर और प्रतिभा को लोगों तक पहुंचाने का अवसर मिलता है। इसमें हस्तशिल्प, कपड़े, घरेलू सजावट की वस्तुएं, खाद सामग्री, कलाकृतियां तथा अन्य उपयोगी सामान शामिल हैं। यह पहल महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता ही नहीं देती, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और सम्मान भी प्रदान करती है। बहनों, सीमार्ट पहल के कुछ उद्देश्य हैं, जैसे कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, महिला उद्यमियों को बाजार उपलब्ध कराना, छोटे व्यवसाय को बढ़ावा देना, महिलाओं के कौशल और प्रतिभा को पहचान दिलाना, रोजगार के नए अवसर उत्पन्न कराना, समाज में महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना। सीमार्ट पहल महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य करती है। इसके माध्यम से महिलाएं अपने उत्पाद बेचकर आर्थिक रूप से मजबूत बनती हैं। इससे उनके परिवार की आय बढ़ती है और जीवन स्तर में सुधार होता है। यह पहल ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को समान अवसर प्रदान करता है। कई महिलाएं जो अपने हुनर को केवल घर तक सीमित रखती थी, अब बड़े स्तर पर व्यापार कर पा रही हैं। बहनों, सीमार्ट से महिलाओं को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, नए कौशल सीखने के अवसर मिलते हैं, समाज में सम्मान बढ़ता है और छोटे उद्योगों को पहचान मिलती है। सीमार्ट पहल का प्रभाव केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। जब महिलाएं आत्मनिर्भर बनती हैं, तो परिवार और समाज दोनों मजबूत होते हैं। इससे बेरोजगारी कम होती है और देश के अर्थव्यवस्था में भी लाभ पहुंचता है। यह पहल महिलाओं को प्रेरित करती है, वे अपने सपनों को पूरा करें और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। बहनों, यह कहा जा सकता है कि सीमार्ट पहल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। यह महिलाओं को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सक्षम बनाने का कार्य करती है। समाज और देश के विकास के लिए ऐसी पहलों को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। यदि महिलाओं को उचित अवसर और समर्थन मिले, तो हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती हैं और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। बहनों, जब इंसान अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत और लगन से आगे बढ़ता है, तब उसे कोई भी मुश्किल नहीं रोकती।

रोक सकती। इसी प्रेरणा को दर्शाता है फिल्म संजू का प्रसिद्ध गीत कर हर मैदान फतेह, जिसे गाया है सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल ने।

0: बहनों, अभी हमने सुना गीत कर हर मैदान फतेह, जिसे फिल्म संजू से लिया गया था और जिसे सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल ने गाया था।
1: शरीर और आत्मा के लिए तोहफा है यो, खुद को खुद से मिलाने का मौका है यो। तो बहनों, आज हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर ज्योति सिंह बघेल, जो योग के क्षेत्र में बहुत ही सालों से जुड़ी हुई हैं। ज्योति जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी कल्पना जी, नमस्कार
1: जी। अच्छा ज्योति जी, महिलाओं के स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के लिए योग कितना महत्वपूर्ण है?
2: जी कल्पना जी, बिल्कुल मैं इसमें जवाब देना चाहूंगी आपको। महिलाओं के लिए तो योगा है ही, ये तो सभी वर्ग के लिए, पर जैसे आपका सवाल महिलाओं के लिए है,
1: जी
2: बिल्कुल, ये महिलाओं के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियमित अभ्यास से आपका हृदय, आपका स्वास्थ्य बेहतर रहता है, आपकी बॉडी की जो मसल्स हैं, बॉडी में जो जोड़ है, इनको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, बॉडी में जो हार्मोनल का जो बैलेंस है वो एक बैलेंस फॉर्म में आपकी बॉडी में देखने को मिलता है।
1: अच्छा, बढ़ती उम्र में महिलाओं को कौन कौन से योगासन करने चाहिए?
2: जी बढ़ती उम्र में महिलाओं को जैसे कि आपका ताड़ासन हो गया, वृक्षासन हो गया, भुजंगासन हो गया, त्रिकोण हो गया, वीरभद्र, ये सारे आसन जो है आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स को फोकस करते हुए
1: सहायक होते हैं। अच्छा ज्योति जी, क्या योग तनाव और चिंता को भी कम करता है?
2: जी बिल्कुल करता है। योग में आप प्राणायाम ने आपने सुना होगा, जैसे कि अनुलोम विलोम हो गया,
1: हाँ।
2: और ये विशेषकर जो है आपका मेडिटेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, स्ट्रेस दूर करने के लिए बहुत मददगार साबित होते हैं, मन की शांति के लिए आपको मदद करते हैं, आपका दिमाग में जो तनाव पैदा होता है, अलग अलग जो बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस देखने को आपको मिलता है उसको घटाने में मदद करते हैं।
1: अच्छा ज्योति, योग है तो महिलाओं की जैसे बढ़ती उम्र में हड्डियों और जोड़ों के लिए भी लाभदायक होता है क्या?
2: जी बिल्कुल, ये जब आप रेगुलर फॉर्म में एक्सरसाइज ये योगा करते हैं तो आपकी जो बॉडी की डेंसिटी है उसको उसके उसको बनाए रखने में मदद करता है, आपकी मांसपेशी और उसके आसपास के जितने भी संयोजी ऊतकों को मजबूत बनाता है, दबाव कम होता है और दर्द की तीव्रता घटती है।
1: अच्छा, महिलाओं को जैसे कि महिलाएं कामकाजी महिलाएं हैं और कुछ महिलाएं घर में भी रहती, तो कितनी देर इनको योग करना चाहिए?
2: जी वैसे तो अगर आप रोज कर रहे हैं तो एक आपको 30-45 मिनट तो आराम से आप कर सकते हैं, बट जैसा आजकल का बिजी शेड्यूल चल रहा है, एक छोटे समय से स्टार्ट कर सकते हैं, 10-15 मिनट से स्टार्ट करें और उसको 4-5 बार नियमित रूप में, या हफ्ते में आप दिन बना लें कि मुझे 3-4 दिन करना है या 2 दिन रेस्ट करना है, और ऐसा कर करके आप इसको हफ्ते में पूरा कर सकते हैं।
1: अच्छा ज्योति जी, मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूंगी, जैसे कि महिलाओं की बढ़ती उम्र से संबंधित है ये, मेनोपॉज क्या होता है?
2: जी बिल्कुल, मेनोपॉज ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कल्पना जी, बहुत से लोग इससे मतलब परेशान हो जाते हैं, जबकि एक प्राकृतिक जीवन चरण, जैसे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है वैसे मेनोपॉज भी होता है, तो लोगों को इसके बारे में अवेयर भी होना चाहिए। स्थायी रूप से मतलब क्या होता है, जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ये बंद हो जाती है, आमतौर पर ये 45-55 वर्ष की आयु में देखा जाता है, पर क्योंकि आज का जैसे इतना बिजी लाइफ स्टाइल है, जो आपका खाने का और जो अनहाइजीनिक जो हैबिट लोग की फॉलो होने लगी है महिलाओं की, जी इनसे अभी अर्ली मेनोपॉज देखने को मिलने लगा है।
1: अच्छा ये ज्योति जी, क्या योग जो है मेनोपॉज की समस्याओं को कम भी करता है?
2: मेनोपॉज की समस्याएं बिल्कुल कम होती हैं। अब इसमें ये जरूर है कि औरतों को जानना चाहिए कि मेनोपॉज की समस्याएं हैं क्या, जो कि होती नहीं है, और औरतें डर के मारे इसको बना लेती हैं, क्योंकि औरतें डर जाती हैं कि नेचुरल प्रोसेस है जिसको वो नेचुरल नहीं समझती हैं, और जिस वजह से उनके अंदर डर पैदा होता है और धीरे धीरे अपनी बॉडी वैसे ढाल लेती है। नींद में कमी होना, थकान लगना, मूड स्विंग होना, चिंता, डिप्रेशन, ये सब जो है सिम्टम्स है मेनोपॉज के समय पे, पर इनको योगा जो है कम करने में मदद करता है।
1: अच्छा जैसे कि ये मेनोपॉज के दौरान कौन कौन से योगासन लाभकारी हैं?
2: जी मेनोपॉज के समय पे आपको वो आसन करने चाहिए जो रिलैक्स दे सके आपकी बॉडी को, जैसे कि बाल आसन हो गया, शवासन हो गया, भ्रामरी प्राणायाम हो गया, सेतु बंधासना हो गया, ध्यान श्वास की तकनीकें होगी, जैसे कि अनुलोम विलोम का आपने बहुत नाम सुना होगा, नियंत्रित करेंगे तो बिल्कुल आपको मददगारी साबित होगा। और अगर आपकी जो मेडिकल कंडीशन है ज्यादा ही डीप में है तो बिल्कुल आपको अपने डॉक्टर से भी मार्गदर्शन लेते रहना चाहिए।
1: अच्छा ज्योति जी, मैं ये एक प्रश्न और पूछना चाहूंगी, आप मेनोपॉज के समय महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहती हैं?
2: जी, मेरा संदेश मेनोपॉज के समय यही है कि मेनोपॉज एक प्राकृतिक जीवन चरण है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है या शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। आप नियमित योग करें, एक संतुलित आहार खाएं और पर्याप्त नींद लें, सकारात्मक सोच रखें, व्यायाम को जरूर अपनी जिंदगी में शामिल करें, अपनी रोज की जीवन शैली में शामिल करें, आपकी लाइफ स्टाइल को तो मेंटेन करेगा ही, आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव रखेगा। बहुत से औरतें डर जाती हैं, उनकी अपनी पे डिपेंडेंसी, अपने पे जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो जाता है, तो उसको मेंटेन करेगा, आपकी फिजिकल कंडीशन उसको मेंटेन करेगा।
1: अच्छा ज्योति जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी जानकारी की बातें हमको पता चली, और मैं आशा करती हूँ हमारी बहनों को भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बहनों से इतनी अच्छी बातें करने के लिए।
2: जी, बहुत धन्यवाद आपका कल्पना जी।
0: बहनों, भारत में विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। ऐसी ही महान वैज्ञानिकों में डॉक्टर कमला सोहानी का नाम विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है। वे भारत की पहली महिला बायोकेमिस्ट थी। उन्होंने कठिन परिस्थितियों और भेदभाव का सामना करते हुए विज्ञान के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई। उनका जीवन संघर्ष, परिश्रम और सफलता की प्रेरणादायक कहानी है। डॉक्टर कमला सोहानी का जन्म 18 जून 1912 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। उनका पूरा नाम कमला भागवत सोहनी था। बचपन से ही वे पढ़ाई में बहुत तेज थी। विज्ञान विषय में उनकी विशेष रुचि थी। उनके परिवार में शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन भी मिला। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में BSc की परीक्षा उत्कृष्ट अंकों से उत्तीर्ण की। इसके बाद वे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी और वैज्ञानिक बनने का सपना देखती थी, लेकिन उस समय महिलाओं के लिए विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना आसान नहीं था। जब कमला सोहनी ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में प्रवेश लेने का प्रयास किया, तब वहाँ के प्रसिद्ध वैज्ञानिक महिलाओं को प्रवेश देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन कमला सोहनी ने हार नहीं मानी। उनके दृढ़ निश्चय और प्रतिभा को देखकर अंततः उन्हें प्रवेश दे दिया गया। हालांकि उन्हें कुछ शर्तों के साथ पढ़ने की अनुमति मिली। उन्हें पुरुष छात्रों से अलग रहना पड़ता था और अपनी योग्यता बार बार सिद्ध करनी पड़ती थी। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से यह साबित कर दिया कि महिलाएं भी विज्ञान के क्षेत्र में पुरुषों के समान सफल हो सकती हैं। डॉक्टर कमला सोहनी ने जैव रसायन विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध किए। उन्होंने पौधों, दालों और खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों पर अध्ययन किया। उनका सबसे प्रसिद्ध शोध नीरा नामक पेय पदार्थ पर था। नीरा ताड़ के पेड़ से प्राप्त होने वाला प्राकृतिक पेय है। उन्होंने सिद्ध किया कि यह पेय विटामिन और पोषक तत्वों से भरपूर होता है और बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। उनके शोध कार्यों से देश में पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ी। बहनों, भारत की वे पहली महिला बायोकेमिस्ट बनी। विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के लिए नई राह खोली। पोषण विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सम्मान प्राप्त किया। बहनों, कमला सोहनी ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रतिभा किसी लिंग का मोहताज नहीं होती। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उनकी सफलता ने समाज की उस सोच को बदलने में मदद की जिसमें महिलाओं को विज्ञान के क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता था। आज अनेक लड़कियां विज्ञान और शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, जिनके लिए कमला सोहनी प्रेरणा का स्रोत हैं। बहनों, डॉक्टर कमला सोहनी का जीवन संघर्ष, साहस और सफलता का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने सपनों को पूरा किया और भारत का नाम गौरवान्वित किया। उनके योगदान केवल विज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने महिलाओं के अधिकार और समानता के लिए भी प्रेरणा दी। हम सभी को उनके जीवन से यह सीख मिलती है कि मेहनत, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। बहनों, हर इंसान के दिल में कुछ सपने, कुछ उम्मीदें और कुछ अनकही भावनाएं होती हैं। जब वही भावनाएं संगीत बनकर सामने आती हैं, तो दिल सीधे उनसे जुड़ जाता है। एक ऐसा ही प्यारा और भावनाओं से भरा गीत है, दिल मेरा एक आस का पंछी, जो फिल्म आश का पंछी से लिया गया है और जिसे सुबीर सेन ने गाया।

0: का पंछी।
1: बहनों, अभी हमने सुना गीत दिल मेरा एक आश का पंछी, जो फिल्म आस का पंछी से लिया गया और जिसे सुबीर सेन ने गाया था। बहनों, गर्मी का मौसम अपने साथ तेज धूप, पसीना और धूल मिट्टी लेकर आता है, जो हमारी त्वचा पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। इस मौसम में त्वचा की सही देखभाल करना बहुत जरूरी होता है, ताकि हमारी त्वचा स्वस्थ, साफ और चमकदार बनी रहे। सबसे पहले गर्मी में धूप से बचाव करना अत्यंत आवश्यक है। तेज धूप में निकलने से त्वचा झुलस सकती है और सनबर्न की समस्या हो सकती है, इसलिए बाहर जाते समय टोपी या सनस्क्रीन का प्रयोग करना चाहिए। इससे त्वचा को हानिकारक किरणों से सुरक्षा मिलती है। गर्मी में शरीर से अधिक पसीना निकलता है, जिससे त्वचा पर गंदगी जमा हो जाती है, इसलिए दिन में 2 बार चेहरे को ठंडे पानी से धोना चाहिए और साथ ही सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हल्के और प्राकृतिक फेस वॉश का उपयोग करना बेहतर होता है। शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। अधिक मात्रा में पानी, नींबू पानी, नारियल पानी और फलों का सेवन करना चाहिए, जिससे शरीर में नमी बनी रहती है और त्वचा भी स्वस्थ रहती है। बहनों, अंत में यही कहा जा सकता है कि गर्मी के मौसम में थोड़ी सी सावधानी और नियमित देखभाल से त्वचा को स्वस्थ और सुंदर बनाए रखा जा सकता है। यही आदतें अपनाकर हम अपनी त्वचा को गर्मी के दुष्प्रभावों से बचा सकते हैं।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सभा, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है अंतराल का।
3: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करती हुई एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन 3 पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी, वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी,
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है और इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुषमा शुक्ला के गाए लोकगीत। कार्यक्रम की शुरुआत लोक भजन से।

अभी आपने सुना बधाई गीत, आवाज थी सुषमा शुक्ला की। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत, और आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है। आज हम इसमें आपको सुनवा रहे हैं सुषमा शुक्ला के गाए कुछ लोकगीत। कार्यक्रम के अंत में सुनिए सुषमा शुक्ला का गाया बेलान है गीत।

सुषमा शुक्ला के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है और आज हम आपको सुनवा रहे हैं संगीता मिश्रा के गाए कुछ गीत और भजन। कार्यक्रम की शुरुआत कबीर की इस रचना से, आवाज संगीता मिश्रा की।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं संगीता मिश्रा के गाए कुछ गीत और भजन। अब सुनिए मीरा की रचना, आवाज संगीता मिश्रा की।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत और आज हम आपको सुनवा रहे हैं संगीता मिश्रा के गाए भजन और गीत। कार्यक्रम के अंत में सुनवा रहे हैं गीत रचना डॉक्टर विद्यानाथ वैद्य की।

0: संगीता मिश्रा के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है समय है अंतराल का।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाला सिंधी कार्यक्रम सिंधिया जी सुरहान सुनना ना भूलिए प्रत्येक रविवार सुबह 10 बजे, जिसमें आप सुन सकते हैं सिंधी साहित्य की विभिन्न विधाओं पर वार्ता, भेंट वार्ता, कविता, कहानियां और भी बहुत कुछ सिंधी के मधुर गीत संगीत के साथ। तो सुनना ना भूलिए हमारा ये कार्यक्रम सिंधिया जी सुरहान। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। सिंधिया जी सुरहान प्रत्येक रविवार सुबह 10 बजे।

लता मंगेशकर की आवाज़ में भी आपने सुना प्यासा सावन फिल्म का गीत, शब्द रचना थी संतोष आनंद की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म सौदागर।

0: लता मंगेशकर के गाए फिल्म सौदागर के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आज पांचवा और अंतिम दिन है। आज ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। बैठक में सदस्य देशों की सहमति और सुझावों के आधार पर एक साझा दस्तावेज तैयार किया जाएगा, जिसे

0: और डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा। बैठक से पहले ब्रिक्स वाटिका में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने पौधारोपण किया। इस दौरान श्री चौहान ने कहा कि इस बैठक का संदेश यही है, संघर्ष नहीं समन्वय, युद्ध नहीं शांति, घृणा नहीं प्रेम।
1: इस ब्रिक्स का ये सम्मेलन जिसमें आज एक डिक्लेरेशन होगा और दुनिया को ये संदेश देने के लिए कि पर्यावरण का संरक्षण इस समय बहुत जरूरी है, ये ब्रिक्स वाटिका में आज प्लांटेशन सभी हमारे सदस्य देशों ने, पार्टनर कंट्रीज के मित्रों ने किया है, ये आपस में स्नेह, सद्भाव, मैत्री और प्रेम का प्रतीक रहेगा। और संदेश यही है, संघर्ष नहीं समन्वय, युद्ध नहीं शांति, घृणा नहीं प्रेम, और इन पेड़ों की तरह हम धरती को बचाने का काम करते रहें।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों से अपील करते हुए कहा कि बच्चों को किसी भी प्रकार की अफवाहों से दूर रहकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भोपाल में श्री प्रधान ने भरोसा दिलाया कि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराई जाएगी।
2: मैं आप सभी के माध्यम से नीट की सारे विद्यार्थियों को अपील करता हूं, आप भरोसा करके पढ़ाई में मन लगाइए। 21 को बहुत व्यवस्थित तरीके से नीट की परीक्षा की जाएगी। एनटीए ने उनको और 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए तय किया है।
0: प्रवास के दौरान आज श्री प्रधान ने शूटिंग एकेडमी से खिलाड़ियों से मुलाकात की। वहीं सूरजनगर में भोपाल सांसद आलोक शर्मा के साथ स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यक्रम में आत्मनिर्भर महिलाओं को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने गृह विभाग की महत्वपूर्ण आईजी कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था, नक्सल उन्मूलन, साइबर अपराध नियंत्रण और पुलिस बल की मजबूती जैसे विषयों पर विस्तार से समीक्षा की गई। कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है और विकास कार्यों को भी नई गति मिली है। अब खबर मौसम की। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की रफ्तार फिर बढ़ गई है और मौसम विभाग ने प्रदेश में 15 से 18 जून के बीच मानसून के प्रवेश की संभावनाएं जताई हैं। इससे पहले प्रदेश भर में प्री मानसून गतिविधियां तेज बनी हुई हैं। कई जिलों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि का दौर जारी है। प्रदेश में श्योपुर, सागर, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी समेत कई जिलों में कल आंधी और बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज भिंड, दतिया, छतरपुर, पन्ना और सागर जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, नर्मदापुरम, बैतूल, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, मुरैना, श्योपुर, जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी सहित कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित ओंकारेश्वर दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने कल ओंकारेश्वर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। आगरमालवा जिले में आयोजित किए जा रहे शिविरों के तहत कल जिले के ग्राम बापचा, डोंगरगांव, सुदवास, सोयतकला और सुसनेर में जनकल्याण शिविर आयोजित किए गए। और शिवपुरी जिले के पोहरी में कल संभावित बाढ़ और वर्षाकालीन उप आपदाओं की तैयारी के संबंध में विकास खंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे, हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल पोत पर अमरीकी नौसेना के हमले का कड़ा विरोध किया। हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया,
2: वहाँ ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए।
1: राजदूत सिंघला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
3: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि यह लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवाटेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: आईएमए स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
5: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल, the Indian Army must

0: remain adaptive and future ready. I urge you to be lifelong leaders, learners, courageous decision makers and ethical leaders.
1: Passing out में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया. ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया. साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून.
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया. इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है.
3: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें ना तो फाइटर का पता चलता है ना उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का. तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है, और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है.
2: समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया. रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है. रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की. उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए. बैठक में गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा. केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था. विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है. इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे. डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है. एक रिपोर्ट.
4: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई. जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे. इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया. इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए. समाचार कक्ष से मेघना शर्मा.
2: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए. नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है. लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है. अप्रैल में ये 3.48% थी. ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही. भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ. विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई. वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं. ये आकाशवाणी है. ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें

0: पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
1: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि की है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो मित्र दिनेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की पहली पसंद हम ले रहे हैं फिल्म लूटमार से, जिसे स्वर दिया है आशा भोसले ने, शब्द रचना अमित खन्ना की है और संगीत राजेश रोशन का। और पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य आदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूराज श्रीमाली। इसी गीत की एक पसंद हमें मिली है मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा छत्तीसगढ़ से। कोटवा नारायणपुर बाबा पटरी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय भी इस गीत को सुनना चाहते हैं। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का फिल्म लूटमार का ये गीत, जिसे स्वर दिया है आशा भोसले ने।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें मिली है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से। कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, रिदिया खान, अस्मा सालिया, शोएब खान पोतरा, मुस्तफा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। इसी गीत की फरमाइश हमें मिली है करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान, नावेद खान। इसी गीत को सुनना चाहते हैं सिंधोली जीरगंज बरेली से जिशान वारसी। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। आप सब सुनना चाहते हैं प्रतिज्ञा फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

अभी आपने सुना महबूबा फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत राहुल देव बर्मन का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश और आपके साथ हूं मैं आपका रेडियो मित्र दिनेश कुमार। कार्यक्रम की अगली फरमाइश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवांडकर, राही श्रीमती सरिता गवांडकर, सिद्धांत गवांडकर, प्रिंस एकांश गवांडकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर।

शैलेश गवांडकर, श्रीमती वैशाली गवांडकर, श्वेता, सुमित गवांडकर, कुमारी धूमी गवांडकर, परी सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा इसी गीत को सुनना चाह रहे हैं। इसी गीत को सुनना चाह रहे हैं पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। इसी गीत की एक पसंद हमें मिली है छत्तीसगढ़ के दतरंगी से भागवत वर्मा की, लेवई से गुलाबदास मणिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, मावली सिंगापुर से सालिक पुजारी, कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य आदित्य शिवानी शिमाली की। तो आइए सुनते हैं। एक पसंद और मिली है इसकी मयंक कृष्ण रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा दामिनी वर्मा की। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म मासूम से। शब्द रचना गुलजार की है और संगीत आरडी बर्मन का है और इसे आवाज दी है भूपिंदर और सुरेश वाटकर ने।

0: भूपेंद्र और सुरेश वाडकर के गाए फिल्म मासूम के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस पहुंचेंगे। इसके साथ ही उनकी फ्रांस और स्लोवाकिया की दो देशों की यात्रा शुरू होगी। फ्रांस में प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान

0: 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों से अपील करते हुए कहा कि बच्चों को किसी भी प्रकार की अफवाहों से दूर रहकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। भोपाल में श्री प्रधान ने भरोसा दिलाया कि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाएगी। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आज पांचवा और अंतिम दिन है। आज ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। बैठक में सदस्य देशों की सहमति और सुझावों के आधार पर एक साझा दस्तावेज तैयार किया जाएगा, जिसे इंदौर डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय में गृह विभाग की महत्वपूर्ण IG कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था, नक्सल उन्मूलन, साइबर अपराध नियंत्रण और पुलिस बल की मजबूती जैसे विषयों पर विस्तार से समीक्षा की गई। 19वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 सोमवार से शुरू होगा। मुंबई में एक सप्ताह तक चलने वाले इस उत्सव के दौरान वृत्तचित्र, लघु फिल्में और एनिमेशन सिनेमा का प्रदर्शन होगा। और ICC महिला T20 विश्व कप टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं और कुल 33 मैच खेले जाएंगे। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत कल बर्मिंघम में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सांतकालीन सभा के कार्यक्रमों पर। सांतकालीन सभा में आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत शाम 5:02 पर सुनिए कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होगी। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता ले सकते हैं शाम 5:33 पर, 6:00 और रात 8:35 पर। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत 7:21 पर सुनिए ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम सभा।

आकाशवाणी दिल्ली से सुन सकेंगे। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। इस समय दोपहर के 3:01 हुए हैं। हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5 बजे अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।

ये आकाशवाणी भोपाल है। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी भोपाल है। अब सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुषमा शुक्ला के गाए कुछ लोकगीत। कार्यक्रम की शुरुआत लोक भजन से।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण कार्यक्रम है लोक संगीत, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुषमा शुक्ला के गाए कुछ गीत। अब सुनिए बेलनहाई गीत, आवाज सूक्ष्म।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण कार्यक्रम है लोक संगीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुषमा शुक्ला के गाए कुछ लोकगीत।

सुषमा शुक्ला के गाए इस बधाई गीत के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत अब संपन्न होता है। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं संगीता मिश्रा के गाए भजन। कार्यक्रम की शुरुआत कबीर की इस रचना से।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण कार्यक्रम है लोक संगीत, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं संगीता मिश्रा के गाए कुछ भजन और गीत। अभी आपने सुनी कबीर की रचना, अब सुनिए मीरा की रचना, आवाज संगीता मिश्रा की।

ले चल नैया पार, ये गीत अभी आपने सुना संगीता मिश्रा की आवाज़ में। रचना थी डॉक्टर वैद्यनाथ वैद्य की। संगीता मिश्रा के गाए इस गीत के साथ ही आज का सुगम संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी भोपाल है, पेश है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मदर इंडिया फिल्म के गीत से, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों ने। शब्द रचना शकील बदायूनी की है और संगीत नौशाद का।

नौशाद के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना शकील बदायूनी का लिखा गीत। आवाज़ें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की थी और फिल्म का नाम था मदर इंडिया। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म मैं चुप रहूंगी से। आवाज़ लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की है, शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की और संगीत चित्र गुप्त का है।

मैं चुप रहूंगी। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आकाशवाणी भोपाल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म जख्मी से।

हमराज, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना महेंद्र कपूर की आवाज़ में। शब्द रचना थी सायर लुधियानवी की और संगीत रवि का। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण, कार्यक्रम है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म मुझे जीने दो से। आवाज़ आशा भोसले की, शब्द रचना साहिर लुधियानवी की और संगीत जयदेव का।

छाया। इस फिल्म का गीत अब सुनिए लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज़ में। गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत सलील चौधरी का है।

छाया। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज़ में। शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की थी और संगीत सलील चौधरी का। कार्यक्रम के अंत में सुनिए मिलन फिल्म का गीत।

0: क्षमा कीजिए, समय की बाध्यता के कारण हम ये गीत आपको नहीं सुनवा पा रहे हैं। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस पहुंचेंगे। इसके साथ ही उनकी फ्रांस और स्लोवाकिया की दो देशों की यात्रा शुरू होगी। फ्रांस में प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों से अपील करते हुए कहा कि बच्चों को कभी भी किसी भी प्रकार की अफवाहों से दूर रहकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। भोपाल में श्री प्रधान ने भरोसा दिलाया कि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराई जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय में गृह विभाग की महत्वपूर्ण IG कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था, नक्सल उन्मूलन, साइबर अपराध नियंत्रण और पुलिस बल की मजबूती जैसे विषयों पर विस्तार से समीक्षा की गई। प्रदेश के सभी स्कूलों में आज अपार ID दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान पालकगणों के सहमति पत्र के आधार पर बच्चों की अपार ID बनवाई जा रही है। साथ ही आधार में त्रुटि, दस्तावेजों में कमी और अन्य तकनीकी कारणों से लंबित अपार ID प्रकरणों का निराकरण भी किया जा रहा है। 19वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 सोमवार को शुरू हो रहा है। मुंबई में एक सप्ताह तक चलने वाले इस उत्सव के दौरान वृत्तचित्र, लघु फिल्में और एनिमेशन सिनेमा का प्रदर्शन होगा। और मौसम विभाग ने आज भिंड, दतिया, छतरपुर, पन्ना और सागर जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, नर्मदापुरम सहित कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: DTH के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। पेश है कार्यक्रम इनसे मिलिए। आज सुनिए भेंट वार्ता। पद्मश्री अलंकृत वरिष्ठ पुरातत्वविद डॉक्टर नारायण व्यास से अमिता त्रिवेदी की विशेष बातचीत।
2: श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम इनसे मिलिए आपके लिए लेकर आता है कुछ ऐसी शख्सियत से बातचीत जो न केवल अपने कार्य में एक विशेषज्ञता रखते हैं बल्कि कई आयाम भी तय कर चुके होते हैं। आज इस कार्यक्रम में स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं पद्मश्री नारायण व्यास जी। स्वागत है व्यास साहब आपका। नमस्कार।
3: सभी साथियों को नमस्कार और सुनने वालों को मेरी ओर से शुभकामनाएं।
2: आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे सभी सुनने वाले कि नारायण व्यास साहब को आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में पद्मश्री प्राप्त है और आप एक ख्यात पुरातत्वविद हैं जिनका लंबा अनुभव रहा है। उनकी दृष्टि की एक परख है जिसमें कई चीज़ें उजागर हुई और लोगों तक पहुंची हैं। ऐसा कहते हैं कि अभिव्यक्ति के लिए भाषा की ज़रूरत होती है और जहाँ भाषा की ज़रूरत नहीं होती वहाँ कभी फूल

स्कूल में कॉलेजों में जहाँ जहाँ पढ़ता था वहाँ, और विशेष रूप से क्या है कि मेरी आदत ऐसी थी कि कोयले होते थे घर में, उससे दीवारों पर बनाता रहता था। इससे क्या मेरे घर के लोग सब परेशान हो जाते थे कि जहाँ जहाँ चित्र देता है, जहाँ जहाँ लिख देता है और काला काला करेंगे तो उधारी बहुत हो जाएगी। तो पिताजी माताजी डांटते भी थे, लेकिन सौभाग्य से एक बार ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी आर्य समाज के प्रधान थे उज्जैन में। एक दिन उन्होंने 1964 में डॉक्टर वाकणकर जी का एक व्याख्यान रखा था वैदिक सभ्यता पे, तो वैदिक सभ्यता के व्याख्यान में वो मुझे भी ले गए। वो प्रभावित भी हुआ, मैं भी हुआ कि नई नई चीज़ें मैं सुनने मिली। फिर बाद में पिताजी ने उनसे ये कहा कि ये मेरा बेटा नारायण है और इसकी हमेशा ऐसी आदत खराब है कि चाहे जहाँ चित्रता रहता है कुछ ना कुछ काला पीला करता रहता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चित्रकार हैं तो इसको कुछ मार्गदर्शन दें ताकि कुछ इसे लाइन पकड़ लें। वाकणकर जी ने कहा ठीक है, अगले दिन से भेज दो मेरे यहाँ। तो उज्जैन में उनका एक भारतीय कला भवन चलता था और मैं उसमें मिडिल के हायर सेकेंडरी क्लास में पढ़ता था, 64-65 की बात है। तो दूसरे दिन पिताजी मुझे ले गए और वाकणकर जी के यहाँ स्कूल में भर्ती कर दिया। तो जब से मैं उनके यहाँ फाइन आर्ट सीखने लगा तो मेरी क्या दृष्टि कुछ अलग होने लगी थी, क्योंकि क्या है वाकणकर जी एक पुरातत्व क्षेत्र में थे ये मेरे को पता नहीं था, लेकिन जब उनके घर में मैं ये पत्थर देखता था, मिट्टी के बर्तन देखता था, सिक्के पड़े होते थे घर में जगह जगह, तो मेरे को लगता है कि ये क्या चीज़ें हैं। तो उत्सुकतावश मैंने एक बार पूछ लिया था वाकणकर जी से ये क्या चीज़ें हैं, तो बोले यार ये तो पुरातत्व पुरानी चीज़ें हैं, तुमको अभी क्या करना है इससे, तुम तो फाइन आर्ट का अपना काम करो। लेकिन मेरा मन नहीं लगता था क्योंकि मैं देखता है इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही है, इनके सिक्के भी आ रहे हैं, मूर्तियां भी आ रहे हैं, बहुत चीज़ें आ रही है। तो आखिर में उस समय मैंने बीए भी पास कर लिया था, उनके डिप्लोमा भी कर लिया। तो उन्होंने कहा यदि तुम्हारा इतना इंटरेस्ट है तो तुम एमए पुरातत्व या प्राचीन भारतीय संस्कृति में कर लो। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उनके यहाँ अगले दिन से, उन्होंने जब मेरे से कहा तो विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन में ये विषय था, तो मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद तो मेरी जो समस्या सारी हल हो गई, वाकणकर जी से मिलने जुलने लगा और ये सब काम देखने लगा, और आजू बाजू उज्जैन के आसपास भी बहुत सी ऐसी साइट से वहाँ मुझे ले जाने लगे और कोई ट्रेनिंग दे दे। जब मैं एमए पुरातत्व में पढ़ता था ना, उस समय भी हमारे गांव के कुछ लोग आते थे, वो बताते भी थे कि हमारे यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती है, ये मिलती है। तो एक बार ऐसे हमारे मित्र क्लास फेलो थे, वो 5 लोग गाँव के थे, तो मुझे वहाँ ले गए, तो मैं देखा कि बहुत बड़ा टीला है चंबल नदी के किनारे और मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। तो मैं और हमारे मित्र वो कुछ लेके वाकणकर जी के पास गए, तो वाकणकर जी ने देखा आप इतनी अच्छी चीज़ें कहाँ से ले आए हो, तो उनको बताया कि हम ऐसे ऐसे हम लेके आए हैं, इस गांव में गए थे। तो हमारे साथ वाकणकर जी भी गए, जब चले तो गए, एक दिन रात रुके, दूसरे दिन हमने वो चीज़ें ढूंढी वहाँ, और गांव का नाम था दंगवाड़ा। अच्छा। दंगवाड़ा बड़ा प्रसिद्ध स्थान है ताम्रस्म युग का, वहाँ बहुत सी चीज़ें मिली। तो वाकणकर जी बहुत खुश हो गए, और शाम हो गई थी, उनको वापस आना था जल्दी और बसें मिलती नहीं थी, तो क्या करें। तो मैं और वाकणकर जी बस के ऊपर बैठ के फिर उज्जैन आए। कई हम लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटी, लेकिन अंत में क्या हुआ कि जब हमने कर लिया तो हमें क्या आगे किया जाए, तो वाकणकर जी ने कहा कि तुम दिल्ली से डिप्लोमा होता पुरातत्व का वो कर लो। तो दिल्ली में मैंने एडमिशन ले लिया, पुरातत्व का डिप्लोमा भी हो गया। तो उसमें ये फायदा हुआ कि आदिमानव की सभ्यताएं, इतिहास, पुरातत्व, स्थापत्य, मूर्तिकला सबकी जानकारी मिल गई। तो वहाँ से होने के बाद वाकणकर जी ने कहा कि मैं अभी ये भीमबेटका का काम करने वाला हूँ, तुम मेरे साथ रहो। तो इस प्रकार मैं वाकणकर जी के साथ भीमबेटका रहा, और कुछ समय तक मुझे प्राचीन मानव की जो सभ्यताएं उत्खनन में मिली है, आदिमानव पत्थर के हथियार हैं, गुफाओं में बने चित्र हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें मेरे को उनके द्वारा जानने को मिली। तब से भी कहना चाहिए एक तरह से बहाव किसी चीज का होता, वो चालू हो गया, हवा का बहाव जैसे कहते हैं ना, फिर वो मैं जो चला तो चलते ही गया वैसे चलता है। वाकणकर जी बड़े खुश होते हैं, वो देखते बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार उनके कारण ही भारतीय पुरात सर्वेक्षण में सर्विस भी लग गई और इसमें भी आ गया। 37 वर्षों के मैंने कार्य किया, जगह जगह देश भर में घूमा, एक दो बार कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में बाहर भी गए, म्यांमार भी गए इस मार्गों का अध्ययन करने के लिए। 1988 में वाकणकर जी का स्वर्गवास हो गया, बड़ा दुख हुआ, लेकिन उनका जो काम था वो पूरा नहीं हुआ था। काम क्या था, जो रॉक पेंटिंग होते हैं उन पे काम करना था, तो वो काम बड़ा अधूरा था। तो मैंने यही प्रण किया कि मुझे अभी काम करना चाहिए, तो जगह जगह जाकर सेल चित्रों का अध्ययन किया। स्पेन की भी एक संस्था है वहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट भी, जब उन्हें इस विषय में पता चला तो उन्होंने मेरे को अपने ग्रुप में मिलाया, तो उनके साथ भोपाल के आसपास के जितने भी रॉक पेंटिंग है सबके सर्वे किया और एक पुस्तक निकाली जिसके अंदर भोपाल के आसपास के क्षेत्र के जितने भी रॉक पेंटिंग ये हो गए। क्योंकि अब ये इतने लंबी सर्विस रही, जगह जगह गए, अनुभव होते गए, लेकिन जब मेरी रिटायरमेंट हुआ तो लोग कहते अब क्या करोगे, अरे मैंने क्या रिटायरमेंट के बाद तो मैं ज़्यादा काम करूंगा, जो ये काम अभी यहाँ करता था इससे ज़्यादा काम मिलेगा। तो वही हुआ, मैं 1972 में सर्विस में लगा और 2009 में रिटायर हुआ। उसके बाद से लगातार मैं यही काम कर रहा हूँ पुरातत्व क्षेत्र में, जगह जगह हम जाते हैं। वो मेन ये उद्देश्य था कि हम लोगों के पास जो जिम्मेदारी पारिवारिक होती है वो इतनी नहीं है, बच्चे अपने अपने जल लगे गए,

0: अपने अपने काम करते हैं तो हम क्या करें। तो हमने यही कहा कि हम धरोहर की सेवा करेंगे और जितने भी लोग होंगे, बच्चे होंगे, विद्यार्थी होंगे, शोधार्थी होंगे, उनको हम ये पूरी जागरूकता, उनके बीच में अभियान चलाएंगे, उनके चीज़ें बताएंगे। तो मैं और मेरी मिसेज साधना व्यास, वही पुरातत्व में एम ए किया है, साथ साथ में रहती है, हम साथ साथ ही जगह जगह जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, और कोई भी ऐसे समय आता है या त्यौहार आता है जैसे संबंधित चीज़ें होती हैं, हम उसकी प्रदर्शनियाँ भी जगह जगह लगा। तो इस प्रकार हमारा निरंतर काम चलता रहा है।
1: बहुत लंबा अनुभव और बहुत खूबसूरत सी यात्रा है आपकी, जो वाकणकर जी के निर्देशन में या उनके नेतृत्व में कहिए शुरू हुई। और जब किसी भी चीज़ को या बहाव को दिशा मिल जाती है तो वो अपने गंतव्य तक पहुंचती है।
0: बिल्कुल सही है कह रहे आप।
1: आपने एक अच्छे गुरु के रूप में कहिएगा या मार्गदर्शक के रूप में वाकणकर जी को पा लिया था और आपके लिए दिशा मिलती चली गई। यदि किसी बच्चे की, किसी युवा की आज इस क्षेत्र में रुचि हो तो वो क्या चीज़ें हैं जिसके माध्यम से वो वहाँ तक बढ़ सकता है, और आज के समय में क्या संभावनाएं आपको दिखाई देती हैं? क्योंकि कोई भी युवा बिना संभावनाओं के चीज़ों की तरफ नहीं बढ़ सकता है, जो ज़रूरत भी है वक्त की। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बात?
0: इस विषय मेरा ये कहना है कि सबसे पहले अपनी धरोहर है, इनको सभी में जागरूकता के रूप में फैलाना है, विशेष रूप से स्कूल में, कॉलेज में, बच्चों के लिए, रिसर्च करने वालों के लिए, टूरिस्टों के लिए। तो उस प्रकार का अभियान हम चलाते हैं। जब हम स्कूल कॉलेजों में जब लगाते हैं तो बच्चे बड़ा आकर्षित होते हैं, वो देखते हैं आदिमानव के पत्थर के हथियार, भाले, कुल्हाड़ी कैसी होती है, क्योंकि उनके कोर्स में होते हैं, ड्रिल कोर्स में, छठी, सातवीं, आठवीं में होते हैं कोर्स में, तब वो देखते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन वो चीजें देखते हैं तो झूम पड़ते हैं हमारे ऊपर कि अरे इतने सुंदर चीजें लेके आया हो, ये भाला है, ये कुल्हाड़ी है, ये खरोंचने वाला है, ये तीर कमान है, तो बड़ी उत्सुकता से देखते हैं। तो ये करके बच्चों में बड़ा चाव होने लगा। अब स्कूलों, कॉलेजों में जाने का प्रभाव ये हुआ कि बहुत से जो बच्चे हैं इनकी ओर आकर्षित हुए, और कुछ लोग इसके अंदर एम ए भी कर रहे हैं, कुछ इसमें पी एच डी भी कर रहे हैं, और कहते हैं इसमें रोजगार की संभावना भी हो जाती है कि भारतीय पुरा सर्वेक्षण, राज्य पुरातत्व, स्टेट आर्कियोलॉजी, यानी कहीं के वैकेंसी निकलती है और उनको काम मिल जाता है। इसके अतिरिक्त कई लोग हमसे कहते हैं कि और क्या हम कर सकते हैं। हम उनको बताते भी है, यदि आप पढ़ लिख लेते हो या सब कर लेते हो तो अपना ग्रुप बना लीजिए, उसको रजिस्टर्ड करा लीजिए, एनजीओ बना लीजिए, उसके माध्यम से आप जगह जगह स्कूल में, कॉलेज में एमओयू करिए, और एमओयू करेंगे तो आपको काम मिलेगा, आर्थिक दृष्टिकोण से भी आप सक्षम होंगे और लोगों को काम भी आप दे पाएंगे। तो फ्यूचर पार्कसिटी पुरातत्व के क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत है, इसे कम नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि कुछ नहीं है, लेकिन हमारे कहना है इसमें बहुत कुछ है। यदि हमने धरोहर को सीख लिया है ना, सब चीज़ सीख ली, हमारे विषय कोई भी हो, लेकिन हमारा जो विषय जो है ये पुरातत्व ऐसा है वो सभी के लिए मान्य भी होता है। हम चाहते हैं सभी लोग इसको पढ़ें और इसके प्रति जागरूक हो, और जितना फैल सके उतना फैलाएं इसको।
1: निश्चित रूप से जागरूकता एक बहुत बड़ा ज़रूरत और टूल होता है जो हमें चीज़ों के प्रति सचेत करता है, आकर्षित करता है और थोड़ा सा सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित भी करता है।
0: बिल्कुल सही है
1: व्यास साहब। यहाँ पर थोड़ा सा मूड को बदलते हैं, यदि आपकी पसंद का कोई गाना हम जानना चाहें जिसे हमारे श्रोता भी सुनकर आनंदित हो, तो कौन सा गीत आप सुनवाना चाहेंगे?
0: ऐसा है, बचपन से मेरे देशभक्ति का जज्बा मेरे पिताजी से हुआ जी। क्योंकि वो क्या है कि स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे।
1: अच्छा।
0: और उज्जैन में सबसे पहले जो तिरंगा झंडा उनके द्वारा ही लगाया गया है 15 अगस्त 1947 को, तो मध्यप्रदेश शासन ने वो चौराहे का नाम है हमारे पिताजी के नाम से, अनंत लाल व्यास चौराहा नाम से कर दिया है। तो वो इस चीज से बड़े प्रसन्न होते थे कि मैं इस टाइप से काम करता हूँ। तो एक बार उनसे मैंने कहा कि कुछ देखना है, तो उन्होंने कहा ये सिकंदर आजम देखो नई फिल्म आई है 1965 में, और उसका बड़ा प्रसिद्ध गाना है, जहाँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, ये मेरा बड़ा पसंदीदा गाना है।
1: तो चलिए सुनते हैं इस गीत को और सुनवाते हैं सभी को।

0: ठीक है, सेल चित्र जो मेरे गुरुजी वाकणकर साहब की जो देन है उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, वही रॉक पेंटिंग मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसी में ज़्यादा काम करता रहता हूँ
1: जी। आपका 37 वर्षों का तो सर्विस का या सेवा का काल रहा, और उसके बाद भी आप 2009 से लगातार कार्यरत हैं
0: जी,
1: तो आपके इतने बड़े कार्यक्षेत्र में और एक लंबी अवधि में कुछ ऐसी खास चीज़ें रही होंगी जो आपके दिल के भी बहुत नज़दीक होंगी और जो कुछ विशेष कार्य में परिणित हुई होंगी, उनके बारे में जानना चाहेंगे।
0: ऐसा है, काम तो मैंने बहुत सब तरह के किए हैं, सब्जेक्ट किए, ऑल ओवर इंडिया गए हैं, एक्सकेवेशन किए, एक्सप्लोरेशन किए, नई नई खोज किए, लेकिन तीन ऐसे विषय हैं मेरे विषय में जो मेरे सामने जो प्रमुखता से आते हैं। इसमें जो भीमबेटका के शैलचित्र हैं जो वाकणकर जी के कारण ही मैं ये सब सीखा हूं और उसको फिर विश्व धरोहर में लिया है, और दूसरा सांची है। सांची मेरा बड़े प्रिय स्थान है, जहाँ मैं आदिमानव की सभ्यताओं से लेके, वो तो मिलते ही हैं, सम्राट अशोक से लाके 12वीं शताब्दी तक लगातार सांस्कृतिक धरोहर चीज़ें वहाँ देखने को मिलती हैं। स्तूप भी है, प्राचीन मंदिर भी है, अभिलेख भी हैं, और मूर्तियाँ इतनी अनगिनत है कि क्या क्या चीज़ें हैं। और उस तीसरा मेरा जो सब्जेक्ट जो थे पसंद का वो है रानी की वाव। रानी की वाव जो गुजरात में बड़ा प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट है, एक बावड़ी है स्टेपवेल, जो हम 100 के नोट पे भी हम देख सकते हैं। तो क्या जब मेरे 1981 में वहाँ पोस्टिंग हुई थी, तो क्या उस समय मुझे काम दिया गया, काम तो सभी करता था लेकिन ये विशेष रूप से काम दिया, मेरे को कहा कि आप ये रानी की वाव का काम करो, इसका एक्सकेवेशन करना, प्रिजर्वेशन करना और मूर्तियों का डॉक्यूमेंटेशन करना। जब मेरी पोस्टिंग, जब वहाँ काम शुरू किया तो बावड़ी करीब 20 से 25 फीट खुदी हुई थी, तो उसके बाद काम बनता। जब मैंने वहाँ से काम शुरू किया 1981 से ला के 1987 तक मैंने वहाँ काम करता रहा, उसके बाद मैं ट्रांसफर हो गया, लेकिन इसे 7 साल में अन्य काम के अलावा मुख्य काम ये रानी की वाव का था। करीब 150 फीट तो लंबी थी ये बावड़ी, और चौड़ाई में लगभग 60-65 फीट थी, और पानी का लेवल हमने जब खुदाई की तो 120 फीट थे।
1: अच्छा।
0: तो उसमें कई 7 मंजिला बावड़ी थी, स्टेप वेल जिसे हम कहते हैं, सीढ़ियों से पानी तक आना होता है, वो बहुत बड़ा कुआ था, और उसमें कई इतनी साइंटिफिक चीज़ें थी, जैसे हम मंदिर देखते हैं जिसमें शिखर ऊपर दिखता है, इसके अंदर शिखर के रूप में एक कुआ देखते हो जो जमीन के अंदर है, और पूरी मूर्तियाँ भरी हुई है, जैसे मंदिर के भाग होते हैं वैसे इसके भाग होते हैं अलग अलग। हम देखते हैं तो उसमें करीब 1500 मूर्तियाँ उसमें हमें मिली।
1: अच्छा।
0: जो दीवार पे लगी हुई थी, यथा स्थान पे थी, लेकिन इतनी सुंदर मूर्तियाँ थी कि उसमें खरोच तक नहीं आई, क्योंकि ऐसा अनुभव हमें हुआ है कि जब काम कर रहे थे, ये बावड़ी पहले पुराने समय में कुछ गिर चुकी थी, गिरने के बाद उसका पानी का लेवल ऊपर हो गया, जब हम पानी के लेवल ओरिजिनल लेवल तक गए तो हमने देखा कि मूर्तियाँ मिलती जा रही, नीचे मिलती जा रही है, और लोगों को एक धारणा थी कि रानी की जो बावड़ी है ये कौन रानी थी।
1: जी।
0: तो अब ये समस्या थी क्योंकि 11वीं शताब्दी की, उस समय राजा महाराज जो थे वहाँ के सोलंकी, लेकिन जब खुदाई के समय सबसे नीचे पानी में एक हमें मूर्ति मिली, वो एक महारानी की थी, और उसमें महारानी का नाम लिखा महारानी उदयमती।
1: अच्छा।
0: महारागी उदयमती, तो हमने अंदाज लगा लिया कि महारानी जो है यही रानी है और इसी के नाम से ये बावड़ी बनी है, क्योंकि अब ये किसी की स्मृति में बनाई, उनके प्रति थे भीमदेव सोलंकी जो 11वीं शताब्दी में थे, महमूद गजनवी से जिनका युद्ध भी हुआ था, वो उसमें एक मूर्ति लगी हुई है जिसमें राजा के पूरे लक्षण पूरे दिए हैं, तो वो मूर्ति राजा की है ना, भीमदेव सोलंकी ही होना चाहिए, तो ये सबसे बड़ी चीज़ उसमें मिली। और हमने गैलरीज के अंदर दशावतार नाम दिया एक गैलरी का, एक हमने वैष्णव गैलरी का दिया, और एक रुद्र रूप जिसमें कुएं के अंदर मूर्तियां लगी थी ऊपर से नीचे था, और इतना जोखिम का काम था कि 3 बार तो मेरे को इसमें ऐसे चक्कर जैसे आया कि मैं कब गिरा कह नहीं सकता। एक बार मचान टूट गया, और एक बार क्या हुआ कि जब इतनी ठंडी में जब काम कर रहा था तो कमर बिल्कुल अकड़ गई उसके अंदर, तो मैं एक कदम भी चल नहीं सका, लगभग 1 महीने में बीमार रहा, धीरे धीरे जब ठीक हुआ तो वापस में काम शुरू किया। उसी समय हमारे वाकणकर साहब सरस्वती नदी का सर्वे कर रहे थे, वो वहाँ आए और मेरे से कहा नारायण तुमने इतना बड़ा काम किया है इस पर PhD कर लो। तो मैंने कहा PhD कैसे होगी इस पर, बोले नहीं हो जाएगी, फिर उन्होंने उसकी सिनॉप्सिस बना के दी और कहा आप कर लो। तो क्या है कि जब मेरे को इतनी कठिनाई, इतना कष्ट हुआ, जब ये PhD के बारे सुना तो सारे कष्ट में भूल गया। मैंने कहा ये मेरा अब उद्देश्य नहीं रहा कि मुझे PhD करना है, तो मैंने पूरे मूर्तियों का क्लासिफिकेशन किया, उसमें विष्णु की जो मूर्तियाँ थी उनको बिल्कुल डिफरेंस, जैसे उनको नाम आते हैं जैसे आयुध के हिसाब से, जैसे माधव है, केशव है, श्रीधर है, प्रद्युम्न है, जनार्दन है, हम देखने में तो विष्णु दिखेंगे लेकिन उनके जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो हमेशा बदलते जाएंगे
1: जी।
0: और दूसरी गैलरी में दशावतार थे, विष्णु के दशावतार जो हुए वहाँ पे मत्स्य कुंभ वराह और नरसिंह जो है उससे मत्स्य कुंभ में तो मिली नहीं, बाकी मूर्तियाँ वहाँ पर हमें देखने को मिली और इतनी सुंदर मूर्तियाँ दशावतारों की तो खरोच तक नहीं लगी, ना कुछ नाक तक टूटी ना उंगलियाँ टूटी और इतनी सुंदर, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता, इतनी सुंदर मूर्तियाँ कभी आप खड़े रहें तो देखते ही रह जाएंगे और ऐसा लगता है मूर्तियाँ आपसे बात कर रही है। और वैसे ही वहाँ पर अप्सराओं की मूर्तियाँ मिली, अलग अलग भाव होंगी वहाँ, करीब 202 मूर्तियाँ अप्सराओं की थी जो अलग अलग कोई नृत्य कर रही है, कोई

0: मृदंग बजा रही है, कोई शंख बजा रही है, कोई आरती उतार रही है, कोई तलवार जला रही है, इस प्रकार के कहना चाहिए 202 ऐसे विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ मिली जो मैंने आज तक कहीं देखी नहीं। पूरे भारत में घूमा, कहीं नहीं देखी जो मेरे को रानी की वाव में दी। तो ये रानी की वाव मेरे लिए एक बहुत बड़ी महत्व की चीज़ है, माइल स्टोन है मेरे लाइफ का, जिसमें मैंने ये जो काम किया, क्योंकि ये काम उजागर हुआ, इतना प्रसिद्ध हुआ कि फिर इसने गवर्नमेंट ने योजना बनाई इसको विश्व धरोहर श्रेणी में लिया जाए। तो विश्व धरोहर श्रेणी में मुझे डिपार्टमेंट ने वो मेंबर भी बनाया, कमेटी का मेंबर भी, और 2014 में ये विश्व धरोहर घोषित हुआ। तो ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि रानी की वाव है।
1: निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये एक बहुत जोखिमपूर्ण रास्ते से होकर गुजरी है और उस पर आप सतत कार्यरत रहे हैं। इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे शहर या क्षेत्र रहे भारत के जहाँ पे आपका काम चलता रहा और आपका काम के कारण जाना हुआ?
0: ऐसे मैं तो काम तो की है विदिशा में, आपने बेसनगर नाम सुना होगा।
1: जी बिल्कुल।
0: जो विदिशा बेसनगर सम्राट अशोक की ससुराल थी, बहुत बड़ा नगर था। ताम्रस्म युग से महाभारत के युग में वहाँ के अवशेष मिले हैं, तो वो भी मैंने 3 साल काम किया था, 1975 से 1977 तक। लेकिन क्या है कि एक उत्सुकता होती है तो पता तो चला था कोई नगर दबा हुआ है। जब हमने नगर को खोलना शुरू किया तो नीचे हमें मकान दिखे, भवन दिखे, मंदिर के अवशेष मिले। हमने लगा कि हम कहाँ क्या चीज़ देख रहे हैं ये, जो इतने समय से गुप्त थे। तो हमने उसको उजागर किया उस नगर को, तो उसमें हमें कुछ सड़कें भी मिली, उसके अंदर कुछ मकान मिले, कोई रॉयल कॉम्प्लेक्स भी मिले, मंदिरों के अवशेष भी मिले। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि पुराने ज़माने के जो बर्तन चलते थे, आज जैसे स्टील के बर्तन चलते हैं, उस ज़माने में ऐसे बर्तन चलते थे, काले चमकदार चलते थे, जो सम्राट अशोक के समय चला करते थे, वो हमें मिले। बड़े छोटे हो वहाँ भेदभाव नहीं होता था, सब मिट्टी के बर्तन वहाँ प्रयोग किया करते। तो ऐसी ऐसी चीज़ें मिली और ऐसी दुर्लभ चीज़ें मिली कि उसमें कोई बखान भी नहीं किया सकता। वो मेरे जीवन में एक वो बहुत बड़ा पुरातात्विक उत्खनन था। हालांकि उत्खनन करने के पश्चात उसको बंद कर दिया जाता, यदि कोई प्रोजेक्ट हो बड़ा तब ओपन करते। वो नगर ऐसा था कि 3 तरफ तो नदियों से घिरा था, बेतवा और बेस और फिर उनका संगम, और एक तरफ उसकी सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी लंबी दीवार बनी थी, उसमें पानी की खाई थी, और पानी की खाई में बेस नदी का और बेतवा नदी का पानी, इसलिए ये त्रिकोणात्मक नगर से पूरा सुरक्षित नगर था। क्योंकि यहाँ सम्राट अशोक भी आए, उसके बाद भी राजा महाराजा वो आए। और ये विदिशा क्या है कि पहले इसको दसाण प्रदेश बोलते थे, ये दसाण प्रदेश की पूरी राजधानी थी, जो विदिशा के आसपास का क्षेत्र और झांसी तक का क्षेत्र इसमें होता था। तो यहाँ पे ऐसा कहते भी हैं कि रामायण के समय में शत्रुघ्न के पुत्र को ये पूरा राज्य यहाँ का दिया था, और महाभारत युद्ध के समय में पांडवों की तरफ से यहाँ के शासक लोग लड़े थे। नाम तो मिलते नहीं, लेकिन ऐसे कथानक हमें मिलते। तो इस प्रकार का जो नगर है आज भी दबा हुआ है, यदि आप जाएंगे तो वहाँ बड़े बड़े टीले देखने को मिलेंगे, पुराने मिट्टी के बर्तन भरे, लेकिन वो पूरा भारत सरकार ने उसको संरक्षित कर रखा है। इसलिए किया है कि भविष्य में कोई प्रोजेक्ट हो तो हम उसको पूरा ओपन कर सकें। इसके अलावा भी और ऐसे कई चीज़ें हैं, दुर्घटनाएं भी घटी मेरे साथ में, ऐसे नहीं कि नहीं वो है। अब जैसे भोपाल के पास एक कठौतिया गाँव है, जो रॉक पेंटिंग जो बहुत ही हुआ
1: है,
0: तो हमारे ग्रुप के साथ जो पुरातत्व के जो लोग हैं उनके साथ हम गए देखने के लिए, तो किसी ने मधुमक्खियों को छेड़ दिया। तो मधुमक्खियों को छेड़ने से क्या हुआ कि मधुमक्खियों से बचना बहुत मुश्किल है, तो वो हमने मित्रों को तो भगाया कि तुम चलो जल्दी जाओ, और मैं उस समय रह गया, तो मेरे पे मक्खियाँ पूरी झूम गई। तो मुझे करीब 70-80 मक्खियों ने काटा होगा। अब एक मक्खी काटने से कैसा असर होता है, वो 60-70 मक्खी काटने कैसा होता है, वो तो मैंने अपना पेशेंस रखा, धीरे धीरे पहाड़ी से उतरा, मक्खियाँ काटती गई। मैं थोड़ा भी यदि विरोध करता हूँ उनका तो
1: जान जो
0: बहुत ही हो जाए। फिर पहाड़ी उतरने के बाद मेरे पास मोबाइल था, बाई चांस मेरी बेटी को लग गया, वो डॉक्टर थी, वो पूरी एम्बुलेंस लेके आई और सबको दवाएं वगैरह थी, इंजेक्शन लगाए, और चिमटी से मेरे 70-80 पूरे मधुमक्खी के डंक निकाले। और डंक ऐसे जहाँ डंक निकलते हैं वो ब्लड आने लगता है, ऐसा लगता है जैसे मैं युद्ध से आ रहा हूँ, इतना पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। लेकिन मेरे को होश ही नहीं था, फिर मेरे को 24 घंटे आईसीयू में रखना पड़ा। जब उसका जहर उतरा धीरे धीरे दवाइयों से तब मैं ठीक हुआ। लेकिन क्या है कि मेरे को कठिनाइयाँ तो आती है, हम सब जानते हैं पुरातत्व का काम जोखिम का होता है, कठिनाई तो आती है। यदि हम वो ध्यान रखेंगे, कठिनाइयों को देखेंगे, तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि जो काम करना है तो करना है, ये मन में ठान लो। इतनी कठिनाइयाँ आ रही हैं, दुख दर्द हो रहे हैं, ये हो रहा है, इसको हम परवाह नहीं करते, क्योंकि तकलीफ के बाद ही इन्हें कहने चाहिए कांटों के रास्ते के बाद ही हम कहते हैं ना अच्छा रास्ता आता है, वो अपने को ही चुनना है।
1: निश्चित रूप से इस जुनून भरे सफर में जहाँ आपने कई सारी उपलब्धियाँ प्राप्त की, क्या कोई एक ऐसी चाह अभी भी है कि मैं ये काम भी कर लेता या वहाँ तक पहुँच पाता तो और अच्छा लगता मुझे?
0: अभी भी मेरे मन में तो बहुत है चीज़ें, खुशी देख रखी, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ। लेकिन अभी पराजी ने एक नगर मिला है, यहाँ रायसेन जिले में देवरी गांव है, पुराने नगर के टाउनशिप कहना चाहिए पूरी मिली है वहाँ, जिसको अभी पूरा काम नहीं किया है।

0: एक लंबी दीवार मिली है फोर्टिफिकेशन वाली जिसे कहते हैं, वहाँ स्थानीय लोग कहते हैं कि यह 80 किलोमीटर लंबी दीवार है, लेकिन जब नाप के देखे तो इतनी तो हमने लगी नहीं, लेकिन 25-30 किलोमीटर वो दीवार देखी हमने, लोगों ने कुछ तोड़फोड़ भी रखी, लेकिन उसके अंदर के हम देखते हैं तो बड़े बड़े भवन के वो अवशेष मिले हैं, मकान के हैं, यानी कहना चाहिए पूरे हैबिटेशन है वहाँ, कई मंदिरों के अवशेष है। तो ये अभी क्या है, ये जंगलों में होने के कारण बड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन हम चाहते हैं ये वाला काम है वो शीघ्र शीघ्र पूरा करें, और हमें करना है क्योंकि हमारी जो एक समिति है इतिहास संकलन समिति, उसका अध्यक्ष हूँ मैं यहाँ मध्य भारत प्रांत का, तो हमारे ग्रुप ने खोज 2014 में की थी, तब से इतनी भारत पर प्रसिद्ध हो गई ये दीवार और वहाँ के टाउनशिप, लेकिन अभी भी क्या है कि हम चाहते हैं कि जगह संरक्षित हो जाए, वो काम शुरू हो, और एक नगर एक नया चीज़ें लोगों के सामने आए तो पता चलेगा कि ये विकास के क्रम में ये नगर भी अंदर दबा हुआ है, सामने लोगों के आएगा
1: जी। इस तरह के काम जब लोगों तक पहुंचते हैं, लोग उसे देखते हैं, संरक्षित होते हैं, या वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण का वैलिडेशन पाते हैं, तो यकीनी तौर पर इतिहास और पुरातत्व को लेकर एक बहुत बड़ा संरक्षण होता है। लेकिन इस सब कार्य को जब पद्मश्री से नवाजा गया, आपके काम को एक सम्मान मिला, तो कैसा महसूस हुआ आपको, और क्या उसके बाद किसी तरह की कोई काम को लेकर जिम्मेदारी में अंतर आया?
0: ऐसे मेरे को जो पद्मश्री सम्मान मिला है पुरातत्व विज्ञान में मिला है
1: जी।
0: क्योंकि ऐसा है ना, ये पुरातत्व विज्ञान के हम लोगों ने एक जनता से जोड़ा है, इन लोगों से जोड़ा, विद्यार्थी जोड़ा, तो इसका प्रभाव बहुत हुआ है। इसके लिए प्रयास तो मैं कई वर्षों से कर रहा हूँ, लेकिन इस बार प्रयास जो मैंने किया बड़ा सफल रहा उसमें, तो इसमें मेरा काम देखा गया कैसा है, सब जगह इंक्वायरी भी हुई, सब चीज़ देखी, उसके बाद ये डिक्लेयर किया, मुझे पद्मश्री पुरस्कार दिया। लेकिन मिलने के बाद क्या है कि बहुत से लोगों को इसके मन में एक अभिमान जैसा हो जाता है, लेकिन मेरे मन में अभी भी वही है जैसे पहला था वैसे ही मैं अब हूँ, क्योंकि इतना सम्मान भारी है, इतना बड़ा सम्मान है, तो मैं अकेला तो उठा नहीं सकता, तो इसमें मेरे परिवार के लोग, मित्र लोग, पुरातत्वविद्ता सब लोग मिलकर इसमें हाथ लगाए, तब जो पूरा वो उठा रखा है, तब से मुझे ये मिला। और लेकिन अब इसके बाद में मुझे काम जो करना है वो तो करना ही है, जो काम करता हूँ पूरा करता हूँ, तो मेरे छोटे हुए काम जो अभी भी है जैसे रॉक पेंटिंग का है, वो टाउनशिप जो है जंगल में जो थी गोरखपुर के, उनको अभी भी मुझे काम करना है। शारीरिक दृष्टि से भी मैं थोड़े पैर में कोई तकलीफ हो गई, इसलिए काम में थोड़ी गति कम आ गई, लेकिन मन मेरा तो उससे भी तेज चल रहा है, तो मैं जैसे अभी ठीक होऊंगा, क्योंकि यदि मन यदि मेरा कच्चा हो जाएगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मेरे मन को पक्का करना पड़ेगा, और ये मन में जुनून करना कि मुझे वो काम करना, भले कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसी भी तबीयत हो, कितनी भी कठिनाई हो, मैं वो काम करूंगा और करने का प्रयास करता ही रहूंगा।
1: हम यही कामना करेंगे कि आप स्वस्थ रहें, अपने काम को अमली जामा पहनाते रहें, और इससे भी कुछ और बड़े पुरस्कारों के हकदार बने। बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी को हम तक पहुँचाने और सब तक पहुँचाने के लिए, बहुत आभार। नमस्कार।
0: नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए, इसके अंतर्गत अभी आपने सुनी भेंट वार्ता पद्मश्री से अलंकृत वरिष्ठ पुरातत्वविद डॉक्टर नारायण व्यास से अमिता त्रिवेदी की विशेष बातचीत। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। संग्रहालय से के अंतर्गत अब सुनिए जंग लगी तलवार का 8वां भाग।
3: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना, शिबू अपनी बीमारी से तंग आकर भगवान से मरने की कामना करता है। नारायणी उसको ऐसा सोचने से मना करती है। अपने भूखे बच्चे को नारायणी पानी पिलाकर चुप कराने की कोशिश करती है। यशवंत आकर नारायणी से 2 दिन बाद हड़ताल शुरू होने की बात बताता है। शंभू एक खाली डिब्बा लेकर मजदूरों से उसमें पैसे डालने के लिए कहता है, ताकि हड़ताल के समय भूखे बच्चों के खाने का इंतजाम किया जा सके। मजदूर शंभू का मजाक उड़ाते हैं। हड़ताल शुरू हो जाती है। बलबीर स्वामी यशवंत से और ज्यादा चंदा इकट्ठा करने के लिए कहता है। हड़ताल को 1 हफ्ता बीत जाता है। लिचू और शिबू हड़ताल की भयावहता पर चर्चा करते हैं। नारायणी को ठाकुर साहब के घर कपड़े धोने का काम मिल जाता है। वो ठाकुर साहब से बच्चे के दूध के लिए 5 रुपए मांग के लाती है। शिबू और लिचू इन रुपयों से नशा करने के लिए खलासी लंगर की ओर चल पड़ते हैं। अब आगे

0: अरे लीचू, अरे जल्दी जल्दी चलना।
1: अरे
0: देख लीचू, हमारे लौटने से पहले बच्चा जाग गया तो रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा उसका।
1: अरे भाई शिबू, अरे मैं ठहरा एक पैर का अपंग, भला इससे तीस कैसे चल सकता हूँ?
0: अरे कोशिश तो करना।
1: अरे शिबू, अपनी ताकत भर तो चल रहा हूँ।
0: अरे वो सामने देख, वो बल्लियों के पुल के पास कंपनी का अकाउंटेंट खड़ा है।
1: ये साहब तो सबसे अलग ही दिखते हैं, दूर से ही पहचान लो। माथे पर चंदन का तिलक, चोटी में फूल, सफेद चमकती हुई धोती और पैरों में कैनवस का जूता।
2: क्यों रे लीचू शिबू, ये जोड़ी कहाँ जा रही है?
1: कहीं नहीं साहब, कहीं नहीं, बस ऐसे ही टहल रहे हैं।
2: टहलने जा रहे हो?
0: हाँ जी, टहलने ही तो जा रहे हैं। हाँ,
1: अरे शिबू,
2: या पीने जा रहे हो?
0: जी वो
2: क्यों रे लीचू, तू अभी भी पीने पिलाने से बाज नहीं आता?
1: अरे नहीं साहब।
2: अरे शराब की वजह से ही तू अपंग हुआ है, जानता है? अब इस बीमार को जिंदा मारेगा क्या? तुम्हारे पतन का कारण है ये शराब, समझते क्यों नहीं? जाओ जाओ, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम खुद जहर पीना चाहते हो ना, पियो, मरो।
3: अरे भाई, मेरे पास शराब की कमी नहीं है, पर क्या तेरे पास पैसे हैं?
1: इधर देख, मेरी मुट्ठी में देख, रुपया है हमारे पास। बस जल्दी से ट्यूब की टोटी खोल दे और हम पी ले।
3: ठीक है, अच्छी बात है, ले खोल दी टोटी।
0: अरे लीजू भैया, अरे मजा आ गया लीजू भैया। अरे बहुत दिनों बाद पीने को मिली, वाह वाह वाह वाह, मजा आ गया।
1: तू तो बस यूं ही है, दो घूंट में ही तय बोल गया।
0: अरे नहीं नहीं, देख मेरे तो होश ही ठिकाने पर नहीं है। देख बात सुन, देख किसी तरह घर पहुंच जाऊं तो समझ लियो कि मैं तो भैया गंगा नहा लिया।
1: चिंता मत कर शिबू, चिंता मत कर, चल चल चल
0: चल चल भैया, चल चल।
1: शिबू शिबू, इस खटिया पर लेट जा। अरे थोड़ी देर के लिए सो जा, आराम आज। अरे ये क्या, इसे तो बिल्कुल होश नहीं रहा, बेसुध होकर खटिया पर गिर पड़ा। शिबु शिबु शिबु,
4: देखो तो, अरे इस बीमार आदमी को क्या हो गया भैया? देखो देखो,
5: अरे देख तो सही, जिंदा भी है या मर गया?
1: शिबु,
5: अरे ये तो सिर्फ बेहोश है, अरे सांस भी चल रही है अब इसकी।
6: ये मेरे घर के सामने इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? हटो, हटो, रास्ता दो मुझे।
4: नारायणी देख,
6: क्या हुआ?
4: पति की क्या हालत हो गई? देख देख,
6: क्या हुआ, क्या हुआ मेरे पति को? इनकी हालत तो वाकई बहुत खराब है, कोई मेरी मदद करो, बचाओ बचाओ इन्हें, कोई है?
1: अरे मैंने तो हजार बार मना किया है इसे, पर ये मानता ही नहीं। ये तो साइकिल की ट्यूब तक चबा जाता, ये किसी से भी नहीं डरता। नारायणी नारायणी, तुझसे भी नहीं डरता ये तो।
7: क्या भाई, भीड़ क्यों है यहाँ पर?
1: अरे तो शिबू पीकर बेहोश पड़ा है।
7: अरे चलो भागो तुम लोग यहाँ से, यहाँ पर तमाशा हो रहा है। चलो जाओ जाओ जाओ, अपने अपने काम पे जाओ।
6: यशवंत बाबू, देखो ना इन्हें क्या हो गया।
1: अरे कुछ नहीं हुआ है नारायणी, नशा उतरने पर ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
6: क्या बोलूं मैं, ये लिच्छू राक्षस है, इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मैं कहती हूँ पकड़ो इसे और मारो इसे।
1: अरे, अरे,

0: चुप हो जा नारायणी, चुप हो जा, सामने से सुपरवाइजर आ रहा है।
1: ये अपंग मरता भी तो नहीं है, अरे पीनी है तो खुद पी, मेरे आदमी को क्यों पिलाता है?
2: अरे
1: राक्षस, तेरे शरीर में कीड़े पड़े हैं, तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी।
2: नहीं
1: नारायणी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती।
2: नारायणी मैं तो
3: सुनो, ए सुनो, इधर लिच्चू है क्या? ओ तो तू यहाँ है, मुझे मालूम था कि तू शिबू के घर ही मिलेगा। देख, हड़ताल के समय भी मैंने रहम खाकर तुझे साहब की नाली साफ करने के लिए एक दिन का काम दे दिया, और तू काम पर ना आकर शराब पीने लगा है? चलो चल, उठ चल मेरे साथ।
2: चल तो रहा हूँ।
3: हाँ हाँ, नाली में से कीचड़ निकालना है, चल जल्दी कर।
2: चल रहा हूँ, चल रहा
4: हूँ। नारायणी
1: क्यों पीते हो शराब?
4: मुझे माफ कर दे नारायणी, मुझे माफ कर दे।
1: मुझे कम से कम इतना तो सोचा होता कि जिन रुपयों की आपने शराब पी वो बच्चे के दूध के पैसे थे। आपके लिए शराब जरूरी है या बच्चे का दूध?
4: देख नारायणी, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, माफी भी तो मांगी है मैंने।
1: रहने दो, माफी तो पहले भी कई बार मांग चुके हैं आप, लेकिन उससे क्या फायदा? चार दिन बाद फिर वही ढाक के तीन बात। आप मुझे ये बताइए कि खलासी लंगर गए क्यों आप?
4: वो लिच्चू है ना, वो
1: लिच्चू?
4: हाँ, वो ही मुझे जबरदस्ती लेकर गया था, मैं तो नहीं जाना चाहता।
1: लिच्चू तुम्हें कुएं में छलांग लगाने के लिए कहेगा तो क्या लगा दोगे तुम? बोलो, लगा दोगे?
4: बस कर,
1: बोलो, जवाब दो।
4: बस कर नारायणी, बस कर नारायणी, तेरे सिर की कसम, मैं सच कहता हूँ, तेरे सिर की कसम, जो फिर कभी शराब पीऊं, हाँ तेरे सिर की कसम, तेरे सिर की कसम, तू मुझे माफ कर दे।
1: ठीक है, मैं आपको एक मौका और देती हूँ, अगर फिर कभी देखा या सुना तो सच मुन्ना को लेकर साई नदी की गोद में समा जाऊंगी मैं।
4: क्या?

0: वही हो रहा है जिसका मुझे पहले से डर था। इस बार भी हड़ताल राजनीति की भेंट चढ़ गई। कहने को तो लोकल लीडर शास्त्री जी ने मजदूरों की हड़ताल करवा दी, मगर हड़ताल होने के बाद एक बार भी कोई गरीब मजदूरों की सुध लेने नहीं आया। अब तक तो लोगों के घरों में किसी तरह चूल्हा जलता रहा, लेकिन अब चूल्हे की आग ठंडी पड़ जाएगी। बच्चों के पेट भूख से कुल बुलाएंगे। कितना समझाया था कि अपनी आधी मजदूरी इस डिब्बे में डालो, पैसे बुरे वक्त में काम आएंगे, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी, किसी ने नहीं। अब तो भगवान ही मालिक है।
1: राम राम काका।
0: अरे जीते रहो भृगु, कैसे हो?
1: जिंदा हूं काका, लेकिन आप यहाँ क्यों बैठे हैं?
0: यहाँ बैठकर मैं रोज सामने वाले रोजगार दफ्तर को देखता हूँ। देखता हूँ कि कितने लोग यहाँ आते हैं, बेरोजगारी की भीड़ का हिस्सा बनते हैं और बिना रोजगार पाए निराश होकर वापस लौट जाते हैं।
1: काका, हड़ताली मजदूरों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है।
0: हाँ बेटा,
1: खाने को दाना तक नहीं है, जंगली लता और पत्ते तक तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं। पहनने को वस्त्र भी नहीं है, शरीर ढकने के लिए कपड़े के एक टुकड़े के लिए हाहाकार कर रहे हैं। बच्चों के पेट हड्डी से चिपके जा रहे हैं। क्या हम यही दिन देखने के लिए जिंदा हैं? बोलो काका, क्या हम यही दिन देखने के लिए जिंदा हैं?
0: अरे बेटा, अभी तो और बुरे दिन देखने पड़ेंगे। मौत का तांडव होगा यहाँ पर। हम अपने प्रियजनों की लाशों को चीलों और गिद्धों को नोच नोच कर खाते हुए देखेंगे। विवश होकर अपनी इन्हीं आंखों से देखेंगे बेटा।
1: इतना विभत्स दृश्य, काका, काका, कैसे रोका नहीं जा

0: सकता काका?
1: रोका जा सकता है बेटा।
0: कैसे?
1: हड़ताल खत्म हो जाए तो लोग काम पर जाएंगे, उनके पेट को अन्न नसीब होगा, तब कहीं जाकर इस प्रलय को रोका जा सकता है।
0: पर हड़ताल खत्म करना हमारे वश में तो है नहीं काका।
1: हमारे वश में तो कुछ भी नहीं है बेटा, हम मजदूर तो यूनियन के नेताओं के हाथों की कठपुतली हैं, जैसा नचाएंगे हमें नाचना पड़ेगा।

0: शिबू,
1: अरे लीचू भैया, ये यूनियन के नेता कर क्या रहे हैं? हड़ताल का तो कोई फैसला ही नहीं हो रहा है।
0: अरे यशवंत कहता है कि कुछ दिन सब्र से काम ले और उसे पूरा विश्वास है कि हम अच्छे दिन देखेंगे। अरे शिबू, हम लोग परमानेंट होंगे।
1: हम लोगों की छटाई नहीं होगी, हम लोग परमानेंट होंगे। है
0: बस शिवू भैया, उसी दिन का इंतजार है। हम परमानेंट होंगे और हमें तमाम दुखों से छुटकारा मिल जाएगा।
1: हाँ लीचू, लीचू भैया, हाँ। वो तेरा लड़का जगन्नाथ दिखाई नहीं पड़ रहा।
0: अरे वो शिवू, उसे मैंने भेटा गांव भेजा है।
1: भेटा गांव?
0: हाँ।
1: मगर किस लिए?
0: वो बुआई का समय चल रहा है ना, तो शायद उसे कोई छोटा मोटा काम मिल जाए।
1: अरे लीचू, इतने छोटे से बच्चे से काम कराएगा तू?
0: अब शिबू, क्या छोटा और क्या बड़ा, अरे भूख से भला कोई जीत सका है आज तक?
1: अरे हाँ, अरे लीचू, ये बात तो ठीक कहता है तू।
0: शिबू, 10-12 साल का तो हो गया है वो,
1: 7-8 साल बाद कंपनी में काम करने लायक हो जाएगा।
0: ओ,
1: बस शिबू, फिर मेरी चिंता खत्म।
0: अच्छा तू एक मिनट यही रुक।
1: अरे पर तू जा कहाँ रहा है?
0: अरे वो झाड़ी देख रहा है ना, बस वहीं तक अभी आया।
1: पर बात सुन, वहां जाकर करेगा क्या तू?
0: अरे मस्ती का सामान रखा है मैंने वहां पर, मैं अभी आया।
1: क्या हमारे दिन भी कभी फिरेंगे, या फिर यूनियन के नेता झूठे सपने दिखा रहे हैं? हाँ, जुलूस तो रोज ही निकलता है, नारे भी खूब लगते हैं, पर जुलूस और नारों से फायदा भी क्या? अरे इनसे पेट थोड़ी भरता है।
0: शिवू देख, ये रही लाल परी।
1: लाल परी? अरे लीचू भैया, ये तो विलायती की बोतल लगती है।
0: हाँ, बोतल विलायती है, एकदम हमारे यूनियन नेताओं की तरह।
1: क्या मतलब?
0: अरे मतलब ये मेरे भाई कि यूनियन नेता जो कहते हैं उसे करते नहीं, और जो करते हैं उसे कहते नहीं। ठीक वैसे ही जैसे कि इस विलायती बोतल में देसी शराब भरी हुई है।
1: देसी शराब? मगर ये बता, ये मिली कहाँ से?
0: अरे ठाकुर साहब ने फेंकने के लिए कूड़ा कबाड़ा दिया था।
1: अच्छा,
0: उसमें ये भी थी। लगता है ठाकुर साहब आजकल विलायती शराब से ऊब गए हैं।
1: अरे दिखा तो।
0: ले ले ले।
1: कमाल है, विलायती बोतल में देसी शराब है।
0: वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है।
1: ठहर लीचू, मैं जरा खोल के देखता हूँ।
0: खोलता हूँ।
1: अरे क्या खुशबू है, वाह वाह वाह, दिल करता है सारी की सारी पी जाऊं।
0: बीमार आदमी, अरे तूने नारायणी की कसम नहीं खाई थी कि तू दारू नहीं छुएगा?
1: अरे तू क्या समझता है, मैं औरत से डरने वाला आदमी हूँ।
0: ठीक है।
1: लेकिन सुन,
0: नारायणी के आने से पहले ही मैं उठकर चला जाऊंगा।
1: ठीक है, चले जाना।
0: लेकिन बात सुन, बोतल मेरे हवाले करके तो तू इसी समय जा सकता। जा।
1: अरे यार शिबू, जैसी तेरी घरवाली है ना,
0: बस वैसे ही मेरी घरवाली भी थी।
1: लेकिन शिबू, आजकल तो पढ़ी लिखी मेम लोग साहबों के साथ बैठकर पीती हैं।
0: अच्छा?
1: अरे उस दिन अफसर क्लब में मैं इन्हीं दो हाथों से मेम साहबों की उल्टी साफ करके आया हूँ।
0: अच्छा?
1: हाँ, जरा ठहर, दो घूंट पेट में उतार लूँ।
0: अरे आजा, बोतल मुझे ले, मैं भी तो चखूं इसका स्वाद। दे।
1: अरे लीचू,
0: कमाल है भाई। अबे बात सुन, सभी में एक जैसी नहीं होती लीचू। अरे ठाकुर साहब की बीवी को नहीं देखा तूने?
2: देखा है। अरे वो तो हर समय पूजा पाठ में लगी रहती है।
0: और उस दिन ना 3 अंग्रेजी बोतले फर्श पर पटक कर तोड़ डाली थी।
1: शिव शिव, आराम से आराम से।
0: और सुन,
2: जब मैं कंपनी में भद्राचल विभाग में था ना, तब जगन्नाथ की माँ पेट से थी। हम दिहाड़ी वाले रात को खलासी लंगर में बैठकर मजे करते थे, और जगन्नाथ की माँ बेचारी आधी रात तक सभी पर बैठकर मेरा इंतजार करती थी। शिबू, मेरा इंतजार करती थी।
3: सच्ची लीचू, बेचारी ने बहुत दुख झेले होंगे, है ना? अरे उसने अपनी जिंदगी में दुख के सिवा तो कुछ देखा ही नहीं होगा, है ना?
2: अब ये बात तो है। अरे शिबू, एक रात तो एकदम गजब ही हो गया।
3: क्या हुआ था?
2: अरे उस रात अपने बाल खोलकर रणचंडी का रूप धारण करके खलासी लंगर में पहुंच गए। हम लोगों के सामने कतार में रखी बोतलें उठा उठा कर पटकने लगे।
3: अच्छा,
2: अरे सारे खलासी तितर बितर हो गए। हाँ शिबू, बाप रे क्या भयानक दृश्य था वो।
3: अरे लीचू, तू बेचारी को बहुत बहुत सताता था, है ना? बहुत सताता था तू।
2: बेचारी को पूरे जीवन सताया है मैंने, हम तो जन्नत में शांति से होगी वो।
3: लीचू ना रो लीचू, लीचू मेरे यार, मेरे दोस्त, मैं भी सारी जिंदगी नारायण को कुछ नहीं दे सका। एक मेरे दोस्त, मुझे भी जीने का कोई अधिकार नहीं है।
2: शिबू लीचू
3: मैं मरूंगा।
2: अरे तू क्या,
3: मैं मरूंगा।
2: शिबू क्या बकवास कर
3: रहा है?
2: क्या रहा हूँ? नहीं लीचू
3: मुझे मार। अरे मुझे मार लीचू, मेरे मुंह पर जूते मार।
2: शिबू
3: नहीं तो नारायण के
4: क्या बात है बलबीर स्वामी? तुमने तो कहा था कि मुख्यालय से 2-3 प्रतिनिधि भी आएंगे, कंपनी के अधिकारियों से बातचीत करेंगे, हमारी मांगे मान ली जाएंगी, सभी मजदूर परमानेंट हो जाएंगे।
5: उम्मीद पर दुनिया टिकी है यशवंत, हमें भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए।
4: अरे कब तक, आखिर कब तक बलवीर स्वामी, कब तक हम झूठी उम्मीद पर आस लगाए बैठे रहेंगे? कब तक नंगे भूखे मजदूरों को झूठी दिलासा देते रहेंगे? अरे कब तक हम उनका विश्वास तोड़ते रहेंगे?
5: कुछ दिन और यशवंत, बस कुछ दिन और। अब और मुझे लगता है कि फिर उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, हमारी जीत निश्चित है।
4: हर बार बार बार यही एक आश्वासन बलवीर, यही एक आश्वासन। आश्वासनों के बलबूते जंग नहीं जीती जाती बलवीर स्वामी। अब वो वक्त आ गया है जब हमें कुछ ठोस करके दिखाना होगा, वरना क्या
5: यशवंत।
4: बलबीर, अगर एक बार मजदूरों का विश्वास यूनियन पर से उठ गया तो जानते हो क्या होगा?
5: क्या होगा?
4: सारे मजदूर मिलकर हमें साई की बालू में जिंदा दफना देंगे, समझे तुम? साई की बालू में जिंदा दफना देंगे।
5: तुम्हारी बातों से बगावत की बू आ रही है यशवंत।
4: अभी तो सिर्फ बू आ रही है बलबीर, अगर मजदूर भड़क उठे तो हमारी और तुम्हारी हस्ती तक मिटा डालेंगे। कोई जान तक नहीं पाएगा कि यहां यशवंत और बलबीर स्वामी नाम का कोई यूनियन नेता हुआ करता था।
5: यशवंत, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूं। तुम किसी भी तरह से मजदूरों को काबू में रखो उन्हें।
4: लेकिन कब तक?
5: बस कुछ दिन और। मुख्यालय से हमारे प्रतिनिधि 2-4 दिन में आते ही होंगे, फिर सब अपने आप ठीक हो जाएगा।
4: और हमारे वो लोकल लीडर शास्त्री जी का क्या हुआ? उनका नाम लेकर बहुत डींगे मारा करते थे तुम, कहां है अब शास्त्री जी? अरे एक बार भी हम मजदूरों के बीच नहीं आए, वो कहां खो गए उनके सारे वायदे, या फिर डर के मारे किसी बिल में जा छुपे हैं?
5: देखो यशवंत, शास्त्री जी का नाम सम्मान के साथ लो।
4: बलबीर, मैं शास्त्री जी से मिलना चाहता हूँ, उनके सामने बैठकर बात करना चाहता हूँ।
5: ठीक है, मैं तुम्हारी भावनाओं से शास्त्री जी को अवगत करा दूंगा, और फिर जब वो कहेंगे उनसे तुम्हारी मुलाकात की व्यवस्था भी हो जाएगी।
4: नहीं बलबीर, मुझे उनसे आज और इसी वक्त मिलना है, तो मेरे साथ अभी उनके पास चल रहे हो?
5: नहीं, अभी ये संभव नहीं है।
4: क्यों संभव नहीं है?
5: देखो शास्त्री जी बहुत व्यस्त नेता हैं, उनसे हर कोई जब चाहे नहीं मिल सकता भाई, पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है उनसे।
4: तो ठीक है, आज से शास्त्री जी हमारे नेता नहीं रहेंगे। मैं आज ही सब मजदूरों को खबर कर देता हूँ कि यूनियन का शास्त्री जी से कोई संबंध नहीं है, और चूंकि शास्त्री जी तुम्हारे सरपरस्त हैं, इसलिए हम तुम्हारी जगह भी यूनियन का नया अध्यक्ष चुनेंगे।
5: देखो देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, किसी भी हालत में तुम ऐसा नहीं कर सकते।
4: अरे कौन रोकेगा मुझे बलबीर, सारे मजदूर भाई मेरे साथ हैं।
5: ओहो, तो तुम्हारे पर निकल आए हैं।
4: नहीं बलबीर, मैं सिर्फ न्याय के साथ हूं, और न्याय मजदूरों के साथ है। मैं चलता हूं।
5: यशवंत ठहरो, तुम इस तरह नाराज होकर नहीं जा सकते। कुछ जानते भी हो इसका क्या परिणाम निकलेगा?
4: हाँ हाँ, मैं सब जानता हूँ।
5: क्या जानते हो?
4: यही कि यूनियन को तुम जैसे दगाबाज नेताओं से मुक्ति मिल जाएगी। यूनियन को नया अध्यक्ष मिलेगा जो मजदूरों की सच्ची रहनुमाई करेगा।
5: नहीं यशवंत, नहीं होगा ये कि हड़ताल टूट जाएगी, आंदोलन बिखर जाएगा। विश्वास करो मेरा यशवंत, मैं दगाबाज नहीं हूँ, मैं सच्चे मन से मजदूरों के साथ हूँ, उनका अपना साथी हूँ मैं।
4: मुझे अब तुम पर विश्वास नहीं रहा बलबीर।
5: मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं यशवंत?
4: शास्त्री जी से इसी वक्त मिलवा कर।
5: ठीक है, चलो
4: चलो आओ।
6: तुम वही हो ना दलितों के नए नेता?
4: जी।
6: शायद मैं तुमसे पहले भी एक बार यहीं पर मिल चुका हूँ।
4: बिल्कुल ठीक पहचाना शास्त्री जी आपने, आप हम लोगों के नेता हैं। आपका जातिवाद की बात करना शोभा नहीं देता, चाहे वो दलित हो या फिर ब्राह्मण या बनिया, काम करने वाले सिर्फ मजदूर हैं। मजदूर की सिर्फ एक ही जाति होती है, श्रम करना, खून पसीना एक करके निर्माण करना।
6: क्या तू नहीं जानता, सच्चिदानंद ने अपनी किताब में लिखा है, दक्षिण में कहीं ऐसा नियम है कि निम्न जाति के लोग दलितों से 33 फुट, उच्च जाति से 66 फुट और ब्राह्मणों से 99 फुट की दूरी पर खड़े हों। अरे किसी स्थान पर सफाई कर्मचारियों द्वारा राजपूतों जैसी पोशाक लेने पर मार मार कर हड्डियां तोड़ दी गई थी।
4: अरे ये सब बीती बातें हैं शास्त्री जी, आज हम आजाद मुल्क के आजाद नागरिक हैं, सरकार ने इस कानून को लागू भी करा दिया है। आज के युग में जातिगत भेदभाव के लिए सजा का प्रावधान है।
5: यशवंत ठीक कह रहा है शास्त्री जी।
6: तुम लोग किस काम से आए हो यह मैं खूब जानता हूँ। तुम लोग अब मेरी सलाह लेने आए हो, 7 दिन बीत गए।
7: अब मैं यूनियन के समझौता पत्र को यूं ही नहीं नकार सकता,
6: यही सोच रहे हो ना तुम? मैं यूनियन के समझौता पत्र को बिल्कुल नकार सकता हूँ, लेकिन तुम लोगों को मेरी बात माननी पड़ेगी।
4: कौन सी बात शास्त्री जी?
6: जिस समझौते की कंपनी दुहाई दे रही है वो समझौता जबरदस्ती हमसे करवाया गया है, इस बात का मैं सबूत दे सकता हूँ।
5: लेकिन शास्त्री जी हमारे पास फंड नहीं है, मुख्यालय की तरफ से अब तक कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा, दिहाड़ी मजदूरों के बीच कई लोग बीमार भी हैं, अगर वे एक एक करके मरने लगे तो।
6: सुनो, तुम लोगों को हिम्मत से काम लेना होगा, फंड का रुपया खत्म भी हो गया तो कंपनी की स्टील रॉड सीमेंट डीजल ऑयल पेट्रोल टिम्बर इन सब के ऊपर कूद पड़ना होगा, उन्हें ले जाकर बेच दो और फंड की व्यवस्था करो।
5: क्या
6: इंजीनियर को डराओ,

0: चिंता बिल्कुल मत करो, मैं लीगल फाइट करा दूंगा, तुम लोग हारोगे नहीं।
1: लेकिन कंपनी ने ऐसे पुराने सामानों के लिए कोटेशन मांगा है।
2: तो क्या हुआ, क्या हुआ?
0: अरे कोटेशन देने वाले व्यापारी जब कोटेशन का मुआयना करने आएंगे
2: तो तुम लोगों ने भगा देना,
0: पीट पीट कर उनका सर तोड़ देना, सामान को बेच देना और पैसे को दिहाड़ी मजदूरों में बांट देना।
1: लेकिन शास्त्री जी।
0: लेकिन लेकिन कुछ नहीं, ध्यान रहे, मेरी भी कुछ निश्चित कीमत है, ये मेरे एजेंटों ने बता दिया होगा, तभी मैं मजदूरों के बीच आ सकता हूं।
1: क्या आप

0: अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार। भाग लेने वाले कलाकार थे वीना होरा, दीपा रॉय, गीता वर्मा, श्याम अरोड़ा, केदारनाथ, मोहनलाल, दिनेश वर्मा, रजनीश शर्मा, कमल साथी, राजेश आहूजा, वीपी कालरा, उमेश श्रीवास्तव, सुरेंद्र सागर, बनवारी झोल, मंगत राम और संदीप। ध्वनि मुद्रण किया था रविंदर सिंह राजावत, एसपी राठौर और भगत सिंह ने। प्रस्तुति सहायक थे समीर झा।
1: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से के अंतर्गत जंग लगी तलवार की 8वीं कड़ी। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर आरंभ होती है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 5 बजे हैं और लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस पहुंचेंगे। इसके साथ ही उनकी फ्रांस और स्लोवाकिया की 2 देशों की यात्रा शुरू होगी। फ्रांस में प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। इंदौर में आयोजित 5 दिवसीय ब्रिक्स देशों के उच्च स्तरीय कृषि सम्मेलन के अंतिम दिन ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने शहर के मेघदूत उपवन में विकसित ब्रिक्स वाटिका में फलदार पौधों का रोपण किया। प्रदेश में उद्यमिता को नई दिशा देने के साथ रोजगार सृजन को गति प्रदान कर विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए कल कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विभिन्न जिलों के MSME उद्यमियों, स्टार्टअप्स और अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। 19वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 सोमवार को शुरू होगा। मुंबई में 1 सप्ताह तक चलने वाले इस उत्सव के दौरान वृत्तचित्र, लघु फिल्में और एनिमेशन सिनेमा का प्रदर्शन होगा। और ऑस्ट्रेलिया बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

भरी जिंदगी में योगाभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और एकाग्रता को बढ़ाता है। ये पढ़ाई और करियर के दबाव को कम संतुलन लाता है। दोस्तों, हमारे समग्र विकास के लिए योग के कई लाभ हैं। हम युवाओं को कभी पढ़ाई, कभी करियर और भविष्य की चिंताएं होती हैं। ऐसे में प्राणायाम और ध्यान मन को शांत करते हैं और एंजाइटी यानी चिंता को कम करते हैं। नियमित योगाभ्यास से मस्तिष्क में रक्त का संचार बेहतर होता है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता, फोकस और याददाश्त बढ़ती है। आधुनिक जीवन शैली में घंटों एक ही जगह बैठकर पढ़ने या काम करने से कमर और गर्दन में दर्द की समस्या आम हो गई है। ऐसे में योग शरीर को लचीला और पोस्चर को सही रखता है। दोस्तों, यौगिक क्रियाएं शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालती हैं और पाचन क्रिया एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखती हैं। इससे दिन भर ऊर्जा बनी रहती है। योग से भावनात्मक संतुलन में भी मदद मिलती है। युवावस्था में हार्मोनल बदलाव और रिश्तों के दबाव से मन विचलित हो सकता है। ऐसे में योग सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। तो दोस्तों, रोजाना फिट और सेहतमंद रहने के लिए योग में आसन और प्राणायाम का संतुलन बनाना सबसे अच्छा होता है। दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत भाग मिल्खा भाग फिल्म से सिद्धार्थ महादेवन की आवाज में।

0: दोस्तों, अब हम योग के फायदे के विषय पर आकाश द्विवेदी की वार्ता सुनते हैं।
1: नमस्कार साथियों, मैं हूं आकाश। पेशे से मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, इसलिए कंप्यूटर के सामने घंटों बैठे रहना, कोडिंग करना और काम के दबाव को जूझना मेरी एक जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। तो आज के संक में हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद महत्वपूर्ण विषय, जो कि है युवाओं के लिए योग और मानसिक स्वास्थ्य। तो आज हम जानेंगे कैसे हमारे इस भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल के बीच योग हमारे काम और दैनिक जीवन को बेहतर बना सकता है। एक इंजीनियर होने के नाते दिन खत्म होते होते पीठ का दर्द और मानसिक थकावट मेरी भी एक समस्या रही है, लेकिन जब से मैंने योग को अपनाया, इसे करना स्टार्ट किया, मुझे बहुत ही बदलाव महसूस हुआ खुद में। अब जब भी काम के दौरान मुझे लगता है कि मुझे मानसिक तनाव हो रहा है, तो मैं सिर्फ कुछ मिनटों के लिए अपना काम रोककर बस अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। आंखें बंद करके गहरी सांसें लेने का ना, वो जो एक ठहराव होता है, वो आपके दिमाग को भीतर से पूरी तरह फ्रेश कर देता है और आपके काम को फोकस बढ़ा देता है। तो मैं बोलूँगा कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए रोज सुबह 5 मिनट का कोई भी एक आसन, जैसे कि भुजंग आसन, आपकी रीढ़ की हड्डी को आराम देता है। और मानसिक शांति के लिए आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, जो मैंने खुद करके देखा है और इसके प्रभाव भी देखे। जब आप अपनी बाकी की जिम्मेदारियों के लिए इतना वक्त निकालते हैं, तो अपने स्वास्थ्य के लिए सुबह आप 15 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप कल सुबह जल्दी उठेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, खुद को स्वस्थ रखेंगे और प्रसन्न रहेंगे। धन्यवाद।
0: दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत दिल तो पागल है फिल्म से, लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में।

दोस्तों, भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है विज्ञान धारा योजना। ये वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक व्यापक योजना है। इसके कई प्रमुख उद्देश्य हैं, जैसे क्षमता निर्माण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संस्थागत और मानवीय क्षमता को बढ़ाना, मौलिक अनुसंधान, अनुवांशिक अनुसंधान और सहयोगात्मक अनुसंधान सहित विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देना, सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए नवाचार और नई प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देना। दोस्तों, ये योजना भारतीय शोधकर्ताओं और उनके अंतर्राष्ट्रीय समकक्षों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करती है। इससे ज्ञान का आदान प्रदान होता है, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को सुगम बनाया जा सकता है और भारत को एक वैश्विक वैज्ञानिक भागीदार के रूप में स्थापित किया जा सकता है। दोस्तों, विज्ञान धारा योजना भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभिन्न मौजूदा योजनाओं को एक एकीकृत ढांचे के अंतर्गत लाकर इसका उद्देश्य दक्षता में सुधार करना, दोहराव को कम करना और देश के वैज्ञानिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अधिक केंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित करना है। दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत आवारापन फिल्म।

दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे आज के विशेष स्तंभ हमारी धरोहर की ओर, जिसमें आज हम बात करेंगे आल्हा गायन के विषय में। आल्हा एक ऐतिहासिक वीर पुरुष के जीवन से संबंधित वीर रस प्रधान लोक गाथा है। आल्हा गायन का प्रचलन पावस ऋतु में है। बुंदेलखंड में आषाढ़ के महीने से लेकर सावन के कजरी त्योहार तक गांव गांव में आल्हा गाया जाता है। गांव में किसान लोग चौपाल चबूतरों पर एकत्रित होकर ढोलक की थाप पर मधुर परंतु ओजस्वी और बुलंद सुरों में आल्हा गाते हैं। दोस्तों, जब हम किसी दूसरे राज्य में रहने वाले व्यक्ति से बुंदेलखंड के बारे में पूछते हैं, तो हो सकता है कि वो इस क्षेत्र से बहुत ज्यादा परिचित ना हो, लेकिन उन्होंने लोकगीत आल्हा गायन के माध्यम से आल्हा ओदल के बारे में जरूर सुना होगा। आल्हा गायन बुंदेलखंड के सबसे महत्वपूर्ण वीर गाथाओं में से एक है। मौखिक परंपरा में इसका ऐतिहासिक महत्व है। ये केवल बुंदेलखंड में ही नहीं बल्कि राजस्थान, बेसवाड़ा, मिर्जापुर, इलाहाबाद, कन्नौज और पश्चिमी बिहार जैसे कई स्थानों पर भी गाया जाता है। इसमें श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वात्सल्य रस, रौद्र रस का सुंदर समावेश मिलता है। वीर रस इसमें प्रधान रस है। दोस्तों, इस गाथा में तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं धार्मिक सभी स्थितियों का समाहार मिलता है। दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत और करते हैं थोड़ा सा मनोरंजन। भूल भुलैया फिल्म से श्रेया घोषाल और एमजी कुमार की आवाज में।

दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलने से पहले आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है हमें जरूर बताइएगा। आप अपनी शिकायतें और अपने सुझाव हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है yuvvaniriva@gmail.com। तो फिर मिलने के वादे के साथ अपनी रेडियो दोस्त इशिका यानी मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ संध्या।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी।
2: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
3: आगे सैलरी? नए झुमके?
4: ना, पहले बचत।
3: पहले झुमके?
4: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
3: लेकिन झुमकों का क्या?
4: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
5: RBI कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से, और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी, वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
8: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए, प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत। और कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म गजनी से, जिसे आवाज़ दी है कार्तिक ने।

ए आर रहमान का संगीत प्रसून जोशी के लिखे बोल, कार्तिक की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म गजनी से। कार्यक्रम फिल्म संगीत का है और अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है शाहिद माल्या और सुनिधि चौहान की आवाज़ में फिल्म जब हैरी मेट सेजल से।

प्रीतम का संगीत अरशाद कामिल के लिखे बोल, शाहिद माल्या और सुनिधि चौहान की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म जब हैरी मेट सेजल से। और अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं शंकर महादेवन की आवाज़ में, फिल्म का नाम है लंदन ड्रीम्स।

शंकर एहसान लॉय का संगीत, प्रसून जोशी के लिखे बोल, शंकर महादेवन की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म लंदन ड्रीम से। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुन रहे हैं आप, और अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह और बादशाह, साथ ही जॉनिता गांधी और नकाश अजीज की आवाज़ में फिल्म ए दिल है मुश्किल से।

0: that baby.
1: Milky feelings.
2: प्रीतम का संगीत अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे बोल, अरिजीत सिंह, बादशाह जोनिता गांधी और नकाश अजीज की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म ए दिल है मुश्किल से। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं फरहान अख्तर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है रॉक ऑन।

शंकर एहसान लॉय का संगीत जावेद अख्तर के लिखे बोल फरहान अख्तर की आवाज़ में गीत आपने फिल्म रॉक ऑन से, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
1: ऑफिस जाने की जल्दी, मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
4: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
1: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा, स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं, और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
3: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राजधानी भोपाल में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को संबोधित किया। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीबों के कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को प्रत्येक नागरिक तक पहुँचाना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्री स्तरीय और अधिकारी स्तरीय बैठकों का समापन आज एक सर्वसम्मत इंदौर डिक्लेरेशन के साथ हुआ, जिसमें खाद्य सुरक्षा, किसान कल्याण, जलवायु सहनीय खेती, कृषि व्यापार और डिजिटल एग्रीकल्चर को नई दिशा देने वाले कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। मुंबई के सिडको एग्जीबिशन एवं कन्वेंशन सेंटर में आयोजित प्रतिष्ठित 10वें डेसेनियल एग्जीबिशन एक्सेलेंस अवार्ड्स 2026 में एमपी टूरिज्म को कॉन्फ्रेंस मैनेजमेंट में उत्कृष्टता का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। सुबह से पड़ रही भीषण गर्मी के बाद भोपाल, सीहोर, रायसेन में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच धर्मशाला में खेले जा रहे पहले वनडे मैच का बारिश की वजह से देरी से शुरू हुआ। 25-25 ओवर के इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म सोल्जर से।

अनु मलिक का संगीत समीर के लिखे बोल अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म सोल्जर से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है सत्या फिल्म से। आवाज़ है आशा भोसले और सुरेश।

विशाल का संगीत गुलजार के लिखे बोल, आशा भोसले और सुरेश वाडकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म सत्या से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है रेमो फर्नांडिस और जसपिंदर नरूला की आवाज़ में, फिल्म प्यार तो होना ही था से।

जतन ललित का संगीत समीर के लिखे बोल, रेमो फर्नांडस और जसपिंदर नरूला की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म प्यार तो होना ही था से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है कमाल खान की आवाज़ में, फिल्म का नाम है प्यार किया तो डरना क्या।

love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

जतिन ललित का संगीत, समीर के लिखे बोल, कमाल खान की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुन रहे हैं आप और अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म मेजर साहब से। आवाज़ है अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की।

आनंदराज आनंद का संगीत और उन्हीं के लिखे बोल साथ थे देव कोहली, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में आपने गीत सुना फिल्म मेजर साहब से। कार्यक्रम फिल्म संगीत का है और अगला गीत हम आपको सुनाएंगे कुमार सानू की आवाज़ में, साथ है संजीवनी, फिल्म का नाम है करीब।

अनु मल्लिक संगीत राहत इंदौरी के लिखे बोल संजीवनी और कुमार सानू की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म करीब से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है कुमार सानू की आवाज़ में, साथ है अलका याग्निक और फिल्म का नाम है गुलाम।

जतिन ललित का संगीत समीर के लिखे बोल, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म गुलाम से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है कुमार सानू की आवाज़ में, साथ है कविता कृष्णमूर्ति और फिल्म का नाम है डुप्लीकेट।

शाना मलिक का संगीत जावेद अख्तर के लिखे बोल, कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म डुप्लीकेट से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है विनोद राठौड़ की आवाज़ में, फिल्म का नाम है दूल्हे राजा।

आनंद मिलिंद का संगीत समीर के लिखे बोल विनोद राठौर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म दूल्हे राजा से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है कुमार सानू की आवाज़ में, साथ है अलका याग्निक, पूर्णिमा और उदित नारायण। फिल्म का नाम है आंटी नंबर 1।

आनंद मिलन का संगीत समीर के लिखे बोल कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक और पूर्णिमा की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म मांटी नंबर 1 से। और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: कवि श्री राग तेलंग।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीत में संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और इस यात्रा से आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगी। प्रधानमंत्री कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
4: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जीतेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के प्रति जवानों के साहस और सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले माह एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि

0: प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेना अध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में वाइस चीफ के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। खेलों में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 130 रन बना लिए हैं। बारिश के कारण मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। आइए अब हम आपको आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण दे दें। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष अष्टलक्ष्मी पूर्वोत्तर राज्य प्रसारित होगी रात 8 बजे। कार्यक्रम संस्कृति भारती प्रसारित होगा रात 9:30 पर। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में रात 10 बजे सुनिएगा यूएस प्रसाद का कर्नाटक सैक्सोफोन वादन। इन दोनों कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। सजीव फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने प्रसारित होगा कल दोपहर 11 बजे। कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुन सकेंगे कल दोपहर 12 बजे। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक जंग लगी तलवार की 9वीं कड़ी सुनिएगा कल दोपहर 12:30 पर। महिला कार्यक्रम सुनवाया जाएगा दोपहर 1 बजे। लोक संगीत का कार्यक्रम सुन सकेंगे दोपहर 1:30 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम सुनवाया जाएगा दोपहर 1:45 पर। ये तीनों कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति होंगे। आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति बच्चों का कार्यक्रम सुन सकेंगे कल दोपहर 2:30 पर।

युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी प्रसारित होगा कल शाम 5:02 पर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति होगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के मध्य बर्मिंघम में खेले जा रहे महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनवाया जाएगा कल शाम 6:30 से। इसे हम खेल की समाप्ति तक अनुप्रसारित करेंगे। रात 8:00 सुनिएगा समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष सशक्त भारत।

आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। रात 7:21 पर सुनिएगा कार्यक्रम ग्राम सभा। रात 7:45 पर सुन सकेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। कार्यक्रम नमस्कार भोपाल सुनिएगा कल सुबह 7:20 पर। सुरमई सवेरा सुनवाया जाएगा कल सुबह 8:30 पर। कल सुबह 9:15 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में सुनेगा अभिलाषा मिश्रा द्वारा गाए बघेली लोकगीत। सिंधी कार्यक्रम सिंधिया जी सुरहान सुनवाया जाएगा कल सुबह 9:30 पर। कार्यक्रम जिले की चिट्ठी सुन सकेंगे सुबह 10:00 और सामुदायिक गान शिक्षण पाठ कार्यक्रम प्रसारित होगा कल सुबह 10:05 पर।

0: ये थे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
2: एक जमाने से कहानी है, सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है।
2: कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 16वीं बैठक संपन्न। कृषि नवाचार और साझेदारी को मजबूत करने पर हुई चर्चा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भोपाल में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के कामों का किया जिक्र। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर सुशासन की मिसाल पेश करने वाला मध्य प्रदेश बना पहला राज्य। और प्री मानसून गतिविधियों से मौसम हुआ सुहाना, भोपाल, रायसेन, विदिशा सहित कई जिलों में हुई बारिश। अब समाचार विस्तार से। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स देशों की कृषि मंत्री स्तरीय और अधिकारी स्तरीय बैठकों का समापन आज एक सर्वसम्मत इंदौर डिक्लेरेशन के साथ हुआ, जिसमें खाद्य सुरक्षा, किसान कल्याण, जलवायु, सहनीय खेती, कृषि व्यापार और डिजिटल एग्रीकल्चर को नई दिशा देने वाले कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वैश्विक संकट और अनियमितताओं के बीच ब्रिक्स देशों की ये बैठक पूरी दुनिया के लिए आशा, विश्वास और सामूहिक जिम्मेदारी का सशक्त संदेश लेकर आई है। श्री चौहान ने बताया कि सदस्य और सहयोगी देशों के लगभग 60 विदेशी प्रतिनिधियों सहित कुल लगभग 100 प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कृषि और खाद्य सुरक्षा के प्रश्न पर ब्रिक्स देशों के बीच कितना गहरा जुड़ाव और गंभीरता है।
1: ब्रिक्स देशों के बीच आपस में कृषि व्यापार बढ़े, आपस में सहयोग हो, इस पर चर्चा हुई। आज दुनिया जलवायु परिवर्तन के खतरों से जूझ रही है। ऐसी परिस्थितियों में रीजनरेटिव फार्मिंग, जलवायु अनुकूल खेती और सतत कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना, इस पर भी चर्चा हुई है। फूड सिस्टम और कृषि के लिए नवाचार और साझेदारी को मजबूत करने जैसे विषयों पर चर्चा हुई है।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राजधानी भोपाल में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को संबोधित किया। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीबों के कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। सम्मेलन का उद्देश्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना है। श्री प्रधान ने यहाँ मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि एक समय वो था जब देश को खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने के लिए गेहूँ खरीद ना पड़ता था, और आज केंद्र सरकार 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो के हिसाब से मुफ्त अनाज मुहैया करा रही है।
2: आज हम एकत्रित हुए हैं भारत में विकास की, आत्मविश्वास की, प्रगति की एक उत्सव मनाने के लिए। बीते 12 साल से विश्व के अद्वितीय लोकप्रिय जननेता नरेंद्र मोदी जी की कार्यकाल 12 साल जब पूरा हुआ, उसके तहत पार्टी ने कार्यक्रम आयोजित किया। और
0: सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

0: और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी सहभागिता की। इससे पहले श्री प्रधान ने आज सुबह राज्य के खेल मंत्री विश्वास सारंग के साथ शूटिंग अकादमी में खिलाड़ियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खेल और शारीरिक शिक्षा को एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि खिलाड़ियों के शैक्षिक रिकॉर्ड और खेल उपलब्धियों को उनकी कार्य निष्पादन रिपोर्ट से जोड़ा जाएगा। श्री प्रधान ने बताया कि पहली बार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में खेल कोटा लागू किया गया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट की 21 जून को होने वाली पुनर्परीक्षा पारदर्शी तरीके से होगी। उन्होंने विद्यार्थियों को अफवाहों से बचने और अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह भी दी। प्रदेश में उद्यमिता को नई दिशा देने के साथ रोजगार सृजन को गति प्रदान कर विकसित मध्य प्रदेश बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए कल भोपाल के कुशाभाव ठाकरे सभागार में वृहद कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विभिन्न जिलों के MSME उद्यमियों, स्टार्टअप और अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। इस दौरान उद्यमियों को भू आवंटन पत्र, स्टार्टअप नीति अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न लाभ और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत युवाओं को हित लाभ भी वितरित किया जाएगा। कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप भी उपस्थित रहेंगे।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय में गृह विभाग की महत्वपूर्ण IG कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था, नक्सल उन्मूलन, साइबर अपराध नियंत्रण और पुलिस बल की मजबूती जैसे विषयों पर विस्तार से समीक्षा की गई। कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है और विकास कार्यों को भी नई गति मिली है।
2: मध्य प्रदेश पुलिस ने अपने राज्य से यशस्वी प्रधानमंत्री के संकल्प और गृह मंत्री के मार्गदर्शन में नक्सलवादियों का पूरा सफाया करके अपने दमखम पर सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल हासिल की, अपने यहाँ के इस नक्सलवादी दंश को समाप्त किया।
0: मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार पुलिस विभाग में भर्ती के लिए युवाओं को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने बताया कि लगभग 22,000 पदों पर भर्ती के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ने इवेंट, एग्जीबिशन और माइज के प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। मुंबई के सिडको एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित प्रतिष्ठित 10वें डेसेनियल एग्जीबिशन एक्सेलेंस अवार्ड्स 2026 में MP टूरिज्म को कॉन्फ्रेंस मैनेजमेंट में उत्कृष्टता का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार देश के इवेंट, एग्जीबिशन और माइज सेक्टर के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक माना जाता है। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक दिलीप कुमार यादव ने टीम के साथ ये पुरस्कार ग्रहण किया। महिला स्व सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शहडोल जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। कलेक्टर निवास के पास पुराने RTO कार्यालय की भूमि पर 3.5 करोड़ की लागत से सुविधाओं से युक्त विशेष परिसर का निर्माण किया जाएगा। ये परिसर महिला स्व सहायता समूहों की महिलाओं को अपने उत्पाद के प्रदर्शन और विपणन के लिए समर्पित होगा। लगभग 1 एकड़ भूमि पर परिसर का निर्माण होगा। परिसर में 32 दुकानें बनाई जाएंगी जिसमें महिलाएं अपने हस्तशिल्प, खाद्य उत्पाद, घरेलू सामग्री और अन्य उत्पादों की बिक्री कर सकेंगी। यहां 4 दुकानों के व्यावसायिक परिसर भी बनेगा जिसके किराए से पूरे परिसर का मेंटेनेंस किया जाएगा। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की रफ्तार फिर बढ़ गई है और मौसम विभाग ने प्रदेश में 15 से 18 जून के बीच मानसून की प्रवेशता की संभावना जताई है। इससे पहले प्रदेश भर में प्री मानसून गतिविधियां तेज बनी हुई हैं। कई जिलों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि का दौर जारी है। आज भी राजधानी भोपाल में दिनभर उमस भरी गर्मी के बाद शाम के समय तेज हवाओं के साथ बारिश हुई जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज भिंड, दतिया, छतरपुर, पन्ना और सागर जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में आज जबलपुर में एक निजी संस्था द्वारा विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संस्था का उद्देश्य लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करना और जरूरतमंद मरीजों के लिए पर्याप्त रक्त उपलब्ध कराना है। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में कल पशु कल्याण समिति, पशु क्रूरता निवारण समिति और जिला गौ पालन गौ संवर्धन समिति की बैठक आयोजित की गई और नर्मदापुरम जिले में पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र बढ़ाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे नवांकुर अभियान के तहत कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने ग्राम पंचायत रंडाल पहुंचकर सीड बॉल निर्माण गतिविधि में हिस्सा लिया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 16वीं बैठक संपन्न, कृषि नवाचार और साझेदारी को मजबूत करने पर हुई चर्चा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भोपाल में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के कामों का किया जिक्र। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर सुशासन की मिसाल पेश करने वाला मध्य प्रदेश बना पहला राज्य और प्री मानसून गतिविधियों से मौसम हुआ सुहाना, भोपाल, रायसेन, विदिशा सहित कई जिलों में हुई बारिश। इस बुलेटिन में इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

जय जवान जय किसान कार्यक्रम सुनने वाले अपने सभी भैया बहन को स्वाति बहन की बहुत ही बहुत राम राम। देखो भैया, अपन देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी जो है मौसम की आहट बारिश की तरफ बढ़ रही है, लेकिन ये केवल शुरुआत है। ऐसे में अपन को जो भी अपने जो खेत हैं या फिर अपने पुराने तालाब हैं उनके लाने जो भी कार्य करने हैं पहले से तैयारी करके रख लेने हैं, जिससे कि जब अच्छे से बारिश होए तो हम पानी जो इकट्ठा होता है उसका सही तरीके से संचय कर पाएँ। भैया देखो, अपनी आजीविका जो होता है या फिर अपने कामकाज होता है वो मुख्य रूप से अगर देखो जाए खेती है, और अगर अपनी खेती या फसल जी को अपन कहते हैं बहुत अच्छी होती है तो अपन को अधिक मात्रा में लाभ होता है। लेकिन कई बार का होता है कि अच्छी फसल ना होने के कई कारण भी होते हैं, जैसे कि अच्छे बीज का चयन ना हो पाना, या फिर जो है मिट्टी की जो गुणवत्ता है जिसमें कि सभी पोषक तत्वों को अपन लेते हैं उनमें कमी आ जाना, या फिर कभी कभी बारिश की कमी, ऐसे कारणों के कारण भी हमारी जो फसल है प्रभावित हो जाती है। तो भैया अगर अपन अभी से ही पानी के संचय की व्यवस्था करके चलते हैं तो पानी की कमी को अपन दूर कर सकते हैं। रही खेत की मिट्टी की बात, तो अपन देखो अपने कार्यक्रम के माध्यम से भी बताते हैं और अपने वैज्ञानिक भैया जो अपने गाँव में आउट हैं तो वे भी सभी को समझाते हैं कि जो मिट्टी परीक्षण है उसके माध्यम से अपने जो खेत हैं उनकी मिट्टी की जो तत्व है उनमें कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता है, और जो तत्व अपन को अभी नहीं उपयोग करने हैं सभी प्रकार की देखो वे अपन को जानकारी देते हैं, और मृदा कार्ड भी बनाते हैं जिसमें कि ये भी लिखो रहता है कि आगामी जो अपन फसल लें या जो बोनी करें तो वो किस प्रकार की फसल की बोनी करें। भैया जो इस प्रकार की व्यवस्था होती है इससे अपन को भूमि की पूरी पूरी जानकारी मिल जाती है, इसी के आधार पर जो है अपन अपनी नई फसल की जो है चयन कर सकते हैं। और अच्छे उत्पादन के लाने सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि भैया कि जो हमारी खेत की मिट्टी है वो ऊसर होवे से बचे, सभी प्रकार के जो पोषक तत्व हों वे उनमें मौजूद हों, और अगर अधिक मात्रा में मौजूद तत्व होते हैं तो अपनी खेती की लागत भी कम होते हैं। और भैया देखो ना, आपने कई बार कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि अधिक उत्पादन के लाने जो है रासायनिक उर्वरकों को ज़्यादा उपयोग करने लगते हैं, जिसमें शुरू में तो जो है अपन को लाभ अधिक मिला था और अपन को लगा था कि अपनी फसल

बहुत अच्छी हो रही है, और धीरे धीरे करके अगर देखो जाए तो इनको परिणाम का होता है कि अपनी जो खेत की मिट्टी है वह बंजर या ऊसर होने लगत है। इससे लंबे समय में जो है पैदावार कम हो जाऊत है। तो अपन अपने कार्यक्रम के माध्यम से सभी भैया बहन से यही कहें कि जहाँ तक हो सके जो जैविक खाद हैं या जैविक विधि से जो खाद तैयार करी जाते हैं, विभिन्न प्रकार की खादें होती हैं आजकल अपन देखें, तो उनको उपयोग करके अपन जो है अपनी खेत की मिट्टी को ऊसर होबे से बचा सकते हैं। अब जैसे कि हरे गोबर की खाद तो अपन सभी शुरू से पीढ़ी दर पीढ़ी उपयोग करत जा रहे हैं। इसके अलावा जो है बर्मी कंपोस्ट जो है एक बहुत अच्छी जो है खाद के रूप में है, और कहो भी जाते बर्मी मतलब कि केचुआ, केचुआ को तो मिट्टी की जो है आंत कहो जाते। अपन ने सभी जगह देखो है कि जहाँ पे केचुआ ज़्यादा मात्रा में होता है खेत में बिका है, ज़मीन के अंदर धीरे धीरे चलत हैं, जिससे खेत की जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाऊत है। साथ ही मिट्टी का में पानी का आवागमन भी बहुत अच्छे से होने लगत है। तो जब बारिश होते है तो बारिश के कारण जितों भी पानी इकट्ठो होते हैं वो धीरे धीरे गत जो है भूमिगत भी हो जाते हैं, और इसी कारणों के कारण जो है अच्छी मात्रा में अच्छी पैदावार भी अपन को मिलत है। इसके परिणाम स्वरूप अगर अपन कहें खेती की लागत की, तो अगर हमारी खेत की मिट्टी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है तो निश्चित तौर पे अपनी लागत भी कम हो जाते हैं। आजकल अपन देख रहे हैं ना कि बहुत प्रकार की जो है जैविक खादें तैयार हो जाती हैं। कछु खादें तो जैसे गोबर के माध्यम से है, इसके अलावा बहुत से भैया बहन जिन्होंने बायोगैस प्लांट लगाए हैं उसके बाद जो उसका अवशिष्ट बचत है वो भी एक प्रकार की खाद के रूप में अपन उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सूखे पत्तों, नीम की निवोली और विभिन्न तरीक़ों से जो है खाद को तैयार किया जा सकता है। और अगर अपन बर्मी कंपोस्ट की बात करें तो ये अपने आप में बहुत अच्छी खाद होते हैं, और इसके उपयोग के भैया रो बहुत से फ़ायदा भी हैं, जैसे कि मिट्टी की जल धारण की क्षमता जो है बढ़ जाती है। वहीं अगर अपन इस प्रकार की खाद का उपयोग करते हैं जैसे कि केचुआ खाद या जिसको अपन वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, इनके उपयोग से रासायनिक खादों का जो है उनके ऊपर अपनी निर्भरता भी कम हो जाती है, जिसके कारण जो अपनी खेती की लागत है वो भी कम हो जाता है। साथ ही साथ जो पर्यावरण है उनको भी कोई प्रकार का नुकसान नहीं होते। कई बार देखो जाता है कि कई प्रकार के कीटनाशक या अपन खाद रासायनिक खादों को उपयोग करते हैं तो उससे जो है अपनी प्रकृति को संतुलन सोई बिगड़ जाते हैं। तो भैया अपन अपने कार्यक्रम के माध्यम से यही कहें कि इस प्रकार की खाद का उपयोग करें जो अपनी मिट्टी को अच्छा बनाए, साथ ही पर्यावरण को नुकसान से भी बचाए। भैया देखो जब जैविक खाद की अपन बात कर रहे थे तो वैज्ञानिक भैया हरे भी यही सलाह देते हैं अपन को कि अपन को इस प्रकार से अपनों सामंजस्य बना के चल रहे हैं कि खाद का उपयोग सही मात्रा में करें। तो इसके लिए अपने लाने सबसे ज़्यादा ज़रूरी का होता है मिट्टी को परीक्षण। अगर अपन को खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी होते है तो उसी के हिसाब से जो है अपन खाद का उपयोग कर सकते हैं। तो अपन भी समझ भी जाते हैं कि किस प्रकार की खाद अपन को उपयोग करने हैं। अब जैसे कि बर्मी कंपोस्ट की बात जैसे अपन कर रहे हैं तो केचुआ द्वारा देखो जो तैयार करी जाती है एक प्रकार की जैविक खाद होते हैं। इसमें गोबर, सूखे पत्ते, अन्य जैविक कचरे को सड़ाकर नई तकनीक से जो है खाद तैयार की जाती है। इसमें पौधे के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं जैसे कि अपन देखा थे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और अन्य बहुत से कम मात्रा में ज़रूरत है जिनको अपन कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, वे भी भरपूर मात्रा में होते हैं। इसका उपयोग करे से मिट्टी जो है बहुत अच्छी हो जाती है, उसमें सभी प्रकार के जो हैं तत्व मौजूद हो जाते हैं, और खेती की लागत जैसे अपन ने बताई कि कम होते हैं। वहीं रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से ना करे से मिट्टी की गुणवत्ता भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जिन क्षेत्रों में तो देवी देखो आव है कि जहाँ की मिट्टी सख्त है वो धीरे धीरे करके नरम हो गई है, मिट्टी के पानी के रोकने की क्षमता बढ़ी है, मिट्टी भुरभुरी हो गई है, जिससे कि बहुत प्रकार के लाभ भी मिले हैं। जब मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है तो निश्चित तौर पे अपन कोई भी प्रकार की अगर फसल लेते हैं उसमें अपन को लाभ भी मिलते हैं। और हाँ भैया बहनों देखो कहते हैं ना कि मिट्टी में जो जैविक कार्बन है उसकी मात्रा को बढ़ाने में भी बर्मी कंपोस्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है। फसल की पैदावार और गुणवत्ता भी पहले से बेहतर हो जाती है। तो हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से सभी भैया बहन से यही कहें कि जहाँ तक हो सके विभिन्न प्रकार की जो जैविक खादें हैं उनका उपयोग करें। और हाँ भैया ये खाद तो ऐसी हैं कि अपन अपने खेत के आसपास एक जगह बनाकर उन्हें तैयार भी कर सकते हैं, जिससे अपनी
खेती की लागत भी कम हो जाती है।

और अपन को अच्छी प्रकार की जो है खाद भी प्राप्त हो जाते हैं। सो भैया देखो, अपनी बातें तो आगे भी हुई हैं और आज आप और उनके संगे संगे जो है ना अपने बालकों पर मोड़ा मोड़ी भी अपने कार्यक्रम फुलवगिया को सोई इंतजार करते हैं, लेकिन उनसे मिलवे से पहले सुनत है संदेश।

हमें पता है कि अपने सभी मोड़ा मोड़ी जो है अपने कार्यक्रम फुलबगिया को सोई इंतजार कर रहे थे। तो देखो अब दीदी आ गई ना अपना कार्यक्रम लेके, तो पहले तो सभी मोड़ा मोड़ी को स्वाति दीदी का प्यार भरा नमस्कार। हमें पता है आप सभी की जो है गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, और इन छुट्टियों में आपने कुछ ना कुछ तो नया सीखा ही होगा। कुछ बच्चे अपनी नानी नाना के यहाँ गए होंगे, तो कुछ बच्चे अपनी दादी दादा के यहाँ, और कुछ बच्चे कई जगह घूमने भी गए होंगे, यानी कि छुट्टियों का पूरा मज़ा लिया होगा। लेकिन बच्चों कहते हैं ना कि जब ये खाली समय मिलता है या ग्रीष्मकालीन छुट्टियां होती हैं, तो इसका हमें कुछ उपयोग भी करना चाहिए, यानी कि कुछ नया जो हमारे स्कूल खुल जाते हैं उस समय हम नहीं सीख पाते हैं, उतना समय नहीं मिल पाता है, उन कारों के लिए भी हमें थोड़ा समय निकाल के कुछ नया सीखना चाहिए। और बच्चों मुझे मालूम है बहुत से बच्चे इस समय में कुछ ना कुछ नया सीखते भी हैं। कुछ बच्चे जो है विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण केंद्रों में भी जाते हैं, कुछ बच्चे समर कैंप में भी जाकर सीखते हैं, तो कुछ बच्चे घर पर बैठकर ही विभिन्न प्रकार की चीज़ें सीख लेते हैं, यानी कि इन छुट्टियों का भरपूर सही उपयोग करते हैं। तो आप सब ने भी कुछ ना कुछ नया सीखा ही होगा, तो हमें पत्र के माध्यम से ज़रूर बताएं। और बच्चों इस समय देखो अपन देख रहे हैं ना कि गर्मी तो कभी सर्दी होने लगती है, सर्दी का मतलब कि बादल से छाने लगते हैं। जब बादल से छाने लगते हैं तो अपन देखते हैं विभिन्न प्रकार की जो हैं चिड़िया कभी पक्षी भी हमको आसपास दिखाई देते हैं। तो बच्चों एक छोटी सी आदत को अपनाकर हम इनको अपने घर में आंगन में अपनी बाखर में और अपनी छत की मुंडेर पर भी बुला सकते हैं, और उनको दाना पानी चुगते हुए देख सकते हैं। वो ऐसे कि एक छोटे से मिट्टी के सकोरे में इनके लिए थोड़ा सा पानी रख दें और थोड़ा सा कुछ खाने के लिए भी रख दें, जिससे अधिक मात्रा में पक्षी आएं बैठें और आपको चहचहाट भी सुनाई दे। तो जब छोटी छोटी नन्नी नन्नी चिड़िया तोते कबूतर मैना सब आपके घर पर आएंगे, इन दाना पानी को लेंगे और पानी में नहाएंगे, तो ये चित्र देखकर अपने दृश्य देखकर आप सबका मन बहुत खुश होगा। ऐसा लगेगा जैसे कि हम भी इनके साथ झूमें नाचें और गाएं, क्योंकि बच्चों प्रकृति में हम अकेले नहीं रहते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे पशु पक्षी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, और इन्हीं सबसे मिलकर बनता है हमारा पर्यावरण। और पर्यावरण को स्वस्थ सुंदर और अच्छा बनाने में हम बच्चे भी बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं छोटी छोटी क्रियाएं करके। और इस समय आप सभी जानते ना कि हर बच्चे को लगता है कि छुट्टियां हो गई हैं, थोड़ा देर तक हम और सो लें, थोड़ी देर तक और जाग लें, लेकिन ऐसा करने से कई बार क्या होता है हमारी जो अच्छी आदतें हैं वो हमसे धीरे धीरे दूर जाने लगती हैं। और तो और बच्चों जब हम सुबह देर तक सोते रहते हैं तो बहुत से प्रकृति के जो नज़ारे हैं उनको भी हम नहीं देख पाते हैं। आपने देखा होगा ना कि सुबह अगर हम जल्दी उठकर कहीं सैर पर जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं या किसी बाग बगीचे में जाके कसरत करते हैं, खेलते हैं कूदते हैं, तो हमारे आसपास बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, पेड़ों से जो है बैठे हुए जो पक्षी होते हैं उनके चहचहाने की आवाज़ आ रही होती है, और विभिन्न प्रकार के कभी कभी हमें नई तरीके के पक्षी भी अपने आसपास दिखाई देते हैं, रंग बिरंगे फूल, ये सब देख के कितना अच्छा लगता है। तो हम तो यही कहेंगे कि आप समय से उठें और समय पर सोएं, क्योंकि अगर हमें सुबह जल्दी उठना है तो जल्दी सोना भी पड़ेगा, और ये बच्चों बहुत अच्छी आदत होती है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए। जो है हम सबका खेलना कूदना कुछ प्रकार के व्यायाम करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा बच्चों आप देखो सभी जो हैं विभिन्न प्रकार के खेल खेलते होंगे, इसमें कई टीम भी होती हैं, मिलकर सब खेलते हैं कूदते हैं, और खेलने कूदने के साथ साथ पता ही नहीं चलता है हम खेल खेल में बहुत सी चीज़ें सीख भी जाते हैं। आपने देखा है ना खेल में हार भी होती है तो जीत भी होती है, जब हम जीतते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, और कभी कभी जब हम हारते हैं तो थोड़ी सी उदासी आ जाती है, लेकिन
जब हम हारते हैं तब भी उसमें हमारे लिए एक सबक होता है कि हमने गेम के दौरान या खेल के दौरान कौन कौन सी गलतियाँ की और हम अपने गेम जो खेल है उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं। तो बच्चों, खेल हमें एक दूसरे के साथ मिलना, खेलना और अनुशासन में रहना भी सिखाते हैं, साथ ही सबके साथ कैसे तालमेल बैठाया जाए ये भी तो बताते हैं। तो जब खेल खेल में हम इतनी सारी चीज़ें सीख लेते हैं तो निश्चित तौर पे हमें भी कुछ ना कुछ नया खेल को अपने जीवन का एक हिस्सा बना के चलना चाहिए। और आजकल बच्चों, जो केवल खेल जो है एक खेल ही नहीं होता है, खेल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की प्रतिभाएं भी आज उभर रही हैं। आप सभी ने देखा ही होगा विभिन्न प्रकार के खेल हैं, फुटबॉल है, हॉकी है, कबड्डी है, क्रिकेट है, आज सभी में अपने देश के कई जो हैं लोग ऊपर आ रहे हैं जिन्होंने अपनी एक अपनी पहचान भी बनाई है और देश को का नाम भी रोशन किया है। तो आप भी इन खेलों में अपना नाम आगे ला सकते हैं। तो बच्चों, अपनी बातें तो आगे भी होंगी, अब सुनते हैं बाल गीत।

तो बच्चों हंसी खुशी सबके साथ मिलकर खेलकर आप सब ने भी अपने घर में आसपास छोटे छोटे घरोंदे बना के ज़रूर खेला होगा, और इन खेलों में भी अपना ही अलग अंदाज आता है, मज़ा आता है। कोई बच्चा घर का काम करता है तो कोई बच्चे बाहर से सामान लाता है, और जब सब मिलके घरोंदा बना के खेलते हैं तो उसकी खुशी ही अलग होती है। आप सब ने भी बच्चों ऐसा खेल तो खेला ही होगा। इसके अलावा बहुत से बच्चे घर के अंदर भी बहुत प्रकार के खेल खेलते हैं, जैसे शतरंज, लूडो, सांप सीढ़ी, गुट्टे, और तो और बहुत से बच्चे घर के आंगन में सतोली, कबड्डी, छुपन छुपाई और विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं। और जब बड़े मैदान होते हैं वहाँ पर फुटबॉल, हॉकी और खो खो, कबड्डी, बास्केटबॉल, विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं। जब बच्चों हम खेलते हैं, कूदते हैं, तब हमारे अंदर अपने आप ही बहुत सारा जोश भर जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि हम अपनी पूरी टीम को पूरे मन से जिताने की कोशिश करें, और सारे बच्चे क्या है अपना पूरा पूरा सहयोग करते हैं। बच्चों आप जानते हैं खेलने कूदने से जो है हमारा शरीर जो है मजबूत हो जाता है, और जो बच्चे नियमित रूप से खेलते हैं कूदते हैं तो उनकी मांसपेशियां भी मजबूत हो जाती हैं, शरीर में फुर्ती आती है और बच्चों को रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है, यानी कि वो बच्चे कम बीमार पड़ते हैं। और जब हम कम बीमार पड़ेंगे तो और भी बेहतर हमारा शारीरिक और मानसिक विकास भी होगा। और बच्चों जो बच्चे लगातार खेलते हैं, नियमित रूप से खेलते हैं, उनमें कुछ चीज़ें भी और भी बढ़वा जाती हैं, जैसे कि उनका आत्मविश्वास, एकाग्रता, अनुशासन, धैर्य और निर्णय लेने की क्षमता। कई बार आपने देखा ना कि जब आप एक टीम बनाकर खेल रहे होते हैं तो आप सभी को अपनी पूरी टीम के लिए कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को कैसे खेलना है उसके बारे में बताना होता है। तो यही एक छोटा सा प्रयास जो है हमें अच्छे तरीके से निर्णय लेने की क्षमता भी सिखाता है। साथ ही जब मिलकर सब खेलते हैं तो हमें क्या होता है, अनुशासन आता है, और धैर्य रखकर जब हम खेलते हैं कि मान लो कोई सामने वाली जो टीम है आगे बढ़ रही है और हम धैर्य रख के परिश्रम के साथ आराम आराम से आगे बढ़ते हैं तो हम भी जीत जाते हैं, ये हमें धैर्य भावना सिखाती है। वहीं जब हम अच्छा परिणाम पाते हैं खेलों में तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। और बच्चों लगातार खेलते कूदते रहने से नियमित रूप से हमारी एकाग्रता, मतलब हमें याददाश्त भी बहुत अच्छी हो जाती है, जो कि हमें आने वाले जीवन के लिए कई प्रकार की चुनौतियों के लिए तैयार भी कर देती है। जब बच्चे खेलते हैं तो उनमें टीम भावना, सहयोग, नेतृत्व करने की क्षमता का भी विकास होता है। तो हम तो अपने कार्यक्रम के माध्यम से यही कहेंगे कि एक अच्छा होनहार बच्चा बनने के लिए खेलना,

0: कूदना, नियमित समय पे उठना और पढ़ाई लिखाई करना सब कुछ ज़रूरी होता है। बस ज़रूरी होता है हम इन सभी चीज़ों को समायोजित यानी कि समय पर करें। एक निश्चित समय पर खेलें कूदें, निश्चित समय पर पढ़ाई लिखाई करें और निश्चित समय पर सोएं और जागें, तभी हम जो है अच्छे बच्चे बन सकते हैं। और बच्चों, खेल कूद के अलावा भी कई प्रकार की चीज़ें हैं जिससे हमारा शारीरिक व्यायाम भी होता है और हम स्वस्थ और निरोग रहते हैं। आप सभी ने योगा के बारे में तो सुना ही होगा। आज के समय में योगा जो है बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। विभिन्न प्रकार के योगासन हैं जो कि बच्चों के पूरे विकास में सहयोग करते हैं। तो आज क्यों ना हम सुने वार्ता। वार्ता का विषय भी है योग और हमारा स्वास्थ्य। जानकारी दे रही हैं श्रीमती गायत्री शर्मा। तो आओ सुनते हैं।
1: जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, आज हम आपको योग के बारे में बताएंगे। योग का अर्थ होता है जुड़ना, अपने आप से जुड़ना। जब हम अपने आप से जुड़ते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में शांति होती है और हमारा शरीर स्वस्थ बनता है। तो बच्चों, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। इसके विपरीत, एक स्वस्थ और शांत मन वाला ही शरीर से निरोग होता है। योग एक ऐसी ही प्राचीन विद्या है जिसमें हम अपने मन और शरीर से सीधे तौर पर जुड़ते हैं और इससे निरोग बने रहते हैं। इतना ही नहीं, योगासनों और प्राणायामों के नियमित अभ्यास से हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है, याददाश्त मजबूत होती है, पढ़ा हुआ जल्दी याद होता है और देर तक याद भी बना रहता है। बच्चों का मन पढ़ाई में, जिन बच्चों का नहीं लगता है उन्हें अच्छे से मन लगने लगता है पढ़ाई में। और जिन बच्चों को नींद अधिक आती है, नींद पर उनका नियंत्रण नहीं रहता है, ज़्यादा सोने वाले बच्चों में से भी आलस कम होने लगता है योग के माध्यम से। और अगर किसी बच्चे को नींद ना आने की बीमारी की शिकायत है तो वह भी दूर हो जाती है। योग से हम आपको ढेरों शारीरिक और मानसिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, योग तो हमारे इच्छित फल देने वाला कल्प वृक्ष की तरह है, जो हमारे जीवन में हम जो भी चाहते हैं वो हमें मिलता है। जैसा हम संकल्प करते हैं वो पूरा होता है। तो चलिए हम जानते हैं कि योग आसन और प्राणायाम कौन कौन से हैं और उसके पृथक पृथक क्या लाभ हैं। परंतु इससे पहले हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे। सबसे पहले एक ये है, एक महत्वपूर्ण बात, आवश्यक बात ये है, ये याद रखना है आपको कि हमें प्रातः जल्दी उठना है। सूर्योदय से एक घंटा पहले जाकर योग करेंगे तो कई गुना लाभ प्राप्त होता है। अतः सुबह जल्दी उठने की आदत जरूर से डालें। सुबह उठकर याद किया हुआ कोई भी कार्य आप जब भी करते हैं तो वो आपको कई दिनों तक याद रहता है, उसको कभी आपकी शक्ति, स्मरण शक्ति से नहीं जाता है। सबसे पहले आप सुबह उठने की आदत डालें। अब हम चर्चा करते हैं योगासनों की। सबसे पहले नाम आता है सूर्य नमस्कार का। सूर्य नमस्कार में 12 आसन हैं। ये क्रमबद्ध अभ्यास है सूर्य नमस्कार का। यह एक क्रमबद्ध और लयबद्ध अभ्यास 24 घंटे हमारे ऊर्जा के स्तर को बनाए रखता है। अतः यह अपने आप में पूर्ण व स्वतंत्र यौगिक अभ्यास है। अगर अन्य आसनों या प्राणायाम करने का समय ना हो तो भी केवल इसकी 6 से 7 बार आवृत्ति कर लेने मात्र से पूरा लाभ मिलता है। तो बच्चों, हम ये कहना चाहेंगे, इससे शरीर के सभी अंग बलिष्ठ और निरोग होते हैं। यह रीढ़ की हड्डी व कमर को लचीला बनाकर स्वस्थ करता है, मानसिक शक्ति, शांति एवं ओज, ओस और तेज की वृद्धि करता है। सूर्य नमस्कार संपूर्ण शरीर को पूर्ण आरोग्य प्रदान करता है। इसमें प्रथम खड़े होकर हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लाते हैं, तदुपरांत हाथों को फैलाकर पीछे की ओर ले जाते हैं। यह उर्ध हस्तासन की स्थिति होती है। इसके बाद हाथों को सामने झुकाते हुए पाँव के पंजों को छूते हैं, यह पाद हस्तासन की स्थिति होती है। इसके बाद नीचे झुकते हुए दाएं पैर को आगे निकालकर उस पर बैठ जाते हैं, यह अश्व संचालन की स्थिति है। इसके उपरांत पर्वतासन में आकर साष्टांग दंडवत की मुद्रा में लेट जाते हैं। सातवीं स्थिति में भुजंग आसन में आते हैं। इसके बाद पुनः पर्वतासन में लौटकर अश्व संचालन स्थिति में आते हैं, पादहस्तासन में आ जाते हैं। उसके बाद पादहस्तासन 11वीं मुद्रा में हाथों को पीछे की ओर झुकाते हुए ऊर्ध्वहस्तासन से वापस प्रणाम और आसन में आकर समाप्त करते हैं। इस तरह से यह 12 आसनों का क्रम सूर्य नमस्कार कहलाता है। आइए अब हम इसके बाद बच्चों आपको इसके बाद कुछ ऐसे आसनों की चर्चा करते हैं जिनसे कद बढ़ाने में सहायता प्राप्त होती है। लंबा कद कौन नहीं चाहता। इसमें कई ऐसे ऐसे आसन हैं जो कि लंबाई बढ़ाने में सीधे सीधे मददगार होते हैं। तो बच्चों, अपनी हाइट बढ़ाने के लिए इसमें प्रमुख है ताड़ासन। इसमें क्या करने की प्रक्रिया है कि इसमें सीधे खड़े होकर हाथों को ऊपर उठाकर शरीर को खूब खींचते हैं, 30 सेकंड तक इसी मुद्रा में रुककर वापस आ जाते हैं। यह भी इसे 3 से 10 बार तक किया जा सकता है। दूसरा प्रमुख आसन है सर्वांग आसन। इस आसन में न केवल कद में वृद्धि होती है अपितु अपने नाम के अनुरूप ही इस आसन में सभी अंगों का प्रभाव पड़ता है, सभी अंगों पर अपना प्रभाव पड़ता है, जिससे आप में सभी जो आपके सर्वांग आसन कहलाता है इसमें मोटापा कम होता है, दुर्बल व्यक्ति जो होते हैं वो मजबूत बनते हैं, पेट ठीक रखता है, थायराइड को सक्रिय व स्वस्थ बनाता है, स्वस्थ कद वृद्धि में उपयोगी है। अन्य आसन इसके साथ में और भी हैं जो आपको कद बढ़ाते हैं, तो वो हैं आपका हलासन है, चक्रासन है और भुजंगासन है। हलासन लगाने के लिए सर्वांग आसन की स्थिति में ही, जो आपने अभी मैंने आपको पहले सर्वांग आसन बताया था उसी में ही आपको हलासन की स्थिति में जाना है कि सर्वांग आसन की स्थिति के सर के पीछे आप पैरों को ले जाएंगे और हलासन की स्थिति में आ जाते हैं। इसी तरह से चक्रासन में पीठ के बल लेटकर हाथों और पंजों के बल आप शरीर के पास सटाते हुए कमर को ऊपर उठाकर चक्रासन मुद्रा में आ जाते हैं। रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ और मजबूत लचकदार बनाने की यह सबसे अच्छा आसन है। तो बच्चों, मैं आपको और बताना चाहूंगी, चक्रासन से न केवल रीढ़ की हड्डी ही लचकदार बनती है अपितु यह व्यक्ति को सदैव जवान बनाए रखता है, बुढ़ापा नहीं आने देता। यह कमर दर्द, सिर दर्द को दूर करता है, सांसों के रोगों में लाभ करता है, आंखों की ज्योति भी इस आसन के अभ्यास से बढ़ती है। इसी के बाद है भुजंगासन, है ना। तो भुजंगासन में पेट के बल लेटकर हथेलियों को आगे की ओर रखते हैं, कोहनियों पर से हाथों को उठाते हैं। इसमें आगे से व्यक्ति भुजंग यानी सर्प की तरह उठ जाता है। सर्प आप जानते हैं ना, फन उठाता है ऊपर, इसी तरह से सर्प की तरह उठ जाता है। कद बढ़ाने में लाभकारी है यह। साथ ही यह सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आदि रीढ़ के समस्त रोगों में लाभकारी आसन है। तो बच्चों, मैं आपको बताऊंगी, बच्चों के लिए एक अन्य आसन और भी अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसका नाम है शीर्षासन। इसमें हाथों का सहारा लेकर सिर के बल उल्टे खड़े हो जाते हैं, परंतु ध्यान रहे कि इस आसन को किसी योग्य जानकार व बड़े व्यक्ति के निर्देशन में ही सीखा या किया जाए, अन्यथा लाभ के स्थान पर नुकसान भी हो सकता है। शीर्षासन जो है सभी आसनों का राजा है। इससे शुद्ध रक्त मस्तिष्क को मिलता है। शुद्धि अपनी जो मस्तिष्क में जब सीधा रक्त पहुंचता है तो हमारी जो बुद्धि है वो भी तीव्र होती है, एकाग्रता बढ़ती है, और इसके साथ साथ बहुत सारे लाभ हैं इसके। आइए हम कुछ आपको प्राणायामों की चर्चा कर लें। अभी मैंने आपको आसनों के बारे में बताया था कि आपको हाइट बढ़ाने के लिए कौन से आसन करने चाहिए और बुद्धि के विकास के लिए कौन से आसन हैं आपके, इसलिए आपके इसके अलावा है अब आपको कुछ प्राणायामों की चर्चा कर लें। प्राणायाम यानी कि सांसों पर नियंत्रण। हम जो सांस लेते हैं उस पर भी हमारा पूरा पूरा ध्यान रहना चाहिए कि हम किस तरह से सांस, पूरी पूरी सांस लेना है और पूरी पूरी सांस छोड़ना होता है। भस्त्रिका कहते हैं प्राणायाम, प्रमुख रूप से 8 प्रकार के होते हैं। ये हैं भस्त्रिका प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम है, बाह्य प्राणायाम है, उद्जायी प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है और उद्गीत प्राणायाम है। तो कपालभाति प्राणायाम में नाक से सांसों को बाहर छोड़ने मात्र से ही पर ही ध्यान दिया जाता है। तो जब आप तेजी से सांस को बाहर फेंकेंगे तो आपका पेट अपने आप ही अंदर की तरफ जाएगा। ये जो हम कपालभाति जब करते हैं तो इस प्रक्रिया में जो आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इस क्रिया में पेट के भीतर सिकोड़ने से बाहर फूलने की क्रिया होती है। यह प्राणायाम मोटापा, मधुमेह और मधुमेह मतलब डायबिटीज, कब्ज सहित अनेक कई बीमारियों को ठीक करता है, यहाँ तक कि कैंसर तक इससे ठीक हो जाता है। जिनको कैंसर हो जाता है अगर उसने 1 घंटे कपालभाति प्राणायाम कर लिया उसमें भी लाभ होता है। तो इतना ही नहीं बच्चों, और मैं आपको ये बताना चाहूंगी, अपने आसपास जितने बड़े बुजुर्ग हैं आपके परिवार में आप उन्हें भी कराइए, उससे भी उन्हें भी लाभ होगा और आपका भी लाभ होगा। अपने मम्मी पापा को कराओ, घर में दादा दादी हैं उन्हें कराओ, घर के बड़ों को, जिससे उन्हें डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े। इतना ही नहीं, इस प्राणायाम से चेहरे का सौंदर्य भी निखरता है। विचार शक्ति बढ़ाने के लिए व सांस के रोगों में अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है। इसे करने से हमारी पढ़ाई में भी मन लगाने में लगता है, बुद्धि के विकास के लिए भी, एकाग्रता के लिए भी, पढ़े हुए विषय को देर तक याद रखने में भी ये आसन बहुत कारगर होता है। कि जो स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए, आपकी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए आगे है ध्रुवासन, वृक्षासन। तो इसमें क्या अभ्यास प्रतिदिन आप 1 से 5 मिनट तक करना चाहिए। इसके अलावा पद्मासन है, मैं बैठकर हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखकर 1 से 5 मिनट तक का ध्यान का अभ्यास

0: भी करें, त्राटक भी कर सकते हैं। त्राटक करने से भी बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है, और रात को सोने से पहले अगर आपने 5 मिनट का ध्यान कर लिया जाए तो मन शांत होगा और नींद भी अच्छे से आएगी। आजकल बच्चों में एक गलत आप भी कुछ आसपास भी देखते होंगे कि गलत खानपान जो बच्चों में हो गया है, उसके लिए बच्चों में आपसे एक विशेष तौर से ये कहना चाहूंगी कि आजकल बच्चों में जो गलत खानपान की आदतें हैं उससे आपकी पेट की समस्याएं दिन पर दिन होती जा रही हैं, है ना। तो उस कब्ज, उससे आपको क्या है, कब्ज की शिकायत बनी रहती है, से सांस भी फूलने लगता है, कब्ज समस्याएं तेजी से उभर रही। अतः बाजार से बिल्कुल भी कोई भी चीज लेके ना खाएं, घर में बना हुआ हल्का सुपाच्य भोजन ही लें, कच्चा सलाद व फलों को खाएं, प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करें, अधमत्स्येन्द्र आसन करें, उत्तान पाद आसन करें, मरकट आसन करें, पवन मुक्त आसन इत्यादि, ऐसे बहुत से आसन है जो हमारे पेट को भी ठीक रखते हैं। प्रतिदिन के योग अभ्यासों, ध्यान व प्राणायाम के उपरांत शवासन जरूर करें, इससे अद्भुत शक्ति की प्राप्ति होती है। आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए भी, चश्मा उतारने के लिए भी त्राटक करें। कान के रोगों से छुटकारा पाने व श्रवण शक्ति के लिए विकास हेतु भ्रामरी प्राणायाम उत्तम है। इसी के साथ साथ बच्चों में आपको और बताना चाहूंगी, इसके अलावा बालक व बालिकाओं में इन आसनों को भी अनेक दैनिक योगासनों में शामिल कर लाभ उठा सकते हैं। जैसे और भी आसन है, पद्मासन है, मरकट आसन है, कटि उत्तान पाद आसन है, धनुरासन है, सलभासन है, नौकासन है, उष्ट्रासन है, अर्धचंद्रासन है, त्रिकोणासन है, मकरासन है, बालासन है, गौमुख आसन है, पवन मुक्तासन है, मत्सासन है, वज्रासन है, सुप्त वज्रासन है, वक्रासन है, योग मुद्रासन है, मंडूक आसन है, सिंहासन इत्यादि, इनमें से अनेक कितने ही आसन बन पड़ते हैं जो समय अनुसार अपना इसका लाभ आप उठा सकते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन बच्चों आपके आंखों के अभ्यास भी आपको कर लेने चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चों की आंखों की ज्योति बहुत जल्दी खराब हो रही, छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लगता है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप आंखों के आसन भी करें, आंखों के जो व्यायाम है वो भी करें। इसमें मुख्य रूप से आंखों को आपको गोल गोल घुमाना है, चारों तरफ आप आंखों को घुमाएं, और उसके अलावा आपको गोल गोल घुमाएं, दाएं बाएं देखें, आगे ऊपर नीचे देखें, गोलों आंखों के गोले जो है उनको त्रियक में चलाएं व विपरीत में घुमाएं। आप इस तरह से करेंगे तो आपकी आंखों की ज्योति भी बढ़ेगी। तो बच्चों मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इसमें प्रमुख अभ्यास है, इससे ही आंखों में सदैव निरोग भी बनी रहेंगी आपकी आंखें और आप हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे।
1: तो बच्चों अभी आप सभी सुन रहे थे वार्ता जिसका विषय था योग और हमारा स्वास्थ्य, और जानकारी दे रही थी आप सबको श्रीमती गायत्री शर्मा। तो आप सभी ने देखो विभिन्न प्रकार के योग आसन के बारे में जाना, जो कि सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, योग आसन को अपनाते हैं, तो हमारे शरीर का संपूर्ण विकास होता है और हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है। हम हष्टपुष्ट रहते हैं और तो और हमारी एकाग्रता शक्ति भी बढ़ती है। और बच्चों इस सब के अलावा सबसे अच्छा जो फ़ायदा होता है कि हमारे व्यक्तित्व में भी जो है परिवर्तन आता है। हमारे सोचने की समझने की क्षमता बढ़ती है, देखने की क्षमता बढ़ती है, और बच्चों की अपेक्षा हम जो है बहुत ही बेहतर तरीके से निर्णय भी ले सकते हैं। और ये सब तभी होता है जबकि हम योग के महत्व को जानें, समझें। और बच्चों आज के समय में बच्चे ही नहीं, अपने देश में, विदेश में, सभी जगह योग को जो है महत्व दिया जा रहा है। हर कोई योग को अपना रहा है, विभिन्न प्रकार के प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और कई आसन करके विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान भी हुआ है। तो हम तो अपने कार्यक्रम के माध्यम से सभी बच्चों से यही कहेंगे कि योग आसन को अपनाएं और जीवन को खुशहाल बनाएं। तो आप सभी भी योग आसन को अपनाएंगे, मुझे मालूम है कि आप अपनी दीदी की बात टालेंगे नहीं, एक बार शुरुआत करें। हो सकता है शुरू में थोड़ी परेशानी लगे, लेकिन धीरे धीरे करके आप सब सीख जाएंगे। अब हो रहा है आप सभी से विदा लेने का समय। सभी बच्चों को स्वाति दीदी का प्यार दुलार।

आप सब भी जो है योग को अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं। केवल बच्चों के लिए ही नहीं, बड़ों के लिए भी योग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। विभिन्न प्रकार के योगासन करके हम हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रह सकते हैं। अगर हमें हष्ट पुष्ट स्वस्थ रहना है तो योग को जरूर अपनाना है, तभी हम खुशहाल जीवन जी सकते हैं। और भैयारों, अब हो रही है चलबे की बेरा। सभी किसान भैयारों को स्वाति बहन की राम राम।

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण की विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
1: नमस्कार। 10 जून 2026 एक ऐसी तारीख बन गई है जो कि इतिहास के पन्नों में भी दर्ज होगी और लोकतंत्र जिसकी बात सिर्फ बात नहीं होती बल्कि भारत उस पर गर्वान्वित महसूस करता है उस इतिहास में भी लिखी जाएगी। नरेंद्र मोदी एक तरीके से जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। निर्वाचित एक प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल उन्होंने अपना पूरा किया है और इसके अलावा एक दिन पहले ही केंद्र सरकार के 12 साल भी कंप्लीट हुए हैं। तो अब विकसित भारत की बहुत बात होती है लेकिन एक ऐसा मंत्रालय जिसकी बात गांव-गांव तक पहुंचती है और सिर्फ बात नहीं क्या वाकई में गांव के लोग उस बात को महसूस भी करते हैं। जी हाँ, हर घर जल और नल ये एक ऐसी योजना रही जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा 12 साल में रही और हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल जी। बहुत बहुत स्वागत है पाटिल जी आपका।
2: नमस्कार।
1: दो कीर्तिमान स्थापित हुए 12 साल सरकार के और दूसरा प्रधानमंत्री ने वो रिकॉर्ड तोड़ा जिसकी चर्चा अब तक सबसे ज्यादा होती थी जवाहरलाल नेहरू की। दोनों को आप किस तरह देखते हैं?
2: देखो, 12 साल कंटिन्यू काम करना, लोगों की जो आस है जो अपेक्षा है वो पूरी करना और बार बार जीतना और ऐसे मुश्किल परिस्थिति में जीतना ये अपने आप में बड़ी बात होती है। जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, वो सब लड़ते थे इलेक्शन उस टाइम कांग्रेस के सामने कोई विरोध पक्ष नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जब इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके सामने तो बहुत ही पावरफुल लोग, सीनियर लोग, कांग्रेस खुद लड़ती है, उसके अंदर अपने बलबूते पे लड़कर वो आना और 12 साल कंटिन्यू सेवा करना और करते रहना, यही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और उसको हम देखेंगे कि 12 साल में क्या किया उन्होंने, लोगों की सभी अपेक्षा पूर्ण करने में उत्तीर्ण हुए। एक लाइन में अगर कह सकते हैं तो इतना कह सकते हैं, क्योंकि काम तो उसके अगर लिस्ट बनाने बैठेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत काम उन्होंने किए, देश को सुरक्षित कर दिया, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, सभी समाज के लिए कोई ना कोई योजना बनाकर उनको लाभान्वित करने का काम ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है।
1: पाटिल जी, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता रहे क्योंकि आपके साथ तो उनका एक जो साथ और अपनापन रहा वो सिर्फ अभी 12 साल का नहीं, वो तो कितने समय पुराना हो गया गुजरात से लेकर दिल्ली तक। आपने क्या देखा कि इतना ज्यादा हमेशा नरेंद्र मोदी के खिलाफ कसीदे इन 12 सालों में भी, जब से सरकार बनी अब गिरेगी अब गिरेगी अब गिरेगी यही बात होती रही और सरकार ने 12 साल कंप्लीट कर लिया?
2: देखिए, हमारा कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं, तो इन्होंने कोशिश तो बहुत कर ली मगर जो उनकी लालसा थी कि सरकार को गिरा देंगे, सरकार बना लेंगे, मुझे लगता है शायद वो लोग जो उनकी इच्छा इस जन्म में पूरी होने की संभावना मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि पूरा देश मोदी साहब के साथ खड़ा है और इसके लिए खड़ा है कि उनकी जो अपेक्षा थी वो पूर्ण करने वाला एक सक्षम व्यक्तित्व उनमें उस पर दिखता है और ये मोदी साहब ने प्रूव कर दिया है कि वो सपने नहीं दिखाते। अगर आप एक लाइन में देखेंगे तो आज तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और देश के प्रधानमंत्री बने, उनके सामने कोई आंदोलन नहीं हुआ कि हमें रोड चाहिए, पानी चाहिए, गटर चाहिए या कोई भी चीज़ के लिए। उन्होंने डिमांड कोई करे उसके पहले ही उसकी आवश्यकता को समझ के समय के पहले उसको पूरा कर दिया। ये आज तक कभी कोई मुख्यमंत्री ने या प्रधानमंत्री ने अपने शासनकाल में कभी नहीं किया, इतना बड़ा काम उन्होंने कर दिया है।
1: मोदी जी को इतना टारगेट क्यों किया जाता है? मतलब जब वो मुख्यमंत्री थे किसी मुख्यमंत्री की इतनी चर्चा नहीं होती थी।

0: रिकॉर्ड हुआ 12 साल बेमिसाल तो रही है। आज नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है।
1: तो यही तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का ये कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास ही है जिसने यहाँ तक उनको पहुँचाया है?
0: नहीं, आत्मविश्वास तो उसकी तो प्राथमिकता है, मगर उसके साथ प्लानिंग है। वो जमीन से जुड़े रहते हैं, लोगों की क्या समस्या है उसको ध्यान देते हैं, उसको कैसे उनको मदद की जाए उसके लिए सोचते हैं, उनकी योजना बनाते हैं। टारगेट अगर महिला के लिए तो महिला की योजना बनेगी, किसान के लिए तो किसान के लिए योजना बनेगी। हमारे देश में हम कहते हैं कि ये तो खेती प्रधान देश है, मगर आज तक कभी किसानों के लिए योजना नहीं बनी थी जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पहली बार बनाई। यानी ऐसे कई आपको इंसिडेंट्स मिलेंगे कि जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, ऐसी योजना बनाकर उन्होंने मदद की है।
1: पाटिल जी, अब हर घर जल और नल, ये योजना, मतलब ये विडंबना ही है इस देश की कि आज़ादी के बाद इतनी सारी चीज़ों पर बात होता था लेकिन तब भी महिलाओं को सिर पर घड़ा रखकर लाना पड़ता था। मैंने कई गांव में जाकर देखा उत्तर प्रदेश के कि महिलाएं इतना खुश होती थी। ये जो विजन है, और क्योंकि आपके मंत्रालय से संबंधित है, मैं थोड़ा ये समझना चाहूंगी कि ये विजन अब तक क्यों नहीं आ पाया किसी के दिमाग में, और अब इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है?
0: किसी को गरीब लोगों के बारे में सोचने का समय नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है कि विकसित भारत 2047 एक टारगेट दिया है। हमारे यहाँ देश में घरों में टॉयलेट नहीं था, महिलाओं को सूर्यास्त के बाद में और सूर्यास्त के पहले शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था। अंधेरी रात में उनके ऊपर कई बार असॉल्ट भी हुए। कई लोगों को ये जो टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत कैसे बन सकता है? अगर घरों में टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत हो ही नहीं सकता। और ये सिर्फ विकसित भारत के लिए नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। 60 करोड़ लोगों ने अपनी आदत बदल दी, 9 करोड़ महिला रोज पानी के लिए जाती थी, उसी तरह यहाँ भी टॉयलेट के लिए बाहर जाती थी। तो जिस तरह से टॉयलेट का काम किया उसी तरह पानी का भी काम किया। हर घर में नल से जल, ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। आज तक 70 साल में कांग्रेस के समय में कभी भी किसी के घर में पानी देने की व्यवस्था सरकार ने नहीं की। वो एक मोहल्ले में एक हैंडपम्प डाल देते थे तो उनको लगता था हमने पानी की व्यवस्था कर दी है। यहाँ तो हर घर में और अभी हर पर हेड 55 लीटर पानी उसको मिले, अच्छा पानी, क्वालिटी का पानी मिले, पूरी क्वांटिटी में मिले, इसकी व्यवस्था करने के बाद ही 16 करोड़ घरों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पानी पहुँचा दिया। 3 करोड़ घरों में अभी जो पानी पहुँचाना है उसकी डेट भी तय कर ली कि दिसंबर 28 तक ये भी पूरा काम पूरा करना है। तो इससे हुआ क्या, जो 9 करोड़ महिला पानी लेने के लिए जाती थी, बोझ उठा के आती थी, उसमें मुक्ति मिली। 5.5 करोड़ घंटे उनके रोज पानी लाने जाने में उनके जाते थे, आज वो अपने फैमिली के दे सकते हैं, उसको आर्थिक उपार्जन में उसको खर्च कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात हुई। WHO का रिपोर्ट कहता है कि इसके कारण 3 लाख बच्चों की जान बची है। जो पानी के कारण, जो गंदा पानी आता था उसके कारण जो बीमारी आती थी उसके लिए जो लोग अपना पैसा खर्च करते थे, वो 8.4 लाख करोड़ रुपया वो लोगों का बचा। तो यानी एक योजना उसके पीछे कितने लोगों का फायदा हुआ, महिलाओं को पानी की मुश्किल दूर हो गई, टॉयलेट बनाने से महिलाओं की सुरक्षा और प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो एक योजना के साथ महिलाओं को, युवाओं को, सबके ध्यान में रखकर ये योजना माननीय मोदी साहब भी बना सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी वही कर सकते हैं, बाकी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो काम मोदी साहब ने किया है।
1: मुझे याद है पाटिल जी, लास्ट टाइम आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आपने वो जल संचय के बारे में बताया था। आप दिल्ली आए थे और आप बता रहे थे कि पीएम ने किस तरह से कहा कि ये जल संचय वाला जो प्रोजेक्ट है इसको कैसे हमें पहुंचाना है। मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है।
0: देखिए, जल संचय से जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए और कर्मभूमि से मातृभूमि में जल संचय के लिए सहयोग करना चाहिए। ये दो बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 6 सितंबर 2024 को कही थी, एक वर्चुअल मीटिंग में कही थी। हमारा पहला टारगेट था 31 मई 2025 तक 10 लाख स्ट्रक्चर बनाने का टारगेट था, हमने अचीव किया। 27,50,000 पर हम पहुँच गए। हमने नया टारगेट लिया 31 मई 2026 तक 1 करोड़ तक पहुंचने का टारगेट लिया और हम 1,55,00,000 तक पहुंच गए। इसमें मनरेगा में से करीब 10 लाख स्ट्रक्चर बने, बाकी सभी जो स्ट्रक्चर बने वो छोटे से लेके बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर बने वो लोगों ने अपने पैसों से बनाए। और इसमें छोटे छोटे भी है तो बड़े भी है। एक कच्छ में एक एंकर स्विच वाला जो है, उनका नाम है दामजी भाई एंकर, शायद वो अभी नहीं रहे, उनकी फैमिली है, वो बॉम्बे रहते हैं मगर वो लोग कच्छ के हैं। कच्छ में एक भूखी नदी है, वो भूखी नदी में पानी नहीं है, उसको सफाई करनी थी, उसको डिसिल्टिंग करना था, उन्होंने 50 करोड़ रुपया उसके लिए खर्च किए। एक व्यक्ति अपने गांव में नदी के लिए इतना पैसा खर्च सकता है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के आह्वान के बाद ही हो सकता है। एक ऐसा आदमी है कि जब लाल बहादुर

0: शासी जी ने कहा था कि हमारे देश तकलीफ में है, हम एक टाइम का खाना छोड़ दो, लोगों ने खाना छोड़ दिया। मोदी साहब ने कोरोना के समय में कहा कि एक भी आदमी भूखा नहीं होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस देखिए, कितना पॉजिटिव सोच है, और सिर्फ सोच नहीं उसको अमलवारी भी करवाने की ताकत रखते हैं। तो ये जो उनका काम करने की जो सिस्टम है वो आपको देखें, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, उन्होंने कहा था कि रिवर लिंकिंग करना चाहिए, वो तो नहीं कर पाए, मगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले नर्मदा से साबरमती और साबरमती से कच्छ तक जितनी नदियाँ तालाब सरोवर आए वो सबको पानी से भर दिया, और पहला रिवर लिंकिंग था। केन बेतवा दूसरा रहा मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में, 44,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 2030 में वो पूरा हो जाएगा। उन्होंने पीकेसी की एक नया योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में शुरू की, वो भी शायद 1,00,000 करोड़ से बड़ी योजना है। राजस्थान की जो पानी की किल्लत है वो आने वाले दिनों में जिस तरह से मोदी साहब काम कर रहे हैं तो पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। और जो जल संचय की जो विशेषता ये है कि हम डैम बनाते हैं, डैम से पानी कैनाल में ले जाते हैं, तो कैनाल जहाँ तक पहुँचती है उसके अगल बगल के किसानों को फायदा होता है, मगर जो दूर दरार है, गांव दूर है, खेत दूर है, उसको पानी नहीं मिलता। जल संचय से हर गांव में जो बह के जाने वाला पानी खड्डे में जाता है, खड्डे से नाले में जाता है, नाले से नदी में जाता है, नदी से दरिया में चला जाता है। हमको उनको वहीं रोक देते हैं, खड्डे में ही बोर करके 100 फुट का उसमें पानी उतार देते हैं, खेत में भी 4x6 का खड्डा करके उसमें पत्थर डाल देते हैं। एक बारिश में 4 से 5 लाख लीटर पानी वो खेत में नीचे जमीन में उतर जाता है। इसके कारण जो किसानों के कुएं हैं, बोर है, उसमें पानी ऊपर आ गया, जल स्तर बढ़ गया, जल की क्वालिटी सुधर गई। गाँव में भी ऐसा हुआ, गाँव के भी जो कुएं थे या बोर थे उसमें भी पानी का स्तर बढ़ गया, क्वालिटी सुधर गई। तो ये जल संचय अपने आप में बहुत बड़ा काम, इसके लिए कि हम हर जगह पर डैम बनाकर पानी नहीं ले जाएंगे तो ये जल संचय की वजह से हमको वहाँ की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी।
1: आपको लगता है ये जो इसी तरह के विषय हैं, क्योंकि पुरुष तो बाहर नौकरी करने चले जाते थे या काम करने के लिए, महिलाओं को ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ती थी, चाहे वो टॉयलेट वाली बात हो या अगर घर में पानी नहीं आ रहा है, नल नहीं है, यही जो एक विमेन वोट जो बना कि पहले जो महिलाएं बीजेपी के खिलाफ भी वोट करती थी, सारी की सारी महिलाएं अब मोदी मोदी करने लगी हैं, आपको लगता है यही वो वजह है?
0: एक वजह नहीं है, महिलाओं देखती है कि पहला आपको बताऊं, मैं गुजरात में जब आए थे उस टाइम में पावर नहीं आता था, महिलाओं को रसोई जल्दी बनानी पड़ती थी, जल्दी खाना खा के जल्दी बर्तन करके उनको वो बैठ जाती थी, और फिर उसके पास बहुत टाइम था और एंटरटेनमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। मोदी साहब ने आकर एक सिंगल फेज अलग से लिया, पूरे गुजरात में सभी घरों में कभी लाइट नहीं गई, तो उनकी व्यवस्था हो गई, तो बहनों को जल्दी रसोई करने की आवश्यकता नहीं, जल्दी खाना खा के फिर फ्री हो जाएगा, तो ऐसा नहीं था, वो देर तक बैठ सकती थी, वो टीवी देख सकती थी, उसको एंटरटेनमेंट के लिए एक साधन बन गया। तो इसके लिए महिलाओं को लगा कि नहीं, हमारे लिए चिंता की है, तो उनके जीवन में एक प्रकाश आ गया, ऐसा उनको लगा। आज देश में भी देखेंगे कि देश में अगर कोई भी पुरुष बाहर जाता है तो उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी पत्नी, सबको लगता है कि सुरक्षित आ जाए घर में। ये सुरक्षा अगर किसी ने प्रदान की तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने की, आतंकवाद को ख़त्म कर दिया, नक्सलवाद को ख़त्म कर दिया, और जिस तरह से आज महिलाओं को उन्होंने प्रमोट किया, हर सेक्टर में प्रमोट किया, तो उसकी वजह से उनके मन में जो इच्छा थी, जो टैलेंटेड थी, मगर उनको मौका नहीं मिलता था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने महिलाओं को भी मौका दिया। सबसे पहले गुजरात में उन्होंने इलेक्शनों में वहाँ जिला पंचायत, महानगर पालिका, नगर पालिका, तालुका पंचायत में 50% महिलाओं के सीट रिजर्व कर दी, वो पहला इंसिडेंस था। बाद में आप यहाँ देखिए कि उन्होंने विधानसभा और लोकसभा के लिए भी 33% महिलाओं की सीट रिजर्व कर दी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। महिलाओं को एक विश्वास आता है कि कोई हमारे लिए काम करता है, कोई हमारी चिंता करती है। आज ये सभी महिलाओं मोदी साहब की चिंता करती है कि उसके विरोधी जो है उनको ठीक रखना, उनको सत्ता से दूर रखना, इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है।
1: आप गुजरात के सीएम के तौर पर मोदी जी और अब पीएम के तौर पर दोनों देखा आपने, कुछ अंतर आया है क्या पहले वाले मोदी जी में और अब वाले मोदी जी में?
0: मैं मानता हूँ कि पहले भी मोदी साहब सामान्य जन के लिए काम करते थे, आज भी वही काम करते हैं। वहाँ उनकी एक मर्यादा थी, एक स्टेट के मुख्यमंत्री थे या देश के प्रधानमंत्री है, इसके लिए उनको एक काम भी उनका बड़ा है, तरीका भी थोड़ा बदल गया है, और मगर आप देखेंगे कि जो मुख्यमंत्री के तौर पर भी जो काम करते थे उसको भी उन्होंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, और नई सोच के साथ, नई ताकत के साथ उन्होंने यहाँ पर भी कई योजना बनाई। हम कहेंगे कि अवकाश से लेकर पाताल तक हर जगह पे उन्होंने काम किया। हम चंद्र पर पहुँच गए, जो कभी हमारे लिए सपना था तो उन्होंने कर दिया। आपको सुरक्षित करने के लिए जो फ्लाइट आई उसके अंदर भी महिलाओं को उन्होंने उनकी कमान सौंप दी, उसी तरह उन्होंने जमीन के ऊपर भी जो डेवलपमेंट के काम करने थे वो भी उन्होंने किए, सबमरीन भी नई नई बनाई और जल को भी सुरक्षित करने का काम, यानी जल सीमा को भी सुरक्षित करने का काम भी उन्होंने कर दिया। आज भारत की ओर देखने का नजरिया लोगों का बदल गया है। आज भारत के लोग बाहर जाते हैं तो उनको सम्मान मिलता है, पहले तो उनकी कोई दरकार भी नहीं करता था, वो अपमान करते थे, आज वो बात नहीं रही। ये जो जाने वाले लोग थे पहले भी और अभी भी, उनको ये बात समझती वो पूरी वो देखते भी है।
1: गुजरात का कई सारे वहाँ के किस्से जो हैं मैंने किताबों में पढ़े और कई बार हमने जो मोदी जी के बचपन के दोस्त वगैरह उनके इंटरव्यूज देखे कि मोदी जी एक तो हर किसी को याद रखते हैं नाम से और दूसरा हर बात की बारीकी में डिटेल में जाते हैं, काम के मामले में भी और वैसे भी। तो जब आप वहाँ पर थे गुजरात में, कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि अगर उनको कुछ गलत बता दिया हो तो वो एकदम पकड़ लेते हैं कि भाई ये यहाँ पे तथ्य गलत बोला गया है?
0: वो तो पूरा देश जानता है कि बहुत शार्प है, उनको कोई गलत बता के उन्हें कोई ठग जाए ऐसी कोई बात ही नहीं हो सकती। और उनका जो डिटेलिंग करने का काम है उसके अंदर कोई भी आदमी उनको कोई गलत कुछ बता भी नहीं सकता। और वो जो सुनते सबकी है वह करते हैं अपने मन की, क्योंकि उनको अपने आप में भरोसा है, उनका प्लानिंग होता है, बहुत माइक्रो लेवल पर वो प्लानिंग करते हैं और परिणाम ला के देते हैं। गुजरात में पहली बार महानगर पालिका अगर किसी ने जीती थी, अहमदाबाद महानगर पालिका, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जीती थी। तो ये वहीं से उनकी जो शुरुआत हुई थी वहीं से वो जीत के लिए ही उनका जन्म है, जीतते ही जाते हैं, उन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा और ना कभी देखेंगे।
1: आपने कोई एक चीज़ जो उनसे सबसे ज़्यादा सीखी हो जिसको आपने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट आपने कर रखा हो? बिल्कुल,
0: एक बार 26 जनवरी का दिन था, आवा डांग में उनका कार्यक्रम था और वो जो साफा लगाते हैं तो ये साफा मुझे लेके जाना था और मैं 2 मिनट लेट पहुंचा, सिर्फ 2 मिनट। उन्होंने किसी से बंधवाना शुरू किया, जैसे उन्होंने अभी तो वो रखा ही था, हाथ में ही पकड़ा था और मैं पहुंच गया था। मुझे उन्होंने कुछ बोला नहीं, मुझे ऐसा लगा कि सीआर ये कैसे चलेगा, लगा सॉरी सर, उन्होंने और कुछ भी नहीं बोला। मुझे आज तक भी वो 2 शब्द उनके, वो मुझे उसके घाव आज भी दिखते हैं। तो ये उनसे ये सीखा है कि समय पे ही काम होना चाहिए, हमें देर करने की कोई आदत ही नहीं होनी चाहिए। मेरे ऑफिस में भी मेरे हमारी मीटिंग जो होती है मैं डॉट टाइम शुरू करता हूँ, समय पर पूरी करना, जो भी काम है उसको हमें आज करना है तो कल तक छोड़ना ही नहीं, आज ही पूरा करना। मेरे पास कोई भी फाइल आती है मैं सेम डे उसको क्लियर कर देता हूँ। तो ये सब आदत है जो मोदी साहब ने सिखाई है कि क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और हम सामान्य लोगों को अवेलेबल होने चाहिए। उनसे सीखे जो यहाँ कोई भी आके मिल सकता है, हमारे गेट पे किसी को रोकते नहीं है, किसी का नाम तक नहीं पूछते हैं, तो उसको लगता है कि मैं कोई प्रधान के यहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं कोई कार्यकर्ता के यहाँ जा रहा हूँ। तो ये सब बातें उनसे सीखी है कि लगाव लोगों से बढ़ना चाहिए। और उन्हीं के आधार पर जो टेक्नोलॉजी की बात भी करते हैं, अभी मैंने प्रधानमंत्री मोदी साहब से सीखी है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पॉलिटिकल फील्ड में हम क्या कर सकते हैं, तो वो भी उनसे ही सीखी, उनका ही अनुकरण करके हम आगे बढ़ते हैं।
1: आपके इस एग्जाम्पल से तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने 2 शब्दों में अपनी बात भी रख दी और आपको आज तक वो बात याद भी है। इसका मतलब तो वो बहुत सरल तरीके से अपनी बात बता देते हैं लेकिन छवि उनकी ऐसी बनाई जाती है कि एकदम बहुत दहशत रहती है उनको देख करके।
0: नहीं, वो तो देखो अपने काम से मतलब रखते हैं। मैं एक इंसिडेंस आपको और कहना चाहूँगा, 2014 का लोकसभा का इलेक्शन वो लड़े, काउंटिंग में करीब 10-15 दिन का टाइम था। एक बार उन्होंने वहाँ के सभी सेक्रेटरी और जो गांधीनगर में है सभी IAS अधिकारी और सभी MP सबको स्पाउस के साथ बुलाया था, और वहाँ उन्होंने उनका कॉन्फिडेंट लेवल आपको उसमें दिखेगा कि उन्होंने कहा कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ। काउंटिंग के पहले 15 दिन पहले कोई व्यक्ति जो कभी दिल्ली नहीं गया वो कहता है कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, और मैंने इसके लिए बुलाया कि मेरे बारे में बहुत सी चर्चाएँ होती है, बहुत सी अफवाहें चलती है, कोई कहता है कि मोदी जी ने किसी अधिकारी को गेट आउट कह दिया, किसी को फाइल फेंक दी, गुस्सा कर लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं आदमी हूँ, मुझे भी गुस्सा आ जाता है, और मैंने आज तक कभी किसी भी अधिकारी को गेट आउट नहीं कहा, मैंने कोई भी अधिकारी के ऊपर कभी गुस्सा नहीं किया, मैंने कोई भी फाइल कभी अधिकारी को फेंकी नहीं। मुझे अगर गुस्सा आया होगा तो मैंने वो फाइल लेकर साइड में रख दी होगी, इससे ज़्यादा मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। आपके मन में होगा यहाँ सब अधिकारी की पत्नी बैठी है, उनको होगा कि मेरे पति को भी मोदी साहब ने डांटा होगा मगर वो बता नहीं रहे होंगे घर में। पर मैं आपको कहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ उसके पहले मुझे एक क्लियर करना था, इसके लिए बताया, मगर वो क्लियर तो किया उन्होंने, मगर जो आत्मविश्वास प्रकट हुआ, कॉन्फिडेंट लेवल जो प्रकट हुआ कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये उनका काम करने का तरीका है।
1: ये तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हो गया। लेकिन पाटिल जी, इन 12 सालों में आपने, चलिए हर घर नल और पानी वाला तो आप ही का डिपार्टमेंट है, लेकिन इस डिपार्टमेंट के अलावा ऐसा कौन सा माइलस्टोन आपको फैसला लगता है या सरकार की कोई नीति लगती है जो हमेशा मतलब याद रखी जाएगी?
0: वो एक चीज नहीं है। मैंने कहा ना फिर से महिलाओं के लिए हम बात करेंगे, तो वो रोटी जो रसोई करती थी तो लकड़े पर करती थी, दोनों से मुक्त कर दिया मोदी साहब ने महिलाओं को। और उसके साथ उसका छोटा बच्चा अगर घर में है तो उसका भी फेफड़ा बचपन से ही वो वीक हो जाता था, तो सिर्फ महिलाओं के लिए बच्चों के लिए भी उसके अंदर काम हो गया, अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आपने देखा होगा आयुष्मान में लोग बीमार पड़ते थे, घर में नहीं बताते थे, उनको लगता था कि बेटे को पता चलेगा, खर्च होगा, बेटे के पास पैसे नहीं है तो कर्ज लेगा, मकान बेचेगा, खेत बेचेगा। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कर्जदार बने, और वो जो भी दर्द है उसको छुपा लेते थे। बहुत तकलीफ होती थी तो बाहर जाके खेत में जाकर रो लेते थे, और घर में नहीं बताते थे, आंसू लेके नहीं आते थे। मोदी साहब ने कहा कि मैं उनका बेटा हूँ, और उनके लिए 5 लाख रुपए तक का जो ट्रीटमेंट है उसका पैसा मोदी साहब ये योजना से कर रहे हैं। ये भी आपको दिखेगा कि ये भी अपने अपने बहुत बड़ी योजना ये भी बनी है। किसानों के लिए कभी कोई योजना नहीं बनी, उनके लिए भी 6,000 रुपया साल में 3 बार डाल देते हैं, बिल्कुल समय पर देते हैं। और युवाओं के लिए भी उन्होंने कितनी कोशिश की, पहले तो नौकरी लगाना है तो आपको किसी की सिफारिश चाहिए, पैसा चाहिए, जमीन दे देनी पड़ती थी। आप देख रहे हैं कई लोगों के ऊपर उसके केस भी चल रहे हैं। यहाँ पारदर्शिता से जो वो अभी उन्होंने 51,000 बच्चों को अभी रोजगारी का अपॉइंटमेंट लेटर दिया, एक सेकंड में पूरे देश में 50,000 लोगों के हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। ना उसको कोई सिफारिश करनी पड़ी, ना किसी को कुछ पैसा देना पड़ा, ना जमीन देनी पड़ी। तो उससे युवाओं को भी विश्वास हो गया कि यह आदमी युवाओं के लिए भी कुछ करना चाहता है, और वो युवा कोई निराश ना हो जाए, उसके पहले उसको कोई चांस मिल जाए तो उसके लिए भी उनकी कोशिश रहती है।
1: ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है हमेशा कि मतलब देश में आर्थिक सुनामी आ जाएगी, अर्थव्यवस्था डिरेल हो चुकी है, तमाम चीज़ें ऐसी बातें बताने की कोशिश होती है, उस नैरेटिव को कैसे देखते हो आप?
0: जब पूरे विश्व में सभी जगह युद्ध चल रहा है, एकमात्र हमारा देश है वो भी माननीय मोदी साहब की जो पॉलिटिकल जो सेंस है उनकी जो विदेश नीति है उसके कारण हम बिल्कुल शांति से रह रहे हैं। पूरी दुनिया में युद्ध है, एक जगह नहीं है, 2 देश के बीच में नहीं है, मगर हम बिल्कुल शांति से रहे, हमें कोई भी युद्ध का डर नहीं लग रहा है, हम न्यूज़ तक नहीं देखना चाहते कि युद्ध में क्या हो रहा है। तो ये जो पोजीशन परिस्थिति जो आई है वो तो मोदी साहब की वजह से है। तो ये जो ग्रोथ है ऐसे समय में, कोरोना के समय में, कोरोना के बाद में, युद्ध के समय में इतना GDP जो आया है वो खुद ही रिकॉर्ड है। मनमोहन जी तो अर्थशास्त्री थे, उस टाइम तो हम 11वें नंबर पे थे, हमारी आर्थिक व्यवस्था 11वें नंबर पे थे, मोदी साहब ने 5वें पर लाई और 3रे पर लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये भी उनको कहकर लाए हैं, हमने कहा कि हमने कुछ किया और हो गया ऐसा नहीं है, पहले से उन्हें कह दिया कि मैं ये नंबर पे देश के अर्थतंत्र को लेके आऊँगा। तो ये व्यवस्था करना तो हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हो, महिलाओं का हो, युवाओं का हो, देश का हो, चंद्र पे जाना है, अवकाश में जाना है, हमें फाइटर प्लेन लेने हैं, अच्छी सबमरीन लेनी है, वो भी देश में बनाना है, ये सब काम एक ही आदमी इतनी ताकत के साथ कर रहा है। और ये बैठे बैठे बस उनकी एक ही सोच है कि बस हमें प्रधानमंत्री बना दो। क्यों बना दो, उसका कोई वजह नहीं है उनके पास, उनको खानदानी ये सीट उनकी है ऐसा उनको लगता है। ये चाय वाला कैसे आ गया, ये चाय वाला पूरे देश के लोगों की चाहना लेकर आया है, और इसको हटाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है।
1: चलते चलते पाटिल साहब, मैं यही जानना चाहूंगी, जब प्रधानमंत्री को आप सब लोगों ने ग्रीट किया, स्टैंडिंग ओवेशन दी, इतना रिकॉर्ड पीएम ने बनाया, प्रधानमंत्री का क्या रिएक्शन था?
0: नहीं, मोदी साहब ने सबका आभार व्यक्त किया, सबको धन्यवाद दिया।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीआर पाटिल जी, क्योंकि ये जो बातें आपने बताई इसीलिए बहुत ज्यादा अहम ये बातचीत थी कि मोदी जी के साथ ये अपनापन और जो पल आपने बिताए हैं, बहुत ही कम लीडर्स ऐसे हैं जो उनके साथ इस तरह से बारीकी और करीबी के साथ में रहे, इसलिए ये बातें शायद कोई और नहीं बता पाता। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर। अब सुनिए मोबिक्विक के संस्थापक बिपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत।
3: नमस्कार। 26 मई 2014 यही वो तारीख थी जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों के सपने, उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ भारत की सत्ता संभाली थी। तब से लेकर अब तक 12 वर्ष बीत चुके हैं, और इन 12 वर्षों में जनता ने 2 बार आशीर्वाद मोदी सरकार को दिया है। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल चल रहा है। इन 12 साल में हमने कई नीतियां देखी, जमीन पर उतरती हुई नीतियां देखी, सभी के फोकस में, सभी के केंद्र में आम आदमी था और एक ऐसी ही नीति थी डिजिटल इंडिया को लेकर। और जब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की तो हमें ये समझना जरूरी हो जाता है क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होने वाला है, नीतियों में क्या कुछ बदलाव संभव है, क्या कुछ बदलाव की उम्मीद करते हैं। और इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोबीक्विक के फाउंडर और सीईओ विपिन प्रीत सिंह। बहुत बहुत स्वागत है विपिन आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि अभी के समय में अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें और 12 वर्षों में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें तो आपने जिस तरीके से आपका सफर रहा है उसमें आप अर्थव्यवस्था का आकलन कैसे करते हैं?
4: पहले तो शिशिर जी धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में इन्वाइट करने के लिए। और मोबीक्विक जो मैंने कंपनी स्टार्ट की थी करीब 17 साल पहले, उसमें से 12 साल मोदी सरकार के अंदर ये कंपनी खड़ी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सन 2014 में ही मोबीक्विक को सबसे पहली फंडिंग मिली थी और उसके बाद मोबीक्विक ने करीब करीब 2000 करोड़ रुपए पिछले 12 साल में डिफरेंट तरह के इन्वेस्टर से उठाए और बिजनेस बनाया। तब हमारे पास आई थिंक 30 लाख या 40 लाख यूजर थे। आज की डेट में मोबीक्विक प्लेटफॉर्म 18 करोड़ यूजर यूज करते हैं पूरे भारत में। तो इन नंबरों से ही आपको समझ आ जाएगा, इन आंकड़ों से, कि हमारे देश में जो डिजिटल इंडिया है और डिजिटल इकोनॉमी है वो किस हद तक उसकी ग्रोथ हुई है। मुझे याद है 12 साल 15 साल पहले जब आप मोबाइल फोन पे कॉल करते थे तो सोचना पड़ता था कि कितने की कॉल पड़ेगी, मैसेज करना है तो कितना पैसा लगेगा। आज के समय में आप नहीं सोचते। आज के समय में अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप बैंक नहीं भागते, आप फटाक से अपना फ़ोन निकालते हैं और UPI से डिजिटल पेमेंट करते हैं। करीब करीब 4 में से 1 भारतीय या 3 में से 1 भारतीय ऑलरेडी डिजिटल पेमेंट्स के साथ जुड़ चुका है, जिसमें मोबीक्विक ने एक बहुत बड़ा सफ़र और बहुत बड़ा योगदान दिया है। बट इन सब के पीछे जो नीतियाँ हैं जिनसे ये पॉसिबल हुआ है उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पहले डिजिटल आइडेंटिटी नहीं होती थी, हम राशन कार्ड लेके घूमते थे। अब आधार जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, पैन जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, मोबाइल फ़ोन के रेट सस्ते हुए हैं, फिर जो UPI का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, तो उससे मोबीक्विक की बिजनेस को बनाने में बहुत बहुत बड़ा हाथ है। उसके बिना मुझे लगता नहीं है ये संभव भी था।
3: तो मतलब 17 साल के आपके सफ़र में, 12 साल मोदी सरकार के, और इन 12 साल में जो डिजिटल इंडिया का सफ़र रहा उसमें काफ़ी हद तक आपके अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिली। और आप ही के नहीं, ऐसे कई ऐसे पेमेंट सिस्टम, पेमेंट एग्रीगेटर की हम लोग बात करें वो सिस्टम में आए, उन्होंने काम को आगे बढ़ाया। अगर मैं 3 प्रमुख नीतियों की बात करूं 2014 से लेकर के 2026 के बीच में, वैसे कौन सी 3 बड़ी नीतियाँ थीं जिन्होंने आपके कारोबार को, कहने का मतलब कि डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ाने में मदद की?
4: तो इनमें काफ़ी नीतियाँ थी, बट सबसे पहला मैं ये मानूंगा कि कोई भी सरकार जब किसी बिजनेस के साथ काम करती है तो हम जब बिजनेस सरकार से बात करते हैं तो उनकी नीतियों को और उनकी माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं। तो 12 साल पहले ही हमें समझ आ गया था कि ये सरकार डिजिटल इंडिया की एक पॉलिसी लेके आएगी और उसको हर एक लेवल पे इम्प्लीमेंट करेगी। एंड आई थिंक वो जो डिजिटल इंडिया की जो एक मुहिम बनी जिसके अंतर्गत ये सब हुआ कि आधार, पैन, जनधन अकाउंट्स खुले इतने सारे, अभी हर पर्सन के पास, हर इंसान के पास अकाउंट है, तब नहीं थे। तो ये जो नीतियाँ थी डिजिटल इंडिया के अंडर, जो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया इंडिया में, डिजिटल DPI कहते हैं इसे, इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब तक एक इंसान अपनी डिजिटल में पहचान नहीं बना सकता तब तक वो डिजिटल पेमेंट भी नहीं कर सकता और अब डिजिटल लोन भी नहीं ले सकता, डिजिटल इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता। इन सबको जो साथ में जोड़ा गया है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो कि इवन बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्रीज में भी आज तक अचीव नहीं हुए।
3: एक जो बड़ी पहल जिसको हम कहें जैम ट्रिनिटी की, हम लोग बात करें, आपने अभी जनधन की बात की थी, आपने आधार की बात की, आपने मोबाइल का बात किया, और 2015 से हमने देखा कि जैम ट्रिनिटी किस तरीके से समाज के आखिरी पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति तक जो भी सरकार की योजना है उसका फायदा पहुंचाने में मदद की। इस जैम ट्रिनिटी को आप कैसे देखते, क्योंकि एक समय जैसा आपने खुद कहा कि एक मोबाइल फोन को लेकर के हम एक बार सोचते जरूर थे, और हमें वो भी दौर याद है जो आज से अगर मैं 20-25 साल पहले जाऊं, जब 16 रुपए का एक कॉल होता था तो लोग कहते थे मिस कॉल मार देना। वो मिस कॉल मार देना आज भी हमारे मोबाइल कल्चर का एक पार्ट है। ये अलग बात है कि अब हम उस मोबाइल पे 16 रुपए की चिंता नहीं करते, बल्कि मिस कॉल मार देना एक बात कहते हैं। ये मिस कॉल मार देने से जनधन आधार मोबाइल, ये ट्रिनिटी को आप किस तरीके से देखते हैं? समाज के आखिरी पायदान पर व्यक्ति जो है उस तक सामाजिक योजनाओं का फायदा पहुंचा।
4: इसमें सबसे पहले जो मोबाइल की मैंने बात की कि जब इंडिया में 4G आया या 5G आया और नए ऑपरेटर्स आए जैसे जियो आया या एयरटेल ने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, इसके ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी का पुश था सरकार की तरफ से कि आपको, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, 100 करोड़ से ऊपर की आबादी है, तो सबसे पहले हर बंदे के पास, हर पर्सन के पास एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए और उसके अंदर डेटा और कॉलिंग ऑलमोस्ट फ्री होनी चाहिए। और वो हुआ, आप हमने पिछले 10 सालों में देखा है। तो इसका एक बहुत बड़ा योगदान था। इंडिया आज की डेट में दुनिया के नंबर 1 या नंबर 2 डेटा कंज्यूमिंग कंट्रीज में है। हम डेटा यूज करने से पहले सोचते भी नहीं, जबकि यही 10 साल पहले कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले या कोई वीडियो देखने से पहले आप सोचते थे कि इस पे कितना GB डेटा, MB डेटा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बिकॉज इस चीज को हर दर्जे के लोगों तक पहुंचाना वही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा है आधार। तो आधार के ऊपर तो ऐसा है कि डिजिटल आइडेंटिटी जब तक नहीं होगी तब तक आपका अकाउंट भी नहीं खुलेगा। तो ये उसको पूरा डिजिटाइज करना और उसके प्रोसेसेस को इस तरह से स्ट्रीमलाइन करना कि कोई भी पूरे देश में, उस दिन मुझे अपने आधार में कुछ चेंज कराना था, मुझे 5 मिनट लगे। मैं एक नियर बाय एक बैंक में एनरोलमेंट सेंटर में गया और मैंने वहाँ पे अपना ऑथेंटिकेशन किया और मुझे कुछ एड्रेस चेंज कराना था, वो इमीडिएटली वहाँ पे हो गया। इस तरह की सुविधा हमारे देश में नेशनल लेवल आज तक कभी नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिससे आप ये देख सकते हो कि ये आइडेंटिटी है इस पर्सन की और इस आइडेंटिटी के ऊपर आप इसका अकाउंट खोल सकते हो। हमारा देश अभी भी गाँव में बसा है, हालांकि शहरों ने काफ़ी तरक्की की है, बट करीब 30-35% आज भी गाँव में है और सेमी अर्बन है। हर इंसान बैंक में जाके कंफर्टेबल नहीं रहता था और बैंक भी जो होते थे, जो इंस्टीट्यूशंस होते थे, वो हर एक का अकाउंट खोलने में इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। ये सच्चाई है, क्योंकि अगर किसी की तनख्वाह कम है या उसके अकाउंट में पैसे नहीं रखने हैं तो उसका अकाउंट खोलना मतलब आपको एक लॉस उठाना है। तो उसके ऊपर जो जनधन अकाउंट्स की पॉलिसी बनी, जिसके ऊपर हमारे बैंकों ने काम किया और सबके अकाउंट खोले, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आज की डेट में मेरा ये मानना है कि 90% लोगों के पास बैंक अकाउंट है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में आप छोटा बच्चा देखो, आप एक बूढ़ा देखो, कोई रिटायर्ड पर्सन देखो, आप गांव में चले जाओ, आप किसी को भी डिजिटल पेमेंट इसीलिए कर पाते हो क्योंकि उनके पास बैंक अकाउंट।
3: तो एक डिजिटल सिस्टम का एक ये भी फायदा हमें इस स्वरूप में देखें कि जब पहले कहा जाता था कि केंद्र से 1 रुपया चलता था और 15 पैसे लोगों तक पहुंचते थे, आज हम बात करते हैं कि लाभार्थी का जो भी बेनिफिशियरी है उसकी पहचान साबित हो जाती है डिजिटल माध्यम से और डिजिटल माध्यम से ही लेन देन हो पाता है। ये जो हमारे पास रिसोर्सेस का जो एक बेहतर इस्तेमाल है, ये डिजिटल माध्यम से और भी बेहतर तरीके से हो पाया। इसका फायदा आप किस तरीके से देखते हैं? गवर्नमेंट की बजटिंग की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, फिस्कल प्लानिंग की बात करें, उसमें उसका योगदान किस तरीके से?
4: देखिए, डिजिटल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि डिजिटल बिल्कुल साफ होता है और डिजिटल में पेपर का यूज मिनिमम होता है और इसीलिए डिजिटल में लीकेज बहुत कम होता है। वरना हमारे देश में जहाँ पे इतने गरीब लोग हैं, सरकार हमेशा से उन पे पैसा खर्च करना चाहती थी और खर्चती है भी और 12 साल पहले भी खर्चने की कोशिश करती थी, बट वो उन तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि वो इतने स्टेप से जाता था, इतनी लेयर से जाता था कि वो, जैसा कि आप बता रहे हैं, 1 रुपए की जगह 15 पैसे। बट अब जब सरकार ने DBT बनाया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जनधन अकाउंट सबके पास है, तो आपको किसी को गैस की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको बिजली की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको खाने की सब्सिडी देनी है, किसी भी तरह की सब्सिडी देनी है, आपके पास उस इंसान की पूरे डिटेल्स हैं, उनके बैंक अकाउंट हैं, उनकी आइडेंटिटी है, आप डायरेक्टली उनके अकाउंट्स पे एक क्लिक करके पैसा ट्रांसफर कर सकते हो।
3: विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिजिटल इकोसिस्टम, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल रिवोल्यूशन की हम लोग बात करें, उसमें बहुत सारे हो रहे बदलाव पे आपने चर्चा की। आपका आभार, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोबिक्विक के संस्थापक बिपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।

0: इंद्राज सिंह ने दीप।
1: अभी आप सुन रहे थे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष अष्टलक्ष्मी पूर्वोत्तर राज्य, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत, और कार्यक्रम में पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म पड़ोसन से।

आरडी बर्मन का संगीत राजेंद्र कृष्ण के लिखे बोल किशोर कुमार की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म पड़ोसन से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म मनमौजी से, आवाज़ है किशोर कुमार की।

मदन मोहन का संगीत राजेंद्र कृष्ण के लिखे बोल किशोर कुमार के आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म मनमौजी से, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात। 1936 से आकाशवाणी आप

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट 2 गुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख हबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
4: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
3: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही हैं। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अलनीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अल नीलों के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में एक विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमानुल्ला गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचे। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना की AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले

0: भी आज रात नीस पहुंच रहे हैं। वो फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों के साथ बाहमी बातचीत करेंगे और कल भारत इनोवेट्स का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह करेंगे। आसाम के जोरहाट में एक AN-32 तैयारी के गिरकर तबाह होने से भारतीय फजाइया के अमले के 5 अफराद जा बहक हो गए हैं। 5 रोजा ब्रिक्स जरई कॉन्फ्रेंस इंदौर आलामी को इत्तफाक राय से मंजूरी देने के साथ खत्म हो गई, जिसमें गजाई तहफ़ और खेतीबाड़ी में स्मार्ट टेक्नोलॉजी पर तवज्जो मरकूज की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को मुल्क का अगला फौजी सरबराह मुकर्रर किया गया है। और क्रिकेट में अफगानिस्तान ने धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के बारिश से मुतासर पहले बैन अलावामी मैच में भारत के लिए 195 रन का जीत का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक जमहूरिया के 6 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस दौरे को यूरोप के साथ भारत की शराकत दारी में एक अहम तरीन लम्हा समझा जा रहा है। 2014 के बाद से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का यह फ्रांस का 7वां दौरा है। इस साल जनवरी में कलीदी भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तजारती माहदे के बाद से इस बरेआजम का यह उनका पहला दौरा भी है। फ्रांस भारत के साथ मशरकी दुनिया में कदीम तरीन और इंतहाई भरोसेमंद जामिया शराकतदारी रखने वालों में से एक मुल्क है जो इस दौरे का मरकजी मकाम रखेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: फ्रांस को भारत के जामे विजन में खसूसी मकाम हासिल है। इस साल के अवाइल में सदर मैक्रों के भारत के दौरे के दौरान दोनों मुल्कों ने अपने ताल्लुकात के खसूसी आलमी जामे शराकतदारी का दर्जा दिया था, जो कि आलमी हल को एक नई शक्ल देने के लिए उनके मुश्तरक मकसद की अक्कासी करता है। भारतीय मियारी वक्त के मुताबिक आज रात 10:30 बजे वजीर आजम नरेंद्र मोदी नीस पहुंचेंगे, जहां आला सतही मसरूफियात के एक सिलसिले पर तवज्जो मरकूज की जाएगी, जिसका मकसद इख्तिरा टेक्नोलॉजी जामे शोबों में ताउन को गहरा करना है। कल दोपहर 2:30 बजे वजीर आजम नरेंद्र मोदी सदन में अख़वा मुश्तरक तौर पर भारत इनोवेंट्स का इफ्तिताह करेंगे, जो यूरोप में भारत की अहम दीप टेक नुमाइश है। आलमी सरमाकारों, CEO और टेक्नोलॉजी लीडरों के साथ साथ 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स इस तकरीब में शिरकत करेंगे, जो भारत फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के दौरान मुनक़िद की जा रही है। वजीर आजम मोदी सदर मैक्रों के साथ बाहमी बातचीत भी करेंगे। तवक्कुए तबादला ख्याल में दिफा, मसनूई ज़हानत, खला, तजारत, तालीम और दीगर आलमी चैलेंजों का अहाता किया जाएगा। यहाँ नीस में इस बात के कवी इम्कान है कि यह दौरा भारत के इंतहाई भरोसेमंद जामे शराकतदारों में से एक में नई तहरीक पैदा करेगा, यूरोप के साथ भारत की मसरूफियात को मजीद मुस्तहकम करेगा। फ्रांस से नीस से आकाशवाणी न्यूज के लिए शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ दूसरी खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
0: ब्रेटिस्लावा में भारतीय बिरादरी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के स्लोवाकिया के पहले दौरे के लिए उनके मखसूस और मुनफरिद खैर मकदम की खातिर तैयारी कर रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अब जब स्लोवाकिया पहली मर्तबा किसी भारतीय वजीर आजम की मेजबानी के लिए तैयारियों में मसरूफ है, भारतीय बिरादरी के अफराद उनका शानदार खैर मकदम करने के लिए मखसूस तैयारियां कर रहे हैं। पेंटिंग, सकाफती पेशकश और रक्स के प्रोग्राम इस तारीखी दौरे के मौके पर तैयार किए जा रहे हैं। स्लोवाकिया में भारत के सफीर अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा है कि भारतीय बिरादरी अफराद के माबेन तजस्सुत नुमाया तौर पर नजर आता है। बिरादरी में तैयारियां जारी हैं और राजधानी के शहर ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के कौमी परचम लहराते हुए देखे जा सकते हैं। पिछले 5 साल के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान सफर और तबादलों में नुमाया इजाफे की वजह से जोशो खरोश में इजाफा हुआ है। वस्ती यूरोप में ब्रातिस्लावा का जाय मकाम भारत के साथ सियाहती रवाबित को मुस्तहकम करने में भी मदद कर सकता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दौरा तवक्को है कि अवाम से अवाम के ताल्लुकात में नई तहरीक पैदा करेगा और भारत स्लोवाक जमहूरिया के दरमियान सियाहत और बाहमी ताउन को मजीद मुस्तहकम करेगा। ब्रातिस्लावा से आकाशवाणी के लिए सिमिति पुलुरिथी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
0: भारतीय फिजाइया का एक AN-32 ट्रांसपोर्ट तैयारा आज सुबह मामूल की एक परवाज के दौरान आसाम में जोरहाट फजाई स्टेशन पर गिरकर तबाह हो गया। इसमें फजाई अमले के 5 अफराद जां बहक हो गए। स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सर्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम ने फर्ज निभाते हुए अपनी जानें कुर्बान कर दी। भारतीय फजाइया ने कहा कि हादसे की वजह जानने के लिए एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तश्कील दी जा रही है। भारतीय फजाइया ने जानों के इतलाफ पर दुख का इजहार किया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी 5 अग्निवीरों की हलाकत पर दुख का इजहार किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि मुल्क के लिए उनकी शुजात और खिदमात को फख्र और विकार के साथ हमेशा याद रखा जाएगा। जनाब सिंह ने कहा कि दुख की इस घड़ी में मुल्क उनके साथ है। उन्होंने मुतासर होने वाले सोगवार कुनबों के साथ दिली ताजियत का इजहार किया है। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में मुनक्कदा 5 रोजा ब्रिक्स जरी कॉन्फ्रेंस आज कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गई। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर इंदौर आलामिया मुतफ़ा तौर पर मंजूर किया गया। इस एलामिया में खुराक की यकीनी फराहमी, किसानों की बहबूद, माहौलियात की मुआफिक काश्तकारी, ज़रई तिजारत और डिजिटल ज़राअत से मुतालिक अहम फैसलों को उजागर किया गया। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ब्रिक्स ममालिक दुनिया की तकरीबन निसफ आबादी की नुमाइंदगी करते हैं और आलमी ज़रई पैदावार में इनका हिस्सा तकरीबन 42% है। उन्होंने कहा कि इंदौर आलामिया सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि ब्रिक्स मुल्कों के मुश्तरक अज़्म और इज्तिमाई जिम्मेदारी का मजहर है। कॉन्फ्रेंस के दौरान 4 नए इदाराजाती इकदाम का ऐलान किया गया। पहले इकदाम के तहत कुदरती और पायदार काश्तकारी पर मुश्तरक तहकीक के लिए महारत के मराकज का नेटवर्क कायम किया जाएगा जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च कलीदी रोल अदा करेगा। दूसरे इकदाम के तहत मस्नूई जहानत और डिजिटल टेक्नोलॉजी को काश्तकारी में मुतारफ कराने के लिए ब्रिक्स डिजिटल एग्रीकल्चर नेटवर्क कायम करना शामिल है जिसमें IIT दिल्ली तआवुन करेगा। तीसरे इकदाम के तहत बीजों से मुतालिक किसानों के हकूक के तहफ्फुज और बीजों की रिवायती अकसाम के तहफ्फुज के लिए एक आलमी फोरम कायम किया जाएगा। चौथे इकदाम के तहत रुकन ममालिक के दरमियान ज़रई मालूमात और जीनियाती वसाइल के इश्तराक के खातिर ब्रिक्स एग्री एंड नेटवर्क कायम किया जाएगा।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी, उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
0: मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने आज कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 साल के दौरान मुल्क भर में तालीम, हुनरमंदी, इख्तरा और स्टार्टअप्स की एक नए कल्चर को फरोग दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब अमित शाह ने कहा कि वजीर आजम मोदी की मुख्तलिफ पॉलिसियों के नतीजे में भारत आज दुनिया भर में आला तालीम का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क रखने वाला मुल्क बन चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत दुनिया भर में मस्नूई जहानत की सलाहियत वाला दूसरा सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। मुल्क में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप कायम हो चुके हैं जिसके बायस भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इको सिस्टम बनकर उभरा है। वजीर दाखला ने मजीद कहा कि वजीर आजम मोदी की क्यादत में मुल्क ने हुनरमंदी के शोबे में भी गैर मामूली तरक्की का मुशाहिदा किया है और 6 करोड़ से ज्यादा नौजवानों को मुख्तलिफ महारतों की तरबियत फराहम की गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि 2047 तक भारत का एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने का सफर इसके खेत खलियानों और गांवों से होकर गुजरता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पायदार ज़राअत, इख्तिरात और तहकीक विकसित भारत की असास हैं। जनाब बिरला ने यह बात विकसित भारत एक्ट 2047 के लिए पायदार ज़राअत, रिवायत टेक्नोलॉजी और ठोस नतायज के मौजू पर नई दिल्ली में 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब के दौरान कही। सड़क नकलो हमल और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज कहा है कि उनकी वजारत बुनियादी ढांचे की तरक्की के साथ साथ रोजगार वजा करने पर जोर दे रही है। जनाब गडकरी नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी हुकूमत की क्यादत में पिछले 12 सालों के दौरान हासिल कामयाबियों और तरक्याती इकदाम को उजागर किया। जनाब गडकरी ने बताया कि सड़क नकलो हमल और शाहराहों की वजारत ने मुल्क भर में ड्राइविंग के लिए तरबियती मराकज कायम करने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक इन मराकज से तकरीबन 10 लाख अफराद तरबियत हासिल कर चुके हैं। भारत ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबिल बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रूनमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी के खबरों का शोभा एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम भारत की सकाफती रिवायत का जश्न मनाने और इसे फरोग देने के लिए हुकूमत के जरिए किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: پچھلے 12 برسوں کے دوران بھارت کے ثقافتی سفر میں نمایاں ترقی ہوئی ہے. حکومت نے

नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता।

0: 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, एक तारीख जो हमें हर साल याद दिलाती है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, उसके अंश हैं। और जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो जल की बात करना जरूरी हो जाता है। पर्यावरणविद अनुपम मिश्र का एक विचार बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वो कहते हैं कि जिस समाज ने अपने जल को सहेजना छोड़ दिया, उसने मानो अपनी स्मृति भी खो दी। उनके ही दर्ज किए हुए कुछ विचार बिंदुओं को आज के संपादकीय में अपना स्वर दे रहे हैं अभिनय श्रीवास्तव। जल की जड़ें, संस्कृति की धाराएं।
1: मौसम विशेषज्ञ बताते हैं कि देश को हर साल मानसून का पानी निश्चित मात्रा में नहीं मिलता, उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि प्रकृति ISI मार का तराजू लेकर पानी बांटने निकलने वाली पनिहारिन नहीं है। तीसरी चौथी कक्षा से हम सब जल चक्र पढ़ते हैं। अरब सागर से कैसे भाप बनती है, कितनी बड़ी मात्रा में वो नौतपा के दिनों में कैसे आती है, हमारा साधारण किसान भी जानता है। ऐसी बड़ी दिव्य व्यवस्था में प्रकृति को मानक ढंग से पानी गिराने की परवाह नहीं रहती, फिर भी आप पाएंगे कि एक रूपता बनी रहती है। पानी की राजनीति ने प्रकृति के इस स्वभाव को भूलने की अक्षम्य गलती की है, इसलिए हम प्रकृति से क्षमा नहीं पा सके हैं। बड़ी गलती हमसे ये हो रही है कि हमने पानी रोकने के समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध तरीकों को पुराना या परंपरागत करार देकर छोड़ दिया है। यदि कुछ 1,00,000 साल से प्रकृति ने पानी गिराने का तरीका नहीं बदला है, तो हम भी उसके सेवन के तरीके नहीं बदल सकते। तालाब, बावड़ी जैसे पुराने तरीकों की विकास की नई योजनाओं में बहुत उपेक्षा हुई है। न सिर्फ शहरों में बल्कि गांवों में भी तालाबों को समतल कर मकान, दुकान, मैदान, बस स्टैंड बना लिए गए हैं। जो पानी यहाँ रुक कर साल भर ठहरता था, उस इलाके के भूजल को ऊपर उठाता था, उसे हमने नष्ट कर दिया है। उसके बदले हमने आधुनिक ट्यूबवेल, नलकूप, हैंडपंप लगाकर पानी निकाला है, डालना बंद किया और निकालने की गति राक्षसी कर दी। लेकिन अब प्रकृति हमें हर साल चिट्ठी भेजकर याद दिला रही है कि हम गलती कर रहे हैं, इसकी सजा भुगतनी होगी। हमें भूलना नहीं चाहिए कि अकाल, सूखा, पानी की किल्लत, ये सब कभी अकेले नहीं आते। अच्छे विचारों और अच्छे कामों का अभाव पहले आ जाता है। हमारी धरती सचमुच मिट्टी की एक बड़ी गुल्लक है। इसमें 100 पैसा डालेंगे तो 100 पैसा निकाल सकेंगे, लेकिन डालना बंद कर देंगे और केवल निकालते रहेंगे तो प्रकृति चिट्ठी भेजना भी बंद करेगी और सीधे सीधे सजा देगी। आज ये सजा सब जगह कम या ज्यादा मात्रा में मिलने लगी है।
0: विश्व पर्यावरण दिवस पर संस्कृति भारती का ये संपादकीय स्मरण है उस चेतना का, जो हमें सिखाती है कि जल सिर्फ जीवन देता नहीं, जल ही जीवन है। प्रकृति की बात हुई, प्रकृति और मनुष्य के बीच के संतुलन का नाम ही योग है। एक ऐसी विद्या जो महज देह को नहीं, चेतना को साधती है। और आज यही योग विश्व के खेल मंचों पर अपना परचम फहरा रहा है। ओलंपिक में योगासन को शामिल करने की दिशा में गंभीर प्रयास चल रहे हैं। इस रोचक यात्रा के बारे में बता रहे हैं योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य, जिनसे बातचीत की है आनंद श्रीवास्तव ने। परंपरा से प्रतिस्पर्धा तक,
2: हजारों वर्ष पहले भारत की धरती पर जन्मी एक साधना जिसने मन को स्थिरता दी, शरीर को शक्ति दी और आत्मा को संतुलन। ऋषियों के आश्रमों से शुरू हुई यह यात्रा आज विश्व के खेल मंचों तक पहुंच चुकी है। एक समय था जब योग केवल स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज योगासन प्रतिस्पर्धा का भी विषय है। खिलाड़ी कठिन आसनों में अपनी क्षमता, संतुलन, लचीलापन और मानसिक एकाग्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं योगासन भारत के महासचिव और विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आदनी भाई आनंद जी, और आकाशवाणी का भी बहुत आभार।
2: 5000 वर्ष पुरानी जो भारत की परंपरा है योग, जो ऋषियों महर्षियों के आश्रमों से शुरू हुई, वहां से लेकर यहाँ तक योगासन स्पोर्ट की जो यात्रा है, कैसे देखते हैं आप?
3: योग तो अनंत है और भारत की अध्यात्म और दर्शन का मूल तत्व है। बहुत विराट है, बहुत विशाल है और असीमित है, इसको बांधा नहीं जा सकता। परंतु योग के माध्यम से जो यात्रा समाधि तक जाती है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंगों से होते हुए व्यक्ति मोक्ष तक पहुंचता है, उस परम तत्व तक पहुंचता है। उस 8 अंगों की यात्रा में तीसरा जो पायदान है वो उसका नाम है योग, आसन। और इन आसनों को हमने प्रतिस्पर्धा में लाने की जब बात की तो हमने देखा कि प्रयास तो कई वर्षों से हो रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों से हो रहे थे, परंतु उनकी जो दिशा थी वो वैज्ञानिक नहीं, वो स्पोर्ट्स परक नहीं थी। इस कारण वो स्पोर्ट्स का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे और ये प्रयास देश में, दुनिया में कई स्थानों पे धीरे धीरे हो रहे थे और उसमें अवैज्ञानिकता भी बहुत अधिक थी। तो हमने उसको परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज के पावन निर्देशन में, स्वामी रामदेव जी महाराज के निर्देशन में पूरा इसका डॉक्यूमेंटेशन किया और क्या क्या होना चाहिए, इसमें क्या वैधानिकता है, क्या इसकी सावधानियां हैं और इसको किस प्रकार हम विज्ञान परक बनाते हुए खेल विज्ञान के साथ जोड़ते हुए आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इस पर बहुत काम करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इनों की, और वो भी निर्धारित श्रृंखला, वो निर्धारित की जाए, उसको कैटेगराइज किया जाए डिफिकल्टी के लेवल पर, ए मायने सामान्य, बी मायने उससे और कठिन, सी मायने और कठिन, डी मायने उससे भी कठिन और ई मायने परम कठिन आसन। ऐसे हमने कैटेगरी तय की और जो अपनी क्षमता के अनुसार कर सके, उनकी आयु भी तय की, उनकी क्षमताओं का चयन वो स्वयं करें, उन आसनों में से करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट करें। और उसमें महर्षि पतंजलि का जो सूत्र है, क्लासिकल जो सूत्र है, उसको मॉडर्न के साथ हमने जोड़ने की कोशिश की, वो था स्थिर सुखम आसनम, आप डूइंग द पोस्चर विद ईज इज कॉल्ड आसन। तो हमने इसके ऊपर काम करते हुए इसको पहले वैज्ञानिकता के साथ जोड़ने का प्रयास किया।
2: आकाशवाणी के बहुत सारे श्रोता ये समझना चाहेंगे कि जो योग है और योगासन खेल, इसमें मूलभूत अंतर क्या है?
3: योगासन योग की शुरुआत है और योग योगासन की परम सीमा है, बस यही अंतर है। तो योग शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है और योगासन अपनी क्षमताओं को विकसित करते हुए सीमा से पार जाने की एक प्रकाष्ठा है। योग आपको मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य देता है और योगासन आपको उस दिशा में ले जाने की प्रथम सीढ़ी के रूप में काम करता है। योगासन बीजारोपण है और योग परम समाधि का तत्व है।
2: जब आपने पहली बार योगासन स्पोर्ट को लेकर चर्चा की या इसके महासंघ की रूपरेखा बनाने का प्रयास किया और जब इसको खेलो इंडिया या क्षेत्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर शुरू करने की कोशिश की, किस तरह की चुनौतियां आई और उस समय क्या सोच थी, क्या लक्ष्य था?
3: ये जो मूल रूप से विषय आया, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विषय था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग ऋषि स्वामी रामदेव जी से चर्चा की कि इसको बच्चों तक योग को कैसे पहुंचाया जाए। तो उस वार्ता में ये निश्चित हुआ कि योगासन को खेल का रूप दिया जाए। और आज चुनौतियां बहुत अधिक ये थी कि बच्चे आज स्पोर्ट्स के मैदान में नहीं पहुंच पा रहे थे और जो खेल के मैदान थे वो संकुचित होते जा रहे हैं, वहां पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बिल्डिंग्स अब वो स्थान ले रही हैं। ऐसे में योगासन एक ऐसी विधा है, ऐसा खेल है जो आप घर बैठे 2x6 फीट का एक स्थान तय करें, ना कॉस्ट इफेक्टिव कोई खेल हो सकता है भारतीय परंपरा के अंदर, तो मुझे लगता है वो स्वदेशी खेल योगासन ही हो सकता है।
2: 2023 के गुजरात में जो नेशनल गेम्स हुए, काफी समय के बाद हुए थे, वहां योगासन नेशनल गेम्स में पहली बार शामिल हुआ। आपसे ये समझना चाहेंगे कि योगासन स्पोर्ट को प्रमोट करने वाला भारत में जो, उसकी थोड़ी भूमिका बताएं कि वो किस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे स्काउटिंग करता है बच्चों को और कोचेस किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करके उनको नर्चर करते हैं।
3: योगासन को आगे बढ़ाने में मैं समझता हूँ ग्राउंड लेवल पर हमें सबसे बड़ी कठिनाई टेक्निकल हैंड्स नहीं थे। योग सिखाने वाले लोग थे, सामान्य पोस्चर करने वाले लोग थे, परंतु उस पोस्चर में उनको 1 मिनट खड़ा रहना बड़ा कठिन है साहब। स्पोर्ट्स के दृष्टिकोण से किया जाता है तो उसकी मास्टरी का लेवल अलग होता है। चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपका स्थायित्व जिसे कहते हैं स्टिलनेस, वो बहुत महत्वपूर्ण है, स्थिरता। तो 1.5 मिनट करने वाला बच्चा ही 1 मिनट परफेक्शन से कर पाता है, क्योंकि उसको माउंटिंग और डिसमाउंटिंग दोनों चीजें उसमें काउंट होती हैं। और ये

0: जब शिकायतें हमारे पास आने लगी कि बच्चों को इंजरी बहुत हो रही है, तो हमारा फोकस उस पर रहा कि पहले अच्छे कोचेस तैयार किए जाएं, और उसमें हमारे बहुत से जिज्ञासु लोगों ने आगे बढ़कर हमसे ट्रेनिंग लेने का क्रम शुरू किया, और वहाँ से शुरुआत हुई। आज 630 जिलों में ये हमारी खेल संघ है, उनका ट्रेनिंग का कार्यक्रम हुआ है। लगभग यदि मैं यूं कहूं कि 2000 से अधिक हमारे पास कोचेज हैं, इस ट्रेंड कोचेज हैं, लगभग 2000 से अधिक हमारे पास ट्रेंड रेफरीज हैं।
1: इससे पहले कि हम चर्चा में आगे बढ़े, आर्या जी ने दो चीज़ें बोली, माउंटिंग और डिसमाउंटिंग। हम अपने श्रोताओं के लिए बता दें कि किसी भी आसन को शुरू करने से पहले नमस्कार की मुद्रा बनाना वो माउंटिंग है, और आसन समाप्त करने के बाद वापस से नमस्कार की मुद्रा बनाना ये डिसमाउंटिंग है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले साल आपने एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया। नेशनल गेम्स के बाद एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहली बार एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। वहां कितने देशों ने हिस्सा लिया और किस तरह का रिस्पांस मिला जब आपने अलग अलग एशियाई देशों को पत्र लिखा कि योगासन की चैंपियनशिप हो रही है और आप अपना दल भेजिए?
0: एशिया में बड़ा जो सेगमेंट है वो मिडल ईस्ट एशिया का है, और बड़ी भागीदारी उनके माध्यम से हुई। उसमें 21 देशों की भागीदारी उसमें रही, ईरान से लेकर बहरीन से लेकर ओमान से लेकर जॉर्डन से लेकर, बड़े अच्छे अच्छे देशों ने, और बड़ी जिनको कहा जाता है कि, और सबसे बड़ी बात है कि योगासन को लोगों ने धर्म मजहब जाति कास्ट और क्रीड से ऊपर रखकर देखा और उसमें सहभागिता की, और पूरी खेल भावना के साथ सहभागिता की।
1: गुजरात के अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया, 78 देशों के 700 से ज्यादा एथलीट उसमें शामिल हुए। इस आयोजन के पीछे की सोच क्या थी, कब आपको लगा कि अब वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन होना चाहिए?
0: 78 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन अपने आप में अद्भुत है साहब। तो मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूँगा और उनका योग के प्रति प्रेम को देना चाहता हूँ। दूसरा, पूरे विश्व में परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज की जो पहचान है, उसका एक विश्वास था लोगों में कि ये संस्था ऐसी नहीं है कि जहाँ जाकर हमारे साथ कोई अन्याय होगा, कोई बायसनेस होगी, जहाँ लेवल अच्छा नहीं होगा, जहाँ चैंपियनशिप का लेवल अच्छा नहीं होगा, तो एक वो संबल था।
1: कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, विश्व चैंपियनशिप के बाद अब लोग जानना चाहते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक्स जैसे खेलों के महाकुंभ में योगासन खेल के पहुंचने की क्या संभावनाएं हैं?
0: राष्ट्रमंडल खेलों में जाने की जो संभावनाएं हैं भारत के स्तर पर अत्यंत अच्छी है, बहुत अच्छे से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं और जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि इस दृष्टिकोण से मैं ये बात कह रहा हूँ, 78 कंट्रीज में से 25 से अधिक जो देश थे वो पहले से ही कॉमनवेल्थ कंट्रीज थे, और जैसे ये बात हमारे माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को पता चली, उन्होंने कहा कि अरे 25 से अधिक देश तो अभी हैं, हम तो बहुत अच्छे से पिच कर सकते हैं अपनी ओर से, और उन्होंने आश्वस्त किया गुजरात के अपने कार्यक्रम में कि योगासन को आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में हम निश्चित रूप से अवसर दिलवाने का प्रयास करेंगे।
1: कार्यक्रम के अंत में आप उन युवाओं को क्या संदेश देंगे जो आकाशवाणी का ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, जो योग तो करते हैं लेकिन योगासन खेल को अभी अपना नहीं पाए हैं?
0: मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि योग भी करें, योगासन खेल को भी ज्वाइन करें। योगासन खेल आपको संबल भी देगा, आपको नए भविष्य के साथ जोड़ेगा, नई चुनौतियों के साथ लड़ने की ताकत भी देगा, और आपको अपॉर्चुनिटीज भी देगा, जॉब्स भी देगा, कैश रिवार्ड भी देगा, और एक अच्छा सुनहरा भविष्य भी देगा। यदि योग और योगासन का संबल लेकर आप आगे बढ़ेंगे, भारत का यह सुनहरा खेल, स्वदेशी खेल, ये दोबारा भारत को ना केवल सोने की चिड़िया बनाएगा, सोने का शेर बनाकर आगे लेकर जाएगा, और उस दहाड़ को पूरी दुनिया सुनेगी।
1: योग केवल शरीर को मोड़ने की कला नहीं है बल्कि स्वयं को गढ़ने की प्रक्रिया है। आज की चर्चा से यह स्पष्ट है कि योगासन केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत नहीं बल्कि एक उभरता हुआ वैश्विक खेल भी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से लेकर ओलंपिक्स तक के सपनों तक योगासन की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। डॉक्टर जयदीप आर्य, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
2: विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य से आनंद श्रीवास्तव की ये बातचीत बताती है, परंपरा से प्रतिस्पर्धा की ये यात्रा भारत की सांस्कृतिक शक्ति का जीवंत प्रमाण है। योग से हम अंततः आनंद और शांति की तरफ ही बढ़ते हैं, और ऐसा ही कुछ होता है जब हम संगीत से जुड़ते हैं। 21 जून विश्व संगीत दिवस, यानी वो दिन जो पूरी दुनिया को एक सुर में बांध

बांधने का प्रयास करता है। संगीत किसी एक काल का नहीं होता, वो पीढ़ियों के बीच बहती हुई एक नदी है, कभी शांत, कभी उफनती, कभी कलकल करती। और जब ये नदी परंपरा की जड़ों से पोषण लेकर आधुनिकता के विस्तार में फैलती है, तो जन्म होता है फ्यूजन का। दिल्ली के इसी सांगीतिक परिदृश्य से उभरा है एक अनोखा बैंड कुल्फी। नाम में जितनी मिठास है, संगीत में उतनी ही गहराई। विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष्य में हमने की इन कलाकारों से एक संवादी मुलाकात।

0: आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में पांच ऐसे युवा चेहरे हैं जिनको देखकर उनके संगीत की गंभीरता का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने हमें उससे रूबरू कराया है और आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम संभव के पास, जो कुल्फी बैंड के लीड वोकलिस्ट हैं। संभव, आपके सभी साथियों का आकाशवाणी में स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहला सवाल तो यही कि ये जो नाम है कुल्फी, इस नाम के पीछे क्या ऐसा आइडिया था जब आपने इसका नाम कुल्फी बैंड रखा?
1: जी, हम बहुत समय तक हमारे बैंड का नाम सोच रहे थे और हम सब किरोड़ीमल कॉलेज के छात्र हैं। वहाँ पे एक संगीत समिति है म्यूजॉक नाम की, हम सब उसी से निकले हैं, कुछ अभी भी है उसमें। और ऐसे DU म्यूजिक सर्किट में बहुत सारे फेस्ट होते हैं एंड कॉम्पिटिशन होते हैं, वहाँ पे IIT कानपुर के फेस्ट होते हैं, हर साल कॉम्पिटिशन होते हैं। हम वहाँ पे बस बैठे थे और नाम सोच रहे थे और वहाँ पे कोई एक दोस्त कोई कुल्फी खा रहा था वहाँ, फिर वो बोला कि यार कुल्फी रख देते हैं नाम। लगा कि ये तो बड़ा स्वीट सा क्यूट सा नाम है। ठीक है।
0: संभव, जब आप म्यूजिक बना रहे होते हैं, कोई गाना चुन रहे होते हैं, तो लिरिक्स आप कैसे उसके चुनते हैं, वो लिरिक्स कौन लिखता है और फिर आप उसको कैसे सेट करेंगे, कैसे आप उसको तय करते हैं?
1: जैसे हमने कहा कि हम एक फ्यूजन बैंड अगर हमें कहें तो वो गलत नहीं होगा। हम इंडियन क्लासिकल शास्त्रीय संगीत और वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस, ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस को मिक्स करके साउंड को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं इस बैंड में। कुछ जैसे हमारा गाना मूरे मंदिर है, वो एक ऑलरेडी ट्रेडिशनल बंदिश है राग मेघ में, जो बड़े गुलाम अली खान साहब जी ने बनाई है, उनकी बंदिश है। हमने उसको रीइंटरप्रेट करा है हमारे एक कंटेम्प्रेरी स्ट्रक्चर में और उसको एक सॉन्ग स्ट्रक्चर में बांधने की कोशिश करी है। वैसे ही गाया था रसिक बलमा, वो हमने खुद बनाया है, हमारे एक दोस्त हेमांग कारगीत ने वो लिखा है, धुन हमने बनाई है, तो वो गाना हमने खुद बनाया है। वो बंदिश स्ट्रक्चर ही फॉलो करता है जो शास्त्रीय संगीत की बंदिश स्ट्रक्चर रहता है। हमें बनाते बनाते लगा कि इसमें एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस अगर मिल जाए उसमें और हम उसका एक वर्स उसमें डालें तो वो अच्छा लग सकता है। और कोई एक सेट पैटर्न नहीं है, कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है, जहाँ पे भी लग रहा है कि इसकी गुंजाइश है और ये सुनने में अच्छा लग सकता है, वो हम वहाँ पे कर करके परख परख के।
0: आपके अपने अनुभव में जितना अनुभव अभी आपको हुआ है, इन जनरल अगर हम ये म्यूजिक सीन की इस पूरे इस परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, अगर हम क्या बेहतर होना चाहिए जिससे आप जैसे लोग इस तरह का संगीत कर रहे हैं, बैंड बनाकर कर रहे हैं, इंडिविजुअली कर रहे हैं, किन चीज़ों की कमी आपको लगती है जो थोड़ा बेहतर होता तो शायद आप जैसे और लोग आगे आते संगीत और संस्कृति के क्षेत्र से जुड़ते?
2: हमें जितना समझ में आता है, एक जो दिक्कत लाइव म्यूजिक वेन्यूज की कमी आ गई है बहुत ज़्यादा, एटलीस्ट दिल्ली में भी।
0: ऐसा क्यों?
2: अब वो ज़्यादा फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। आई थिंक पैंडेमिक के बाद लाइव म्यूजिक वेन्यूज थोड़े से स्थिर हो गए थे और अब वही चार पांच जगहें हैं जहाँ पे हम लोग भी ढूंढते हैं चीज़ें, तो बेसिकली बहुत सॉलिड सैचुरेशन हो गया है। उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट म्यूजिक की आउटरीच, उसके फोरम आई डोंट बिलीव इतने एग्जिस्ट करते हैं, या अगर करते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं रहे हैं।
0: सॉरी, आप बताइए।
3: तो इंडिया में मैंने ये भी नोटिस किया है कि लोगों की मेंटालिटी होती है कि म्यूजिक इज समथिंग दैट गोज ऑन इन द बैकग्राउंड। आर्टिस्ट्स को जो रिस्पेक्ट नहीं मिलती फॉर द अमाउंट ऑफ एफर्ट दे हैव पुट इन टू लर्न देयर आर्ट एंड टू डू व्हाट दे आर डूइंग इज ऑफन वेरी डिफिकल्ट।
0: कुछ एग्जांपल दे सकते हैं आप जो बात आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिलती है बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा लोगों को लगता है?
3: ओके, सो आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ जैसे लाइव म्यूजिक का ही सेट अबाउट लाइव म्यूजिक वेन्यूज। तो लोगों को बाहर जाके खाना खाना होता है, उनको लाइव म्यूजिक सुनना होता है, पर लोगों को उसके लिए पैसे नहीं देने होते। जैसे 500 रुपये एक फैमिली के कॉन्ट्रीब्यूशन से एक आर्टिस्ट का बहुत बिग इम्पैक्ट पड़ सकता है व्हेन इट्स डन इन लार्ज नंबर्स। तो ये मेंटालिटी इज समथिंग दैट आई हैव सीन हैपन इन इंडिया।
2: अलोंग विद ऑल ऑफ दैट, ओरिजिनल म्यूजिक को ज़्यादा आई डोंट थिंक लोग सुनना चाहते हैं। अब हमें भी जैसा शौर्य बोल रहा है, लोग खाना खाने आते हैं और उनको म्यूजिक फ्री में सुनना है। हमें बहुत बार ऐसा करना पड़ा है कि हमें अपना सेट इस ये लेकर बनाना पड़ा है कि ऐसा ना हो कि लोग उठ के फिर खाना खाने चले जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं लोग बैठे रहें और हमें सुने। एक डेढ़ घंटा सिर्फ खड़े होकर एक बैंड को सुनना अब बहुत छोटे आर्टिस्ट के साथ नहीं होता है। ये आपको एक लेवल पे आपको सर्किट में कम से कम 10-10, 15-15 साल रहना पड़ता है ताकि लोग आपको डेढ़ घंटा बस खड़े होकर सुने उनका ओरिजिनल म्यूजिक। पर کورز انہیں بھی کرنے پڑتے ہیں.
0: تو ابھی آپ لوگوں نے کیا طریقہ نکالا آدتیہ, جیسے آپ جو بات کر رہے ہیں جب کورز کا ذکر آپ نے کیا, تو آپ کو لگتا ہے کہ کورز زیادہ پاپولر ہیں؟
2: جی ہیں,
0: rather than your own compositions.
2: بالکل ہیں, پر ہم تھینکفلی اس طریقے میں اس چیز کو ٹیکل کرتے ہیں کہ ہم کورز اپنے طریقے میں ارینج کر لیتے ہیں.
0: اچھا,
2: ہم بولتے بھی ہیں ویو کلفی فائیو ڈیٹ,
0: جیسے بھی آپ نے ایگزامپل دیا سمبھو, جو بندش ہے بڑے غلام علی خان صاحب کی, اس کو آپ نے تھوڑا ری ارینج کیا, اسے آپ نے ایک نیا ٹچ دیا,
1: اسی آئیڈیا کو لے کے مین اسٹریم گانوں کو ایک الگ نظریے سے دیکھ کے ان کو پریزنٹ کرنا از واٹ وی ایز اے بینڈ آلسو ڈو.

कुल्फी जैसे बैंड हमें याद दिलाते हैं कि परंपरा और आधुनिकता के बीच कोई दीवार नहीं है, बल्कि एक सेतु है जिसे संगीत बनाता है। विश्व संगीत दिवस पर इन कलाकारों को संस्कृति भारती की शुभकामनाएं।

0: बीती 8 जून को ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी ने 90 वर्षों का सफर पूरा किया। वो स्वर जो 90 वर्षों से इस देश की धड़कन बना हुआ है और उसके साथ साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था कस्तूरी, जिसने बीते 5 वर्षों में एक गंभीर सृजनात्मकता और सांस्कृतिक ऊर्जा का परिचय दिया है। इन दोनों के संयुक्त प्रयास से बीती 6 जून को नई दिल्ली में साहित्य अकादमी के सभागार में राम कथा में नृत्य का स्पंदन विषय पर मनाए गए कला पर्व ने हमारी सांस्कृतिक चेतना को और समृद्ध किया। भारतीय नृत्य परंपरा में राम कथा का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। भरतनाट्यम हो या कथक, ओडिशी हो या मोहिनीअट्टम, मणिपुरी हो या कुचिपुड़ी, हर शैली में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जीवंत हो उठते हैं। इसी उत्सव से कुछ स्वरों, कुछ भावों, कुछ शब्दों के साथ इस लय में डूबे भक्ति की लय, नृत्य की भाषा। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कथक गुरु पद्मश्री शोभना नारायण ने राम कथा में निहित मानवता, करुणा और लोक मंगल के तत्वों पर प्रकाश डाला।
1: I would say it is a civilizational memory, just like महाभारत, और उसमें वही राम कथा आज मॉडर्न युग में भी चल रहा है। Actually, there are more than 36 to 40 versions of the Ramayana itself. Ramayana का जो स्पंदन है, जो लय है, वो निरंतर है, वो शाश्वत है। आपको व्याख्या मिलती है किस तरह से आपके अंदर वो इमोशंस और भावनाएं हैं। और मैंने दो लाइन लिखी थी कैके का प्रसंग कि कैके के कारण राम वन गए और इसी कारण वो राम बन भी गए।
0: कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओडिशी गुरु विदुषी शेरन लॉविन ने अलग अलग रामायण परंपराओं का उल्लेख करते हुए उनके सांस्कृतिक और कलात्मक महत्व को बड़े विस्तार से बताया।
2: In Odisha, there's a literary tradition, obviously older, but literary, that's at least 500 years old. And what's unique or special about or significant is that in Odisha, all of the writers in Odia have interpreted many of the locations as being in Odisha.
0: भरतनाट्यम कलाकार श्रीधर वासुदेवन ने समाज की सौंदर्य चेतना और सांस्कृतिक मूल्यों की चर्चा की, जिसके आधार में रामायण है, राम कथा है।
3: नृत्य एक भाषा है और इस नृत्य को, इस भाषा को परिभाषित करने के लिए नाट्य का रूप हमें धारण किया है। और नाट्य के लिए विषय कुछ भी हो सकता है। हमारे इस विषय की खोज में इस मार्ग को बहुत ही सुलभ बनाया है महाकवियों ने, महाआचार्यों ने, उसमें से महर्षियों ने, उपनिषद के बहुत सारे स्रोत दिए, सोच के, रह के उसे भाव में अभिव्यक्त करने के लिए। और ये बात को मैं बहुत ही पुष्टिकरण से विश्वास में रखता हूँ, मैं अपने आप को भरोसा रखता हूँ कि हम सब कहीं ना कहीं रामायण काल में रहे हैं।
0: मोहिनीअट्टम कलाकार जयप्रभा मेनन ने रामकथा पर अपने विचार रखते हुए कंब रामायण का विशेष उल्लेख किया।
4: There is also a very beautiful and very important play, a scene to behold, to seeing them come, the Shurpanakhas, Alarcha, the
0: world. उन्होंने शूर्पणखा प्रसंग की कलात्मक और बेहद मानवीय व्याख्या प्रस्तुत की। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के प्रति प्रणय निवेदन से पहले राक्षसी रूप से ललिता रूप में शूर्पणखा का परिवर्तन एक बेहद रोचक नृत्य प्रस्तुति का आधार बनता है।
4: Going and proposing to Rama and Lakshmana from that Rakshasi Bhavam, the hand goes into a beautiful Pallava.

राम के ही निर्गुण रूप में अपना आराध्य तलाश करने वाले कबीर, 15वीं शताब्दी का वो जुलाहा जिसने न केवल कपड़े बुने बल्कि मनुष्यता का एक ऐसा ताना बाना बुना जो आज भी जस का तस है। गुरु हर गोविंद साहिब सिख परंपरा के छठे गुरु, उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की, वो पवित्र स्थान जो धर्म और लौकिक न्याय दोनों का ही केंद्र बना। कुछ महान विभूतियां देह में भले हमारे साथ ना हो, वो हमारी संस्कृति में, हमारी स्मृतियों में, हमारे सुरों में और हमारे रंगों में जीते रहते हैं। असम के अस्मिता के प्रहरी और असम के पहले मुख्यमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई, सरोद के जादूगर मैहर घराने के महान संगीतज्ञ उस्ताद अली अकबर खां, ओडिशी शास्त्रीय नृत्य शैली को विश्व मंच पर पहचान दिलाने वाली दिव्य कलाकार संयुक्ता पाणिग्रही, भारतीय चित्रकला के महानायक मकबूल फिदा हुसैन, इन सभी विभूतियों के सांस्कृतिक अवदान को प्रणाम करते हुए संस्कृति भारती का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार।
1: यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन। यू शिव प्रसाद, जिनका जन्म आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक संगीतकार परिवार में हुआ था, कम उम्र में ही आपको संगीत की विरासत मिली। आपने अपने चाचा से कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। सम्माननीय सैक्सोफोनिस्ट स्वर शिल्पी यू वेंकट राव जी और चिंतालापुड़ी वराहला राजू गारू और पी दयाकर गारू के साथ संगतकर्ता के रूप में संगीत कार्यक्रमों में प्रदर्शन करना शुरू किया। आप पश्चिमी की फ्लूट में भी प्रशिक्षित हैं, जो आपकी व्यापक संगीत बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। आपको गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा नई दिल्ली द्वारा कला निधि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये आपके संगीत के प्रति अटूट समर्पण, अनुशासन और जुनून को दर्शाता है, जो आपको अन्य संगीतकारों के लिए एक आदर्श बनाता है। आपके साथ मृदंगम पर विघ्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही हैं। यू शिव प्रसाद अपने कार्यक्रम का आरंभ हंस ध्वनि से कर रहे हैं। रचना के बोल हैं वातापी। इसके रचनाकार हैं मुत्तुस्वामी दीक्षितर। ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
2: दिस इज आकाशवाणी। टुनाइट इन रवि वासरी अखिल भारतीय संगीत सभा, we bring you a saxophone recital by U. Shiva Prasad. U. Shiva Prasad, born into a family of musicians in Vishakhapatnam, inherited his musical foundation at an early age. He received his formal training in Carnatic classical music from his uncle, the respected saxophonist Swar Shilpi U. Venkat Rao Garu, Chintalapudi Varhala Raju Garu, and P. Dayakar Garu, and he began performing in public concerts as an accompanist. He is also trained in Western key flute, showing broad musical versatility. Awarded Kala Nidhi Award from Gandhi Hindustani Sahitya Sabha, New Delhi. It reflects his unwavering dedication, discipline and passion for music, making him a role model for musicians alike. Today, he is accompanied on Mridangam by V. Jayaraman and on violin by G. Uma. U. Shiva Prasad begins his violin recital with Rag Hansdhwani, composition Vatapi, composed by Muthuswami Dikshitar, is set to Aditalam.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग हंसध्वनि। कार्यक्रम को जारी रखते हुए यू शिव प्रसाद अब प्रस्तुत करेंगे राग नवरस कानड़ा। रचना के बोल हैं निन्नु वीणा रामा। इसके रचनाकार हैं त्याग राजा। ये रचना रूपकम ताल में निबद्ध है।
1: दैट वॉज राग हंसध्वनि। कंटिन्यूइंग हिज रिसाइटल, यू शिव प्रसाद नाउ प्रेजेंट्स अनदर कॉम्पोजिशन बेस्ड ऑन राग नवरस कानड़ा। Composition Ninnu Veena Rama, composed by Tyagaraja, is set to Rupakam Talam.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग नवरस कानड़ा। अब आप सुनेंगे राग गौरी मनोहारी। रचना के बोल हैं जय जय पद्मनाभा। इसके रचनाकार हैं स्वाति तिरुनाल और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग नवरस कानड़ा। यू शिव प्रसाद कंक्लूड्स हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विथ राग गौरी मनोहारी, कंपोजिशन जय जय पद्मनाभा, composed by Swati Tirunal, is set to Adi Talam.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन, आपके साथ मृदंगम पर विग्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही थी। इसी के साथ संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: He was accompanied on Ridangam by V. Jayaraman and on violin by G. Uma. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi and...
2: Namaskar, Akashwani Samachar ke saath main Ratna Pandey. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। वहां फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इनमें शिक्षा मंत्री एडवर्ड ग्रेफे, उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट, आल्प्स मैरिटाइम्स फ्री फ्रैक्चर के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिक अमोसू एडबले, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, नीस के मेयर एरिक सीओटी और स्टेट प्रोटोकॉल के डिप्टी डायरेक्टर बेनोइट स्नाइडर शामिल थे। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है।

0: फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड्स के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह फ्रांस में प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवान के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अमरीका और ईरान ने संकेत दिया है कि वे पश्चिम एशिया में महीनों से चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते के बहुत करीब हैं। हालांकि अभी भी कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। दोनों देशों के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित समझौते के मसौदे पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में कल आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हेबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 से पूर्वाह्न 7:35 तक होगा। इसमें 130 देशों से सहभागिता की संभावना है। कार्यक्रम में आयुष मंत्री प्रदाप राव जाधव भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक लोग मिस्ड कॉल देकर पंजीकरण करा सकते हैं। नंबर है 1800-315-7008। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूरी राजस्थान में आंधी तूफान की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi has arrived in the French city of Nice, marking the beginning of his 6-day visit to France and Slovakia. Mr. Modi was accorded a warm welcome by senior French dignitaries. The visit to the two European countries aims to further deepen bilateral ties and reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. During his stay in Nice, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which brings together top innovation startups and venture capital funds from across the world. On the second leg of his two-nation tour, Mr. Modi will travel to Slovakia tomorrow. During his two-day visit, Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini. He will also hold talks with